एक गांव में एक आदमी रहता था, सीधा साधा था, बहुत सीधा था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, खूब खाता था, खूब खाता था। अच्छा, आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है। आओ, आओ, कुछ लोग कहते हैं ना ये बहुत खाते हैं, भाई आदमी उतना ही खाए खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है, जैसे आपका बड़ा खाता है। तो वो तो खाते के हिसाब से ही खाते हैं। त्यागी जी, तो आदमी कितना खाता, जिसका जितना बड़ा खाता आदमी उतने, तो ये खूब खाते थे, कोई काम नहीं, एक ही काम था, खावे और सोवे और जगे और फिर खावे। घर वाले बहुत हैरान, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। अच्छा, घर वालों घर वाले रखते ही उसी को जो काम का हो, और जो काम का नहीं वो कोई सी काम का नहीं। तो घर वालों ने कहा कि तुम खाते ही रहते हो, कुछ करते ही नहीं हो, कुछ करो। बोले हमसे कुछ होता ही नहीं है। बोले होता नहीं तो काहे को पड़े हो, बाबा बन जाओ। अच्छा, कई लोग तो इसी चक्कर में बाबा बन जाते। बोले क्यों? बोले मूड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर मुड़ाए, इसको बुंदेलखंडी में मूड़ कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में मूड़, सिर को मूड़ कहते। तो बोले सिर मुड़ाए तीन गुण। बोले क्या? बोले सिर की मिट जाए खाज और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। बोले ये फायदा है, तो मूड़ मुड़ाए तीन गुण। तो घर वालों ने कहा कि कोई काम के तो है नहीं, घर में पड़े रहते हो, जाओ बाबा बन जाओ। अच्छा, कई लोग बाबा इसी चक्कर में बनते, घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काट दी चोटी, ले मांखा बेटा रोटी। अब ये घर से निकला, जाए कहां? इसने सोचा जाए कहां, घर वालों ने ही छोड़ दिया, जिन पे भरोसा था उन्होंने ही छोड़ दिया, जाए कहां? सामने एक मंदिर था, मठ आश्रम, जैसे त्रिपाठी जी ने हमारा भिवंडी में बना रखा बागेश्वर सनातन मठ, ऐसे ही एक मठ था। मठ के बाहर पुजारी जी बैठे थे। अच्छा, महात्मा तो होते ही मोटे ताजे, और होए क्यों ना, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं, अटेंशन में रहते हैं, टेंशन क्या, महात्मा तो अटेंशन में रहते हैं, टेंशन में थोड़ी रहते, अटेंशन में रहते। खा खूब बड़े मोटे ताजे महात्मा मठ के बाहर, मंदिर के बाहर बैठे थे। ये जा रहा था रस्ते में, इन्होंने देखा, इसने देखा, बहुत खाते हैं लगता है, आदमी को तो अपने हिसाब से ही दिखाई देता है। बोले ये भी मोटे ताजे हैं लगता है, ये भी खूब खाते। नजदीक आ गया गुरु जी के, जैसे ही नजदीक आया तो दो चार चेला महात्मा जी के निकल आए, वो भी मोटे ताजे। अरे बोले वाह, इधर तो सब मोटे ताजे, ये भी मोटे ताजे लगता है, ये सब खूब खाते हैं हमारे जैसा, ये भी मोटा ताजा था। ये गया, बोले गुरुजी हाँ आप हमें अपना चेला बना लो। बोले बन जा। बोले बहुत बढ़िया, जय हो महाराज। बोले लेकिन चेला तो बनेंगे, पहले ये बताओ हमें काम क्या करना होगा। गुरुजी बोले कोई काम नहीं है, मंदिर है, सुबह शाम आरती में खड़े होके कीर्तन गाओ और पड़े रहो, कोई काम नहीं है मंदिर में, कोई इमरजेंसी आएगी तो बताएंगे। बोले महाराज चलो ये तो हो गई काम की बात, ये बताओ इसकी क्या व्यवस्था है। अरे बोले वाह, मंदिर है, कोई कमी नहीं, भगवान की बहुत कृपा है, दोनों टाइम भंडारा चलता है, सुबह भी शाम को भी। बोला ओनली टू टाइम? बोले हाँ दो बारे। बोले वो चार नहीं हो सकता? अरे बोले मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं, चार नहीं, आठ बार खाओ। इसने कहा ये बहुत बढ़िया है, कुछ काम करना नहीं, आठ बार खूब खाना। इसने कहा यदि नौ बार खा ले तो? पंडित जी बोले खाता ही रहेगा कि कुछ और करेगा? बोले सच यही है कि हम खाते ही भाग हैं, इसीलिए तो घर से भगाए गए। बोले कोई बात नहीं, खाते रहना, नौ बार खा लेना, तुम्हारी व्यवस्था बना देंगे। लेकिन इसे क्या पता, अब रहने लगा, गुरु जी ने चेला बना दिया, नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रखा? रामदास। माला पहना दी, तिलक लगा दी। अब ये बढ़िया सुबह शाम आरती में खड़ा हो गए, और आरती के बीच ही में जयकारा लगा के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती चल रही हो, बीच में जयकारा लगा के भंडारी के पास आ जाए, लो हम तो जय बोले, ले आओ। तो पुजारी जी कहे भाई कम से कम पांच मिनट तो गम खा, पांच मिनट तो ठहर जा बीच ही में, और ये इतना खावे, अब इसे फ्री में मिले साव आनंद, काम कुछ करना नहीं, इतना खावे को होश नहीं खड़े होने का, सांस तेज चल रही, पेट भरो है दाल से और रोटी से और भात से, आ सांस तेज चल रही है, दीवाल में टिक्के कीर्तन करे हरे राम हरे राम, उतई ही सो जाए, और जैसे ही नींद को ले सो फिर जाए, ले आ। मंदिर वाले बोले भला भगवान इसका भला करे, खाता ही खाता है, लेकिन इसे क्या पता मंदिर में भी मुसीबत आने वाली है। एक दिन सुबह से कुछ बना ही नहीं,
भंडारी जी धूप में तेल लगाते हुए बैठे थे, सिर के बाल खुजला रहे थे। इसको लगा आज मंदिर में हड़ताल है, तो ये गुरुजी के पास गया। गुरुजी आज रोटी नहीं बन रही, भंडारी जी बैठे हैं, कितनी देर में बनेगा, हमें गरम ही दे दो। गुरुजी बोले चेला तुम्हें बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो? बोले एकादशी है तो ना बनेगा ना मिलेगा। तो रामदास बोला हमें भी? बोले तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं। अरे बोले गुरुजी आपके इतने चेला हैं, उन्हें एकादशी करवा दो, एक तो छोड़ दो। बोले नहीं नहीं वो तो सबको नियम बराबर है, ना बनेगा ना मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला गुरुजी यदि हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। बोले मतलब? बोले मतलब सीधा है गुरुजी, एक चेला आपका कम हो जाएगा, आश्रम में कलियम टपक जाएंगे। बोले ये तो बड़ी खाज। बोले क्या किया जाए? बोले आप ही कोई उपाय बताओ गुरुजी। बोले और तो कोई उपाय नहीं, मंदिर में तो बन नहीं सकता, नियम है हमारे गुरुजी, 300-400 साल से नियम चल रहा है। एक उपाय है क्या? बोले हम सामान दे सकते हैं, तुम बना लोगे? अरे बोले मरते क्या नहीं करते, सामान ही दो। तो भंडारी जी को कह दिया हाँ भाई जरा सामान दो। भंडारी जी ने आटा दे दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दिए, नमक दे दिया, मिर्चा दे दिया। गुरुजी से प्रणाम करके बोला गुरुजी हम जा रहे, आशीर्वाद दो कि हम फतेह करके आए। तो गुरुजी बोले क्या फतेह करके आए? बोले पूरा राशन ठिकाने लगा के आए, क्योंकि अभी तो बनाना पड़ेगा, तब तक दोपहर हो जाएगी, भूख लगे। तो गुरुजी बोले इधर आओ। जी जी गुरुजी सुनो, वैसे तो एकादशी को खाना नहीं चाहिए, पर तुम नहीं मान रहे हो तो खा रहे हो। सुनो भगवान को बुलाकर भोग लगाकर खाना, अब ये तो सीधा साधा आदमी, बड़ा सरल आदमी, कुछ जानता था ही नहीं, इसे पढ़ाई लिखाई थी नहीं, कोई जानता था नहीं, सीधा साधा आदमी, भोला भाला। इसने कहा जो आज्ञा गुरुजी। तो इसने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, आज एकादशी है तो मंदिर में भगवान को कुछ मिलेगा ही नहीं, कम से कम हमारे यहां मिल तो जाएगा। ये नदी के किनारे आया, नदी के किनारे लकड़ी ली, आग जलाई, आग जला करके इसने रसोई तैयार की, टिक्कड़ बनाए, चोखा प्रसाद बनाया। चोखा प्रसाद बनाने के बाद गुड़ का शरबत बना करके बैठ गया। इसने सोचा गुरुजी ने कहा था भगवान को बुला लेना, मंदिर था राम जी का, सो हाथ जोड़ करके गाने लगा।

अच्छा सीधा साधा आदमी पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसे लगता था कि भगवान सच में आते और खाते हैं। सीधा आदमी ये सोचता था कि भगवान आते हैं और खाते हैं। अब ये चारों तरफ देखने लगा, कोई नहीं आता दिखाई पड़ा, केवल जंगली जानवर दिखाई पड़े। तो ये और टेंशन में मन ही मन कहने लगा, प्रभु एक तो एकादशी है, दूसरा पहली बार जिंदगी में हमने बनाया है, तीसरा दोपहर पहले ही हो गई, भूख बहुत लगी, और चौथा तुम आ नहीं रहे। अच्छा क्यों नहीं आ रहे? गुरुजी ने तो कहा था भगवान को बुला। एक कमी होगी। क्या कमी होगी? हमारे पास वो घंटिया आचमनी नहीं है। हो सकता भगवान माहौल देख के न आ रहे हो। सो हाथ जोड़ करके बुला, आचमनी।

नहीं आए। अब इसका दिमाग खराब, इतनी देर हो गई आए नहीं और इसको रोटी बसाएं। एक बार रोटी की तरफ देखे, फिर इधर उधर देखे, भगवान नहीं आए। तो सीधा साधा आदमी हाथ जोड़ करके बोला, सुनो भगवान, सीधी सीधी बात सुन लो, जहां भी हो जल्दी आ जाओ। और तुम मंदिर के चक्कर में ना रहना कि मंदिर में मालपुआ रबड़ी मालपुआ, आज वहां एकादशी है, ठन ठन गोपाला मिलेगा। वहां कुछ नहीं है, जो है यही है, यहाँ हम भी खा रहे तुम भी पाओ, एकादशी मना लो। भगवान इसी सरलता पर रीझ गए। लेकिन राम जी भी कम कौत की नहीं है, कलयुग की सत्य घटना है। राम जी अकेले नहीं आए, सीता समारोह पितवाम भागम, माता जानकी जी को लेकर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। आहा, जैसे ही इसने देखा दो जने आ गए, तो राम जी की तरफ देखकर बोला, जय हो भगवान, इतनी देर क्यों कर दी। भगवान बोले, बिजी थे, व्यस्त थे। बोले, अच्छा। बगल में जानकी माता को देख के बोला, ये कौन है। राम जी बोले, वाह, हमारी घरवाली है, घरवाली घरवाली। बोले, हमने बुलाया तो एक भगवान, तो जी तो दो भगवान हो गए। तो राम जी बोले, दिक्कत क्या है। बोले, पूरी दिक्कत है, व्यवस्था दो लोगन की है, अब तीन हो गए, मतलब आधी एकादशी हमारी करवा ही लोगे। एक तो आधी पहले ही हो गई, ऊपर से बंटवारा करके तुम्हारी घरवाली को भी तो कुछ रोटी लगेंगी, ये खाएंगी कि नहीं खाएंगी। भगवान बोले, वाह, हम खाएंगे तो ये भी खाएंगे। बोले, इसका मतलब है शुद्ध है कि दो टिक्कर खाएंगी कि तीन। राम जी बोले, ये कोई बात है, पेट भर के खाएंगे। बोले, वाह, एक तो लेट आए, ऊपर से पेट भर के खाओगे, और दो भगवान आए, व्यवस्था एक भगवान। पर कोई बात नहीं, अब आगे सो आगे, बैठो बैठो। एक बात बोले प्रभु, हाँ, आप लोगों की जोड़ी बड़ी सुंदर है, कहाँ रहते हो। भगवान बोले, मंदिर में रहते, बहुत अच्छा, लो खाओ, बढ़िया प्रसाद पवाया। इसने भी प्रसाद पाया, प्रभु भगवान के चरण स्पर्श किया। भगवान जाने लगे, इसने पूछा, सीधा आदमी, इसने कहा, एक बात बताओ भगवान। बोले, हाँ, ये एकादशी साल में कितनी बार आ जाती है। भगवान बोले, तो हर महीना आती है, महीने में एक नहीं दो। बोले, मतलब हर 15 दिन में अपनी मीटिंग फिक्स है। भगवान बोले, हाँ, तो बोले, सुनो, और तो सब ठीक है, अगली बार टाइम पे आ जाए क्यों, इतनी देरी ना करिए, थोड़ा जल्दी। भगवान बोले, हम आ जाएंगे, आशीर्वाद। सीधा साधा आदमी तो ये मंदिर आ गया, इसने गुरु जी को नहीं बताया, क्योंकि होता ही ऐसा होगा, उसको ऐसा लगा कि ऐसा ही होता है, भगवान ऐसे ही आते हैं। अब 15 दिन कब बीत गए पता नहीं लगा, फिर एकादशी आई, तो फिर भंडारी जी चूल्हे में नहीं आग लगा में। तो ये पूछा, बोले, आज क्या है। बोले, फिर एकादशी। बोले, फिर एकादशी, इतनी जल्दी, अभी तो गई थी। अरे बोले, वो तो आ गई, कोई बात नहीं, अब एकादशी आई तो गुरु जी के पास गया। बोले, गुरु जी सुनो, इस बार हमारा राशन बढ़ाया जाए। तो गुरु जी बोले, क्यों। बोले, वाह, वहां दो दो भगवान आते, और पिछली बार हमारी आधी एकादशी हो गई थी, इसलिए राशन बढ़ाओ, थोड़ा आटा बढ़ाओ, आटा। गुरु जी को लगा ज्यादा खाता है तो कम रह गया होगा, तो गुरु जी ने 5 शेर की जगह 8 शेर आटा कर दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दी, दाल दे दी, और थोड़ा नमक दे दिया, मिर्चा दे, लो लो जाओ, अब ठीक है। अब ये गया, इसने बढ़िया रोटी टिक्कर फिर से बनाया, चोखा बनाया, गुड़ बनाया, मिर्चा की बढ़िया साग दाल बनाई, रख ली, साग बनाई, रख ली। इसने सोचा भगवान को बुला लें, नाम पहले ही जान गया था, पूछा प्रभु राम जी से पहली बार में, ये बगल में कौन है, घर वाली है, क्या नाम है इनका, सीता जी, अच्छा, तो आज नाम लेके बुलाने लगा, अरे सीता राम।

दो आते हैं, दो का इंतजाम करो, सो तीन तीन आ गए। भगवान की तरफ देख के बोला, अब ये कौन है? भगवान बोले, हमारे भाई हैं। ये नीचे से ऊपर की तरफ देखे, ऊपर से नीचे की तरफ देखे। राम जी बोले, हुआ क्या? बोले, लग तो नहीं रहे तुम्हारे भैया है, तुम्हारा कलर अलग है, इनका अलग, दोनों अलग लग रहे। अरे बोले, नहीं नहीं, हमारे भाई हैं, इनकी माता जी दरअसल दूसरी है, इसलिए गौर वर्ण के हैं, हम श्याम वर्ण। अच्छा तो ठीक है, लेकिन एक बात बता। हाँ। बोले, हमने तुम्हारा ठेका लिया है भोजन का, खानदान का थोड़ी लिया है। तुम पूरा खानदान लेके आओ, तुम्हारा ठेका है, अब पूरे खानदान का, तुम तीन जने आ गए। अब लेकिन कोई बात नहीं, हम आ गए, अब ठीक है, लो बैठो, कोई बात लगता है थोड़ी एकादशी फिर करवा दोगे, बैठो बैठो बैठो। अब राम जी बैठ गए। क्या नाम है इनका? लक्ष्मण जी। अच्छा अच्छा बाबा, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी। मन ही मन सोचे, क्या गजब का आदमी, हम जहां जाते हैं आदमी खुश होते हैं, ये कह रहा है ये क्यों आ गए, क्या गजब का भगत है भाई, क्या गजब का भगत। तीनों लोग बैठ गए, राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण भैया, तीनों बैठे, इसने प्रसाद रखा, भोजन कराया। आहा, तीनों को गौर से देखने लगा। भगवान तो भगवान ही है, बहुत सुंदर, परम सुंदर है ही है। नीलाम भुजक श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम है। सो भगवान श्री नील सरोरो नीलमण नील नील धर श्याम, भगवान का नील स्वरूप है। आहा, अलका बलियां झलक रही हैं, घुंघराली लटें लटक रही हैं, बड़ी वज्राग देह माई भुजाए है, बढ़िया गला भरा हुआ शंख की तरह है, कपोल बढ़िया मुस्कुराते हुए लाल लाल होंठ हैं, काली काली कजरारी अखियां हैं, श्वेत दंतावली है। आहा, मधुर मुस्कुराता हुआ श्री हमारे राघवजू सरकार का मुखारविंद है। स्वरूप को देख करके ये अद्भुत हो गया। बोले, वाह, कुछ भी कहो, पहले दो लोग अच्छे लग रहे थे, अब तीनों अच्छे लग रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसने भी भोजन किया, चरण पकड़ के राम जी से बोला, प्रभु जा रहे? राम जी बोले, जा रहे। भगवान बोले, जा रहे। बोले, अगली बार कितने आओगे? आओ, आओ, आओ। एक को बुलाया, दो आए, दो को बुलाया, तीन बुलाया, तीन आ गए। अब अगली बार गिनती बताओ। भगवान बोले, हम आ जाएंगे, गिनती नहीं पूछते, हम आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। और भगवान ऐसे ही गोलमोल करके गायब हो गए। अभी आया, इसको तो फिर एकादशी की पड़ी के इस बार एकादशी आएगी, फिर आफत होगी। वो सच में एकादशी आ गई, फिर एकादशी आई। गुरुजी बोले, आज फिर एकादशी है? बोले, है तो। गुरुजी बोले, सिर क्यों लटका है? अरे बोले, वहां पे भगवान ही भगवान आ जाते। गुरुजी बोले, कहना क्या चाह रहे? बोले, इस बार हमारा राशन डबल किया जाए। गुरुजी बोले, डबल? बोले, कितना? बोले, 8 का 16। 8 शेर दिया था 16। गुरुजी मन में सोचने लगे, 16 शेर खाता तो नहीं होगा, जरूरी बेचता है। गुरुजी बोले, 16 नहीं 20 दे दो, हम भी देखते हैं कौन भगवान आते। मनी मन, दे दो सामान। आटा लिया, दाल ली, गुड़ लिया, नमक लिया, मिर्चा लिया, नदी के किनारे आ गया। लेकिन आज चेला ने चतुराई कर दी, भगत ने चतुराई कर दी। इसने सोचा, राशन पर्याप्त है, एक काम करो, पहले भगवान को बुला लो, जिस हिसाब की गिनती होगी उसी हिसाब का बना लेंगे। तो ये पहले ही बैठ गया, नाम तो जान ही गया था। जिसने फिर हाथ जोड़े, आंख बंद की और गाने लगा, उसी

क्या दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य पामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। राम जी लक्ष्मण जी जानकी मैया भरत भैया शत्रुघ्न भैया हनुमान अंजनी के छैया पूरा

का सोई हाथ जोड़ के बोला जय हो। एक को बुलाओ सो दो आते हैं, दो का इंतजाम करो सो तीन आते हैं, तीन की व्यवस्था करो सो पूरा खानदान मोहल्ला लेके प्रकट हो गए। लेकिन सुन लो, आज हमने भी भोग नहीं बनाया है। भगवान बोले मतलब? बोले ना हमने बनाया है ना तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा। भगवान बोले कहना क्या चाह रहे? बोले जब हमें हर बार एकादशी हो ही जाती है, वो धरा सामान बनाओ खाओ। जब हमें मिलता ही नहीं है, अपना बनाओ और खाओ। भगवान बोले तुम क्या करोगे? बोले हम तो वहां बैठे रहेंगे, बच जाए सो हमें बता देना, नहीं तो हमारी भी एकादशी है। गुरु जी वैसे ही कह रहे थे एकादशी रहना चाहिए, सो हम भी एकादशी रह लेंगे। भगवान बोले बात तो गजब फंस गए। अब ये दरबार की तरफ देखे, राम जी से बोला परिचय कराओ कौन कौन आया है। राम जी बोले ये तो मिले थे, हाँ ये तो लक्ष्मण जी हैं, ये तो तुम्हारी पत्नी सीता माता है, हाँ हाँ और कौन है, ये दो लोग कौन है। राम जी बोले ये भी भैया हैं। बोले ये भी अलग अलग कलर के हैं। अब बोले अब आप ऐसा ना कहो, अच्छा हाँ अच्छा दोनों भाई है। अब हनुमान जी की तरफ देख के बोला, राम जी से बोला आदमी तो आदमी बंदर भी ले आए। वाह वाह वाह, आदमी तो आदमी बंदर भी ले आए, लेकिन कोई बात नहीं अब आगे तो बनाओ और खाओ। और ये कोने में बैठ गया पेड़ के नीचे। राम जी जानकी माता से बोले, सत्य घटना है, जानकी माता से बोले किशोरी जू आज भगत की इच्छा है, एक काम करो तुम अन्नपूर्णा स्वरूप में आकर के आज अपने हाथों से प्रसाद बनाओ और हम लोग पाएंगे। पूरा राम दरबार प्रसाद बनाने के लिए तैयार हुआ। जरा दर्शन की झांकी करना मन में, क्या अद्भुत झांकी।

0: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
1: What you got for me, Jack?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है? कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है? कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है? अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: College should open doors, not bury you in debt. But rising tuition has put higher education out of reach for too many. WGU changes that. We're a nonprofit university that keeps tuition low. Pay one flat rate for a six-month term, not per class. Advance as quickly as you learn. Finish faster and spend less. This is education made affordable. Visit WGU.edu to learn more.
3: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
4: How they looked after game one.
5: I mean, they were frustrated.
3: The Daily.
6: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
7: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
8: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good News Today par.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर।

0: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा, हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक। ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: देश की समुद्री सुरक्षा के लिए मिलेगा एक और महायोद्धा। आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा INS महेंद्र गिरी। विशाखापट्टनम नौसेना बेस पर होगा समारोह। अमरनाथ यात्रा का आज 9वां दिन, देश विदेश से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब तक 1,70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, बारिश के मौसम में कोहरे और धुंध से घिरा, दर्शन के लिए आस्था और उत्साह के साथ श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। देश में 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं के दुरुपयोग पर होगी सख्ती। बिना पर्चे के दवाओं की बिक्री पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगाई रोक। मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 सालों का रिकॉर्ड। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज साउथैम्पटन में 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। अमेरिकी सिंगर पिटबुल के फैंस ने लंदन में बनाया अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कॉन्सर्ट में हजारों की तादाद में बॉल्ड कैप पहनकर पहुंचे लोग।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: हरिद्वार में सावन की कावड़ मेले के लिए तैयारियां जोरों पर, विधिवत 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा है पवित्र मेला। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन और पुलिस ने तैयारी की। कांवड़ मेले के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की होगी तैनाती। 6 फीट से ऊंची कांवड़ और 10 फीट से ऊंची झांकी न लाने को प्रशासन ने अपील की। सुरक्षा कारणों से कांवड़ियों से पुलिस का आग्रह। हरिद्वार पुलिस की शिव भक्त कांवड़ियों से त्रिशूल डंडे आदि ना लाने और मोटरसाइकिल में रेट्रो साइलेंसर का उपयोग ना करने की अपील। तो वहीं मेले में पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं ये चीज। शिव भक्त कांवड़ियों की सकुशल और सुगम कांवड़ यात्रा की कामना के साथ स्वागत के लिए तैयार है प्रशासन। सुगम तरीके से ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खास प्रबंध। अमरनाथ यात्रा का आज 9वां दिन, देश विदेश से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब तक 1,70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षित माहौल में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बारिश के मौसम में आस्था और उत्साह बरकरार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बालटाल में अमरनाथ यात्रा बेस कैंप पहुंचकर दौरा किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बेस कैंप में रुके श्रद्धालुओं से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बातचीत की, इंतजामों के बारे में जानकारी ली। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए मेडिकल सुविधा के भी पुख्ता इंतजाम। 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, जगह जगह मुफ्त मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाई गई है। देवभूमि में बद्रीनाथ धाम, बारिश के मौसम में कोहरे और धुंध से घिरा, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। पहाड़ों पर भारी बारिश से बद्रीनाथ मंदिर के सामने बहने वाली अलकनंदा नदी उफान पर, बारिश में छाते और रेनकोट पहनकर जोश के साथ जुटे श्रद्धालु। कई घंटों की मशक्कत के बाद खुला कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग। पहले दल ने लिपु दर्रा पार कर तिब्बत में प्रवेश किया। यात्रा में 48 यात्रियों सहित 52 लोग हुए शामिल। खंडवा के ओमकारेश्वर मंदिर में रक्तदान करने पर पूरे परिवार को कराए गए VIP दर्शन। प्रशासन की इस खास मुहिम के चलते जिला अस्पताल में खून देने वालों की लगी लंबी कतार। दर्शन के साथ साथ रक्तदान महाकल्याण का संकल्प भी पूरा कर रहे हैं श्रद्धालु। प्रशासन के इस पहल का सभी कर रहे हैं प्रशंसा। बारिश के मौसम में उत्तराखंड में चमोली जिले के माणा में बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य, देश विदेश से पहुंच रहे हैं पर्यटक। खूबसूरत बादलों से घिरी माना की वादियां, वसुंधरा फॉल्स, सतोपंथ झील और सरस्वती नदी देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं सैलानी। बद्रीनाथ धाम के पास मौजूद है माणा गांव, सीमा पर होने के कारण भारत के पहले गांव के रूप में भी है पहचान। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ माना गांव का है धार्मिक और पौराणिक महत्व। मान्यता के मुताबिक स्वर्ग जाने के लिए पांडव इसी रास्ते से गुजरे थे। साल में 6 महीने बर्फ से घिरा रहता है माणा गांव, ट्रैकिंग के लिए भी पहुंचते हैं पर्यटक। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, आज आईएनएस महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी नेवी। प्रोजेक्ट 17A के तहत बना छठा स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट है आईएनएस महेंद्रगिरी। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री की उपस्थिति में औपचारिक रूप से नौसेना को समर्पित किया जाएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और आधुनिक पनडुब्बी रोधी हथियारों से सज्जित है ये फ्रिगेट, दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल। समुद्र सुरक्षा ऑपरेशन के साथ कई तरह के सर्च और रेस्क्यू मिशंस के लिए उपयुक्त है, साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे लंबे समय तक तैनात रहने में भी सक्षम। आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है आईएनएस महेंद्रगिरी, इस युद्धपोत में लगे उपकरणों का 75% से ज्यादा हिस्सा स्वदेशी। पीएम मोदी 2 दिनों की न्यूजीलैंड के दौरे पर, ऑकलैंड में आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। ऑकलैंड में कम्युनिटी वेलकम के दौरान देखने को मिली भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक, कलाकारों ने पेश किए कई भव्य कार्यक्रम। न्यूजीलैंड में भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उमड़ा जन सैलाब, हाथों में तिरंगा लिए हुए नजर आए लोग, पीएम ने हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। भारत के तिरंगों के रंगों ने रंगा नजर आया ऑकलैंड का मशहूर स्काई टावर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के सम्मान में हुई जगमग रोशनी। 40 सालों से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड की यात्रा, दोनों देशों के बीच व्यापार निवेश रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने की पहल। भारी बारिश से उफान पर बह रही है यमुना नदी समेत बरसाती नदियां, बढ़ते जलस्तर के बीच प्रशासन अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील। मूसलाधार बरसात के चलते अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी के आसपास बसे रिहायशी इलाके खाली कराने के निर्देश। उत्तराखंड में उफान पर सरस्वती नदी, रेस्क्यू टीमें अलर्ट, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद। मॉनसून में शिमला बना पर्यटकों की पहली पसंद, देश भर से पहुंच रहे हैं लोग, परिवार और दोस्तों के साथ पहाड़ों की वादियों का उठा रहे हैं लुत्फ। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल, तो वहीं लामबगड़ नाला पार करना होगा आसान। अमरेली में खेती की जमीन के लिए वरदान बनी गागड़िया नदी, नदी पर बनी 20 झीलें 3 तालुकों के लिए सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। पद्मश्री सब्जी भाई ढोलकिया की फाउंडेशन और गुजरात सरकार की कोशिशों से साकार हुआ प्रोजेक्ट, खेती के साथ पर्यावरण और जंगली जानवरों के लिए अब नहीं रही पानी की कमी। भूजल स्तर को बढ़ाना है परियोजना का उद्देश्य, हर साल मॉनसून में लबालब होती है नदी और सभी 20 झीलें। जूनागढ़ के दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, तो वहीं जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। जूनागढ़ में जिले के घेड़ विस्तार परियोजना के कामों पर भी मांडविया ने अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए 1500 करोड़ का पैकेज घोषित किया है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए आई गुड न्यूज, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 726 करोड़ डॉलर का हुआ इजाफा, 67,419 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश जारी, गायन में सही शब्दों और उच्चारण का पालन अनिवार्य। नागपुर में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन, इंडोनेशियाई प्रतिनिधि मंडल ने अन्य सदस्य देशों के साथ परिवहन सहयोग को मजबूत करने के लिए चर्चा की। डिजिटल बिहार की दिशा में सम्राट सरकार का अहम कदम देखने को मिला, अब घर बैठे होगा जमीन और अन्य दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन, जीआईएस तकनीक से होगा स्थल निरीक्षण। श्रीनगर पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला, कश्मीर मैराथन 2026 का मर्चेंडाइज किया लॉन्च। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा स्पेन, दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराया। रोमांचक मुकाबले में स्पेन के लिए फाबियन रुइज और मिकेल मेरिनो ने गोल किए, बेल्जियम की ओर से चार्ल्स डी कैटलारे ने एकमात्र गोल दागा। वर्ल्ड कप के अंतिम चार में पहुंची स्पेन की टीम, तो वहीं सेमीफाइनल में फ्रांस से होगा मैच। इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी है स्पेन की टीम, अब तक 6 मुकाबलों में से 5 में जीते, 1 ड्रॉ रहा। स्पेन की टीम के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज, लगातार 36वां मैच बिना हार के पूरा कर अर्जेंटीना की बराबरी की। लॉर्ड्स वेमेंस टेस्ट में आज दूसरे दिन का खेल होगा, पहले दिन भारत की पहली पारी 285 रन पर खत्म होने के बाद इंग्लैंड ने पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन बनाए। भारत की पहली पारी में स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 108 गेंदों में 11 चौके और एक छक्का लगाकर 83 रन ठोके। स्मृति मंधाना ने करियर का 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर बड़ी उपलब्धि हासिल की, 300 मैच खेलने वाली भारत की तीसरी और दुनिया की 12वीं महिला क्रिकेटर बनी। कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने 58 रनों की पारी खेली, दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। लॉर्ड्स मैदान पर हो रहा है ऐतिहासिक मुकाबला, 142 साल के इतिहास में पहली बार महिला टेस्ट मैच का आयोजन। भारत और इंग्लैंड के बीच साउथहैम्पटन में आज होगा T20 मैच, शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज, इंग्लैंड सीरीज में 3-0 से आगे। विंबलडन के फाइनल में पहुंचे जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव, सेमीफाइनल में ब्रिटेन के फेरी को हराया। अलेक्जेंडर पहली बार खेलेंगे विंबलडन फाइनल मुकाबला, 30 साल बाद विंबलडन फाइनल में जर्मन खिलाड़ी ने बनाई है जगह। रविवार को होगा विंबलडन फाइनल मुकाबला, जैनिक सिनर और जोकोविच के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेंगे अलेक्जेंडर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match. From today's hits,
4: somebody save me,
2: to timeless favorites,
4: life is like a song,
2: and new discoveries.
4: So much more than a history. Wake up.
2: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है। कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है? कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है? अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
0: सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सीढ़ियों के बारे में। सीढ़ियों का आपके भाग्य से क्या संबंध है, घर की सीढ़ियां कैसी होनी चाहिए और सीढ़ियों को बनाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के नजरिए से सीढ़ियों के बारे में। वास्तु शास्त्र में सीढ़ियों का क्या महत्व है? देखिए, सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं। ये सीढ़ियां आपके घर में कहीं भी हों, ये जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती हैं। सीढ़ियां अगर घर के बाहर हैं तो ये शुक्र से संबंध रखती हैं, और सीढ़ियां अगर घर के अंदर हों तो ये मंगल से संबंध रखती हैं। वैसे देखिए, सीढ़ियों का मतलब होता है उतार चढ़ाव, इसलिए कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध होता है राहु और केतु के साथ। गलत सीढ़ियां जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देती हैं। अगर आपने गलत तरीके से घर में सीढ़ियां बनाई हैं तो अचानक आपके जीवन में समस्या आ सकती है। इनके कारण बिना वजह के राहु और केतु आपके जीवन में प्रभावित हो जाते हैं। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो देखिए, सीढ़ियां आपको घर के ऊपर भी ले जाती हैं और सीढ़ियां आपको घर के नीचे भी ले आती हैं। उतार चढ़ाव से संबंध होने की वजह से सीढ़ियों का संबंध आपके जीवन में राहु और केतु के साथ बनता है। अब आपको बताते हैं कि सीढ़ियों के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम कोने में सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे ज्यादा सही मानी जाती हैं। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए या पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने ईशान कोण यानी पूरब उत्तर के कोने में या आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व के कोने में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां जितनी सीधी हों, जितनी सरल हों, उतना अच्छा होगा। सीढ़ियां कम घुमावदार होनी चाहिए और सीढ़ियां हमेशा चौड़ी होनी चाहिए और सीढ़ियों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जो जगह है वहां पर बाथरूम, स्टोर
या पानी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जो जगह है, भूल कर भी वहां पर मंदिर मत बनाइएगा। सीढ़ियों के नीचे बाथरूम का होना और सीढ़ियों के नीचे मंदिर का होना बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होता है। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से जानकारी ना रही हो और आपने अपने घर में गलत तरीके से सीढ़ियां बनवा ली हों। अगर सीढ़ियां आपके घर में गलत बन गई हों तो क्या उपाय करेंगे? सीढ़ियों का रंग सफेद रखें तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और सीढ़ियों के साथ वाली जो दीवार है उस पर एक बड़ा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगा दीजिएगा। अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत निर्माण करवा लिया है, सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाइएगा। सीढ़ियों पर और सीढ़ियों के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे प्रकाश की उचित व्यवस्था आपको करनी चाहिए। जिस स्टेप पर सीढ़ियां शुरू हो रही हैं और जिस स्टेप पर सीढ़ियां खत्म हो रही हैं, वहां पर एक हरे रंग का डोर मैट रख दीजिएगा। सीढ़ियों के नीचे टेबल लगा करके पढ़ने लिखने की वस्तुएं रख सकते हैं, पढ़ने लिखने का काम कर सकते हैं या किताब रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे पानी रखना या सीढ़ियों के नीचे पानी रखने की व्यवस्था करना सबसे ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो आज हमने बात की सीढ़ियों के वास्तु और ज्योतिष के साथ कनेक्शन की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे पुरुषों को हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए और उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: देश की समुद्री सुरक्षा के लिए मिलेगा एक और महायोद्धा। आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा INS महेंद्र गिरी, विशाखापट्टनम नौसेना बेस पर होगा समारोह। अमरनाथ यात्रा का आज नौवां दिन, देश विदेश से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब तक 1,70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम बारिश के मौसम में कोहरे और धुंध से घिरा, दर्शन के लिए आस्था उत्साह के साथ श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। देश में 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं के दुरुपयोग पर होगी सख्ती, बिना पर्चे के दवाओं की बिक्री पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगाई रोक, मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 सालों का रिकॉर्ड। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज का आज 5वां और आखिरी मैच साउथैम्पटन में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मैच। अमेरिकी सिंगर पिटबुल के फैंस ने लंदन में बनाया अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, कॉन्सर्ट में हजारों की तादाद में बॉल्ड कैप पहनकर पहुंचे लोग।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: लाल, हरा, नीला, पीला, काला, सफेद, यूं तो देखिए संसार में कई प्रकार के रंग हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं इन्हीं रंगों की कि कैसे इन रंगों के प्रयोग से, इसके इस्तेमाल से आपकी किस्मत सवर सकती है, चमक सकती है। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुडलक मंत्र क्या है।
1: देखिए, अगर बात बात में आप चिंता करते हैं, हर बात पर तनाव पालने की आदत है आपकी, तो अपने जीवन में हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। अगर आप ग्रीन कलर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें तो ये आपके मन को चिंता मुक्त करेगा और मन के तनाव को दूर करेगा।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पंडित जी, क्योंकि रंगों के बारे में हम बात कर रहे हैं और जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, यूं तो अनेकों प्रकार के रंग हैं, लेकिन रंग हमारे जीवन से किस तरह से जुड़ा हुआ है और किस तरह से इन रंगों का प्रयोग करके हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, उसके बारे में हम बताएं।
1: जी देखिए, रंग एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है मानव जीवन के लिए भी, भोग विलास के लिए भी और आध्यात्म के लिए भी। ईश्वर विभिन्न रंगों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं और ईश्वर विभिन्न रंगों के माध्यम से आपको अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं। दुनिया में मुख्य रूप से दो ही शक्तियां काम करती हैं, रंग और तरंग। इन्हीं शक्तियों से ही सारी सृष्टि चलती है। हर व्यक्ति, वस्तु, यहां तक कि जो आप शब्द बोलते हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, इनका भी रंग होता है। जब हमारे मन का रंग किसी और के रंग से मिलता है तो रंगों से हमारा मिलन होता है, और जब हमारे मन का रंग किसी से हटता है तो रंग हमें दूर भी ले जाते हैं। रंग के आधार पर ग्रह नक्षत्र काम करते हैं और ज्योतिष के तमाम उपाय रंगों के आधार पर काम करते हैं। अगर आपको पता हो तो सही और सटीक रंग आपकी किस्मत को मजबूत करते हैं, और अगर आप गलत रंगों का प्रयोग करें तो इससे आपका भाग्य कमजोर होगा। इसीलिए ज्योतिष में आप देखिए कि लोग पूछते हैं कि मेरे लिए कौन सा रंग शुभ है, कौन सा रंग मैं पहनूं, कौन सा रंग मैं ना पहनूं। इस विषय पर भी लोग बात करते हैं, क्योंकि विशेष तरीके के रंग आपके मन पर, आपके सोचने समझने पर असर डाल देते हैं।
0: तो चलिए सबसे पहले बात लाल रंग के बारे में करते हैं। लाल रंग की क्या विशेषता है, क्या खासियत है इस रंग के बारे में, और किस तरीके से अपने भाग्य को चमकाने के लिए इसका प्रयोग करें, इसके बारे में जानते हैं।
1: देखिए, वायु में, हवा में सबसे ज्यादा जो तीव्र शक्तिमान रंग दिखता है वो लाल है। इसीलिए खतरे का और इमरजेंसी का रंग लाल रखा गया है। दूर से दिखाई देगा, इसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है हवा के अंदर भी। अत्यंत ऊर्जा और शक्ति का रंग है। ज्योतिष में इसको मंगल और सूर्य का रंग माना जाता है। अगर आपके लिए लाल रंग शुभ है, आपको सूट करे, आप इसको पहनते रहें तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको लाल रंग नुकसान करे, सूट ना करे, तो लाल रंग पहनने से दुर्घटनाओं की और चोट चपेट की संभावना बढ़ेगी। जो लोग बहुत जल्दी अशांत हो जाते हैं, जिनका मन बहुत जल्दी चिंता करता है, ऐसे लोगों को लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सामान्यतः मिथुन और कन्या, खासतौर से इनका लग्न मिथुन लग्न और कन्या लग्न में, और ज्यादातर मिथुन और कन्या राशि में भी ये रंग आम तौर पर लाभ नहीं पहुंचाता, क्योंकि अगर ये लाल रंग का इस्तेमाल करें तो इनका मन अशांत होता है, चोट चपेट की और दुर्घटना की संभावना बन जाती है।
0: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती दिखाई दे रही है, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए, लाल रंग के बाद अब पीले रंग के बारे में बात करते हैं। क्या विशेषता है पीले रंग की और किस तरीके से इसका प्रयोग करें ताकि जीवन में सार्थक बदलाव आए, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, पीला रंग कम से कम हिंदू परंपरा में, भारतीय परंपरा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसीलिए पीला रंग शुभ चीजों से और मंगल कार्यों से संबंध रखता है। ज्योतिष में पीले रंग को बृहस्पति देव का रंग माना जाता है। अगर पीला रंग आप धारण करते हैं और ये आपको सूट करे तो शिक्षा, संतान, सुख और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन अगर पीला रंग आपको नुकसान करे, सूट ना करे, तो पेट खराब कर देगा, लीवर में दिक्कत आ जाएगी, दाम्पत्य जीवन में समस्या पैदा होगी। जो लोग स्वभाव से सात्विक ना हो, मांस मदिरा का ज्यादा प्रयोग करते हो, ऐसे लोगों को इस रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पीला रंग वृषभ, तुला और मकर लग्न के लिए बहुत ही निगेटिव होता है। वृष, तुला और मकर राशि पर भी निगेटिव असर डालेगा, लेकिन वृषभ, तुला और मकर लग्न के लोगों के लिए ये रंग निगेटिव होता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा पीले रंग का इस्तेमाल करें तो ये बीमार पड़ सकते हैं।
0: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या इस समय आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए कार्यक्रम को अभी आगे बढ़ाते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न संजय वर्मा जी ने हमें लिखा है, और संजय वर्मा जी कानपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अप्रैल 1978, शाम को 6:55, जन्म स्थान है कानपुर। संजय जी कह रहे हैं कि मैं व्यापार करता हूं अभी, और मेरे व्यापार में उतार चढ़ाव बहुत रहता है, और कर्जे भी मेरे हमेशा कुछ ना कुछ बने रहते हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा व्यापार बेहतर चले और मुझे कर्ज से मुक्ति मिले। संजय जी, सबसे पहली जो गड़बड़ी है कुंडली में वो ये है कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। जल्दी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, धीरे धीरे चलिए, थोड़ा धैर्य रख के पैसा कमाने की कोशिश करिए। जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ियां होती हैं, क्योंकि चंद्रमा कंट्रोल में नहीं है। अगर आप आराम से चलें, बुद्धिमानी से चलें, तो भविष्य आपका बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, आप काफी तरक्की कर पाएंगे, लेकिन पेशेंस चाहिए। आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, 6-8 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और फिर कहूंगा धैर्य से चलिए। वैसे आपका समय मई 2027 के बाद से काफी बेहतर दिखाई दे रहा है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात हरे रंग की कर लेते हैं। हरे रंग की आखिरकार क्या विशेषता है और किस तरीके से इस रंग का प्रयोग कर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: हरा रंग जो है ना बड़ा चमत्कारी है और हरे रंग का इतना ज्यादा जीवन में प्रयोग है कि आप देखिए प्रकृति ने अपने आप को प्रेजेंट किया है हरे रंग में। वृक्षों की पत्तियां, पौधे, हरा रंग है उसका, इसकी खासियत है भाई, ये विशेष रंग है। ये रंग अच्छा स्वास्थ्य देता है और आपके मन पर, आपके मूड पर असर डाल देता है। प्रकृति ने हरा रंग चारों तरफ इसीलिए बिखेर रखा है कि आप जब भी उस रंग के संपर्क में आए आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें। ज्योतिष में हरा रंग बुध का रंग माना जाता है। अगर आपको हरा रंग सूट करे, हरा रंग लाभ पहुंचाए, तो ये आपके मन को और आपके दिमाग को अच्छा बना देगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम कर देगा। लेकिन अगर हरा रंग आपको सूट ना करे तो ये आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ा देगा और त्वचा की समस्या, नर्व की समस्या दे सकता है। जिन लोगों को दिमाग का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता हो या वाणी का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता हो, ऐसे लोगों को हरे रंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप बहुत दिन से बीमार थे, दवाई खाए हैं, अब ठीक हो रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, तो रिकवरी आपकी तेजी से हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आप हरे रंग के कपड़े और हरे रंग की बेडशीट का प्रयोग करना शुरू कर दें। हरा रंग जो है ये कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं होता और कर्क राशि और वृश्चिक राशि के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मुख्यतः कर्क और वृश्चिक में ग्रीन कलर आने से ये बिल्कुल एकदम से डिप्रेशन की तरफ कभी कभी जाने लगते हैं। तो कर्क और वृश्चिक वालों को मैं कहूंगा कि आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल थोड़े लिमिटेशन में करें, थोड़े नियंत्रण में करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात नीले रंग की कर लेते हैं। नीला रंग आखिरकार इतना खास क्यों है, इसकी क्या विशेषता है और किस तरीके से नीले रंग का प्रयोग कर हम अपनी जिंदगी को, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आइए जानते हैं।
1: देखिए नीला रंग रहस्यमयी रंग है, सामान्य रंग नहीं है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम नीले रंग के दिखाए जाते हैं ना हिंदू परंपरा में। उसका कारण यही है कि ये विराट रंग है। आकाश का रंग भी नीला है क्योंकि ये विराट रंग है, रहस्य का रंग है। ये रंग तीव्र आध्यात्म और भाग्य से संबंध रखता है। ज्योतिष में इसको शुभ शनि का रंग माना जाता है। कुछ लोग नीले रंग को राहु का रंग भी कहते हैं। अगर आप नीला रंग प्रयोग करते हैं और ये रंग आपको लाभ देता है तो व्यक्ति की बुद्धि को तेज कर देता है, काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है और इंट्यूशन की क्षमता, अंतर्ज्ञान की क्षमता बढ़ा देता है। अगर नीला रंग आपको सूट ना करे और आप ज्यादा नीला रंग पहनने लगे तो ये वाणी खराब करेगा और आपके करियर की उन्नति को, आपके करियर को आगे बढ़ने से रोक देगा। जिन लोगों को आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति करनी हो उनको लाइट ब्लू कलर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नीला रंग मिथुन, तुला और कुंभ लग्न के लिए बहुत ही शुभ है। इसी तरह मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए भी टेक्निकली नीला रंग अच्छे परिणाम देता है। आप गहरा ध्यान करना चाहते, मेडिटेशन वालों को खास तौर से मैं कहूंगा कि अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, तो नीले रंग के चित्रों पर, नीले रंग के कैरिकेचर्स पर ध्यान दें, उसको अपने मन में उतारने का प्रयास करें, आप बहुत गहरा ध्यान कर पाएंगे।
0: तो बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है।
1: तुला राशि, करियर में समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किल

0: प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सफेद रंग की। सफेद रंग की क्या विशेषता है और किस तरीके से इसके प्रयोग करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, उसे चमका सकते हैं, ये जानते हैं।
0: देखिए, सफेद रंग के बारे में आप एक बात जानिए कि सफेद कोई रंग होता ही नहीं है, अलग से कोई इंडिविजुअल रंग नहीं है। वास्तव में 7 रंग जो हैं विवग्योर, जो इंद्र धनुष के 7 बेसिक रंग हैं जिनको विवग्योर कहते हैं, उन 7 रंगों को बराबर मात्रा में मिलाइए, सफेद रंग प्रकट हो जाएगा। ये रंग वास्तव में 7 रंगों का सटीक मिश्रण है। ज्योतिष में ये चंद्रमा और शुक्र का रंग माना जाता है। चंद्रमा इस रंग से ज्यादा संबंधित है। ईश्वर, आध्यात्म और सफलता की सबसे ऊंची स्थिति का संबंध सफेद रंग से माना गया है। आपको जब अपने आप सफेद रंग सबसे ज्यादा अच्छा लगने लगे, अनुकूल लगने लगे, तो ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए। जिन लोगों को सफेद रंग का ज्यादा अनुभव होता है, निद्रा में, जीवन में, काम में सफेद चीजें बार बार आपके सामने आती हैं, उनको जीवन में अपने व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जीवन में अगर सफेद रंग बराबर आ रहा है तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर ज्यादा है, और ऐसी स्थिति में आप अपने खान पान, स्वभाव, व्यवहार को बेहतर कर लें तो अच्छा होगा।
1: तो चलिए रंगों के इसी क्रम में अब बात करते हैं काले रंग की। काले रंग की क्या विशेषता है, काला रंग क्यों इतना खास है, इतना अलग है, और इसका प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं जीवन को बदलने के लिए, आइए जानते हैं।
0: जैसे सफेद रंग कोई रंग नहीं है, वैसे ही काला रंग कोई रंग नहीं है। ये रंग वास्तव में कोई रंग नहीं है। जहां कोई रंग नहीं होता वहां काला रंग होता है। लैक ऑफ कलर इज ब्लैक, यानी जहां कोई रंग नहीं है वो काला रंग है। काला रंग शनि के अशुभ प्रभाव को, जीवन के संघर्ष को, जीवन की कठिनाई को दर्शाता है। हालांकि काले रंग को सामान्य जीवन में नकारात्मक माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। ये रंग तभी ज्यादा प्रयोग करना चाहिए जब आपका जीवन सामान्य गति से चल रहा हो। अगर आप जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे हो, कठिन समय से गुजर रहे हो, तो काले रंग का ज्यादा प्रयोग मत करिए। जिनके जीवन में संघर्ष ज्यादा है, हर काम में ज्यादा बाधा आती है, हर काम में ज्यादा रुकावट आती है, उन्हें भूल कर भी काले

0: अपने जीवन में नहीं करना चाहिए।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर होती दिख रही है, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव ना पालें, वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, रिश्तों में थोड़ी समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ है, कोई परेशानी है जिसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि दूसरा सवाल वो किसका ले रही है।
0: जी, अगला प्रश्न सुनील कुमार ने हमें लिखा है और सुनील कुमार जी हमें देहरादून से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 फरवरी 1969। जन्म का समय सुबह के 6:30। जन्म का स्थान है सहारनपुर। ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी अभी अभी बेच दी है और मैं देहरादून शिफ्ट कर गया हूँ। यहाँ पे मैंने अपना एक व्यापार शुरू किया है और अब मैं यहाँ मकान बनवाना चाहता हूँ, लेकिन काफी समय से प्रयास करने के बाद भी संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा है, कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है, तो अपनी प्रॉपर्टी का फायदा मुझे कब तक होगा। सुनील जी, सबसे पहले मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी बनवाने में जल्दबाजी मत करिए, अभी थोड़ा इंतजार करिए। बुद्धिमानी ये कहती है कि 1 साल रुकिए, जून 2027 के बाद कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदिएगा। अभी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने पर ध्यान दें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, अभी अगले 1 साल तक थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान देंगे, सेहत के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। आपका व्यापार अच्छा हो, आपको संपत्ति का लाभ हो, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे एक मूंगा पहने, सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन है आप सभी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक है। अविवाहितों के विवाह में अभी इस साल में विलंब दिख रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या रात को सोते समय जो आप रत्नों की अंगूठियां पहनते हैं वो निकाल देनी चाहिए? देखिए, रत्न की अंगूठी अगर आप पहनते हैं एक बार, पुखराज पहना, नीलम पहना, माणिक पहना, ओपल पहना, तो बार बार इसको निकालना नहीं चाहिए। अगर एक बार आपने निकाला और 24 घंटे तक नहीं पहना, 24 घंटे का गैप हो गया, तो उसे फिर सही समय पर सही दिन पहनना चाहिए। लेकिन जैसे आपने घंटे भर के लिए निकाला, कोई चेकअप कराना है, कोई जांच करानी है, तो एक घंटे बाद फिर आप पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने आज सुबह निकाला, कल सुबह तक भूले रहे, 24 घंटा बीत गया, तो 24 घंटा अगर बीत गया तब आपको उस दिन का इंतजार करना होगा, सही दिन पर सही समय में दोबारा धारण करेंगे।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि शुभ पहर कौन सा है।
0: शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में। इस समय में 3 हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है, जो बाधा चली आ रही है, वो बाधा दूर होगी।
1: और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की भाग्यशाली राशि यानी कि आज का गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए अलग अलग राशि के लोग क्या उपाय करें। आज की गुड लक राशि है मीन। जीवन की बेहतरी के लिए सूर्य देव की नियमित उपासना करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं कम से कम, और नियमित रूप से गरीबों को, निर्धनों को अन्न का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय क्या है।
0: अगर आपको क्रोध ज्यादा आता हो, आप अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, उस चक्कर में चीजें बिगड़ जाती हो, तो क्या करेंगे? सोमवार को थोड़े से चावल ले लें, दाना उसका एक एक देख लें, टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए, बिना टूटे हुए थोड़े से चावल के दाने ले लें, इन्हीं चावल की दानों की खीर बनाइए और भगवान शिव को अर्पित करके सोमवार की शाम को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads like this one and score more of the content you love. That's more curated news.
2: If one party is saying we will never raise taxes even on millionaires and billionaires,
1: more top sports.
3: And he's gonna go! There's the tying goal!
1: And everything in between.
3: The game is over!
1: Upgrade now for the premium listening experience.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
10: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
11: You hear it once and remember everything.
12: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
11: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
4: ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: 16 जुलाई से शुरू हो रही जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी में काफी रौनक देखी जा रही है। तीनों रथ अब लगभग तैयार हो चुके हैं, रथ के शिखर की सजावट पूरी होने वाली है। कारीगरों की कोशिश ये है कि रथों का काम पूरे विधि विधान के साथ किया जाए, और ऐसे में बड़ी बारीकी के साथ रथों पर रंग भरे जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को भी अब उस पल का इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा इन रथों पर बैठकर उनके बीच आएंगे और खुशी खुशी उनके रथों को खींचकर धन्य महसूस करेंगे श्रद्धालु।

0: आस्था की रंगत भक्ति का शो, भगवान जगन्नाथ के जयकारे चारों ओर, जहां कणकण में भगवान जगन्नाथ का वास है, धरती से आकाश तक महाप्रभु की आराधना की गूंज है, वो पूरी सज धज कर तैयार हो रहा है। यहाँ हर तरफ भगवान जगन्नाथ के महापर्व की रौनक बिखरी दिख रही है। भगवान के रथ की साथ सज्जा हो रही है, देवी सुभद्रा और बलभद्र का रथ भी तैयार हो रहा है। रथ की सजावट का काम बहुत जल्द पूरा होने वाला है। रथों के श्रृंगार के साथ साथ अब रथ यात्रा के मार्ग की सजावट भी शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र का रथ जिस मार्ग से गुजरता है, उस मुख्य मार्ग को बड़ा डंडा कहते हैं। इस बड़ा डंडा से होकर तीनों रथ प्रमुख मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचते हैं। इस मार्ग पर इन दिनों खूबसूरत रंगों से कलाकृतियां उकेरी जा रही हैं। इस सजावट ने पूरे मार्ग को ही एक दिव्य रूप दे दिया है। बड़ा डंडा की साथ सज्जा से पूरी में रथ यात्रा का उल्लास और श्रद्धा के रंग और गहराने लगे हैं। पूरी में रथ यात्रा के निर्माण की शुरुआत से ही भक्तों का उत्साह बढ़ने लगा था। तीनों रथ अब लगभग तैयार हो चुके हैं। रथ के शिखर की सजावट पूरी होने वाली है। रथ निर्माण से लगे कारीगर पूरे विधि विधान के साथ निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं। बड़ी बारीकी से रथों पर रंग भरे जा रहे हैं। खूबसूरत रंगों से सजे ये रथ धीरे धीरे अपनी दिव्य पहचान पा रहे हैं। ये रथ सिर्फ भगवान की सवारी ही नहीं है, इन रथों के साथ जगन्नाथ महाप्रभु के भक्तों की अनंत आस्था भी जुड़ी है। भगवान के भक्त पूरे साल इन रथों के दर्शन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। रथ निर्माण को देखना उन्हें सुखद एहसास दिलाता है। इस रथ के स्पर्श में ही उन्हें ईश और आशीष की अनुभूति होती है। पुरी में रथ यात्रा की तैयारियों में प्रशासन भी जी जान से जुटा है। रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। कोशिश यही है कि पूरी आने वाला हर भक्त पूरी सहूलियत के साथ रथ यात्रा में शामिल हो और भगवान के दर्शन में किसी को कोई दिक्कत न हो।
1: एन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग पुलिस, फायर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, district administration, the executive magistrates and all other departments. That also includes the NGOs and other agencies. All of us are working in unison, and the different activities that are being planned for better experience for all the devotees are being put into action.
0: पुरी में जगन्नाथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होने वाली है। जैसे जैसे ये तारीख करीब आ रही है, महाप्रभु में भक्तों की आस्था और भगवान जगन्नाथ के दर्शन की लालसा निरंतर बढ़ती जा रही है। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है उस पल का, जब शंखनाद के बाद मंदिर के सिंह द्वार खुलेंगे और भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच पधारेंगे और भगवान के रथ को खींचने वाला हर भक्त खुद को धन्य महसूस करेगा। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अहमदाबाद में पारंपरिक रथों को भव्य रूप दिया जा रहा है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशेष श्रृंगार में भक्तों को दर्शन देंगे। वहीं महाराष्ट्र के अकोला में 5 टन वजनी और 31 फीट ऊंचा रथ चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए,
3: अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा के लिए तीनों दिव्य रथ पूरी तरह तैयार हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा इन्हीं सुसज्जित रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। पारंपरिक रंगों और आकर्षक कलाकृतियों से रथों को भव्य स्वरूप दिया गया है। शिल्पकारों ने हाथों से बारीक चित्रकारी कर इन रथों की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं।
4: देश में पुरी के बाद सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद के जमालपुर में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकलती है। इस बार 16 जुलाई को रथ यात्रा निकलनी है और अहमदाबाद के इस जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा की बात करें तो ये 149वीं रथ यात्रा होगी। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं 3 अलग अलग रथ, जिसपे कलर काम हर साल रथ यात्रा के पहले किया जाता है, जो कि कामकाज पूरा कर लिया गया है। जो पहला रथ ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, भगवान जगन्नाथ जी का ये रथ है। उसके बिल्कुल बाईं तरफ सुभद्रा जी जो कि भगवान की बहन है, और उसके बिल्कुल बाईं तरफ यानी कि तीसरा रथ बलदेव जी का रथ है।
3: माना जाता है कि रथ यात्रा के मौके पर भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए उनके बीच जाते हैं। रथ यात्रा लगभग 16 से 18 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु रथों के दर्शन और रस्सी खींचने के लिए उमड़ते हैं।
5: इस सनातन की इस परंपरा में भगवान के हरेक भक्तों को इस यात्रा से जुड़ के आनंद और उत्साह के साथ ये लोग को सब मनावे। उस रिस से हरेक प्रकार का सब रिस से जैसे के तैयारी भी हो रही है।
3: रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा नए और आकर्षक श्रृंगार में भक्तों को दर्शन देंगे। अहमदाबाद की भव्य रथ यात्रा के लिए तीनों विग्रहों की विशेष पोशाक तैयार की जा रही है। पारंपरिक परिधानों के साथ रत्न जड़ित मुकुट और मनमोहक आभूषण भी इस दिव्य श्रृंगार का हिस्सा होंगे।
4: भगवान को विशेष श्रृंगार कराया जाता है, भगवान के लिए विशेष वस्त्र तैयार कराए जाते हैं। मेरे आसपास की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सुंदर अलग अलग किस्म के वस्त्र तैयार किए गए हैं। 5 जितने वस्त्र भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा जी और भाई बलदेव जी के लिए तैयार किए जाते हैं, और हर साल जब रथ यात्रा होती है उसके पहले ये तमाम जो वस्त्र हैं वो भगवान तक पहुँचाए भी जाते हैं।
3: महाराष्ट्र का अकोला भी भक्ति के रंग में सराबोर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए भव्य रथ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। करीब 5 टन वजनी और 31 फीट ऊंचे इस रथ को तैयार करने में लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत लगी है। 19 जुलाई को इस्कॉन की ओर से अकोला में इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन होगा।
6: ये रथ की खासियत ये है कि लगभग में इसकी लंबाई 20 फुट, चौड़ाई 12 फुट के आसपास में है, और इसका घुम्मट जो है ऊपर का वो पूरा एडजस्टेबल है, 11 फुट ऊपर नीचे होने वाला, मतलब कोई बिजली का तार ना टकराए या किसी से कोई झाड़ पेड़ ना टकराए, उस हिसाब से सामने के चक्कों में 6 फुट हाइट के इसके चक्के हैं लगभग में।
3: उधर झारखंड की राजधानी रांची में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। कुशल कारीगर पारंपरिक शैली में विशाल रथ को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
7: भक्त जन हजारों के संख्या में इस रथ को रस्सी के को खींचते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं, तो पूरा ये क्षेत्र जो है मेले में तब्दील हो जाता है। और आप देखिए यहाँ पे बारीकी से काम हो रही है।
3: रथों की भव्यता, भगवान का दिव्य श्रृंगार और श्रद्धालुओं का अटूट उत्साह, अब हर किसी को उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, रांची से सत्यजीत कुमार और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सावन आने वाला है और उसके साथ ही देवघर में शुरू होने जा रहा है आस्था का सबसे बड़ा महापर्व। 30 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज होने जा रहा है। वहीं लाखों शिव भक्तों के स्वागत के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम सज रहा है, मंदिर निखर रहा है और पूरा शहर बोल बम के जय घोष के लिए तैयार हो चुका है।
8: देवघर जो बाबा का धाम है, जहां सावन का हर दिन शिवमय हो जाता है, वही बैद्यनाथ धाम एक बार फिर करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के पूरे इलाके तक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हर कोना सजाया जा रहा है ताकि बाबा के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं को दिव्यता और भव्यता का एहसास हो।
9: बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन की तैयारी 30 जुलाई से है, जो प्रशासनिक तैयारी है। वैसे बाबा बैद्यनाथ की प्राचीन परंपरा 16 जुलाई से ही शुरू हो जाएगी। 17 जुलाई से मंगला सावन जो यहाँ के मंदिर की परंपरा है वो 17 जुलाई से, उसमें बेलपत्र आदि सस्ता है और मंदिर का पट जो है भीड़ नहीं रहने के बाद भी 8 बजे रात तक बेलपत्र चलने के बाद बंद होता है।
8: 30 जुलाई से शुरू होने वाला श्रावणी मेला पूरे 1 महीने तक चलेगा। इस दौरान मंदिर में स्पर्श पूजा और वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। श्रावणी मेले में देश के अलग अलग राज्यों से 50 लाख से ज्यादा शिव भक्तों के आने की उम्मीद है।
9: मूलतः 30
10: 1 जुलाई से एक महीने के लिए राखी पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा से राखी पूर्णिमा तक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश निषेध है और वहां अर्घा से जलार्पण।
11: श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों के रूट का निरीक्षण किया, साथ ही मेले के दौरान एटीएस, रैपिड एक्शन फोर्स, डॉग स्क्वाड की भी तैनाती की जाएगी।
12: अब हमारी तैयारियां जो है वो फाइनल स्टेज में आ गई, क्योंकि श्रावणी मेला में एक बहुत बड़ा क्राउड आता है, बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे पुलिस फोर्सेज की बहुत ज्यादा डिप्यूटेशन होती है बहुत हाई संख्या में, और इस बार भी हमें अलॉटमेंट जो हुआ है वो लगभग 10,000 पुलिस फोर्सेस इंक्लूडिंग ऑफिसर्स का अलॉटमेंट हुआ है।
11: मंदिर सज चुका है, तैयारियां अंतिम दौर में हैं और अब इंतजार है 30 जुलाई का, जब बोल बम के जय घोष के बीच आस्था की अनवरत धारा एक बार फिर देवघर पहुंचेगी। करोड़ों शिव भक्तों की श्रद्धा, सेवा और विश्वास का ये महापर्व एक बार फिर बाबा बैद्यनाथ की नगरी को शिवमय बना देगा। देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड
14: स्टे कनेक्टेड थ्रू द अनएक्सपेक्टेड विद इनविंसिबल वाईफाई फ्रॉम स्पेक्ट्रम। Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
15: Your package says delivered, but delivered where exactly? The hallway? The lobby? Your neighbor's apartment? Instead of playing detective with your deliveries, get a mailbox at the UPS store. We'll sign for your packages, text you when they arrive, and keep your deliveries low-key under lock and key. Get 3 months free mailbox services with a new annual agreement at the UPS store. For full details and to get your coupon, visit theupsstore.com/offer.
16: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
17: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
2: देश की समुद्री सुरक्षा के लिए मिलेगा एक और महायोद्धा, आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा INS महेंद्र गिरी। विशाखापट्टनम नौसेना बेस पर होगा समारोह।

ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, बारिश के मौसम के कोहरे और धुंध से घिरा, दर्शन के लिए आस्था और उत्साह के साथ श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी।

0: न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पारंपरिक माओरी तरीके से किया गया पीएम मोदी का स्वागत, न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और परंपराओं की झलक दिखी। भारत इंग्लैंड टी20 सीरीज का पांचवा और आखिरी मैच आज साउथैम्पटन में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। अमेरिका के सिंगर पिटबुल के फैंस ने लंदन में बनाया अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, कॉन्सर्ट में हजारों की तादाद में बॉल्ट कैप पहनकर जुटे लोग।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: अमरनाथ यात्रा का आज 9वां दिन, देश विदेश से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब तक 1,70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षित माहौल में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बारिश के मौसम में आस्था और उत्साह बरकरार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बालटाल में अमरनाथ यात्रा बेस कैंप पहुंचे, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बेस कैंप में रुके श्रद्धालुओं से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बातचीत की, इंतजामों के बारे में जानकारी ली। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए मेडिकल सुविधा के भी पुख्ता इंतजाम, 100 बिस्तर वाला अस्पताल, जगह जगह मुफ्त मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध। देवभूमि में बद्रीनाथ धाम बारिश के मौसम में कोहरे और धुंध से घिरा, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना अब भी जारी। पहाड़ों पर भारी बारिश से बद्रीनाथ मंदिर के सामने बहने वाली अलकनंदा नदी उफान पर, बारिश में छाते और रेनकोट पहनकर जोश के साथ जुटे श्रद्धालु। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग खुलने के बाद पहले दल ने लिपू दर्रा पार कर तिब्बत में किया प्रवेश, यात्रा में 48 यात्रियों सहित 52 लोग शामिल। खंडवा के ओमकारेश्वर मंदिर में रक्तदान करने पर पूरे परिवार को कराए गए वीआईपी दर्शन, प्रशासन की इस खास मुहिम के चलते जिला प्रशासन में रक्तदान के लिए लंबी कतार। दर्शन के साथ साथ रक्तदान महाकल्याण का संकल्प भी पूरा कर रहे हैं श्रद्धालु, प्रशासन के इस पहल की सभी कर रहे हैं तारीफ। बारिश के मौसम में उत्तराखंड में चमोली जिले के माणा में बढ़ा प्राकृतिक सौंदर्य, देश विदेश से पहुंच रहे हैं पर्यटक। खूबसूरत बादलों से घिरे माणा की वादियां, वसुधरा फॉल्स, सतोपंथ झील और सरस्वती नदी देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे सैलानी। बद्रीनाथ धाम के पास है माणा गांव, सीमा पर होने के कारण भारत के पहले गांव के रूप में भी है पहचान। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ माणा गांव का है धार्मिक और पौराणिक महत्व, मान्यता के मुताबिक स्वर्ग जाने के लिए पांडव इसी रास्ते से गुजरे थे। साल में 6 महीने बर्फ से घिरा रहता है माणा गांव, ट्रैकिंग के लिए भी पहुंचते हैं पर्यटक। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन, तड़के भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार ने की बाबा महाकाल की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा से पहले भव्य तैयारियां, विशाल रंगोली बनाने में जुटे कलाकार। पुरी में जगत ज्योति सोलर प्रोजेक्ट का शुभारंभ, लोगों को होगा फायदा। जम्मू कश्मीर में रामबन के चंद्रकोट में सीआरपीएफ ने लगाया 61 फीट का हाई मास्ट, राष्ट्रीय ध्वज चेनाब नदी के किनारे लहराया तिरंगा। हरिद्वार में सावन के कांवड़ मेले के लिए तैयारियां जोरों पर, विधिवत 30 जुलाई से शुरू होने जा रही है पवित्र यात्रा।

कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन और पुलिस तैयारी ने कसी कमर। कांवड़ मेले के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की होगी तैनाती। 6 फीट से ऊंची कांवड़ और 10 फीट से ऊंची झांकी न लाने की प्रशासन ने अपील की। सुरक्षा कारणों से कांवड़ियों से आग्रह। हरिद्वार पुलिस के शिव भक्त कांवड़ियों से त्रिशूल डंडे आदि न लाने और मोटरसाइकिल में रेट्रो साइलेंसर का उपयोग न इस्तेमाल करने का भी अपील कर रही है। शिवभक्त कांवड़ियों की सकुशल और सुगम कांवड़ यात्रा की कामना के साथ स्वागत के लिए तैयार है प्रशासन। सुगम तरीके से ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खास प्रबंध। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा। आज INS महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी नेवी। प्रोजेक्ट 17A के तहत बना 6ठा स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री की उपस्थिति में औपचारिक रूप से नौसेना को समर्पित किया जाएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और आधुनिक पनडुब्बी रोधी हथियारों से सुसज्जित है ये फ्रिगेट, तो वहीं दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना बेहद मुश्किल। समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन के साथ कई तरह के सर्च और रेस्क्यू मिशंस के लिए भी उपयुक्त, साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र और से आगे लंबे समय तक तैनात रहने में भी सक्षम है। आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है INS महेंद्रगिरी। इस युद्धपोत में लगे उपकरणों का 75% से ज्यादा हिस्सा स्वदेशी। ऑकलैंड में गाला लंच में शामिल हुए पीएम मोदी। न्यूजीलैंड के पीएम ने किया भव्य आयोजन। ऑकलैंड में गाला लंच के दौरान शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय और न्यूजीलैंड के कलाकार शामिल हुए। न्यूजीलैंड में अपने संबोधन में बोले पीएम, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज, हम फिनटेक में लीडर हैं। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ समझौतों का स्वागत किया। कहा, हिंद प्रशांत में समुद्री सहयोग के लिए फ्रेमवर्क पर सहमति बनी। ऑकलैंड के वायडक्ट बिजनेस सेंटर में कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, बिजनेस लीडर्स को संबोधित किया। न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी की वहां के पीएम के साथ विपक्षीय बैठक, अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत न्यूजीलैंड के बीच हुए अहम समझौते, मुक्त व्यापार समझौते को दिया गया अंतिम रूप। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत। गवर्नमेंट हाउस में लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। पारंपरिक माओरी तरीके से किया गया पीएम का स्वागत। न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और परंपराओं की झलक दिखाई दी। न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट हाउस में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। पीएम मोदी 2 दिनों के न्यूजीलैंड के दौरे पर ऑकलैंड में आज भारतीय समुदाय के 40,000 लोगों को संबोधित करेंगे। न्यूजीलैंड पहुंचने पर ऑकलैंड में कम्युनिटी वेलकम के दौरान देखने को मिली भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक। कलाकारों ने पेश किए कई भव्य कार्यक्रम। न्यूजीलैंड में भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उमड़ा जन सैलाब। हाथों में तिरंगा लिए नजर आए लोग। भारत के तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ नजर आया ऑकलैंड का मशहूर स्काई टावर। पीएम मोदी की यात्रा के सम्मान में जगमग हुई रोशनी। 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने की पहल। मोनाको में एनर्जी बोर्ड चैलेंज के 13वें संस्करण में भारत की सी शक्ति टीम ले रही है हिस्सा। एंड्योरेंस रेस में शामिल हुई टीम। मोनाको के यॉट क्लब दी मोनाको में एंड्योरेंस रेस का आयोजन। 3.5 घंटे चलती है रेस। एनर्जी बोर्ड चैलेंज में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। पिछली बार की तुलना में कड़ा है मुकाबला। एनर्जी बोर्ड चैलेंज में प्रिंस अल्बर्ट 2 अवार्ड के लिए चुनी गई भारतीय टीम। पहली बार इस अवार्ड के लिए टीम हुई क्वालिफाई। इस बार जीते 2

बोर्ड। एनर्जी बोर्ड चैलेंज में भारतीय टीम ने पेश किया बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, हरित तकनीक को बढ़ावा देने की पहल। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी के दर्शन किए, पुणे पहुंची है भव्य पालकी यात्रा। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी भवानीपेठ के विट्ठल मंदिर में रुकी, पुणे में पालकी यात्रा के प्रवेश पर भव्य स्वागत। संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पवित्र पालकी यात्रा से पूरा पूर्ण भक्तिमय माहौल में डूबा, तो वहीं शहर में हर ओर ज्ञानोबा तुकाराम के जय घोष की गूंज। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अपने गृह नगर उज्जैन में अनोखे अंदाज में नजर आए, लोगों के बीच बनाई जलेबियां, पैदल नगर भ्रमण के दौरान होटल पर चाय की चुस्की ली। सीएम मोहन यादव ने बुलेट पर सवार होकर शहर का दौरा किया, सियांस्त कुंभ को लेकर किए जा रहे कामों का जायजा लिया। दो दिन जोरदार बारिश के बाद दिल्ली और आसपास मौसम हुआ साफ, 15 जुलाई तक मानसून की रफ्तार रह सकती है धीमी। दिल्ली में मौसम बना हुआ है सुहावना, अधिकतम तापमान 33 डिग्री के करीब दर्ज किया गया, 37 डिग्री तक जा सकता है पार। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया। गुजरात में आज मौसम साफ रहने के आसार, लेकिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में 12 एनडीआरएफ और 26 एसडीआरएफ की टीमों को किया गया है तैनात। भारी बारिश से उफान पर बह रही है यमुना नदी समेत बरसाती नदियां, बढ़ते जलस्तर के बीच प्रशासन अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील। मूसलाधार बरसात के चलते अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी के आसपास बसे रिहायशी इलाके खाली कराने के निर्देश। उत्तराखंड में उफान पर सरस्वती नदी रेस्क्यू टीमें अलर्ट, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद। मानसून में शिमला बना पर्यटकों की पहली पसंद, देश भर से पहुंच रहे हैं लोग परिवार और दोस्तों के साथ पहाड़ों की वादियों का उठा रहे हैं लुत्फ। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल, लामबगड़ नाला पार करना होगा आसान। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए आई गुड न्यूज, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 726 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ, 67,419 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश जारी, गायन में सही शब्दों और उच्चारण का पालन अनिवार्य। नागपुर में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक, इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने अन्य सदस्य देशों के साथ परिवहन सहयोग को मजबूत करने के लिए चर्चा की। डिजिटल बिहार की दिशा में सम्राट सरकार का अहम कदम, अब घर बैठे होगा जमीन और अन्य दस्तावेजों की रजिस्ट्रेशन, जीआईएस तकनीक से होगा स्थल निरीक्षण। श्रीनगर पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला, कश्मीर मैराथन 2026 का मर्चेंडाइज लॉन्च किया। राजस्थान की संस्कृति को एक बार फिर मिली वैश्विक पहचान, जोधपुर की पारंपरिक मोजरी को मिला जीआई टैग। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट उद्योग के लिए जीआई टैग मिलना बड़ी उपलब्धि, इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। करीब 200 साल पुराना है जोधपुरी मोजरी उद्योग, वर्तमान में घरेलू बाजार की कीमत लगभग 100 करोड़। ऑस्ट्रेलिया की माइंड ब्लोइंग फिल्म्स के साथ मिलकर आमिर बनाएंगे उत्तराखंड के सिल्कियारा टनल रेस्क्यू मिशन पर आधारित फिल्म, सिल्कियारा 41 होगा नाम। एक बार फिर भूषण कुमार की फिल्म में नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर, बेहद इमोशनल म्यूजिकल लव स्टोरी होगी।
लॉर्ड्स वुमेन्स टेस्ट मैच में आज दूसरे दिन का खेल

0: पहले दिन भारत की पहली पारी 265 रन पर खत्म होने के बाद इंग्लैंड ने पहली बार एक विकेट पर 21 रन बनाए। भारत की पहली पारी में स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 108 गेंदों में 11 चौके और एक छक्का लगाकर 83 रन ठोके। स्मृति मंधाना ने करियर का 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। 300 मैचेस खेलने वाली भारत की तीसरी और दुनिया की 12वीं महिला क्रिकेटर। कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने 58 रनों की पारी खेली, दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। लॉर्ड्स मैदान पर हो रहा है ऐतिहासिक मुकाबला, 142 साल के इतिहास में पहली बार महिला टेस्ट मैच का आयोजन। भारत और इंग्लैंड के बीच साउथैम्पटन में होगा T20 मैच, शाम 7 बजे से खेला जाएगा मैच। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज का आज 5वां और आखिरी मैच, इंग्लैंड सीरीज में 3-0 से आगे। विंबलडन के फाइनल में पहुंचे जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव, सेमीफाइनल में ब्रिटेन के फेरी को हराया। अलेक्जेंडर ज्वेरेव पहली बार खेलेंगे विंबलडन फाइनल मुकाबला, 30 साल बाद होगा विंबलडन फाइनल में जर्मन खिलाड़ी ने जगह बनाई। रविवार को होगा विंबलडन फाइनल मैच, जैनिक सिनर और जोकोविच के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विनर से भिड़ेंगे अलेक्जेंडर। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा स्पेन, दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराया। रोमांचक मुकाबले में स्पेन के लिए फाबियान रूइज और मिकेल मेरिनो ने गोल किए, बेल्जियम की ओर से चार्ल्स डी कैटलेरो ने एकमात्र गोल दागा। वर्ल्ड कप के अंतिम चार में पहुंची स्पेन की टीम, सेमीफाइनल में फ्रांस से होगा मैच। इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी है स्पेन की टीम, अब तक 6 मुकाबलों में 5 में जीते 1 में ड्रॉ। स्पेन की टीम के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज, लगातार 36वां मैच बिना हार के पूरा कर अर्जेंटीना की बराबरी की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की
0: पहाड़ों में मॉनसून की एंट्री के साथ ही चार धाम यात्रियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है, बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल का पहरा है तो केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश अब प्रशासन के लिए चिंता बढ़ा रही है। हालांकि इन सभी के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है, भले ही तीर्थ यात्रियों की तादाद में थोड़ी कमी आई है लेकिन धामों में रौनक बरकरार है। और इस बीच मौसम की चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है।
2: भोलेनाथ और बद्री विशाल के दर्शन की चाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की ऊंचाइयों तक खींच लाती है और इस खूबसूरत वादी का कोना कोना जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से गूंज उठता है। चारधाम में आस्था के इस राह में वो दौर भी आता है जब ना चाहते हुए भी श्रद्धालुओं को अपने कदम रोकने पड़ते हैं, भगवान के दर्शन का इंतजार लंबा हो जाता है। इस बार की चारधाम यात्रा में भी वो पड़ाव करीब आ चुका है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मौसम की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि चारधाम में अभी भी रौनक है, भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद थोड़ी कम हो गई है लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पहाड़ों पर बादलों का डेरा है और अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक मॉनसून ने पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब या फिर फूलों की घाटी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह बरकरार है।
3: 3,000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, उत्साह बना हुआ है, बारिश हो या फिर बर्फबारी भी यहां पे देखने को मिली थी, ठंड यहाँ पे देखने को मिलती है, अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हेमकुंड साहिब में देखने को मिलती है। ऐसे में हेमकुंड साहिब इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा, तो वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर ही जब फूलों की घाटी पर्यटक पहुंच रहे हैं, वो पर्यटक हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं, तो हेमकुंड का जो तीर्थ यात्री है वो फूलों की घाटी भी जा रहा है। ऐसे में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में इस समय जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है।
2: श्रद्धालुओं के लिए भले ही चुनौतियों पर आस्था

0: श्रद्धालुओं के लिए भले ही चुनौतियों पर आस्था भारी हो, लेकिन तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए हर संभव इंतजाम में जुटा प्रशासन अलर्ट मोड में है। बारिश के दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और मौसम सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बस राहत ये है कि दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है, लगातार मौसम और नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं। स्थिति सामान्य होने की वजह से फिलहाल केदारधाम की यात्रा भी जारी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: दिस इज रेडियो रीइमेजिन्ड विद ट्यून इन, यू गेट म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स, पॉडकास्ट्स एंड लाइव रेडियो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ऑल इन वन प्लेस। हियर फ्रॉम स्टेशंस लाइक टुडेज हिट्स, Talk Sport.
3: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
2: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now. More.
1: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: देश की समुद्री सुरक्षा के लिए मिलेगा एक और महायोद्धा। आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा INS महेंद्र गिरी। विशाखापट्टनम नौसेना बेस पर होगा समारोह। अमरनाथ यात्रा का आज 9वां दिन, देश विदेश से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब तक 170,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, बारिश के मौसम में

कोहरे और धुंध में से घिरा, तो वहीं दर्शन के लिए आस्था और उत्साह के साथ श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, पारंपरिक माओरी तरीके से किया गया पीएम मोदी का स्वागत, न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और परंपराओं की झलक दिखी। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज का पांचवा और आखिरी मैच आज साउथैम्पटन में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मैच। अमेरिकी सिंगर पिटबुल के फैंस ने लंदन में बनाया अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, कॉन्सर्ट में हजारों की तादाद में बॉल्ड कैप पहनकर जुटे लोग।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात आज कर रहे हैं सावन की, जिसके आने में अब ज्यादा वक्त नहीं और इसीलिए हरिद्वार से लेकर बैद्यनाथ धाम तक कांवड़ यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। आज आपको हरिद्वार में कांवड़ यात्रा से पहले की गई पूजा दिखाएंगे, साथ ही संतों से समझेंगे कि कांवड़ यात्रा से जुड़े नियम क्या हैं। झारखंड के बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारी की झलक दिखाएंगे और इसके बाद बात होगी काशी विश्वनाथ की, जहां भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए मंदिर में 7 एंट्री गेट बनाने की योजना है। सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा प्लान समझेंगे और आखिर में बात होगी ओंकारेश्वर की, जहां इन दिनों प्रशासन की एक अनोखी पहल चर्चा में है। रक्तदान करके मंदिर में VIP दर्शन की योजना क्या है और इसका असर क्या है, आपको विस्तार से बताएंगे। और आइए शुरुआत करते हैं सावन और उसके साथ कांवड़ यात्रा की तैयारियों से। 30 जुलाई से भगवान शिव का प्रिय महीना शुरू होगा और साथ ही हरिद्वार तक भव्य कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। उधर देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले का आगाज होगा। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की तादाद में आने वाले शिव भक्तों को कोई मुश्किल ना हो और आसानी से जलाभिषेक हो, इसके लिए प्रशासन अभी से तैयारी में जुटा है। देखिए हरिद्वार और देवघर से हमारी ये खास रिपोर्ट।

गूंजा जयकारा जब बाबा केदार ने पुकारा और हिमालय के ऊंचे शिखर पर चल पड़ी भोले की फौज। आषाढ़ में आया अमरनाथ का बुलावा, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लगी होड़। बिना थके बिना रुके कश्मीर में चलता ही जा रहा है कारवा शिव भक्तों का। गूंज रही है घाटी बम बम भोले के जय घोष से। और इसके साथ ही कदम चल पड़े हैं कैलाश मानसरोवर की ओर, वो धाम जहां शिव का वास है। उसका रास्ता आसान नहीं, लेकिन ऊंचे पहाड़ और बर्फीले रास्ते को पार करते हुए यात्री बढ़ते जा रहे हैं अपने आराध्य को देखने पूजने। वैशाख यानी अप्रैल के आखिर से शुरू हुई और महादेव से जुड़ी ये तीनों यात्राएं जुलाई तक जारी है, लेकिन अब इंतजार है उस दिन का जब ऊंचे शिखरों पर नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में गंगा के तट पर शिव भक्तों का हुजूम उमड़ने वाला है, क्योंकि सावन आने वाला है। ज्यादा दिन नहीं बचे जब सावन की एंट्री होने वाली है, और इसलिए हरिद्वार से लेकर बाबा धाम यानी देवघर तक कावड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। रास्ते घाट हर तरफ सावन की आहट है,

श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की और मेले के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की गई। लेकिन सबसे खास है ये पोस्टर जिसमें कावड़ यात्रा के लिए अखाड़े ने 14 नियमों का जिक्र किया है। वैसे तो शिव पूजा का कोई विधान नहीं, लेकिन कावड़ यात्रा के दौरान जिन बातों का ध्यान रखना जरूरी है उसे शिव भक्तों को समझना जरूरी है।

0: हरिद्वार में गंगा के तट पर पूजा अर्चना के साथ संतों ने कावड़ यात्रा का संदेश दे दिया। अपील की गई कि सादगी और भक्ति भावना के साथ भक्त इस यात्रा में शामिल हों और दिखावे के लिए यात्रा ना करें। मान्यता है कि सावन शिव को प्रिय है और इस पूरे महीने भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इस दौरान विधि विधान से की गई शिव उपासना से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि जैसे ही सावन आएगा देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा, जिसे संभालने के लिए प्रशासन और मंदिर से जुड़े लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। यह तस्वीर बाबा बैद्यनाथ के धाम देवघर की है, जहां श्रावणी मेले की तैयारियां तेज है और पुलिस प्रशासन के आला अफसर खुद देखरेख में लगे हैं। भीड़ बेहिसाब होती है, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम भी व्यापक करने पड़ते हैं। इस साल 10,000 पुलिस कर्मियों के साथ ETS रैपिड एक्शन फोर्स और डॉग स्क्वाड को तैनात करने की योजना है।
1: अब हमारी तैयारियां जो है वो फाइनल स्टेज में आ गई, क्योंकि श्रावणी मेला में एक बहुत बड़ा क्राउड आता है, बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे पुलिस फोर्सेस की बहुत ज्यादा डिप्यूटेशन होती है बहुत हाई संख्या में। और इस बार भी हमें अलॉटमेंट जो हुआ है वो लगभग 10,000 पुलिस फोर्सेस इंक्लूडिंग ऑफिसर्स का अलॉटमेंट हुआ है। साथ ही स्पेशल फोर्सेस आ रहे हैं, RAF, RAP, उसके बाद BDDS की टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड की टीम आ रही है, ATS की टीम आ रही है, तो उनके आवासन के लिए तथा जो अस्थाई पुलिस आउटपोस्ट बनते हैं, ट्रैफिक आउटपोस्ट बनते हैं, तो उनका भी आज निरीक्षण किया जा रहा है।
0: हर साल देवघर के श्रावणी मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए पीने के पानी, बिजली, पंखा से लेकर मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। सावन में बाबा धाम में भक्ति का उत्सव होता है, इसलिए VIP पूजा बंद कर दी जाती है। मंदिर प्रशासन भी अपनी तरफ से हर सुविधा देने की हर संभव कोशिश में जुटा है।
2: हमारे यहाँ बाबा बैद्यनाथ साहब की जाति आते हैं, सबके बेड़ा पार करते हैं, प्रशासन के द्वारा भी और हम लोग पुरोहित समाज के द्वारा भी व्यवस्था तो अच्छे से हो रहा है और आगे सब बाबा बैद्यनाथ सुख करके सावन मास सब विघ्नबाधा दूर करके सब जो है सावन मास जो व्यवस्था है वो पूर्ण करेंगे।
0: मंदिर में तो भीड़ होगी ही, मंदिर के बाहर शहर में भी ट्रैफिक कंट्रोल करना बड़ी चुनौती होती है, इसलिए प्रशासन अभी से रणनीति बना रहा है।
3: जहां भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में समन्वय स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उस पर समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफी मुद्दों पर बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। तो सभी बिंदुओं पे आज बहुत ही बृहद तरीके से चर्चा हुई और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग एस्टैब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्प का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स वो आपस में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़िया।
0: श्रावणी मेले की तैयारी बिहार के रोहतास जिले में भी चल रही है। कैमूर की पहाड़ियों में गुप्तेश्वर महादेव की एक पवित्र प्राकृतिक गुफा है। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने इसी गुफा में शरण ली थी, जहां हर साल सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं। यहां की कावड़ यात्रा भी बाबा वैद्यनाथ के धाम की तरह महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें हजारों हजार लोग आते हैं, इसलिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। गुफा के अंदर ऑक्सीजन, मैट और लाइट की व्यवस्था की जा रही है।
4: तो वहाँ से बैरिकेडिंग है, पहले बांस और बल्लों से किया जाता था, उसको हटाकर हम लोग इस बार लोहे की बैरिकेडिंग सुनिश्चित करेंगे, ताकि जो कीड़ है उसको सही तरीके से गाइड करके पंक्तिबद्ध तरीके से दर्शन कराया जा सके। उसके अतिरिक्त गुफा के अंदर लोगों को किसी भी तरह का जल के अलावा किसी भी तरह की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी से वो जो चीजें हैं वो अंदर सफोकेशन क्रिएट करती है, तो लोगों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए इन सब चीजों का अनुपालन कराया जाएगा। इसलिए साल के अनुभव से और उसके बाद महाशिवरात्रि में जो हम लोगों ने काफी बेहतर तरीके से भक्तिमत तरीके से लोगों को दर्शन कराया था, उसी अनुभव से सीखते हुए हम लोग इस बार हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सभी लोग भक्तिमत तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से दर्शन करें।
0: 30 जुलाई से शुरू हो रहा है भगवान भोलेनाथ की आराधना का पवित्र महीना सावन, जब कांधे पर कावड़ लिए शिव भक्तों का हुजूम चलेगा। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा माहौल गूंजेगा। कावड़ उठाने के लिए भक्तों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और प्रशासन ने भी

0: इंतजार है तो बस सावन का। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, रोहतास से रंजन कुमार और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे।
1: सावन के महीने में काशी की छटा कुछ और ही होती है। गंगा की पावन धारा के पास विराजमान बाबा विश्वनाथ धाम में सावन की विशेष तैयारियां चल रही हैं। अगर सोमवार को छोड़ दें तो भी सावन के महीने में कम से कम 6 से 7 लाख शिव भक्त जल चढ़ाने यहां आते हैं। लिहाजा जिला प्रशासन के साथ मंदिर प्रबंधन ने भी कमर कस ली है ताकि इस सावन बाबा विश्वनाथ के धाम भक्तों को सुगम दर्शन हो सके और इसके लिए प्रवेश द्वार की संख्या बढ़ाने की योजना है। देखिए काशी से हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: आस्था, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक बम बम भोले और हर हर महादेव का उद्घोष हर तरफ गूंजने वाला है। भोलेनाथ को प्रिय और समर्पित सबसे पवित्र महीना श्रावण मास शुरू होने वाला है। उपवास के साथ कांवड़ यात्रा निकालने वाले नीलकंठ के भक्त पवित्र शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव की कृपा की कामना करेंगे। इस साल 30 जुलाई से सावन के पवित्र महीने का आरंभ होगा। समापन की तिथि 28 अगस्त को है। सावन के महीने में लाखों शिव भक्त देवों के देव महादेव पर जलाभिषेक के लिए काशी विश्वनाथ धाम का भी रुख करते हैं। सावन के हर सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का अलग श्रृंगार और स्वरूप देखने को मिलता है। गर्भगृह में फूलों से दिव्य, भव्य, अलौकिक, अद्भुत श्रृंगार का दुर्लभ दर्शन का सौभाग्य हासिल होता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा जैसे बड़े धार्मिक आयोजन को देखते हुए काशी विश्वनाथ धाम में क्राउड मैनेजमेंट यानी भीड़ प्रबंधन बड़ी चुनौती बन जाती है। हालांकि पहले की तरह काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग सकरे रास्तों से नहीं गुजरना पड़ता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से अब कांवड़िए गंगा घाट से सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लेते हैं। सकरी गलियों से गुजरने के बजाय अब चार प्रमुख द्वारों और बड़े परिसर की वजह से दर्शन करने में आसान हो गया है। फिर भी सावन के महीने में शिव भक्तों के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था कम ही साबित होती है, लिहाजा प्रशासन ने इस बार भी पहले से कमर कस ली है ताकि सावन बाबा विश्वनाथ के धाम भक्तों को सुगम दर्शन हो सके। इसी को लेकर वाराणसी जिला प्रशासन और पुलिस के तहत आने वाले सभी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन बैठक का दौर शुरू हो गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन ने भी अपने स्तर पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें सबसे पहले 7 प्रवेश द्वार के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे शिव भक्तों को काशी विश्वनाथ धाम में आवागमन में किसी तरह की परेशानी ना हो।
1: सावन के पावन माह के मद्देनजर विश्वनाथ मंदिर प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है, जिसके तहत बैठक के बाद तमाम निर्णय भी लिए गए। सावन माह में कुल 7 प्रवेश द्वार बनेंगे, जिससे श्रद्धालु विश्वनाथ धाम में प्रवेश कर सकेंगे। तो वहीं गर्मी, उमस और धूप से बचाव के लिए जर्मन हैंगर, फैन, कूलर, वाटर कूलर, पेयजल और खास तौर से अल्पाहार की भी व्यवस्था रहेगी।
0: मंदिर प्रशासन की तरफ से अल्पाहार की व्यवस्था की खास वजह है, सावन के महीने में गर्मी और उमस रहती है। घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने वाले शिव भक्तों और कांवड़ियों को डिहाइड्रेशन से बचाने और उनकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए जलपान की व्यवस्था की जाएगी। इससे शिव भक्तों को व्रत उपवास के नियमों का पालन करने में भी मदद मिलेगी।
1: मंदिर प्रशासन की तरफ से ये निवेदन किया गया है भूखे प्यासे रहते हुए दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से, कि क्योंकि कई बार उनके साथ हेल्थ इशू आ जाता है और ऐसे वक्त में उनको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि मेडिकल टीम भी लगातार सक्रिय रहेगी और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी, लेकिन खास तौर से जो श्रद्धालु व्रत रहते हुए दर्शन करते हैं उनसे ऐसा न करने की अपील मंदिर प्रशासन ने की है, क्योंकि काफ़ी वक्त सावन के माह में श्रद्धालुओं को दर्शन करने में लग जाता है।
0: नियमित अंतराल पर संपूर्ण धाम क्षेत्र में पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा गर्मी या भीड़ भाड़ की वजह से किसी की तबीयत ज्यादा न बिगड़े, इसके लिए काशी विश्वनाथ परिसर में डॉक्टरों और एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी। साथ में ORS की भी व्यवस्था होगी।
2: जो अपील हम हर बार जारी करते हैं कि श्रावण मास में कई बार लोग सोमवार के दिन विशेष रूप से व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, बिना कुछ खाए पिए घर से चलने का प्रयास करते हैं, तो आपसे बहुत अनुरोध है, बहुत श्रद्धा के साथ अनुरोध है, महादेव का स्मरण करके घर से खाली पेट ना निकलें, फलाहार का कुछ ना कुछ जरूर ग्रहण कर लें। खाली पेट रहने से कई बार व्यक्ति फेंट हो जाता है, यहाँ बेहोश होने की समस्याएं होती हैं, स्टेशन पर उनको ले जाना पड़ता है, तो अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता ना करें। भगवान शिव आनंद के देवता हैं, आप आनंद में रहें, आनंद पूर्वक यहाँ पर आएं। धाम की तरफ से यहाँ पर ग्लूकोज की, ORS की, पानी की, पेयजल की, सूक्ष्म जलपान की सारी व्यवस्था की जाएगी, मेडिकल की सारी व्यवस्था की जाएगी।
0: इस बार पूरे सावन के महीने बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वीआईपी दर्शन और स्पर्श दर्शन की सुविधा बंद रहेगी। आमतौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग के गर्भगृह से स्पर्श दर्शन की अनुमति सुबह 4 से 5 बजे और शाम 4 से 5 बजे के बीच होती है। हालांकि सावन में भारी भीड़ के कारण वीआईपी दर्शन के अलावा स्पर्श दर्शन जैसी विशेष सुविधाएं रद्द कर दी गई हैं। सभी भक्तों को सामान्य कतार से ही दर्शन करने होंगे।
2: साथ ही जो पूर्व के वर्षों की स्थिति रही है वही स्थिति इस बार भी है। हम लोगों ने सभी प्रकार के जो विशेष अनुरोध आते हैं, प्रोटोकॉल दर्शन के अनुरोध होते हैं, वो सभी निरस्त रहेंगे। सभी विशेष जनों से अनुरोध है, काशीवासियों से भी अनुरोध है, बाहर के मान्यवर लोगों से भी अनुरोध है, ऐसा कोई अनुरोध ना भेजें, उसका सम्मान किया जा पाना, उसे स्वीकार किया जा पाना संभव नहीं हो पाएगा। साथ ही जो दूसरी एक इसमें समस्या रहती है, श्रावण मास के भीतर स्पर्श दर्शन को लेकर लोग बहुत ज्यादा उतावले होते हैं, तो स्पर्श दर्शन उसमें पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे, किसी का भी नहीं होगा। अगर किसी समय भीड़ कम होती है, उस समय अगर कोई स्थिति बन पाती है, तो निश्चित रूप से मंदिर न्यास भक्तों का श्रद्धालुओं का उस समय मन रखने का प्रयास करेगा, लेकिन भीड़ के समय किसी का भी इस प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा पाएगा।
0: सावन के दौरान काशीवासियों को दर्शन के लिए अलग से प्रवेश द्वार की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन की तरफ से काशीवासियों से अपील की गई है कि वो कांवड़िए और श्रद्धालुओं का स्वागत करें। काशी भोलेनाथ की प्रिय नगरी मानी जाती है। विवाह के बाद भगवान शिव देवी पार्वती का गौना कराकर पहली बार यहीं आए थे। काशी में भगवान शिव ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं, यही वजह है कि इन्हें काशी विश्वनाथ कहा जाता है। मान्यता है कि देवभूमि मानी जाने वाली काशी गंगा किनारे भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है, प्रलय आने पर भी जिसका विनाश नहीं हो सकता। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: भगवान शिव के बड़े धामों में ओंकारेश्वर का नाम भी शामिल है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सावन में यहाँ भी लाखों की तादाद में शिव भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं। जाहिर है यहाँ भी बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है, लेकिन इन दिनों ओंकारेश्वर में जिला प्रशासन की एक नई पहल की बड़ी चर्चा है। प्रशासन ने रक्तदान के बदले मंदिर में वीआईपी दर्शन की पेशकश की है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए खून की कमी देखते हुए ये पहल शुरू की गई है और इस योजना को शिव भक्तों ने हाथों हाथ लिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में अब पर्याप्त मात्रा में रक्तदान हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।
0: नर्मदा के तट पर शिव का दिव्य धाम ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में जो चौथा है, और मान्यता है कि जहां भगवान शिव मां पार्वती के साथ रोज रात के वक्त विश्राम करते हैं और चौसर भी खेलते हैं। ये 5 मंजिला मंदिर नदी के बीच मंधाता और शिवपुरी द्वीप पर मौजूद है और द्वीप का आकार ओम शब्द की तरह नजर आता है, इसलिए धाम का नाम ओमकारेश्वर है। खास बात यह भी है कि मंदिर में मौजूद शिवलिंग प्राकृतिक है, यानी किसी ने गढ़ा नहीं। जब सावन आएगा शिव के इस धाम पर भक्तों का हुजूम उमड़ेगा। यहाँ भी मंदिर प्रशासन अभी से सावन की तैयारी में जुटा है, लेकिन उससे पहले प्रशासन ने मंदिर में दर्शन और रक्तदान को लेकर जो एक नई पहल की है उसकी बड़ी चर्चा है। ओमकारेश्वर मंदिर के प्रति भक्तों की जो श्रद्धा है उसे मानव सेवा से जोड़कर एक नया आयाम दिया गया है। ओमकारेश्वर में रक्तदान करने पर पूरे परिवार को मंदिर में वीआईपी दर्शन की सुविधा दी जा रही है। इससे रक्तदान करने वाले भक्तों को लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता और फायदा ये है कि खंडवा के जिला अस्पताल को पर्याप्त मात्रा में रक्त मिल रहा है। पहल इसी साल फरवरी में शुरू की गई।
4: श्रद्धा के साथ सेवा यदि जुड़ जाती है तो पुण्य और बढ़ जाता है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो किस तरह के चमत्कार होते हैं ये देखना है तो आप ओंकारेश्वर आइए। यहाँ पर एक जिला प्रशासन ने एक नवाचार किया, किस तरह से एक यूनिट खून देने पर वीआईपी दर्शन का जो एक प्रपोजल, जो एक स्कीम दी, उसका बड़ा जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। और अब यह स्थिति है कि जहां जिला अस्पताल में पहले खून की कमी हुआ करती थी, वहां अब जिला अस्पताल में इतना ब्लड बैंक में ब्लड आ चुका है कि आसपास के जिलों की आपूर्ति हो रही है और एक बड़ा मानव सेवा का काम हो रहा है।
0: द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल ओंकारेश्वर में हाल के बरसों में श्रद्धालुओं की तादाद तेजी से बढ़ी है। रोजाना हजारों की तादाद में शिव भक्त आते हैं और लंबी लाइनों में घंटों इंतजार के बाद दर्शन करते हैं। इसके साथ ही वीआईपी दर्शन का भी दबाव रहता है, जिसके लिए प्रशासन ने ₹300 का शुल्क तय किया है, लेकिन मंदिर में बेहिसाब भीड़ के साथ जिलाधिकारी ऋषभ गुप्ता की नज़र ब्लड बैंक में रक्त की कमी पर गई और उन्होंने भक्तों की श्रद्धा को जनसेवा से जोड़ने का फैसला किया, यानी एक यूनिट रक्तदान के बदले परिवार को वीआईपी दर्शन।
5: हम ब्लड डोनेशन की बात करें, जो कैंप्स लगते हैं हमारे, अमूमन हमारी जो पूर्ति नहीं हो पाती है, तो जब सभी ब्लड डोनर से बात की गई, इसके अलावा जो हमारा ओंकारेश्वर जी ज्योतिर्लिंग है, यदि उसकी बात करें तो स्पेशली पोस्ट कोविड हम ये पाते हैं कि श्रद्धा का मानो सैलाब सा आ गया है जी। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है और हम ये देख रहे हैं कि अमूमन अभी लोग 5 से 6 घंटे वेट करके भी दर्शन पा रहे हैं। तो बेसिकली ये ब्लड डोनर से लगातार डिस्कशन किया गया कि किस प्रकार से हम ब्लड की आपूर्ति को इंक्रीज कर सकते हैं। तब सभी के साथ चर्चा करके यह आइडिया आया कि क्यों ना हम ओंकारेश्वर में जो हमारे श्रद्धालुगण आते हैं उनसे ये अपील करें कि यदि आप श्रद्धा के साथ में आए हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, तो साथ में रक्तदान महादान भी करें। उससे आपको न केवल पुण्य प्राप्त होगा अपितु जो हमारे जिले की खून की कमी है उसकी पूर्ति भी हो पाएगी। तो उसी से यह आइडिया आया।
0: रक्तदान के बदले मंदिर में वीआईपी दर्शन की पेशकश, ये योजना श्रद्धालुओं को इतनी पसंद आई कि देखते ही देखते रक्तदान करने वालों की कतार लंबी होने लगी। हर दिन करीब 30 से 35 यूनिट रक्तदान हो रहा है। हालत यह है कि खून जरूरत से ज्यादा है और उसे इलाज के लिए पास के जिलों में भेजा जा रहा है।
6: जिले के अंदर चालू किया गया था जिसकी अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो रही है और इस कारण से हमको जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उसकी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, वो खून हमारे पास भरपूर मात्रा में आ रहा है।
0: ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन की ये पहल भा गई है। बिना समय गवाए जल्दी दर्शन हो जाता है और साथ ही मानवता की सेवा का पुण्य भी मिल जाता है।
7: अच्छी लगी मुझे और मैं ये कहना चाहता हूँ कि और भी श्रद्धालु यहाँ पे आकर के रक्तदान करें, ये आपका एक सेवा ही है आपकी यहाँ पर।
8: आप आने वाली पीढ़ी को भी इस ब्लड डोनेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे?
7: मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक आए और अधिक से अधिक ब्लड डोनेट करें।
0: महादेव के इस धाम से भक्तों की आस्था गहरी जुड़ी है। देश के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं और सिर झुकाते हैं। अगर आसानी से शिवलिंग के दर्शन के लिए एक यूनिट रक्तदान करना पड़े तो भक्त इसके लिए खुशी से तैयार है, खासकर तब जब रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दर्शन के लिए मंदिर आई थी और उन्होंने भी प्रशासन की इस पहल की तारीफ की।
5: 2500 से अधिक यूनिट्स हम कलेक्ट कर चुके हैं। यदि हम साप्ताहिक रूप से बात करें तो औसत हमारे पास अभी 200 से 250 यूनिट्स आ जा रहे हैं। डेफिनेटली इसे न केवल हमारे जिले खंडवा की पूर्ति हो रही है अपितु आसपास के जिलों से भी जो मांग आती है उसकी पूर्ति भी जो हमारे ओंकारेश्वर ब्लड डोनेशन सेंटर है वहां से की जा रही है।
0: सावन आने वाला है, हर साल की तरह मंदिर में भक्तों की तादाद कई गुना ज्यादा होगी क्योंकि सावन में ओंकारेश्वर के दर्शन का धार्मिक महत्व बड़ा है। पर इस सावन नई बात ये होगी कि भक्तों को दर्शन पूजन के साथ रक्तदान करके मानव सेवा करने का भी अवसर मिलेगा।
3: इसी के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा, हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
2: अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
9: देश की समुद्री सुरक्षा के लिए मिलेगा एक और महायोद्धा, आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा INS महेंद्र गिरी, विशाखापट्टनम नौसेना बेस पर होगा समारोह। देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, बारिश के मौसम में कोहरे और धुंध से घिरा, दर्शन के लिए आस्था उत्साह के साथ श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, पारंपरिक माओरी तरीके से किया गया पीएम मोदी का स्वागत, न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और परंपराओं की झलक दिखी। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज का आज 5वां और आखिरी मैच साउथैम्प्टन में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मैच। बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में अपने पुराने आशियाने को अपने नाम किया। शादी के बाद जिस घर से शुरू हुई थी जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा। अमेरिकी सिंगर पिटबुल के फैंस ने लंदन में बनाया अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कॉन्सर्ट में हजारों की तादाद में बॉल्ड कैप पहनकर जुटे लोग।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सीढ़ियों के बारे में। सीढ़ियों का आपके भाग्य से क्या संबंध है, घर की सीढ़ियां कैसी होनी चाहिए और सीढ़ियों को बनाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के नजरिए से सीढ़ियों के बारे में। वास्तु शास्त्र में सीढ़ियों का क्या महत्व है? देखिए, सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं। ये सीढ़ियां आपके घर में कहीं भी हों, ये जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती हैं। सीढ़ियां अगर घर के बाहर हैं तो ये शुक्र से संबंध रखती हैं और सीढ़ियां अगर घर के अंदर हों तो ये मंगल से संबंध रखती हैं। वैसे देखिए, सीढ़ियों का मतलब होता है उतार चढ़ाव, इसलिए कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध होता है राहु और केतु के साथ। गलत सीढ़ियां जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देती हैं। अगर आपने गलत तरीके से घर में सीढ़ियां बनाई हैं तो अचानक आपके जीवन में समस्या आ सकती है। इनके कारण बिना वजह के राहु और केतु आपके जीवन में प्रभावित हो जाते हैं। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, बेवजह के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो देखिए, सीढ़ियां आपको घर के ऊपर भी ले जाती हैं और सीढ़ियां आपको घर के नीचे भी ले आती हैं। उतार चढ़ाव से संबंध होने की वजह से सीढ़ियों का संबंध आपके जीवन में राहु और केतु के साथ बनता है। अब आपको बताते हैं कि सीढ़ियों के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम कोने में सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे ज्यादा सही मानी जाती हैं। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए या पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने ईशान कोण यानी पूरब उत्तर के कोने में या आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व के कोने में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां जितनी सीधी हों, जितनी सरल हों, उतना अच्छा होगा। सीढ़ियां कम घुमावदार होनी चाहिए और सीढ़ियां हमेशा चौड़ी होनी चाहिए और सीढ़ियों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जो जगह है वहां पर बाथरूम, स्टोर या पानी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जो जगह है भूल कर भी वहां पर मंदिर मत बनाइएगा। सीढ़ियों के नीचे बाथरूम का होना और सीढ़ियों के नीचे मंदिर का होना बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होता है। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में समस्या हो सकती है,
धन की हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत की स्थिति बेहतर होती जाएगी, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से जानकारी ना रही हो और आपने अपने घर में गलत तरीके से सीढ़ियां बनवा ली हों। अगर सीढ़ियां आपके घर में गलत बन गई हों तो क्या उपाय करेंगे? सीढ़ियों का रंग सफेद रखें तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और सीढ़ियों के साथ वाली जो दीवार है उस पर एक बड़ा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगा दीजिएगा। अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत निर्माण करवा लिया है, सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत कंस्ट्रक्शन हो गया है तो वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाइएगा। सीढ़ियों पर और सीढ़ियों के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए, सीढ़ियों के नीचे प्रकाश की उचित व्यवस्था आपको करनी चाहिए। जिस स्टेप पर सीढ़ियां शुरू हो रही हैं और जिस स्टेप पर सीढ़ियां खत्म हो रही हैं वहां पर एक हरे रंग का डोर मैट रख दीजिएगा। सीढ़ियों के नीचे टेबल लगा करके पढ़ने लिखने की वस्तुएं रख सकते हैं, पढ़ने लिखने का काम कर सकते हैं या किताब रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे पानी रखना या सीढ़ियों के नीचे पानी रखने की व्यवस्था करना सबसे ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव ना पालें,
वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, नजदीकी रिश्तों में समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की सीढ़ियों के वास्तु और ज्योतिष के साथ कनेक्शन की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे पुरुषों को हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए और उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: एक गांव में एक आदमी रहता था, सीधा साधा था, बहुत सीधा था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, खूब खाता था। अच्छा, आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है। कुछ लोग कहते ना ये बहुत खाते हैं, भाई आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है, जैसे आपका बड़ा खाता है। तो वो तो खाते के हिसाब से ही खाते त्यागी जी। तो आदमी कितना खाता, जिसका जितना बड़ा खाता आदमी उतने, तो ये खूब खाते थे, कोई काम नहीं, एक ही काम था, खावे और सोवे और जगे और फिर खावे। घर वाले बहुत हैरान, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। अच्छा, घर वाले रखते ही उसी को जो काम का, और जो काम का नहीं वो कोई सी काम का नहीं। तो घर वालों ने कहा कि तुम खाते ही रहते हो, कुछ करते ही नहीं हो, कुछ करो। बोले हमसे कुछ होता ही नहीं है। बोले होता नहीं है तो काहे को पड़े हो, बाबा बन जाओ। अच्छा, कई लोग तो इसी चक्कर में बाबा बन जाते। बोले क्यों? बोले मुड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर मुड़ाए, इसको बुंदेलखंडी में मुड़ कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में मुड़ सिर को मुड़ कहते। तो बोले सिर मुड़ाए 3 गुण।

बहुत खाते हैं लगता है, आदमी को तो अपने हिसाब से ही दिखाई देता है, बोले ये भी मोटे ताए जी हैं, लगता है ये भी खूब खाते। नजदीक आ गया गुरु जी के, जैसे ही नजदीक आया तो दो चार चेला महात्मा जी के निकल आए, वो भी मोटे ताजे। अरे बोले वाह, इधर तो सब मोटे ताजे, ये भी मोटे ताजे, लगता है ये सब खूब खाते हैं हमारे जैसा, ये भी मोटा ताजा था। ये गया बोले गुरु जी हाँ आप हमें अपना चेला बना लो। बोले बन जा। बोले बहुत बढ़िया, जय हमारा। बोले लेकिन चेला तो बनेंगे, पहले ये बताओ हमें काम क्या करना होगा। गुरु जी बोले कोई काम नहीं है, मंदिर है, सुबह शाम आरती में खड़े होके कीर्तन गाओ और पड़े रहो, कोई काम नहीं है मंदिर में, कोई इमरजेंसी आएगी तो बताएंगे। बोले महाराज चलो ये तो हो गई काम की बात, ये बताओ इसकी क्या व्यवस्था है। अरे बोले वाह मंदिर है, कोई कमी नहीं, भगवान की बहुत कृपा है, दोनों टाइम भंडारा चलता है, सुबह भी शाम को भी। बोला ओनली टू टाइम? बोले हाँ दो बार। बोले वो चार नहीं हो सकता? अरे बोले मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं, चार नहीं 8 बार खाओ। इसने कहा ये बहुत बढ़िया है, कुछ काम करना नहीं, 8 बार खूब खाना। इसने कहा यदि 9 बार खा ले तो? पंडित जी बोले खाते ही रहेगा कि कुछ और करेगा? बोले सच यही है कि हम खाते ही भाग हैं, इसीलिए तो घर से भगाए गए। बोले कोई बात नहीं खाते रहना, 9 बार खा लेना, तुम्हारी व्यवस्था बना देंगे। लेकिन इसे क्या पता अब रहने लगा, गुरु जी ने चेला बना दिया, नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रखा? रामदास। माला पहना दी, तिलक लगा दी। अब ये बढ़िया सुबह शाम आरती में खड़ा हो गए, आरती के बीच ही में जयकारा लगा के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती चल रही हो, बीच में जयकारा लगा के भंडारी के पास आ जाए, लो हम तो जय बोले ले आओ। तो पुजारी जी कहे भाई कम से कम 5 मिनट तो गम खा, 5 मिनट तो ठहर जा बीच ही में, और ये इतना खावे अब इसे फ्री में मिले साव आनंद, काम कुछ करना नहीं, इतना खावे को होश नहीं खड़े होने का, सांस तेज चल रही, पेट भरो है दाल से और रोटी से और भात से, आ सांस तेज चल रही हो, दीवाल में टिक्के कीर्तन करे हरे राम हरे राम, उतई ही सो जाए, जैसे ही नींद को ले सो फिर जाए ले आ। मंदिर वाले बोले भला भगवान इसका भला करे, खाता ही खाता है, लेकिन इसे क्या पता मंदिर में भी मुसीबत आने वाली है। एक दिन सुबह से कुछ बना ही नहीं, भंडारी जी धूप में तेल लगाते हुए बैठे थे, सिर के बाल खुजला रहे थे, इसको लगा आज मंदिर में हड़ताल है। तो ये गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज रोटी नहीं बन रही, भंडारी जी बैठे हैं, कितनी देर में बनेगा, हमें गरम ही दे दो। गुरुजी बोले चेला तुम्हें बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो? बोले एकादशी है तो ना बनेगा ना मिलेगा। तो रामदास बोला हमें भी? बोले तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं? अरे बोले गुरु जी आपके इतने चेला है उन्हें एकादशी करवा दो, एक तो छोड़ दो। बोले नहीं नहीं वो तो सबको नियम बराबर है, ना बनेगा ना मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला गुरुजी यदि हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। बोले मतलब? बोले मतलब सीधा है गुरुजी, एक चेला आपका कम हो जाएगा, आश्रम में कलियम टपक जाएंगे। बोले ये तो बड़ी खाज। बोले क्या किया जाए? बोले आप ही कोई उपाय बताओ गुरुजी। बोले और तो कोई उपाय नहीं, मंदिर में तो बन नहीं सकता, नियम है हमारे गुरुजी, 300-400 साल से नियम चल रहा है, एक उपाय है। क्या? बोले हम सामान दे सकते हैं, तुम बना लोगे? अरे बोले मरते क्या नहीं करते, सामान ही दो। तो भंडारी जी को कह दिया हाँ भाई जरा सामान दो। भंडारी जी ने आटा दे दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दिए, नमक दे दिया, मिर्चा दे दिया। गुरुजी से प्रणाम करके बोला गुरुजी हम जा रहे हैं, आशीर्वाद दो कि हम फतेह करके आए। तो गुरुजी बोले क्या फतेह करके आए? बोले पूरा राशन ठिकाने लगा के आए, क्योंकि अभी तो बनाना पड़ेगा, तब तक दोपहर हो जाएगी, भूख लगे। तो गुरु जी बोले इधर आओ जी। जी गुरु जी सुनो, वैसे तो एकादशी को खाना नहीं चाहिए, पर तुम नहीं मान रहे हो तो खा रहे हो। सुनो भगवान को बुलाकर भोग लगाकर खाना, अब ये तो सीधा साधा आदमी, बड़ा सरल आदमी, कुछ जानता था ही नहीं, इसे पढ़ाई लिखाई थी नहीं, कोई जानता था नहीं, सीधा साधा आदमी भोला भाला। इसने कहा जो आज्ञा गुरु जी। तो इसने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, आज एकादशी है तो मंदिर में भगवान को कुछ मिलेगा ही नहीं, कम से कम हमारे यहां मिल तो जाएगा। ये नदी के किनारे आया, नदी के किनारे लकड़ी ली, आग जलाई, आग जला करके इसने रसोई तैयार की, टिक्कर

बनाए, चोखा प्रसाद बनाया। चोखा प्रसाद बनाने के बाद गुड़ का शरबत बना करके बैठ गया। इसने सोचा गुरुजी ने कहा था भगवान को बुला लेना, मंदिर था राम जी का, सो हाथ जोड़ करके गाने

लगता रहा। अच्छा सीधा साधा आदमी पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसे लगता था कि भगवान सच में आते और खाते हैं। सीधा आदमी ये सोचता था कि भगवान आते हैं और खाते हैं। अब ये चारों तरफ देखने लगा, कोई नहीं आता दिखाई पड़ा, केवल जंगली जानवर दिखाई पड़े। तो ये और टेंशन में मन ही मन कहने लगा, प्रभु एक तो एकादशी है, दूसरा पहली बार जिंदगी में हमने बनाया है, तीसरा दोपहर पहले ही हो गई, भूख बहुत लगी, और चौथा तुम आ नहीं रहे। अच्छा क्यों नहीं आ रहे? गुरुजी ने तो कहा था भगवान को बुला। एक कमी होगी। क्या कमी होगी? हमारे पास वो घंटिया आचमनी नहीं है। हो सकता भगवान माहौल देख के न आ रहे हो। सो हाथ जोड़ करके बुला, आचमनी।

सीधा साधा सो हाथ जोड़ करके बोला, सुनो प्रभु हमारे पास तुम यहाँ आकर के तुम आ जाओ, पर बाद में कहो मिठाई दो, रबड़ी दो, मालपुआ दो। ना ना सुन लो व्यवस्था,

ही आए। अब इसका दिमाग खराब, इतनी देर हो गई आए नहीं और इसको रोटी बसाए। एक बार रोटी की तरफ देखे, फिर इधर उधर देखे, भगवान नहीं आए। तो सीधा साधा आदमी हाथ जोड़ करके बोला, सुनो भगवान, सीधी सीधी बात सुन लो, जहां भी हो जल्दी आ जाओ। और तुम मंदिर के चक्कर में ना रहना कि मंदिर में मालपुआ रबड़ी मालपुआ, आज वहां एकादशी है, ठन ठन गोपाला मिलेगा। वहां कुछ नहीं है, जो है यही है, यहाँ हम भी खा रहे तुम भी पाओ, एकादशी मना लो। भगवान इसी सरलता पर रीझ गए। लेकिन राम जी भी कम कौत की नहीं है, कलयुग की सत्य घटना है। राम जी अकेले नहीं आए, सीता समारोह पितवाम भागम, माता जानकी जी को लेकर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। आहा, जैसे ही इसने देखा दो जने आ गए, तो राम जी की तरफ देखकर बोला, जय हो भगवान, इतनी देर क्यों कर दी। भगवान बोले, बिजी थे, व्यस्त थे। बोले, अच्छा। बगल में जानकी माता को देख के बोला, ये कौन है। राम जी बोले, वाह, हमारी घरवाली है, घरवाली घरवाली। बोले, हमने बुलाया तो एक भगवान, तो जी तो दो भगवान हो गए। तो राम जी बोले, दिक्कत क्या है। बोले, पूरी दिक्कत है, व्यवस्था दो लोगन की है, अब तीन हो गए, मतलब आधी एकादशी हमारी करवा ही लोगे। एक तो आधी पहले ही हो गई, ऊपर से बंटवारा करके तुम्हारी घरवाली को भी तो कुछ रोटी लगेंगी, ये खाएंगी कि नहीं खाएंगी। भगवान बोले, वाह, हम खाएंगे तो ये भी खाएंगे। बोले, इसका मतलब है शुद्ध है कि दो टिक्कर खाएंगी कि तीन। राम जी बोले, ये कोई बात है, पेट भर के खाएंगे। बोले, वाह, एक तो लेट आए, ऊपर से पेट भर के खाओगे, वो दो भगवान आए, व्यवस्था एक भगवान। पर कोई बात नहीं, अब आगे सो आगे बैठो बैठो। एक बात बोले प्रभु, हाँ, आप लोगों की जोड़ी बड़ी सुंदर है, कहाँ रहते हो। भगवान बोले, मंदिर में रहते, बहुत अच्छा, लो खाओ, बढ़िया प्रसाद पवाया। इसने भी प्रसाद पाया, प्रभु भगवान के चरण स्पर्श किए। भगवान जाने लगे, इसने पूछा, सीधा आदमी, इसने कहा, एक बात बताओ भगवान। बोले, हाँ, ये एकादशी साल में कितनी बार आ जाती है। भगवान बोले, तो हर महीना आती है, महीने में एक नहीं दो। बोले, मतलब हर 15 दिन में अपनी मीटिंग फिक्स है। भगवान बोले, हाँ। तो बोले, सुनो, और तो सब ठीक है, अगली बार टाइम पे आ जाएंगे, इतनी देरी ना करिए, थोड़ा जल्दी। भगवान बोले, हम आ जाएंगे, आशीर्वाद। सीधा साधा आदमी तो ये मंदिर आ गया, इसने गुरु जी को नहीं बताया, क्योंकि होता ही ऐसा होगा, उसको ऐसा लगा कि ऐसा ही होता है, भगवान ऐसे ही आते हैं। अब 15 दिन कब बीत गए पता नहीं लगा, फिर एकादशी आई, तो फिर भंडारी जी चूल्हे में नहीं आग लगा में। तो ये पूछा, बोले, आज क्या है। बोले, फिर एकादशी। बोले, फिर एकादशी, इतनी जल्दी, अभी तो गई थी। अरे बोले, वो तो आ गई, कोई बात नहीं, अभी एकादशी आई तो गुरु जी के पास गया। बोले, गुरु जी सुनो, इस बार हमारा राशन बढ़ाया जाए। तो गुरु जी बोले, क्यों। बोले, वाह, वहां दो दो भगवान आते, और पिछली बार हमारी आधी एकादशी हो गई थी, इसलिए राशन बढ़ाओ, थोड़ा आटा बढ़ाओ आटा। गुरु जी को लगा, ज्यादा खाता है तो कम रह गया होगा। तो गुरु जी ने 5 शेर की जगह 8 शेर आटा कर दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दी, दाल दे दी, और थोड़ा नमक दे दिया, मिर्चा दे, लो लो जाओ, अब ठीक है। अब ये गया, इसने बढ़िया रोटी टिक्कर फिर से बनाया, चोखा बनाया, गुड़ बनाया, मिर्चा की बढ़िया साग दाल बनाई रख ली, साग बनाई रख ली। इसने सोचा भगवान को बुला लें, नाम पहले ही जान गया था, पूछा प्रभु राम जी से पहली बार में, ये बगल में कौन है, घर वाली, क्या नाम है इनका, सीता जी, अच्छा। तो आज नाम लेके बुलाने लगा, अरे सीता।

सो दूर ही से हाथ जोड़ के बोला जय हो। एक को बुलाओ सो दो आते हैं, दो का इंतजाम करो सो तीन तीन आ गए। भगवान की तरफ देख के बोला अब ये कौन है? भगवान बोले हमारे भाई है। ये नीचे से ऊपर की तरफ देखे, ऊपर से नीचे की तरफ देखे। राम जी बोले हुआ क्या? बोले लग तो नहीं रहे तुम्हारे भैया है, तुम्हारा कलर अलग है इनका अलग, दोनों अलग लग रहे। अरे बोले नहीं नहीं हमारे भाई है, इनकी माताजी दरअसल दूसरी है, इसलिए गौर वर्ण के हैं, हम श्याम वर्ण। अच्छा तो ठीक है, लेकिन एक बात बता। हाँ। बोले हमने तुम्हारा ठेका लिया है भोजन का, खानदान का थोड़ी लिया है। तुम पूरा खानदान लेके आओ, तुम्हारा ठेका है, अब पूरे खानदान का, तुम तीन जने आ गए। अब लेकिन कोई बात नहीं, हम आ गए, अब ठीक है लो बैठो, कोई बात लगता है थोड़ी एकादशी फिर करवा दोगे, बैठो बैठो बैठो। अब राम जी बैठ गए। क्या नाम है इनका? लक्ष्मण जी। अच्छा अच्छा बाबा लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी। मनी मन सोचे क्या गजब का आदमी, हम जहां जाते हैं आदमी खुश होते हैं, ये कह रहा है ये क्यों आ गए, क्या गजब का भगत है भाई, क्या गजब का भगत। तीनों लोग बैठ गए, राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण भैया, तीनों बैठे, इसने प्रसाद रखा, भोजन कराया। आहा, तीनों को गौर से देखने लगा, भगवान तो भगवान ही है, बहुत सुंदर, परम सुंदर है ही है। नीलाम भुजक श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम है। सो भगवान श्री नील सरोरो नीलमण नील नीलधर श्याम, भगवान का नील स्वरूप है। आहा, अलका बलियां झलक रही हैं, घुंघराली लटें लटक रही हैं, बड़ी वज्राग देह माई भुजाए है, बढ़िया गला भरा हुआ शंख की तरह है, कपोल बढ़िया मुस्कुराते हुए लाल लाल होंठ हैं, काली काली कजरारी अखियां हैं, श्वेत दंतावली है। आहा, मधुर मुस्कुराता हुआ श्री हमारे राघवजू सरकार का मुखारविंद है। स्वरूप को देख करके ये अद्भुत हो गया। बोले वाह, कुछ भी कहो, पहले दो लोग अच्छे लग रहे थे, अब तीनों अच्छे लग रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसने भी भोजन किया, चरण पकड़ के राम जी से बोला प्रभु जा रहे, राम जी बोले जा रहे, भगवान बोले जा रहे। बोले अगली बार कितने आओगे? आओ, आओ, आओ। एक को बुलाया, दो आए, दो को बुलाया, तीन बुलाया, तीन आ गए। अब अगली बार गिनती बताओ। भगवान बोले हम आ जाएंगे, गिनती नहीं पूछते, हम आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। और भगवान ऐसे ही गोलमोल करके गायब हो गए। अभी आया इसको तो फिर एकादशी की पड़ी के इस बार एकादशी आएगी, फिर आफत होगी। सच में एकादशी आ गई, फिर एकादशी आई। गुरुजी बोले आज फिर एकादशी है। बोले है तो गुरुजी बोले सिर क्यों लटका है? अरे बोले वहां पे भगवान ही भगवान आ जाते। गुरुजी बोले कहना क्या चाह रहे? बोले इस बार हमारा राशन डबल किया जाए। गुरुजी बोले डबल? बोले कितना? बोले 8 का 16, 8 शेर दिया था 16। गुरुजी मन में सोचने लगे 16 शेर खाता तो नहीं होगा, जरूरी बेचता है। गुरुजी बोले 16 नहीं 20 दे दो, हम भी देखते हैं कौन भगवान आते। मनी मन दे दो सामान, आटा लिया, दाल ली, गुड़ लिया, नमक लिया, मिर्चा लिया, नदी के किनारे आ गया। लेकिन आज चेला ने चतुराई कर दी, भगत ने चतुराई कर दी। इसने सोचा राशन पर्याप्त है, एक काम करो पहले भगवान को बुला लो, जिस हिसाब की गिनती होगी उसी हिसाब का बना लेंगे। तो ये पहले ही बैठ गया, नाम तो जान ही गया था। जिसने फिर हाथ जोड़े, आंख बंद की और गाने लगा उसी

देखा सोई हाथ जोड़ के बोला जय हो। एक को बुलाओ सो दो आते हैं, दो का इंतजाम करो सो तीन आते हैं, तीन की व्यवस्था करो सो पूरा खानदान मोहल्ला लेके प्रकट हो गए। लेकिन सुन लो, आज हमने भी भोग नहीं बनाया है। भगवान बोले मतलब? बोले ना हमने बनाया है ना तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा। भगवान बोले कहना क्या चाह रहे? बोले जब हमें हर बार एकादशी हो ही जाती है, वो धरा सामान बनाओ खाओ। पूरा राम दरबार प्रसाद बनाने के लिए तैयार हुआ। जरा दर्शन की झांकी करना मन में, क्या अद्भुत झांकी।

0: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffeehouse Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffeehouse favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffeehouse or ask your device to play Coffeehouse on TuneIn.
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
2: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है. क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है. यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है. एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है.
3: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ. फौजी 360 इसका नाम है. फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है.
4: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है. अब घुटने में भी दर्द नहीं है. कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता.
5: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है. अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ.
2: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है. और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं.
6: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है.
7: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है. डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ है यार. इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है.
2: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं.
8: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था. उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ. कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी. ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने.
2: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है. और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा.
9: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था. और आज की स्थिति देखते हैं आप. ये देखिए, इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है. हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से. हम रिपोर्ट से समझते हैं. देखिए, इनके पुरानी रिपोर्ट है. पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था. और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है. और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है. तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें.
2: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है.
10: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है.
11: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में. मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं. आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
10: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी. अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
8: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
6: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
2: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
6: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
13: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
14: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
2: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
2: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
2: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
9: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
17: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
4: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
18: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
19: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
20: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
3: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
5: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
8: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
21: To right field, and it will leave.
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
21: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
22: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
22: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
24: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
22: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
25: और दुर्भाग्य कहता है
22: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
24: अविश्वास में विश्वास बसता है,
22: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
22: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
22: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे
6: गुड न्यूज टुडे पर।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
25: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
18: भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्रगिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, बारिश के मौसम में कोहरे और धुंध से घिरा, दर्शन के लिए आस्था और उत्साह के साथ श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पारंपरिक माओरी तरीके से किया गया पीएम मोदी का स्वागत, न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और परंपराओं की दिखी झलक। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज का पांचवा और आखिरी मैच आज साउथैम्पटन में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मैच। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को अपने नाम किया, शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।

नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं गौरव सावंत। इस समय हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर रहे हैं, पवित्र पर्वत कैलाश और पवित्र झील मानसरोवर ठीक मेरे पीछे। ये विशेष पेशकश 15,100 फीट की ऊंचाई से इस समय आ रही है और हम बात करेंगे श्रद्धालुओं के सैलाब की, उनमें उत्साह की और भारत और चीन की सरकारें जो प्रयास कर रही हैं कि इस यात्रा को और आसान कैसे बनाया जा सके और क्या नए रास्ते और तलाशे जा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं इस रास्ते में, इस यात्रा में, ये जानने का हम प्रयास करेंगे।

0: भगवान शिव का परम धाम कैलाश।
1: शिवाय
0: जिसके कण कण में है महादेव का वास।
1: नमः शिवाय।
0: जीएनटी के साथ आज चलो कैलाश।

0: यहाँ से हमारी यात्रा पहले पवित्र मानसरोवर के लिए और फिर कैलाश के लिए शुरू होगी।
1: अद्भुत, अकल्पनीय, अवर्णनीय।
0: कर रहे थे
2: ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम रुवा रूप में बंधना मृत्यु मुक्ति मामृतम।
1: और जब महादेव को देखा तो आंख में ऐसे आंसू गिरते चले गए, बस लगा कि बस अब कुछ नहीं, हो गया सब कुछ, मिल गया जो पाना था।
0: ठीक हमारे पीछे वो मानसरोवर झील, बहुत ही अनुपम ये दृश्य भी है और अनुभूति भी है।

0: सनातन धर्म में अगाध आस्था का केंद्र है कैलाश मानसरोवर तीर्थ। आज गुड न्यूज टुडे आपको लेकर चलेगा उस महातीर्थ पर जहां साक्षात देवादिदेव महादेव निवास करते हैं।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, मैं हूं गौरव सावंत। इस समय हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर रहे हैं, पवित्र पर्वत कैलाश और पवित्र झील मानसरोवर ठीक मेरे पीछे। ये विशेष पेशकश 15,100 फीट की ऊंचाई से इस समय आ रही है और हम बात करेंगे श्रद्धालुओं के सैलाब की, उनमें उत्साह की और भारत और चीन की सरकारें जो प्रयास कर रही हैं कि इस यात्रा को और आसान कैसे बनाया जा सके और क्या नए रास्ते और तलाशे जा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं इस रास्ते में, इस यात्रा में, ये जानने का हम प्रयास करेंगे।
0: कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माँ पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहते हैं। लेकिन आज आप अपने घर बैठे ही दिव्य कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन करेंगे। कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा की शुरुआत हो जाती है तिब्बत में 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद आरी पुलान एयरपोर्ट से।
1: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस समय हम आरी पुलान एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और क्योंकि ये एक सैन्य एयरपोर्ट और सिविल एयरपोर्ट दोनों है, इसीलिए यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अब यहाँ से हमारी यात्रा पहले पवित्र मानसरोवर के लिए और फिर कैलाश के लिए शुरू होगी।
0: कैलाश मानसरोवर की यात्रा में मानसरोवर झील से कुछ किलोमीटर पहले दर्शन होते हैं राक्षस ताल के। मान्यता है कि मानसरोवर के पश्चिम में मौजूद यही वो झील है जहां कभी लंका के राजा रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। लेकिन विधि का विधान देखिए कि जहां मानसरोवर का जल अमृत के समान मीठा है, वहीं इसी क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर होने के बावजूद राक्षस ताल का जल बिल्कुल खारा है, मानो रावण के अहंकार का कसैलापन इस झील के पानी में समा गया हो। जहां मानसरोवर जीवन का स्रोत है, वहीं राक्षस ताल शांत और निर्जीव दिखता है। राक्षस ताल में मछलियां तक नहीं, नहीं इस ताल की परिक्रमा और पूजा करने का विधान है।
1: ठीक मेरे पीछे इस समय ये राक्षस ताल है। राक्षस ताल यानी कैलाश मानसरोवर के बेहद निकट खारे पानी की सबसे ऊंची झीलों में से एक, लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर यह राक्षस ताल है। मान्यता यह है कि राक्षस राज रावण ने यहां भगवान शिव की स्तुति की थी और अहंकार रावण में इतना था कि राक्षस ताल का पानी खारा हो गया। मान्यता तो यह भी है कि जो मानसरोवर झील है उससे जमीन के नीचे ही एक पानी का स्रोत राक्षस ताल भी आता है, क्योंकि अगर आप देखें इतनी ऊंची झील, इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी झील, और ये वो इलाका है जहां बारिश बहुत कम होती है, तो इस झील के लिए बार बार पानी आना ये आसान नहीं है। हालांकि आसपास यहाँ ग्लेशियर्स बहुत हैं, ग्लेशियर्स से पानी बहुत आता है, लेकिन राक्षस ताल के बारे में कहा जाता है कि ये पानी जो धरती के नीचे से ही एक स्रोत है, लेक मानसरोवर जब ओवरफ्लो करती है पवित्र झील मानसरोवर, तो उसी का पानी इस दिशा में भी आता है, लेकिन जमीन के नीचे ही वो खारा होता रहता है। इसकी कोई परिक्रमा नहीं करता इस झील की। हालांकि उपासना यहां भी होती है, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हों, बौद्ध धर्म को मानने वाले हों, जैन धर्म के अनुयायी हों, उपासना यहां भी करते हैं, लेकिन परिक्रमा यहां नहीं करते। खारे पानी की इस झील में मछली नहीं है, जीवन दायिनी नहीं है, मोक्ष दायिनी, प्राण दायिनी, जैसे भारत में माँ गंगा को कहा जाता है, वैसे ही मानसरोवर झील को माना जाता है, राक्षस ताल को नहीं।
0: राक्षस ताल से आगे बढ़े तो हमारा अगला पड़ाव था धरती का अमृत कुंड मानसरोवर। मानस और सरोवर के मेल से बना है मानसरोवर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। समुद्र ताल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये वो पवित्र झील है जिसे सनातन धर्म में सदा से पूजनीय माना गया है। मानसरोवर झील का जल बेहद मीठा है और इसकी गहराई लगभग 300 फीट बताई जाती है।
1: इस समय हम लोग लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर है और वैसे तो यहाँ सांस लेने में परेशानी होती है, लेकिन जब आप प्राणदायिनी मानसरोवर झील के निकट आ जाते हैं तो आपकी वो थकान एकाएक गायब हो जाती है। जिस तरह से भारत में हम माँ गंगा को प्राणदायिनी और मोक्षदायिनी मानते हैं, वैसे ही यहाँ तिब्बत में यहाँ के बौद्ध या फिर यूं कहे सनातन धर्म को मानने वाले, भारत में हो, तिब्बत में हो, दुनिया में कहीं भी हो, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, यहाँ के पौन धर्म को मानने वाले, जिसको कई लोग बौन धर्म भी कहते हैं, उन सभी के लिए ये नदी प्राणदायिनी है, मोक्षदायिनी है। कुछ कदम चलते ही सांस यहाँ फूलने लगती है, इसमें शक नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन मन करता है कि आप इस पवित्र जल को छुएं, आचमन करें और उस मोक्ष की कामना करें जिसकी कामना करके सदियों से श्रद्धालु भारत से और दुनिया भर से यहाँ पर आ रहे हैं। हर धर्म में मानसरोवर का बहुत महत्व है। कई कहानियाँ हैं मानसरोवर झील के चारों ओर, कई कहानियाँ, कई किंवदंतियाँ। एक किंवदंती के मुताबिक ये जो झील है ये ब्रह्मा जी के मानस से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मा द क्रिएटर, ब्रह्मा जी के मानस से इस झील को उत्पन्न किया ताकि शुभ कार्य, धर्म के कार्य किए जा सके।
0: कई धार्मिक ग्रंथों में मानसरोवर की उत्पत्ति से जुड़े उल्लेख मिलते हैं। इनमें ब्रह्मा के मानस से उत्पत्ति की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार परमपिता परमेश्वर के आनंद अश्रुओं को भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भूलोक पर स्वर्ग के समान स्थान कैलाश खंड को खोजा और इन्हीं आंसुओं से इस स्थल पर मानसरोवर का निर्माण किया। जबकि एक मान्यता के अनुसार मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर हुआ। इसी झील को पुराणों में कई स्थानों पर क्षीर सागर भी कहा गया है। माना जाता है कि मानसरोवर के पवित्र जल में स्नान करने से शरीर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस जल में स्नान करने से दैवीय कृपा प्राप्त होती है। हालांकि साल 2018 से चीनी सरकार ने झील की पवित्रता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा जैसे तमाम कारणों का हवाला देकर मानसरोवर में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके सालों से शिव भक्त मन में अगाध आस्था का दीप जलाए मानसरोवर झील के दर्शन मात्र को पहुंचते हैं।
2: ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम रूवारुक्मे बंधनामित्तु मुक्ति मामृतम। हम भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं जिनके तीन नेत्र है, तीनों नेत्र से ऊर्जा शक्ति का संचार होता है। जिस प्रकार एक कंकड़ी बेल में पक जाने के बाद जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार हम भी संसार के बंधनों से मुक्त होकर सदा के लिए सुख के पास समर्पित हो जाए।
3: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
0: मानसरोवर के दर्शन हो चुके थे और अब हमारा अगला पड़ाव था महादेव का धाम, पवित्र कैलाश पर्वत। हमारे साथ इस पथ पर महादेव के कई मतवाले भक्त आगे बढ़ रहे थे, आस्था और उत्साह के भाव से भरे। उत्साह की वजह भी है लंबी प्रतीक्षा और असंख्य प्रार्थनाओं के बाद महादेव के पावन धाम कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन का अवसर मिल रहा था। आप भी गुड न्यूज टुडे के साथ घर बैठे महादेव के पावन धाम कैलाश तक की इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। दरअसल कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्त ऋषियों और संकादिकों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की, त्रेता युग में रावण तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रति क्रम्य कांतारम रोमहुर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्टा सूर्य भविष्यथ। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकुटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वत है यत्र वैश्रवणो राजन गुहकेह सह मोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकूट है। यह यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्तयाति क्रम्यम शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गति परम सिद्धानाम देवर्षिणीम प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता बरकरार रही है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहाँ सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। तो वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। यही वजह है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान सिर्फ सनातन नहीं बल्कि हर उस धर्म के निशान दिखते हैं जिनके लिए कैलाश पर्वत पूजनीय है।
1: लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर जब आप यमद्वार की ओर बढ़ते हैं पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए, तो बीच में ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक बेहद पवित्र स्थल आता है जिसे वो एक विजय स्तंभ के रूप में देखते हैं। ये जो विजय स्तंभ ठीक मेरे पीछे है, इसे अगर आप देखें तो ये पांचवें दलाई लामा ने उन वीरों की स्मृति में बनवाया था जिन वीरों ने पूरे तिब्बत को एक छत्र में जोड़ने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और हर साल अप्रैल के महीने में यहां जितने भी ध्वज हैं उन्हें बदला जाता है। यहां बाकायदा पूजा अर्चना की जाती है और ये पूजा अर्चना इस समय भी यहां पर चल रही है। ऊपर एक उनकी स्मृति, उनका स्मृति चिन्ह भी है। तो कैलाश पर्वत न केवल हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है और हम यमद्वार जाने वाले हैं उसके मार्ग पर ये बौद्धों का एक बेहद पवित्र स्थान, उनका विजय स्तंभ आता है।
0: कैलाश पर्वत यात्रा मार्ग पर अब हम यमद्वार के नजदीक थे। मान्यता है कि यमद्वार में प्रवेश करते ही आप जीते जी संसार को पीछे छोड़ शिवलोक में प्रवेश कर जाते हैं।
1: इस समय हम लोग यमद्वार पर हैं और कैलाश यात्रा के लिए, पवित्र कैलाश यात्रा के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। कहते ये है कि यहाँ से आप सांकेतिक रूप में भूलोक से सांसारिक जीवन को पीछे छोड़ते हुए अब इस द्वार को पार करके शिवलोक में प्रवेश कर रहे हैं। यानी आपके जीवन में जो भी आपने किया हो सांसारिक सुख दुख भुलाकर अब शिव भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर उपासना करते हुए फिर आप आगे बढ़ते हैं। तीन बार इसकी परिक्रमा करते हैं और उसके बाद अब ये पूरा परिक्रमा का मार्ग शुरू हो जाता है। लगभग 3 दिन लगते हैं, 50 किलोमीटर से लंबी ये परिक्रमा रहती है। तो 3 बार इस यमद्वार के की आप परिक्रमा करते हुए फिर शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं।
0: यमद्वार के पीछे कैलाश पर्वत जगमगा रहा था अपनी पूरी भव्यता के साथ। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। माना जाता है कि जो भी कैलाश आकर शिव के जागृत रूप के दर्शन करता है वो जीवन और मरण के बंधनों से पार पा जाता है। गुड न्यूज टुडे आपको आज उसी कैलाश मानसरोवर की पावन यात्रा पर लेकर आया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सके, और जो दर्शन कर पाता है वो खुद को धन्य समझता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान ऐसे कई भक्तों से हमारी मुलाकात हुई। हमारे साथ ही प्रसिद्ध ओडिशी नृत्यांगना रेखा जैना भी महादेव के धाम के दर्शन करने पहुंची थी।
4: और जब महादेव को देखा तो आंख में ऐसे आंसू गिरते चले गए, बस लगा कि बस अब कुछ नहीं।

0: ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से एक अलग अध्याय है जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन मिलता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत पर सदा शिव विराजते हैं। इसके ऊपर स्वर्गलोक और नीचे मृत्युलोक है।
1: भोलेनाथ बांट दियो तीनों पल भर में, ऐसे दिन दयाल मेरे सबू भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिए वेद कतकारी, विष्णु को दिए चक सुदर्शन लक्ष्मी सीनारी, इंद्र को दिए काम देनु एरावत को बलसारी, कुबेर को दिए संपत्ति कतकारी, अपने पास रखे ना बघम्बर, ऐसे दिन दयाल मेरे सबू भरो खजाना पल भर में। अमृत को देवता को दे दी हल हल पान किए, ब्रह्मा को ज्ञान दी सूत्र ध्यान के, भागीरथ को दे दी गंगा लोगों को स्नान किए, बड़े बड़े पापियों को तारा पल भर में कल्याण किए।
0: तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को एक्सिस मंडी और ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में एक विशेष स्थान प्राप्त है। बौद्ध धर्म में भी इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये वो बिंदु है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो इसे अपार शक्ति और महत्व का स्थान बनाती है। लेकिन सनातन धर्म में कैलाश पर्वत महादेव के पावन निवास स्थान के रूप में सदा से पूजा जाता रहा है। आज गुड न्यूज टुडे के साथ आप महादेव के उसी पावन धाम के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: क्या घर में सूर्य का प्रकाश घर को शुभ या अशुभ बना सकता है? क्या घर की दिशा की वजह से घर शुभ या अशुभ हो सकता है? घर में रहने वाले लोग घर में शुभता अशुभता कैसे ले आते हैं? क्या आपका घर शुभ है या अशुभ है? क्या है इसके लक्षण? जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्र गिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। राम भक्तों के लिए आई गुड न्यूज, 30 जुलाई तक श्री राम मंदिर परिसर में सभी निर्माण कार्य हो जाएंगे, पूरे राम कथा संग्रहालय की 20 गैलरी की स्टोरी लाइन भी तैयार। न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, पारंपरिक माउरी तरीके से किया गया पीएम मोदी का स्वागत, न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और परंपराओं की झलक दिखी। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज साउथैम्प्टन में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मैच। बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को अपने नाम किया, शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी उस पूरी इमारत को खरीदा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़। और
8: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे हुए बिना परखे हुए इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ती जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। और नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी के साथ। आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। आपको बता दें, फैक्ट चेक में आज सबसे बड़े पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उन वायरल वीडियोस की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये वेनेजुएला में हाल ही में आए भूकंप से जुड़े हैं। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये पेन बम की तरह है जिनका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। ये कहीं भी मिल सकता है, रास्ते पर, पब्लिक प्लेस पर, भीड़ भाड़ वाली जगह पर, और इसीलिए इसे सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, ये भी आपको आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: सोशल मीडिया पर वेनेजुएला में आए भूकंप से जोड़कर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस के जरिए वेनेजुएला में आए भूकंप की तीव्रता दिखाने की डरावनी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि वेनेजुएला में आए भूकंप के चलते भारी तबाही मची थी, कई लोगों के घर बर्बाद हो गए थे और वो सड़कों पर आ गए थे। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए।

वेनेजुएला में 24 जून को दो शक्तिशाली भूकंपों की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। एक मिनट के अंतराल पर आए 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले भूकंपों से काफी मात्रा में जानमाल का नुकसान हुआ है। पूरी दुनिया से वेनेजुएला के लिए मदद के हाथ बढ़े हैं और सहायता का ये सिलसिला अभी भी जारी है। वेनेजुएला में हुई तबाही के कई वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन भूकंप के चौंकाने वाले कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को सीसीटीवी का बताया जा रहा है, जिसमें एक दुकान में कुछ महिलाएं मौजूद हैं। तभी अचानक भूकंप की वजह से कंपन होने लगती है, दीवार की पेंट गिरने लगती है, दुकान में रखा सामान भी हिलकर गिरने लगता है और दुकान में मौजूद कर्मचारी टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाती देखी जा रही है, लेकिन पूरी दुकान धुआं धुआं हो जाती है।

अब दूसरी वीडियो की बात। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला को जबरदस्त भूकंप के दौरान प्लास्टिक की कुर्सी पर बेबस बैठे हुए दिखाया गया है, जबकि उसके परिवार के सदस्य अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। आखिर में वो महिला कुर्सी से गिर जाती है, तब झटके रुकते हैं तो परिवार के सदस्य उसका हाल जानने के लिए वापस आते हैं।

0: अब तीसरे वायरल वीडियो की बात, जो सोशल मीडिया पर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भूकंप आने से पहले ये बिल्डिंग सही सलामत खड़ी है, लेकिन भूकंप आते ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो जाती है। ये वीडियो भी वेनेजुएला में आए भूकंप के वीडियो के तौर पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इन वीडियोस को वेनेजुएला का बताकर धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर तीन वीडियोस खूब तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में एक दुकान के अंदर कुछ महिलाएं हैं और जब भूकंप आता है तो सामान गिरने लगता है, दीवार पर टंगी हुई कलाकृतियां गिरने लगती हैं, दुकान में काम कर रही महिलाएं जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिप जाती हैं। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि ये हाल ही में वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के दौरान का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ क्या है, ये जानना बेहद जरूरी था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की है। ये बात सच है कि 24 जून 2026 को 7.2 और 7.5 की तीव्रता के भूकंप आए थे और पूरा वेनेजुएला हिल गया था। राजधानी काराकास और उसके आसपास की सैकड़ों इमारतें ढहकर कंक्रीट और स्टील के मलबे में बदल गई थी। कई लोग ढही हुई इमारतों के नीचे दब भी गए थे। लेकिन इसी भूकंप से जुड़ा दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कुछ लोग डाइनिंग टेबल के पास बैठे हैं, तभी भूकंप आ जाता है, सभी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन दादी माँ नहीं भाग पाती और वो कुर्सी समेत गिर जाती हैं। फैक्ट चेक की टीम ने इस वायरल वीडियो की भी पड़ताल की है और ये जानना जरूरी था कि वीडियो उसी भूकंप के दौरान का है या नहीं। एक तीसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक बिल्डिंग धराशायी होती दिखाई देती है। ये तस्वीर देखिए जिसमें इमारतें एक ब्लॉक की तरह गिर रही है, ना कि बिखर रही हैं या टूट रही हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली है जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा है। पहला सवाल, अगर ये तीनों वीडियो सच्चे हैं तो इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी क्यों नहीं मिली? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है? जब हमने इन सवालों के जवाब ढूंढे हैं तो क्या खुलासा हुआ? रिपोर्ट देखिए।

0: हमने अपनी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने वीडियो को जांच के दायरे में लिया, जिसे सीसीटीवी फुटेज के दावे के साथ शेयर कर वेनेजुएला का बताया जा रहा था। इस वीडियो में महिला कर्मचारी टेबल के नीचे छिपकर जान बचाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो को की फ्रेम में तोड़ा और रिवर्स सर्च शुरू किया, तो हमें ये वीडियो तुर्की के न्यूज आउटलेट पर मिला, जिसे 15 मई 2025 को शेयर किया गया था। इस पोस्ट के मुताबिक वायरल वीडियो म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के दौरान मची अफरा तफरी दिखाई गई है। पोस्ट के मुताबिक ये सीसीटीवी फुटेज म्यांमार के एक सुपरमार्केट का था, जहां भूकंप आने पर पूरा मार्केट धुआं धुआं हो जाता है और महिला कर्मचारी टेबल के नीचे छिपकर खुद को बचाने की कोशिश करती दिखाई देती है। अब बात दूसरे वीडियो की। इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला को जबरदस्त भूकंप के दौरान प्लास्टिक की कुर्सी पर बेबस बैठे हुए दिखाया गया है, जबकि उसके परिवार के सदस्य अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। आखिर में वो महिला कुर्सी से गिर जाती है। इस वीडियो की जांच में ये पता चला कि ये वीडियो असल में 8 जून 2026 को फिलीपींस में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के दौरान शूट किया गया था। चीन के न्यूज पोस्ट के अनुसार इसे जॉर्डन अब्रासाइडो ने शेयर किया था, जिन्होंने अपनी दादी से उस परेशानी के लिए माफी मांगी थी जो उन्हें झेलनी पड़ी थी। अब तीसरे वायरल वीडियो की बात। इस वीडियो में भूकंप आने से पहले ये बिल्डिंग सही सलामत खड़ी थी, लेकिन भूकंप आते ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो जाती है। इस वीडियो को भी वेनेजुएला भूकंप से जोड़ा जा रहा है। इसकी पड़ताल करने पर पता चला कि ये वीडियो फरवरी 2023 में तुर्की में आए भूकंप से जुड़ा है, जिसमें भारी मात्रा में तबाही हुई थी। 6 फरवरी 2023 की न्यूयॉर्क के न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार ये फुटेज तुर्की के शहर साइन लुर्फा में रिकॉर्ड किया गया था, जब जबरदस्त झटकों के कारण 7 मंजिला इमारत सेकेंडों में धराशायी हो गयी थी। इस तरह से ये साफ है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों से आए पुराने भूकंपों के वीडियो को गलत तरीके से वेनेजुएला के भूकंप का वीडियो बताकर शेयर किया जा रहा है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर पेन बम को लेकर चर्चा तेज है। खबर को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की पुलिस ने पेन बम को लेकर लोगों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है, ताकि कोई भी नागरिक हताहत ना हो। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
0: सोशल मीडिया पर 5 पेन की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। कुछ यूजर्स इस तस्वीर को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये तस्वीर पेन जैसे दिखने वाले बम की है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है और सलाह दी है कि ऐसी किसी वस्तु को लोग छुए नहीं और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर को 5 जून 2026 को पोस्ट किया गया है और लिखा गया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर पुलिस और कई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पेन जैसे दिखने वाले संदिग्ध विस्फोटक को लेकर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। दावा है कि पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि रास्ते या सुनसान जगहों पर पेन जैसी दिखने वाली वस्तु में छोटे विस्फोटक या बटन दबाने पर फटने वाले मैकेनिज्म होने की आशंका है, इसलिए लोगों से अपील की गई है कि ऐसी किसी वस्तु को छुए नहीं और दिखने पे तुरंत पुलिस को सूचित करें। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये पेन कोई असली नहीं बल्कि ये पेन बम है। जिससे सावधान रहने की जरूरत है। इस वीडियो के साथ बुलंदशहर पुलिस की एडवाइजरी भी लोग अटैच कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की है। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो को गौर से देखा है और इसे देखने के बाद हमें शक हुआ। ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा है। पहला सवाल, वायरल दावे को लेकर कई ठोस और आधिकारिक जानकारी क्यों सामने नहीं आई है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? जब हमने इन सवालों के जवाबों को ढूंढा है तो क्या खुलासा हुआ है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट में देखिए।
0: वायरल दावे की जांच के लिए हमने सबसे पहले बुलंदशहर पुलिस का सोशल मीडिया अकाउंट स्कैन किया। यहां पर 15 जून 2026 को एक पोस्ट किया गया था जिसमें इस दावे को अफवाह बताया गया था। सोशल मीडिया पर डीएम और एसएसपी बुलंदशहर के नाम से पेन जैसी दिखने वाली किसी भी संदिग्ध वस्तु के संबंध में एडवाइजरी जारी होने का भ्रामक संदेश प्रसारित किया जा रहा है। डीएम और एसएसपी ने सोशल मीडिया पर ऐसी कोई एडवाइजरी या चेतावनी जारी नहीं की है। सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद पेन की वायरल तस्वीर को गूगल लेंस की मदद से सर्च किया गया। ई कॉमर्स वेबसाइट इट्सी पर इस तस्वीर को देखा जा सकता है। इसमें इसकी कीमत भी दी गई है। साइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये मिलिट्री नोवेल्टी टैंक या ग्रेनेट इंक पेन है। इसमें लिखा है कि ये पेन 24 कैरेट गोल्ड, एंटीक ब्रास, गनेप्ट्यूर और हरे रंग की मेटल फिनिश में उपलब्ध है। इसमें पार्कर स्टाइल की इंक रिफिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये पेन भारत में उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। इसमें कहीं भी इनके विस्फोटक होने का जिक्र नहीं किया गया है। एक जाने माने न्यूज वेबसाइट पर भी इस पेन के बारे में खबर छापी गई है। उसके मुताबिक बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस ने आम जनता के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। इनमें नागरिकों से पेन जैसी दिखने वाली किसी भी संदिग्ध वस्तु से दूर रहने की अपील की गई थी क्योंकि ये विस्फोटक हो सकता है। हालांकि अब बुलंदशहर पुलिस ने इसका खंडन किया है। बुलंदशहर एसएसपी दिनेश सिंह ने बताया कि बुलंदशहर पुलिस की तरफ से ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। खुर्जा कोतवाली पुलिस के व्हाट्सएप नंबर से पेन जैसी दिखने वाली वस्तुओं का एक फोटो जारी किया गया था। हालांकि अब पुलिस का कहना है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी। बुलंदशहर पुलिस ने भी इसका खंडन किया और कहा कि इस तरह की बुलंदशहर डीएम और एसएसपी की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल पेन बम की फोटो का दावा गलत है। बुलंदशहर पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इसे गलत बताया है। दूसरी बात ये कि इस तरह की पेन भारत में उपलब्ध भी नहीं है और इसे ऑनलाइन साइट की मदद से मंगाया भी नहीं जा सकता। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और यहाँ फैक्ट चेक में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। गुड न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला जारी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop. Effortlessly.
4: पक रही होती खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे,
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
2: बुढ़ापा सचमुच सिर्फ कमजोर पड़ते शरीर का नाम है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस सवाल का जवाब पूरी ताकत के साथ देता नजर आता है। आमतौर पर 70 साल की उम्र सुनते ही लोगों के मन में आराम, दवाइयों और बढ़ती उम्र की तस्वीर उभरती है, लेकिन इस दादी ने उन सभी धारणाओं को चुनौती दे दी। वीडियो में दादी ने जिस तरह से भारी वजन उठाया है उसे देखकर जिम में पसीना बहाने वाले युवा भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दादी ने पूरी तैयारी के साथ डेडलिफ्ट करने की पोजीशन ली। उनके चेहरे पर ना तो कोई डर या झिझक दिख रहा था, बड़ी आसानी से उन्होंने 103 किलो का वजन उठाया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। उनके चेहरे पर किसी तरह की थकान नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास नजर आ रहा था। कई सरप्राइज ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान जिंदगी भर नहीं भूल पाता। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही कहानी लोगों का दिल जीत रही है। एक केयर होस्टेस ने अपने माता पिता को ऐसा सरप्राइज दिया कि पहले तो वे हैरान रह गए और फिर उनकी आंखों में खुशी और गर्व साफ दिखाई देने लगा। दरअसल सुष्मिता नाथ नाम की एक केयर होस्टेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे ऑन ड्यूटी अपने माता पिता का वेलकम करते दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो इसलिए भी वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें एयर होस्टेस के माता पिता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें यहाँ अपनी बेटी मिल जाए। इसलिए इस वीडियो में माता पिता का रिएक्शन देखने लायक है। सुष्मिता ने अपने माता पिता से कहा था कि उस दिन उनकी ड्यूटी किसी दूसरी फ्लाइट में है, इसलिए उनके मम्मी पापा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस विमान से वे सफर करने वाले हैं उसी फ्लाइट में उनकी बेटी यात्रियों का स्वागत करेगी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: सास बहू और बेटियां में आज देखिए बदलते रिश्तों की कहानियां। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
11: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक। ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र। समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्रगिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई। देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, बारिश के मौसम में कोहरे और धुंध से घिरा, दर्शन के लिए आस्था और उत्साह के साथ श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, पारंपरिक माओरी तरीके से किया गया पीएम मोदी का स्वागत, न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और परंपराओं की दिखी झलक। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज साउथैम्पटन में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मैच।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जिस घर में आप रहते हैं अगर वो घर शुभ हो, उस घर की तरंगे अच्छी हों, तो उस घर में रहने पर आप उन्नति करते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका घर कितना शुभ है, कितना मंगलकारी है, और आपको लग्न के अनुसार बताएंगे कि आपके घर में कहाँ कहाँ पर गड़बड़ियाँ हो सकती हैं और उनको बेहतर करने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। जीवन में अगर प्रेम बढ़ाना हो, जीवन में किसी टूटते रिश्ते को बचाना हो, किसी संबंध को बेहतर करना हो, तो ये मंत्र बहुत कारगर होता है। नित्य प्रातः 108 बार इस मंत्र का जप तुलसी या चंदन की माला से करिए। जिस रिश्ते को, जिस संबंध को बचाना है, जहां पर मधुरता लानी है, वहां पर इस मंत्र का जप करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, रिश्ता क्यों ना टूट रहा हो, अगर इस मंत्र का निरंतर आप रोज प्रातः काल जप करें तो रिश्ते में माधुर्य बढ़ेगा और रिश्ता टूटने से बच जाएगा। देखिए, ज्यादातर हम लोग कहते हैं कि ग्रह शुभ है, ग्रह अशुभ है, या ये कहते हैं कि आपके कर्म शुभ हैं या कर्म अशुभ हैं। क्या घर भी शुभ या अशुभ होते हैं? और अगर घर शुभ या अशुभ होते हैं तो इनका प्रभाव क्या है? देखिए, दुनिया की हर चीज के अंदर तरंगे पाई जाती हैं, ज्यादा या कम मात्रा में हर चीज के अंदर तरंगे होती हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि आपके कपड़ों में, आपकी वस्तुओं में भी तरंगे होती हैं। ये तरंगे शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। ये तरंगे शुभ भी होती हैं और अशुभ भी होती हैं। जब कहीं पर नकारात्मक तरंगे ज्यादा हो जाएं, जब अशुभता ज्यादा हो जाती है, तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। ऐसे अशुभ मकानों में, ऐसे अशुभ जगहों पर रहने पर कुंडली के शुभ योग काम करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा समय ठीक चल रहा है, मेरी दशा ठीक चल रही है, लेकिन जीवन में कुछ शुभ नहीं हो रहा है। उसका कारण ये होता है कि जिस मकान में, जिस घर में वो रहते हैं, वो अशुभ होता है, वहां की तरंगे अशुभ होती हैं और वो जीवन में शुभता नहीं लाने देती।
ये जो अशुभता है कि आपका घर शुभ है या अशुभ है, इस बात को कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें अपने घर में, अपने रिहाइश में, तो अपने घर की, अपने ऑफिस की, अपने जमीन की अशुभता को, नकारात्मक तरंगों को महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में अशुभता है, अगर आपके घर में अशुभ तरंगें इकट्ठा हो गई हैं, तो वो मकान, वो जमीन अशुभ हो जाती है और वहां रहने पर कुंडली के शुभ योग भी बहुत काम नहीं कर पाते हैं। अब ये जानते हैं कि जो दिशाएं हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनसे मकान कैसे शुभ या अशुभ हो जाता है। देखिए, आम तौर पर जैसा लोगों का मानना है कि पूरब और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि पूर्व दिशा के मकान और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान शुभ नहीं होते। देखिए, ऐसा है नहीं। हर दिशा अपने आप में पवित्र है और हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि किस दिशा के मकान में क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अगर आपका मकान पूर्व दिशा का है, पूरब मुखी अगर आपका मकान है, तो पूरी तरह से सात्विक रहिएगा। पूर्व दिशा का मकान अत्यंत पवित्र मकान है, ऐसे मकानों में सामान्यतः मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ऐसे मकान में पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए। अगर मकान पश्चिम दिशा का है, वेस्ट साइड का है, तो मकान में, घर में लकड़ी का प्रयोग कम करें, अन्यथा लकड़ी खराब होगी, दीमक लगेगी और घर में नुकसान होगा। तो अगर पश्चिम दिशा का मकान है, तो घर में लकड़ी का प्रयोग कम करना चाहिए। अगर उत्तर दिशा का मकान है, तो आग और बिजली के उपकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में जहां पर खाना पकाते हैं, फायरप्लेस है, आग वाली चीजें हैं, वहां पर ध्यान रखिए और बिजली के उपकरणों पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर उत्तर दिशा का मकान है तो दक्षिण दिशा का अगर मकान है तो वहां पर सीलन आने की संभावना सबसे ज्यादा है और दक्षिण दिशा के मकानों में गंदगी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि

उन्नति नहीं होगी। एक बात और समझिए कि घर के जो मुखिया हैं उनकी कुंडली के हिसाब से मकान होना चाहिए। जैसे अगर घर की मुखिया के कुंडली में मंगल अच्छा है तो दक्षिण दिशा का मकान आप ले सकते हैं। घर के मुखिया की कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो पश्चिम दिशा का मकान लिया जा सकता है। यानी घर का डायरेक्शन क्या होगा ये घर के मुखिया की कुंडली से देखेंगे तो लाभ ज्यादा होगा और घर का फायदा आप ज्यादा उठा पाएंगे। तो एक चीज हो गई घर की दिशा, वो घर में शुभता और अशुभता पैदा कर सकती है। अब जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है और सूर्य के प्रकाश की कमी से किस तरह की अशुभता जीवन में पैदा होती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश आता है उन घरों में बीमारी और अशुभता बहुत दिन तक टिक नहीं पाती है। लेकिन जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता वहां पर अकारण बिना वजह के बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता ऐसे घरों में बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उन घरों में बीमारियां जरूर आती हैं और छोटे से लेकर बड़े लोग बीमार रहते हैं। सूर्य का प्रकाश अगर घर में नहीं आएगा तो ऐसे घर में रहने पर व्यक्ति नशे का और अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, इसकी संभावना बनती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उन घरों में निगेटिव एनर्जी अगर इकट्ठा होती है तो वो निकल नहीं पाती, निगेटिव एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए भय का और नकारात्मकता का अनुभव होता है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आया और आपने घर में दुनिया भर के उपाय कर रखे हैं, कोई उपाय काम नहीं करेगा। घर में सूर्य का थोड़ा बहुत प्रकाश आना जरूरी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में आएगा तो घर में नकारात्मकता इकट्ठा नहीं होगी। अब अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो कौन सा उपाय करना चाहिए? घर में शीशा लगाकर शीशे की सहायता से सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए या घर में ऐसा सुधार करिए जिससे थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश आने लगे। रोज सवेरे घर में 3 बार शंख जरूर बजाइए ताकि नकारात्मक तरंगें हट जाएं। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण करिएगा। बोल बोल कर रोज सवेरे
108 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और घर में लोहे का सामान कम से कम रखिएगा। अगर इतना करने के बावजूद भी घर की अशुभता नष्ट नहीं हो रही है, घर की अशुभता में कमी नहीं आ रही है, तो घर बदल दीजिएगा। बेहतर होगा एक शीशा ऐसा लगाएं जिससे रिफ्लेक्ट होकर घर में सूर्य का प्रकाश आए, या दीवार में खिड़की बनवाएं, रोशनदान बनवाएं। ऐसा करने से भी घर में सूर्य का प्रकाश आएगा, और जब किसी घर में सूर्य का प्रकाश आता है वहां अशुभता बहुत समय तक नहीं रह पाती है। तो घर की दिशा हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया। अब जो आप अपने घर में कलर का प्रयोग करते हैं, जिन रंगों का प्रयोग करते हैं, उन रंगों से किस तरह से अशुभता पैदा होती है, देखिए। घर में अगर आपने गलत जगह पर गलत रंग का प्रयोग किया है तो इससे आपकी किस्मत खराब हो सकती है, क्योंकि रंग जो हैं वो तरंग तो पैदा करते ही हैं। ये आपके सोच को, दिलो दिमाग को प्रभावित करते हैं। तो घर में गलत रंगों के प्रयोग से आपकी किस्मत खराब हो सकती है। अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो, घर में आपने बैलेंस करके अगर रंग नहीं लगाए हो, तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। घर में रहने वाला इंसान निगेटिव सोचता है, उसकी सोच में दिक्कतें आ जाती हैं। गाढ़े रंगों का अगर आप अपने घर में प्रयोग करें, बहुत ज्यादा लाल रंग का प्रयोग करें, या बहुत ज्यादा भूरे रंग का, काले रंग का प्रयोग करें, तो ऐसे घर में रहने पर जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। भूरा रंग, लाल रंग, गाढ़ा हरा रंग नौकरी में समस्याएं बढ़ा देता है। और अगर आपने अपने घर में ब्राउन कलर का, भूरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो इसकी वजह से आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। यानी आपके घर में कौन सा स्थान किस रंग का होना चाहिए, ये समझना आपके लिए जरूरी है। और अगर आप सही रंगों का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। क्या उपाय करें, घर के रंगों को कैसे बेहतर करें? घर में हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करें। लाइट और ब्राइट शेड के रंगों का प्रयोग करने से लाभ होगा। घर की छत का रंग हमेशा आपको सफेद रखना चाहिए। घर की छत का रंग अगर सफेद रखेंगे तो अच्छा होगा। घर में ज्यादातर सफेद रंग का और हल्के पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने घर में गलत रंग लगाए हुए हैं तो उसको बदलिए। पहले वहां सफेद रंग लगाइए और इसके बाद जो रंग चेंज करना है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं।
मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर सफेद या क्रीम रंग का प्रयोग करें, मेन डोर पर काले रंग का दरवाजा, काले रंग का गेट ना लगाएं, व्हाइट या क्रीम कलर का प्रयोग करें। मुख्य गेट को आप हल्का ब्राउन रख सकते हैं, लेकिन मेन डोर का रंग भूल कर भी काला नहीं होना चाहिए। अब ये जानते हैं कि जो लोग घर में रहते हैं या घर में जो घटनाएं घटती हैं उससे किस तरह की अशुभता पैदा होती है। देखिए, अगर घर में बुरे स्वभाव के लोग हों, बुरी आदत वाले लोग हों, तो घर में अशुभता पैदा होगी। घर में चीख चिल्लाहट मचती हो, क्रोध में झगड़े होते हों, घर में मदिरा पान किया जाता हो, यानी बुरी आदतें हों, तो ऐसे घर में अशुभता आएगी। अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन का प्रयोग होता हो तो घर में अशुभता आएगी। घर में गलत तरीके से पैसा आएगा तो वो पैसा बीमारियां और कष्ट अपने साथ ले आएगा और इसमें आपको मुश्किल उठानी पड़ेगी। अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हो गई हो, किसी ने सुसाइड किया हो या सडन डेथ हो गई हो, तो घर में इसकी वजह से भी अशुभता पैदा होती है अगर इसका उपाय ना किया जाए। और अगर घर के लोगों की वजह से, लोगों के स्वभाव की वजह से अगर घर में अशुभता पैदा होती है, तो ऐसी दशा में घर में धीरे धीरे दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है। घर के लोगों का रोजगार खराब होने लगता है और घर में बच्चे बीमार रहने लगते हैं, उनके अंदर अजीब आदतें आ जाती हैं और घर इतना ज्यादा अशुभ हो जाता है कि घर में अकेले रहने पर डर लगता है या घर में कोई है ऐसा एहसास होता है, ऐसा अनुभव होता है। तो मुख्यतः घर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आदतों से, उनके खान पान से, उनके स्वभाव से घर में अशुभता पैदा हो सकती है। इसलिए घर में रहने वाले लोगों को अपने आचरण का, अपने जीवन का बहुत ध्यान देना चाहिए। क्या उपाय किया जाए? गलत और बुरे कामों से तौबा करिए। गलत काम, अशुभ काम, बुरे काम मत करिए। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र नहीं करना चाहिए और आपस में एक दूसरे को काटने का या एक दूसरे के खिलाफ राजनीति का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, जहां तक हो सके गलत तरीके से पैसा मत कमाइए। ऐसा पैसा जैसे आएगा वैसे जाएगा। अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, किसी ने सुसाइड किया है या लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई है, तो पूरे घर की सफेदी करवाइए और एक महीने तक दोनों समय घर में
भगवत गीता का पाठ करवाइएगा।

बात कर रहा हूं मैं राशि की नहीं, अलग अलग लग्न के लोगों की कुंडली में संपत्ति की स्थिति अलग अलग होती है और उसी के हिसाब से उनके घर की समस्याएं होती हैं। तो अब आपको बताते हैं कि किस लग्न के व्यक्ति के जीवन में घर में किस तरह की समस्या होती है और इसको बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। इनके घर में आम तौर पर सफाई की और पौधों की समस्या होती है। इनके घर में साफ सफाई बेहतर नहीं होती, बहुत सारे पौधे लगा लेते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, उस चक्कर में घर में गड़बड़ियां होती हैं। इसीलिए मेष लग्न वाले अपने घर में सोच समझकर पौधे लगाएं, उल्टे सीधे गलत पौधे ना लगाएं और घर को अगर साफ सुथरा बनाए रखें तो आपके घर की शुभता बढ़ेगी और उस घर में रहने पर आपको लाभ होगा। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के घर में आम तौर पर सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था होती है, गड़बड़ी होती है उसमें, क्योंकि ये अपना घर बहुत अच्छा तो बना लेते हैं, सजा लेते हैं, रंग पे ध्यान दे लेते हैं, वास्तु पे ध्यान दे लेते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की समस्या इनके घर में आम तौर पर रहती है। सूर्य के प्रकाश की दिक्कत इनके घर में पाई जाती है, इसीलिए आप देखेंगे कि वृषभ लग्न वालों के घर में ज्यादातर लोग बीमार रहते हैं, क्योंकि घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता। ऐसी स्थिति में अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है तो घर में पर्याप्त रोशनी की और सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए, चाहे खिड़की तोड़कर, चाहे रोशनदान तोड़कर, चाहे शीशा लगाकर अपने घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें। अगर आप सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, आपके घर की शुभता बढ़ेगी। मिथुन लग्न। इनके घर में बेवजह का सामान भरा रहता है, अनावश्यक कूड़ा कबाड़ क्लटर ये भर करके अपने घर में रखे रहते हैं। जरूरत नहीं है फिर भी जूता नहीं हटाएंगे पुराना, जरूरत नहीं है फिर भी पुराने कपड़े नहीं हटाएंगे, तो इनके घर में अनावश्यक सामान भरा रहता है। देखिए, अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो घर में व्यर्थ के सामान मत भरिए, वायु का वेंटिलेशन, एयर का वेंटिलेशन ठीक रखिए, घर में हवा पानी ठीक से आती रहे, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए, क्योंकि अगर आपका मिथुन लग्न है और आप अपने घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करेंगे, आपका ज्यादातर पैसा उधार बांटने में और बीमारी में खर्च होगा। कर्क लग्न। इनके घर में बाथरूम का मामला गड़बड़ होता है, बाथरूम में टाइल टूट जाएगी, बाथरूम में पानी टपकता रहेगा, ये लगातार घर की साफ सफाई करते रहते हैं लेकिन घर में गंदगी बनी रहती है,
तो कर्क लग्न वालों के बाथरूम

0: मामला आम तौर पर गड़बड़ होता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो घर में बाथरूम में पानी का ध्यान दें कि बेवजह पानी बर्बाद ना हो, और बाथरूम का फर्श टूट गया, टोटी खराब हो गई, उसको बदलवाइए और अपने घर में सफाई रखिए। बाकी लोगों से भी कहिए कि आपको सफाई रखने में वो सपोर्ट करें, मिल करके घर को साफ सुथरा रखें, बहुत अच्छा होगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों के घर में प्रकाश की व्यवस्था अक्सर गड़बड़ रहती है। किसी कोने में बल्ब फ्यूज हो गया, कहीं लाइट नहीं आ रही है, कहीं घर का कोई हिस्सा पूरी तरह से अंधेरा है, ऐसा भी सिंह लग्न वालों के साथ देखा गया है। देखिए, अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो बिजली का और प्रकाश का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो, बिजली बिल्कुल ठीक हो और बिजली की फिजूल खर्ची ना करें। कन्या लग्न वालों के घर का मेन डोर गड़बड़ होगा। 90% मामले में देखिएगा कि कन्या लग्न वालों का घर बड़ा शानदार होता है, बहुत बढ़िया बनाते हैं, लेकिन इनका मेन डोर गड़बड़ होता है। मुख्य द्वार या तो टूटा रहता है या मुख्य द्वार का रंग ये काला करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कन्या लग्न वालों के घर के मुख्य द्वार में गड़बड़ी पाई जाती है। जो कन्या लग्न के लोग हैं, इनको अपने घर के मुख्य द्वार का और वाहन की पार्किंग का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से और संपत्तियां बना पाएंगे, जीवन में और धनवान बन पाएंगे। अब जानते हैं तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न के जो लोग हैं, इनके घर में क्या दिक्कत होती है? इनके घर में बेवजह के झगड़े बहुत होते हैं। छोटी छोटी बात पर घर में कलेश होता है, विवाद होता है, और रसोई इनके घर में गड़बड़ होती है, रसोई की दिशा ठीक नहीं होती। इस वजह से तुला लग्न वालों के जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। अगर आपका तुला लग्न है तो घर में शांति बनाए रखिए और पूजा उपासना पर विशेष ध्यान दीजिए। पूजा उपासना पूरी करिए। रसोई में खाना बनाते समय बहुत ध्यान दीजिए, आपका चेहरा पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आपको लाभ होगा। घर में शांति रखिए, रसोई को साफ सुथरा रखिए, खाना बनाते समय पूरब या उत्तर की तरफ चेहरा रखिए, तो निश्चित रूप से आपके घर की अशुभता दूर हो जाएगी। वृश्चिक लग्न, इनके घर में अक्सर पानी की गड़बड़ी रहती है। पानी बेवजह का बहता है, बेवजह का पानी वेस्ट होता है, और घर में सीलन भी रहती है इनके, ऐसा देखा गया है। तो अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो घर में पानी की स्थिति पर और सीलन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में पानी की सिचुएशन ठीक रखें, पानी की बर्बादी ना करें और अपने घर में सीलन से घर को बचाइएगा। धनु लग्न, धनु लग्न वालों के घर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान अक्सर खराब होते हैं, अक्सर इनके घर में बिजली की समस्या होती है, अक्सर इनके घर में रसोई की समस्या भी पाई जाती है। अगर आपका धनु लग्न है तो घर की वायरिंग पर, बिजली के फिटिंग पर, बिजली के उपकरणों पर और रसोई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धनु लग्न वालों के घर में शॉर्ट सर्किट ज्यादा होता है। और धनु लग्न वाले ये भी जान लें कि आपके घर में बिजली के सामान जो खराब होते रहते हैं उसकी वजह से पैसे की बर्बादी बहुत होती है। तो घर की वायरिंग ठीक रखें और अपने घर की रसोई पर विशेष ध्यान देंगे। मकर लग्न, इनके घर में रंगों की समस्या रहती है, गाढ़ा रंग करवा लेंगे, किचन में गुलाबी करवा लेंगे, बेडरूम में पीला करवा लेंगे, उल्टे सीधे रंग उल्टी सीधी जगह पे लगवा लेते हैं। इसकी वजह से मुश्किल होती है, इनके घर में रंगों की समस्या रहती है और प्रकाश की कमी रहती है, घर में अक्सर अंधकार महसूस होता है। इनको अपने घर में सही रंगों पर ध्यान देना चाहिए। खिड़की दरवाजे ऐसे रखने चाहिए जिससे नेचुरल प्रकाश, सूर्य का प्रकाश घर में आता रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो घर की अशुभता दूर होगी और घर की स्थितियां बेहतर होंगी। कुंभ लग्न, इनके घर में सफाई की समस्या होती है, अक्सर घर में गंदगी इकट्ठा हो जाती है और घर की चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं, एक जगह पर नहीं रह पाती, घर में अव्यवस्था रहती है और सफाई की समस्या भी रहती है। इनको घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। आपका पैसा बीमारियों में, बेवजह बांटने में खर्च नहीं होगा। मीन लग्न, मीन लग्न वालों के घर में एक तो पानी बेवजह टपकता बहुत है, पानी बेवजह बर्बाद बहुत होता है और सूर्य का प्रकाश इनके घर में आम तौर पर नहीं आता, जिसकी वजह से घर में बीमारी भी होती है, पैसे की बर्बादी भी होती है। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें, खिड़की निकलवा के, रोशनदान लगवा के, शीशा लगवा के, जैसे भी संभव हो सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें और पानी की बर्बादी से बचिए। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं उन्हें गंभीर बीमारियां होती हैं और पानी की बर्बादी करने वाले के पास पैसा कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं बचेगा, पैसे की बचत को लेकर परेशान रहेंगे। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. you can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा, हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक। ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: यू शुडन्ट हैव टू चूज बिटवीन स्पीड, रिलायबिलिटी एंड वैल्यू। With Spectrum Fiber Powered Internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today. Today.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: जो बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।

न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, पारंपरिक माओरी तरीके से किया गया पीएम मोदी का स्वागत, न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और परंपराओं की दिखी झलक।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्र गिरी नौसेना में हुआ शामिल, विशाखापट्टनम में हुई कमीशनिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में INS महेंद्र गिरी को नौसेना में किया गया शामिल, रक्षा मंत्री ने नेवी को बधाई दी, कहा यह देश की सुरक्षा में मील का पत्थर। भारत के प्रोजेक्ट 17A की नीलगिरी कैटेगरी का छठा स्टेल्थ फ्रिगेट है INS महेंद्र गिरी, 75% स्वदेशी उपकरणों से लैस है। एंटी सबमरीन सिस्टम और एडवांस मिसाइलों से लैस जंगी जहाज है INS महेंद्र गिरी, भारतीय नौसेना की वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया डिजाइन, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया निर्माण। INS महेंद्र गिरी में है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, हाई स्पीड वाले जहाज को रेडार पर ट्रैक कर पाना होगा मुश्किल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, INS महेंद्र गिरी पर लगाई जा सकती है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स। जमीन से जमीन और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है ये फ्रिगेट, आधुनिक रडार और सेंसर सूट्स भी मौजूद हैं। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है जहाज का नाम, शक्ति मजबूती और अटल संकल्प का प्रतीक है। नौसेना को इस साल मिला छठा युद्धपोत INS महेंद्रगिरी, 40 और जंगी जहाजों के निर्माण का काम चल रहा है। अगले 2 महीनों में नेवी को मिल सकते हैं 4 और जंगी जहाज, जनवरी 2025 से अब तक मिल चुके हैं 18 युद्धपोत। रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आई गुड न्यूज, 30 जुलाई तक श्री राम मंदिर परिसर में सभी निर्माण कार्य हो जाएंगे पूरे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बयान आया सामने, मंदिर के निर्माण कार्य की कर ली गई है समीक्षा, अब सिर्फ 2 कार्य पूरे किए जाने बाकी। मंदिर परिसर में स्मारक के रूप में संरक्षित पुराने राम मंदिर में 24 घंटे जलने वाली ज्वाला की व्यवस्था होनी बाकी, बचे हुए निर्माण कार्य पूरे। श्रीराम मंदिर परिसर में दूसरे स्मारक का काम जुलाई के अंत तक हो जाएगा पूरा, 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का काम। मंदिर परिसर के बाहर ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य नवंबर दिसंबर तक हो सकता है पूरा, राम कथा संग्रहालय की 20 गैलरी की स्टोरी लाइन भी तैयार। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा से पहले भव्य तैयारियां, विशाल रंगोली बनाने में जुटे हैं कलाकार। रथ यात्रा से पहले विशेष वस्त्र तैयार करने में जुटे दर्जी और कारीगर, 17 कारीगर कर रहे हैं निर्माण। रथ को सजाने के लिए 1,250 मीटर कपड़े का इस्तेमाल, जगन्नाथ जी और बलदेव जी के रथों के लिए 425 मीटर और सुभद्रा जी के लिए 400 मीटर कपड़े का होता है इस्तेमाल। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, इस बार 16 जुलाई को निकलेंगे रथ। पुरी में 5 किलोमीटर का दायरा नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया, 16 जुलाई से 27 जुलाई तक बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। अमरनाथ यात्रा का आज 9वां दिन, देश विदेश से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, अब तक 1,70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षित माहौल में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, बारिश के मौसम में आस्था और उत्साह बरकरार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बालटाल में अमरनाथ यात्रा बेस कैंप पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बेस कैंप में रुके श्रद्धालुओं से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बातचीत की, इंतजामों के बारे में जानकारी ली। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधा के भी पुख्ता इंतजाम, 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, जगह जगह मुफ्त मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन, तड़के भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार ने की बाबा महाकाल की पूजा, प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना। पुरी में जगत ज्योति सोलर प्रोजेक्ट का शुभारंभ, लोगों को होगा फायदा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन का आयोजन, सुनी लोगों की समस्याएं। जम्मू कश्मीर में रामबन में चंदरकोट से सीआरपीएफ ने लगाया 61 फीट का हाई मास्ट राष्ट्रीय ध्वज, चेनाब नदी के किनारे लहराया तिरंगा। ऑकलैंड में गाला लंच में शामिल हुए पीएम मोदी, न्यूजीलैंड के पीएम ने किया भव्य आयोजन। ऑकलैंड में गाला लंच के दौरान शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, भारतीय और न्यूजीलैंड के कलाकार हुए शामिल। न्यूजीलैंड में अपने संबोधन में बोले पीएम, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज, हम फिनटेक में लीडर हैं। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ समझौतों का किया स्वागत, कहा हिंद प्रशांत में समुद्री सहयोग के लिए फ्रेमवर्क पर बनी सहमति। ऑकलैंड की वायडक्ट बिजनेस सेंटर में कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, बिजनेस लीडर्स को किया संबोधित। न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी की वहां के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक, अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए अहम समझौते, मुक्त व्यापार समझौता हुआ फाइनल। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, गवर्नमेंट हाउस में लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। पारंपरिक माओरी तरीके से किया गया पीएम मोदी का स्वागत, न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और परंपराओं की झलक दिखी। न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट हाउस में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, गर्मजोशी के साथ किया गया स्वागत।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match, from today's hits
3: Somebody save me
2: to timeless favorites
3: life is like a song.
2: And new discoveries.
3: So much more than a history. Wake up.
2: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी, आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
2: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
1: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
3: Williams keeps it. First down. Touchdown.
1: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
4: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्र गिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी।

0: वीकेंड प्लान, क्योंकि हमारा वीकेंड प्लान तो सिर्फ एक ही है कि लेकर आए आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। आज तो है हमारे पास आपकी फेवरेट सीरियल्स की कहानियों का अपडेट, उसके साथ साथ वेब और फिल्मों की हलचल, रियलिटी शोज की झलक एंड हाँ, आपके फेवरेट सितारों से खास मुलाकात। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सफर हेडलाइंस के साथ।
1: तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी।
2: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां के वीकेंड स्पेशल एपिसोड में आज देखिए, होगी जगधात्री और शिवाय की सुहाग रात, छूटेगा दोनों का साथ।
3: हाँ, 6 महीने तुम्हारे पास इस पेशेंट को खत्म करने के, उसके बाद ये शादी भी खत्म।
2: मान्यता और अभिमन्यु के शादी के रिहर्सल में मंगलसूत्र जोड़ेगा मन्नत और विक्रांत का रिश्ता।

केसर के आने की खुशी में वसुधा की दादी सास करेंगी लठमार डांस। गुरु को लगेगी हथकड़ी, मचाएगा पुलिस संग बवाल। लापता हुई रूही की बेटी रुचिता, तलाश में घायल होगी रूही। और साथ ही करेंगे मुलाकात इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 के कोरियोग्राफर्स और कंटेस्टेंट से, जो मुंबई के मॉनसून में करेंगे जमकर डांस मस्ती और लेंगे स्वाद का मजा सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुरु और रूहानी, हम तो सेट कर रहे हैं यहाँ पर पार्टी का मूड। जी हाँ, आपके वीकेंड को बना रहे हैं और भी एंटरटेनमेंट से भरपूर। लेकर हाजिर हैं हम यहाँ पर एंटरटेनमेंट से जुड़ी कहानी का हर अपडेट। तभी तो आए हैं आपके पास कि आप भी बता दें ऐसा क्या हो रहा है आपकी कहानी में। अब क्या आ रहा है यहाँ पर भी कोई नया ट्विस्ट, या फिर आ रही है यहाँ से कोई गुड न्यूज? लेकर चलते हैं आप सबको इस जुनूनी के सेट पर।
1: गुरु को लगी हथकड़ी, घर में मचा बवाल, तेजू की शातिर चाल, क्या रूहानी गुरु करेंगे सच का खुलासा? टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में बैंक वाले पुलिस को लेकर पहुंच गए हैं नागेश्वर चौहान की हवेली करने उन्हें गिरफ्तार। असल में बैंक के मैनेजर ने इल्जाम लगाया है कि नागेश्वर ने जो पैसे बैंक में जमा किए हैं वो वही पैसे हैं जो बैंक से ही चुराए गए हैं, और अभी बैंक के पास 20 करोड़ आने बाकी है। इसीलिए बैंक का मैनेजर पुलिस को लेकर पहुंचा है ताकि अपने 20 करोड़ रुपए वसूल सके। लेकिन नागेश्वर ने इनकार कर दिया और तो और अपने आप को बेगुनाह भी बताने लगे, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस ने तो हथकड़ी भी निकाली नागेश्वर के हाथों में पहनाने के लिए कि तभी वहां आ जाता है गुरु।
2: गीदड़ों के पंजे के नाखून बड़े हो जाए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेर का शिकार कर सकते हैं। हिम्मत है, तुम्हारे पापा को हाथ लगाकर दिखाओ। ये केक को मार के इस कोठी के आंगन में दफना देंगे। चलो निकलो यहाँ से।
1: भाई गुरु के भाई ने अभी गुरु को संभाल लिया, लेकिन पुलिस ने भी अपने कानूनी दांव पेच खेले। ऐसे में गुरु ने सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। बस फिर क्या, पुलिस वालों को मिल गया मौका गुरु को हथकड़ी लगाने का, और उन्होंने गुरु को हथकड़ी लगा दी और उसे ले जाने लगे। इतना ही नहीं, गुरु ने तो रुक कर रूहानी से मिलने की बात भी कही, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। उल्टा पुलिस वाले ने गुरु की पत्नी को भी इसमें घसीट लिया।
3: और ऐसा भी हो सकता है कि इस जुर्म में आपकी पत्नी भी शामिल हो। चलिए

0: बस फिर गया रूहानी का नाम सुनते ही गुरु को आ गया गुस्सा और उसने पुलिस के साथ ही शुरू कर दी हाथापाई।
1: हमारी सराफत को हमारी कमजोरी समझ लियो, रंजे लगाओगे हमारी कंपाउंडर पे तो। चोर बोलोगे हमारी कंपाउंडर को, चोर से मार देंगे तुम्हें हम।
2: आंखों पे पट्टी वाला कानून सच नहीं सबूत चाहता है ना।
3: ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे हाथ उठाना जुर्म है।
4: छोड़ दे, रहने दे, रहने दे, छोड़, ये जुर्म है। छोड़ दे, छोड़ दे उनको।
0: फिलहाल तो गुरु घर वालों के कहने पर रुक गया और गुरु की मां ने भी गुरु को समझाने की कोशिश की, इससे पहले कि पुलिस गुरु को धमकी देती वहां पर पहुंच गई तेजस्विनी और उसने माहौल का जायजा लिया। और जैसे ही उसे पता चला कि मैनेजर 20 करोड़ रुपए लेने के लिए आए हैं, ऐसे में तेजस्वी ने अपना ताव और रुतबा दिखाना शुरू कर दिया और सीधा चेक साइन करके लाके मैनेजर के मुँह पर फेंक दिया। अब गुरु को तो तेजस्विनी और उसके भाई की सच्चाई पता है, इसीलिए उसने इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी ने नया पासा फेंका और उसने अपने भाई को कॉल लगा दिया और रख दिया लाउड स्पीकर पर। इतना ही नहीं, उसने तो सभी के सामने और गुरु को जलाने के लिए ये भी बोला कि वो रूहानी के साथ गिफ्ट लेने के लिए गए हैं ताकि गुरु गलतफहमी का शिकार हो। इतना ही नहीं, पुलिस और बैंक मैनेजर से मोहलत लेकर वो पहुंच गई सीधा नागेश्वर के पास, ये बताने के लिए कि बैंक वाले 20 करोड़ वसूलेंगे और उसके लिए हो सकता है ये कोठी गिरवी रखनी पड़े। ऐसे में तेजस्वी ने एक और पासा फेंका कि अगर ये कोठी उसके नाम कर दी जाएगी तो शायद उनकी बदनामी नहीं होगी। और ऐसे में गुरु ने तेजस्वी की चाल को भांप लिया और उसने अपने पापा को रोकने की कोशिश भी की। यहाँ नागेश्वर ने न सिर्फ गुरु को अपना गुस्सा दिखाया बल्कि तेजस्विनी की बातों में आकर ये पूरी हवेली उसके नाम कर दी और तेजस्विनी अपनी चाल में कामयाब हो गई। इसी बीच वहाँ पर आ गई रूहानी भी जो डरी हुई है।
5: तो थे तुमसे आने के लिए, तुम्हें वहाँ जिम्मेदारी नहीं थी तो हम यहाँ आ गए अपनी जिम्मेदारी।
0: भाई गुरु की बातें सुनकर तो रूहानी हैरान है लेकिन तेजस्विनी उसे लग रहा है कि उसको पहली कामयाबी मिल गई है। इसी बीच वहां पर तेजस्विनी का भाई गौतम भी आ जाता है जिसे तेजस्विनी गुड न्यूज देती है। ऐसे में गौतम इस गुड न्यूज से खुश तो होता है कि तभी तेजस्विनी फिर से एक खेल खेलती है। रूहानी के हाथों में जो गिफ्ट है वो तुरंत खोलकर सभी को दिखाने लगती है और बताने लगती है कि उसके भाई ने रूहानी के लिए करोड़ों का हार खरीदा है। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं और तेजस्विनी उसे लगता है कि गुरु को जलाने का ये अच्छा मौका है। इससे पहले कि तेजस्विनी उस तोहफे को लेकर कुछ और बोलती, रूहानी ने तेजस्विनी को सच बता दिया।
6: मेरे भैया के साथ हाथ मेरे काम किया तुम गई और फिर बॉक्स भी तुम्हारे हाथ में तुम्हारे लिए है वहाँ
7: आप बताए ये इसके लिए है या मेरे लिए
5: इरादा तो आपको ही देने का था लेकिन आपको पसंद नहीं आया था कोई बात नहीं तेज रखे क्यों बोलिए
6: नो पे नहीं इसके सही सकते आपने
0: अब रूहानी ने एक करोड़ों का हार लेने से मना तो कर दिया, लेकिन गुरु ने न सिर्फ उस हार को पकड़ा बल्कि तेजस्विनी और उसके भाई को अल्टीमेटम भी दे दिया कि वो रूहानी और उसके बीच में ना आए। इतना ही नहीं, गुरु ने तो चुनौती भी दे दी है कि वो असली चोर का पता लगा कर ही रहेगा जिसने बैंक से चोरी की थी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
8: तो क्या कह रही है मन सुंदर की ये कहानी, क्या इसमें भी आया है एक एंटरटेनिंग ट्विस्ट? जी हाँ, देखिए कहानी का लेखक फिर से लेकर आया है यहाँ पर एक नई सिचुएशन। अब जैसे ही नई सिचुएशन आती है एक नया चैलेंज आ जाता है, चैलेंज आता है तो फिर आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट। हम नहीं करेंगे आपके पेट में दर्द, फटाफट लेकर चलते हैं आपको नाहर और रूही के पास उनके शो मन सुंदर के सेट पर।
0: रूही की भागम भाग। रूही को रुचिता की तलाश। बेटी के लिए भागते हुए लगी रूही को चोट। क्या कामयाब हो जाएगी दादी की चाल? दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में रूही की बेटी रुचिता लापता हो गई है। ऐसे में रूही बेहद परेशान है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है घर की जमीन पर पड़े एक पैम्पलेट पर, जिसे देखकर रूही हैरान है और उसे डाउट हो गया है कि जरूर दाल में कुछ काला है। ऐसे में उसने अपने ससुर जी से इस पैम्पलेट के बारे में जानने की कोशिश की, बस फिर क्या, बहू के कहने पर ससुर जी ने न्यूज़पेपर वेंडर वाले को कॉल लगा दिया। ऐसे में उन्हें पता चला कि उन्होंने कोई पैम्पलेट ही नहीं डाला। बस फिर क्या, इसी बात को लेकर रूही और उसके ससुर जी परेशान होने लगे। इससे पहले कि रूही और उसके ससुर जी वहां से जाते, परेशान हालत में वहां पहुंच गई दादी लेकर रूही के लिए जूस, और तो और उन्होंने वो जूस रूही के ऊपर गिरा दिया ताकि उन्हें कुछ पल की मोहलत मिल सके। असल में रुचिता का किडनैप उन्होंने ही करवाया है। और देखिए कैसे रूही के जाते ही उन्होंने झटपट फोन लगा दिया किडनैपर्स को और उन्हें पता चल गया कि एक घंटे में रुचिता शहर से बाहर हो जाएगी। इस बात की वो खुशी मनाने लगी कि तभी रूही और ससुर जी घर से निकलने लगे और दादी इस तरह से ड्रामा करने लगी कि जैसे उन्हें रुचिता की परवाह हो रही है।
9: एक्चुअली रुचिता गुम हो गई है तो मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ और वो पैम्पलेट की वजह से ही मुझे वो एड्रेस मिलता है जहाँ से रुचिता गायब हुई है तो मैं उस पैम्पलेट के थ्रू उस तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ।
10: परेशानी है रुचिता और उसकी माँ रूही, सदियों से चली आ रही परेशानी दादी के लिए ये एक ही है बस। अब किसी तरह रुचिता से छुटकारा पाने का तरीका मिला है तो पैम्पलेट बेसिकली है कि सरकारी दवाखाना, जैसे सरकारी चिकित्सालय होता है वैसे कोई कैंप लगा है बच्चों को टीका लगाने का। वहाँ मैंने रूही को बोला है कि रुचिता को लेकर जाओ टीका लगवाओ। अरे आपको बता दिया तो फिर आप लोग बता दोगे ना रूही और नहार को, और फिर वो लोग रुचिता को ढूंढ लेंगे तो ऐसे कैसे बताओ। खैर अभी के लिए इतना समझ लो कि रुचिता को किडनैप करके घर से बहुत दूर भेजना चाहती हूँ ताकि ये लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाए और रुचिता ना मिले।
0: पर भाई दादी ने इस बार अपना खेल बखूबी खेला है, लेकिन रूही भी कम नहीं। जरा देखिए कैसे वो टीकाकरण शिविर के बाहर पहुंच गई और छिपकर करने लगी ताका झाकी, क्योंकि उसे हो गया है डाउट। असल में उसने एक नर्स के रूप में औरत को एक बच्चे को गिफ्ट देकर बहलाते फुसलाते देख लिया है। ऐसे में उसे लग रहा है कि यहाँ से बच्चे जानबूझकर किडनैप किए जा रहे हैं, इसीलिए वो छिप छिप कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये बच्चों को किडनैप कर कहाँ से ले जाएंगे। कि तभी उस नकली शिविर के अंदर से दो बदमाश निकलते हैं एक लड़की को किडनैप करते हुए,

पर स्टेप मस्ती नॉन स्टॉप। वड़ा पाव पार्टी से भूख हुई फरार।

इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 के मंच पर सिर्फ डांस का जलवा ही नहीं बल्कि कंटेस्टेंट्स और कोरियोग्राफर की दोस्ती भी नंबर वन है। यही जानने के लिए सास बहू और बेटियां पहुंच गया है इंडियाज बेस्ट डांसर्स के रिहर्सल स्टूडियो, जहां कभी रिहर्सल्स के बीच गानों की महफिल सजती है।

0: तो कभी डांस में सब एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, कभी जोड़ियां जमकर डांस दिखाती हैं, तो कभी हंसी के ठहाके लगते हैं, कोई सुर छेड़ता है तो कोई ठुमके लगाता है और कोई मस्ती में झूम जाता है। तो आइए करते हैं मुलाकात इंडियाज बेस्ट डांसर्स के प्रतियोगी और उनके कोरियोग्राफर से।
1: इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 की टीम हमारे साथ है और इंडिया वाला डांस करके आप सबको एंटरटेन करते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, राइट? इस अभी की बारिश की तरह
2: यस यस, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 में और बहुत मजे कर रहे हैं हम लोग।
1: तो मॉनसून का आगाज हो गया है, झमाझम बारिश हो रही है, तो सेट पे क्या माहौल होता है, कितनी तकलीफें, कितनी प्रॉब्लम्स, या स्मूथली चल रहा है, कैसा क्या कुछ होता है? थोड़ा आ जाओ सब लोग ऐसे पास में जरा।
3: तकलीफ तो बिल्कुल भी नहीं होती है, उल्टा और मजा आता है, अच्छा मौसम हो गया है और ठंडक रहती है।
1: झूठ झूठ
4: झूठ तो है झूठ तो है, मतलब ऐसा मौसम देखने के बाद रिहर्सल तो होती है पर उठने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है।
5: पूरे टूट गिरता ना ऐसे वाले ऐसे सोते हैं ये लोग और अभी बोल रहे मजा आ रहा है, कुछ झूठ के रहे।
4: हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि चाय पकौड़ा मिल जाए पर हमें रिहर्सल भी करना होता है तो थोड़ा मुश्किल तो है।
6: करेक्ट, नो डाउट। अभी जैसे आपने बोला कि दैट शो भी स्टार्ट हो रखा है, मॉनसून भी है, तो हमें मॉनसून देखने का मौका ही नहीं मिल रहा है एक्चुअली। हम रिहर्सल इतना कर रहे हैं, हाँ, परफॉर्मेंसेज हमें बनाने पड़ते हैं, किसी को मतलब लाइक कोई हालत में भी नहीं, बीमार भी है फिर भी कर रहा है, सो यू नो, तो वो मॉनसून आई डोंट थिंक सो अभी कोई इतना इंजॉय कर रहा है, बट फिर भी कभी भी ब्रेक मिलता है तो हम बाहर चले जाते हैं, चाय मिलता है हमें, तो वही करेक्ट, पकौड़े तो नहीं मिलते, चाय मिलते।
2: सेम, बाहर जाने का मन कर रहा है क्योंकि इतनी मस्त बारिश है और मैं तो पुणे में रहती हूँ और पुणे का क्लाइमेट तो बहुत ही मस्त है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करूँ पुणे को, बट कोई बात नहीं, इधर अच्छा करके जाएंगे और आप लोगों को हम लोग एंटरटेन कर रहे हैं हमारे डांस के थ्रू, तो इसमें ही हम लोग मॉनसून भी इंजॉय कर रहे हैं।
3: सबसे ज़्यादा खुशी हुई मुझे रेमो सर के आने पर, बिकॉज एज अ डांसर हम सबका एक ड्रीम होता है कि रेमो सर के सामने परफॉर्म करना है, एंड ही इज़ दी ओजी, और बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे और भी सेलिब्रिटीज आए, उन सबके सामने भी परफॉर्म किया, बट फेवरेट थे रेमो सर। यस,
2: एक्चुअली सब लोग आए थे, सब आए तब अच्छा ही लगता है हमेशा, बट माय फेवरेट वन एंड ओनली माधुरी मैम, तो हमेशा वो हर शो में आती है और हर शो में मैं उनसे मिलती हूँ और हमेशा हर शो में आने के बाद भी वो मुझे पहचानती है और मुझे बोलती है हक से कि वैष्णवी कशिया है, सो वो सुन के हमेशा अच्छा ही लगता है, सो यस, मैम आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी।
4: सो ये तो मेरा फर्स्ट रियलिटी शो है एंड सेलिब्रिटीज़ को इतने नज़दीक से देखना, उनके सामने परफॉर्म करना मेरे लिए तो एक ड्रीम ही है, एंड सबके साथ लाइक एक एक मोमेंट था मेरा जिसमें मैंने उनसे कुछ ना कुछ चीज़ सीखी, बट मेरी फेवरेट लाइक बचपन का ड्रीम था मेरा परफॉर्म करना, वो भी माधुरी मैम के सामने, तो मैंने किया एंड आई लव्ड इट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए, उर्मिला मैम, माधुरी मैम, शिल्पा मैम, उर्मिला मैम के साथ मैंने एक सीन परफॉर्म किया था मच्छी वाली जो कि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, फिर शिल्पा मैम के साथ मैंने एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस किया एंड सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा माधुरी मैम के साथ, मैंने उनके साथ देवदास वाला सीन रिक्रिएट किया था एंड माधुरी मैम मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है एंड उस हफ्ते मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था, मैं बैटल में आई थी एंड विनर भी बन गई थी बैटल की, तो मुझे माधुरी मैम बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो वीक मेरा बेस्ट था।
7: मतलब सब लोग जो जो अभी आए उनसे तो मतलब उनके साथ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बट अभी जो आने वाले जैसे नावेद सर, रवि सर और जावेद सर, इन तीनों के सामने भी परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा मतलब नॉस्टैल्जिक हो गया था कि जैसे बुगी उगी वापस आ गया ऐसे वाला, तो वो भी बहुत मज़ेदार था।

तो दीपाली, वैदेही और प्रणय अपने अपने कोरियोग्राफर के साथ डांस के मंच पर एक दूसरे को कड़ा कंपटीशन देते हैं, लेकिन रिहर्सल के मौके पर इनकी दोस्ती देखते ही बनती है। अब तैयारी इंडिया वाला डांस दिखाने की चल रही है, तो जाहिर है डांस का स्वैग तो दिखेगा ही, लेकिन आज डांस के साथ साथ सुर भी छेड़े जा रहे हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई भी हो रही है।

0: अभी इनका डांस देख के बारिश आने वाली है ऐसा हमें लग रहा है. लेट्स सी दीपल, लेट्स गो.
1: और गाना बताओ. 5 6 7 go.

0: इस बार का थीम हमारा है इंडिया वाला डांस, तो हमने मैंने सारे ओपनिंग एक्ट कर दिए जो बिनी सर ने सिखाए थे हमें, तो बॉलीवुड लाइक स्टेप्स जितने आए मुझे मैंने कर दिए।
1: इंडियाज वाला डांस सीजन 5 में सच्ची में सब लोग बहुत ज्यादा सीख रहे हैं, बिकॉज इस बार ओल्ड सॉन्ग से कभी कभी वो सॉन्ग्स हमने सुने भी नहीं होते, बट कुछ कुछ सॉन्ग्स ऐसे भी है कि जो हम लोग सोचते थे कि यार कभी तो रियलिटी शो में करेंगे, तो वो वाली चीज़ें अभी पूरी हो रही है। सो पुराने सॉन्ग्स पे डांस करने का मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि जो बोलते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वो फील आ रहा है। हमारे ओजीज बैठे हैं सामने सब, जावेद सर जिनको मैं बचपन से जानती हूँ, बुगी उगी से जानती हूँ, वो बैठे हैं, गीता माँ, चरण सर, करिश्मा मैम, तो वो सब लोग भी बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं कि बॉलीवुड में कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और जो भी हम लोग कर रहे हैं वो ऑडियंस तक पहुँच रहा है, ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है हम सबको। सो बहुत मज़ा आ रहा है इस सीज़न में, बहुत सीख भी रहे और बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं। मैं, प्रणय, आकाश और हम चारों गाते हैं, आप दोनों अच्छे से नाचो गाइस। हम लोग अच्छे से गाते हैं। तो गाइस अभी हम चारों गाने वाले हैं, पता नहीं कैसे गाएंगे बट ठीक है गाएंगे, बट अच्छा परफॉर्म करने वाले दीपाली और प्रतीक्षा। लेट्स गो। ओके गाइस रेडी, 5 6 7 गो। Dip, dip.

0: अभी बारी है हमारी, हम लोग गाना गाएंगे एंड आकाश और वैदी परफॉर्म करेंगे. लेट्स गो. और ओ ओ ओ यस ओ यस.
1: ओके लेट्स गो.
2: रेडी.
0: 5 6 7 गो. भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है. हाँ, ऐसा लगता है तुम बनके बादल में.

0: वापस हम लोग जो प्रोफेशनल सिंगर से हम गाएंगे और वैष्णवी दीदी और प्रणय भैया परफॉर्म करेंगे.
1: Yes.
0: 5, 6, 7, go. ढगाला लागली कळा पानी थेम थेम गळा.
1: चल ग राणी गाऊया गाणी फिरूया मगर संग. आवडतं गाणं आता नाही हमें कुछ भी गा रे.

0: तो जैसे कि आपने देखा, हम लोग ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं. जब भी बहुत थोड़ा ऐसा स्ट्रेसफुल वीक होता है तो हम लोग एक दूसरे के हॉल पे जाते हैं एंड ऐसा थोड़ा टाइम पास करते हैं, थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करते हैं. ऐसे ही मस्ती हमारा चलता रहता है एंड सबका बॉन्ड अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है. तो यस, मज़ा आ रहा है.
1: वो बॉन्ड सिर्फ बैटल में जाने के बाद ही टूटता है. ये सीजन में बहुत ट्विस्ट है और वो देख के अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है. बिकॉज डुओ में अगर 40 लेके आते हैं तो हम लोग बैटल में चले जाते हैं और बैटल में किसी को सिलेक्ट करना पड़ता है जो अपने साथ आके बैटल करेगा. और वो बैटल अगर आप हार गए तो आपका जो 40 है वो ज़ीरो हो जाता है. तो इसमें खुशी की बात नहीं होती है, बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. बट यही है कि और एक चांस मिलता है हर एक कंटेस्टेंट को प्रूफ करने के लिए. तो वही अलग चीज़ है, बट रिस्क वाली चीज़ भी बहुत है. बहुत डर लगता है कि मेरा बच्चा अगर बैटल में आ गया तो वो जीतेगा कि नहीं. ये रिस्क बहुत है बिकॉज सब कंटेस्टेंट बहुत बहुत अच्छे हैं अपने अपने स्टाइल में. और ऊपर से बॉलीवुड करना है वो तो अलग रिस्क है. बट सब लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है.
2: ऑब्वियसली सारे कंटेस्टेंट, जैसे इन्होंने बोला कि स्टेज पे जाते ही एकदम बिल्कुल हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव, जो कि होना भी चाहिए. एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दैट जो ओपोनेंट है अगर हार भी जाता है तो इट शुड बी लाइक कि आपको उस चीज़ को अच्छे वे में लेना है. बिकॉज कोई यहाँ पर दिल पर भी नहीं लेता है. सो सारे लोग बहुत दिल से भी अच्छे हैं और डांस तो अच्छा करते ही करते हैं. सो नो डाउट यही है मेन, हमारा कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है जैसे आप लोग देख रहे हो. तो हमें क्या है कि बॉन्ड का बता रहा हूँ, पहले बॉन्ड हमारा काफ़ी अच्छा है, थैंक यू सो मच. एंड बाकी ट्रॉफी का जो ये न्यू आया है, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि सेम शो पैटर्न दिखेगा तो वो मज़ा भी नहीं आएगा. तो जो ये नया आया है पैटर्न, सो इट्स वेरी गुड. एंड आई होप कि ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा होगा एंड अच्छा लग ही रहा है. दैट्स वाई दिस शो इज़ नंबर वन इन सोनी टीवी. सो या गुड.
3: तो बता दिया कि कंपटीशन कितना भी तगड़ा क्यों ना हो पर मस्ती में हम साथ साथ हैं. लेकिन अब बारी आ गई है अपने अपने कोरियोग्राफर संग इंडिया वाला डांस दिखाने की. ऐसे में सबसे पहले सामने आई हैं दीपाली बोरकर अपनी कोरियोग्राफर प्रतीक्षा सुतार के साथ और दोनों ने मिलकर लगाया मराठी तड़का.
0: नमस्ते, मैं हूँ दीपाली बोरकर और ये है मेरे कोरियोग्राफर
4: प्रतीक्षा सुतार.
0: तो हम दोनों मुंबई से हैं तो एक मराठी तड़का तो बनता है. तो एक डांस हो जाए.

0: अब बारी है वैदेही चौहान की, जो कि शिमला से है, और ऐसे में उन्होंने अपने कोरियोग्राफर आकाश थापा संग दिखाया पहाड़ी वाला डांस।
1: हेलो एवरीबॉडी, दिस इज वैदेही।
2: हेलो एवरीवन, आकाश थापा दिस साइड।
1: सो जैसे आपको पता है हम दोनों पहाड़ी है एंड मैं शिमला से हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हम आज पहाड़ी डांस करें।
2: यस और मैंने कभी सीखा भी नहीं है, तो इन्होंने मेरे को भी सिखाया है एंड इनके साथ मैं पहली बार पहाड़ी डांस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड का हूँ, तो मेरे को भी अभी जो आया नहीं था वो भी इन्होंने सिखा दिया है, अभी जितना आता है वो कर लेता हूँ। प्लीज
1: तो बातें सुने, देखते रहिए हमें एंड सपोर्टर्स एंड लवर्स।
2: यस, लव यू गाइस।

0: अब बारी है प्रणय जोशी की, जो कि उदयपुर से हैं और उनकी कोरियोग्राफर हैं वैष्णवी एम पाटिल, और दोनों ने मिलकर घूमर का ऐसा जोश दिखाया कि सभी झूम उठे।
1: हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रणय जोशी।
2: हेलो एवरीवन, दिस इज वैष्णवी पाटिल।
1: मैं हूँ उदयपुर राजस्थान से, और राजस्थान में घूमर बहुत फेमस है, तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और घूमर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी मैं और मेरी मैम हम घूमर करने वाले हैं, लेट्स गो।

0: भाई वाकई इन सभी के अंदर तो डांस का हाई जोश है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा डांस होगा तो भूख भी उतनी ही तगड़ी लगेगी। ऐसे में सभी ने ना सिर्फ डांस करके ढेर सारी मस्ती की बल्कि इन्हें मिल गया मुंबई के वड़ा पाव का सरप्राइज भी, जिसे देखकर सभी हो गए हैं बेहद खुश।
1: देखो गाइज, अभी हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया, थक गए हैं, बाहर बारिश भी इतनी मस्त हो रही है, तो मॉनसून खुद हमारे पास चल के आया है। तो देखिए हमारे पास क्या आया है खाने के लिए। प्लेट भी आई है। तो ये मॉनसून में ये खाना तो बनता है, तो बिना रुके चलो गाइज शुरू हो जाते हैं। बसा बसा खाली बसा।

0: भजिया और पाव ना खाए तो क्या ही मजा है। तो ये तो बनता है,
1: बस एक चीज मिसिंग है और वो है हम सबकी फेवरेट चाय।
2: चाय ला दो।
1: वाव, चाय का नाम लिया और चाय आ गई, मतलब इसके साथ चाय पीने का मजा ही कुछ और है। मॉनसून में पेपर बोट्स बनाना बहुत मजा आता है, एंड वो जो खड्डा होता है उसमें जंप मारना।
3: मैं हर बारिश में बीमार पड़ जाता था घर पे, और मुझे मना करते थे बाहर निकलने को, मैं फिर भी निकलता था और घर पे मार खाता था। ये मेरी बारिश की याद है।
1: तो मैं बताना चाह रही हूँ कि मुंबई में बेस्ट चीज़ है खाना। खाना बहुत ही टेस्टी है, मज़ा आ रहा है खा के। एंड बारिश की बात रही तो शिमला की बारिश बहुत इंटरेस्टिंग थी, पहाड़ी सब कुछ फ्रेश, बहुत मज़ा आता था। एंड मुंबई में भी मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि लाइक यहाँ पे सड़कों पे पानी भरता है एंड उसमें चलना, उसमें चीज़ें लाइक बहुत, मुझे सच में मुंबई में बारिश ही पसंद है क्योंकि थोड़ा ठंडा भी हो जाता है और मेरे लिए गर्मी सहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि शिमला में गर्मी नहीं होती, उनकी सबसे ज़्यादा गर्मी मुंबई की सबसे ज़्यादा ठंड है। तो बहुत ही डिफरेंस है, बट ऑनेस्टली ये बहुत टेस्टी है। अभी खाने पे फोकस कर।
2: बारिश में और एक चीज़ का मज़ा आ रहा है मुझे, मतलब पहले तो आता ही था कि हम लोग पसीने में भीग रहे हैं, बट अभी मतलब बारिश में भीगने नहीं मिल रहा, अभी पसीने में भीग रहे हैं। बट और एक चीज़ और अच्छी हो रही है, वो है कि दीपाली चाय पी रही है। दीपाली कभी चाय नहीं पीती गाइस, वो पहली बार आज चाय पी रही है और पकौड़े खा रही है और मेरे को देख कैसे कह रही, वाह मैम मस्त है मस्त है। तो वो एक अच्छी चीज़ है, मज़ा आ गया बोलते।

0: तो देखा आपने कैसे रिहर्सल्स के दौरान ये सभी एक हो जाते हैं, ढेर सारी मस्ती भी करते हैं और साथ में करते हैं पेट पूजा भी। इसी के साथ सास बहू और बेटियां लेता है इनसे विदा। अब देखना होगा कि आने वाले एपिसोड में कौन अपना इंडिया वाला डांस दिखाकर सभी दर्शकों का दिल जीतेगा और जजेस से नंबर भी। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: आज की ताजा खबर इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 के कंटेस्टेंट्स और उनके कोरियोग्राफर्स ने रिहर्सल छोड़ के भजी पाव और चाय का आनंद लुटाया है। नहीं तो सास बहू और बेटियों के साथ हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए बारिश पे, फिर हमने डांस किया एंड सबसे बेस्ट तो ये था क्योंकि रिहर्सल्स में हमें ये सब नहीं मिलता है, तो ये खा के भी बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा डांस करके सबके साथ एंड गाना गा के। सबके सिंगर्स थोड़े थोड़े बाहर आए आज एकदम सुरीले सिंगर्स भी बाहर आए एंड यस बहुत मज़ा आया। तो थैंक यू सो मच सास बहू और बेटियों एंड देखते रहिए

0: कभी कभी तो हमें पार्टी में भी मिल जाते हैं अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, और बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारी एंटरटेनमेंट की कहानियों के साथ। हम सोचते कुछ है और कहानी में अचानक आ जाता है एक नया ट्विस्ट। एक्चुअली ये तो लेकर आते हैं हमारे लिए सरप्राइजेस एंड शॉक्स। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ये तमाम ट्विस्ट, वो भी एक साथ।
1: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में नयनिका अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी वहाँ पर नयनिका का एक्स पति आ जाता है जो उसे छोड़ने की बात कहता है, लेकिन नयनिका मना कर देती है। ऐसे में तभी वहाँ पर आ जाती है नयनिका की सासू माँ भी, जो नयनिका को रोकने की कोशिश करती है और तो और सिर पर पल्ला रखने के लिए कहती है। इस पर नयनिका आज बगावत करती है और सिर पर पल्ला रखने से कर देती है इनकार।
2: मतलब माँ, मैं और कितने दिन एक झूठी पहचान लेकर चलूंगी? आप बौमा की जगह मुझे मेरे नाम से बुलाइए। आप ही तो कहती है ना कि आपकी बौमा अंगना है, तो फिर मुझे इस घर की दूसरी बौमा की तरह घर के रीति रिवाज क्यों निभाने चाहिए? आखिर क्यों मुझे इस मोहल्ले में सर ढककर चलना चाहिए? इससे क्या साबित होगा माँ? क्या आपको ये चिंता है कि पड़ोसी लोग क्या कहेंगे? क्या उन्हें कुछ नहीं पता?
3: हाय गोपाल, मैंने एक बात क्या बोल दी? तुमने तो 100 बातें सुना दी।
1: भाई नयनिका ने तो पहली बार अपने लिए स्टैंड लिया है और ये बात नयनिका की सासू माँ को पसंद नहीं आई। वो उसको ताने कसने लगी, लेकिन तभी नयनिका की बेटी टिनी नयनिका का साथ देते हुए आगे आ गई।
2: जब मॉम के लाइफ से शादी और शादी की सारी निशानियां मिटा दी गई थी, तो शादी से जुड़ी हुई कोई भी निशानी या रिवाज मॉम क्यों माने? और आज के बाद मॉम कभी भी मोहल्ले में सर पर पल्लू रखकर नहीं जाएगी।
1: भाई जब से टिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ है और पता चला है कि उसकी माँ कैंसर से जूझ रही है, तब से टिनी ने फैसला किया है कि वो अपनी माँ का साथ देगी।

0: کنه. بدرهای کے ساتھ بہت غلط کیا.
1: स्टारप्लस के सीरियल अनुपमा में प्रेम गिड़गिड़ाता हुआ पहुंच गया है राही से मिलने और उसके सामने हाथ जोड़ने. असल में प्रेम ने राही को घर से बाहर निकाल दिया था और जब प्रेम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो प्रेम राही को वापस अपने घर ले जाने के लिए पहुंच गया है मंदिर. और देखिए कैसे हाथ जोड़कर उसके सामने वो विनती कर रहा है और प्यार की दुहाई दे रहा है.
0: प्लीज मेरे साथ वापस चलो, प्लीज मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता. मैं जानता हूं कि प्यार तो क्या मैं तो तुम्हारी माफी के भी लायक नहीं हूं, लेकिन मैं कसम खाता हूं मैं आज के बाद तुम्हारे साथ दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा. I'm sorry. वो मेरा घर नहीं है, वो हमारा घर है. अपने घर चलो राही.
1: भाई प्रेम की इस माफी से तो राही पिघल गई, लेकिन अनुपमा उसको अब भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसे पता है कि एक बार ये गलती हो गई तो बार बार की जाएगी. ऐसे में वो प्रेम को न सिर्फ अल्टीमेटम देती है बल्कि राही को मौका देती है खुद से अपना फैसला लेने का. ऐसे में राही प्रेम का हाथ थाम कर पहुँच जाती है अपने ससुराल और देखिए कैसे मोटी बा करती है अपनी बहू का स्वागत और होती है इमोशनल. इतना ही नहीं वो तो दोनों को अपनी कसम भी दे देती है.
2: वादा करो आज के बाद तुम कभी कभी ये घर छोड़कर नहीं जाओगी. और तू भी कसम खा टिंकू कि आज के बाद राही को फिर कभी घर की दहलीज पर लाकर खड़ा नहीं करेगा. कसम खा.
0: मैं कसम खाता हूँ मोटी बाप.
2: मैं भी.
0: तुम मेरी पत्नी से पहले मेरा प्यार हो. मैंने अपनी पत्नी की अपने प्यार की इस घर से मिली परवरिश की सबकी इंसल्ट की है. मैं ये गलती हमेशा याद रखूंगा.
1: स्टार प्लस के सीरियल उड़ने की आशा में जब से सायली की गुड न्यूज सामने आई है तब से सायली के सास सुमा रेणुका सायली का ख्याल रखने लगी है और वो तो पूरी तरह से बदल चुकी है क्योंकि अब वो सायली की तरफ हो गई है और तो और रोशनी के खिलाफ. इसीलिए तो उन्होंने रोशनी को पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी. ऐसे में सभी घर वाले सायली का ख्याल रख रहे हैं तो वहीं रोशनी चिढ़ के मारे घर का काम कर रही है. भाई सचिन तो एक भी मौका नहीं छोड़ रहा सायली का ख्याल रखने का और उस पर प्यार जताने का. और रोशनी ये सब देखकर चिढ़ रही है क्योंकि उसका पति तेजस तो आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है. ऐसे में सायली और रोशनी दोनों की ही प्रेगनेंसी का समय धीरे धीरे गुजर रहा है जहां सायली के घर वाले सायली के और भी करीब आ गए हैं, उसकी हर चीज का ख्याल रख रहे हैं. और रोशनी वो अब भी अकेली ही पड़ी हुई है क्योंकि जो उसने कारनामे किए हैं उसकी माफी उसे इतनी आसानी से जो नहीं मिलेगी.
3: क्या कुछ हो रहा है आज वसुधा की जिंदगी में. वसुधा आप मेरी बात माने ना तो आपको भी लेना चाहिए एक सैटरडे वाला ब्रेक. आप ज्वाइन कर सकती हैं हमें इस पार्टी में. देखिएगा आपके चेहरे पर यूं सेकंड्स में आ जाएगी एक प्यारी सी मुस्कुराहट. तो क्या कुछ हो रहा है वसुधा और देवांश की इस कहानी में चलिए पता कर आते हैं. लेकर चलते हैं आप सबको वसुधा के सेट पर.
1: सर और उसकी बेटी के स्वागत में झूम उठी दादी. वसुधा की दादी सास का लठमार डांस. जी टीवी के सीरियल वसुधा में जैसे ही दादी को पता चला कि वसुधा और देव ने केसर और उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों से बचा लिया है तो देखिए कैसे दादी भी ढोल नगाड़ों के साथ केसर और उसकी बेटी का स्वागत कर रही है और तो और नाच गा भी रही.

0: ही है। ये देख वसुधा, दिव्या और केसर बेहद खुश हो रही है, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि इनकी खुशियों में ग्रहण लगाने के लिए पहुंच जाता है केसर का दामाद, जो अपनी बीवी पर हक जमाने पहुंच जाता है। बस फिर क्या, उसको हक जमाता देख दादी भी लगा देती है ब्रेक।
1: आप क्यों

0: एक्चुअली ये बात ऐसी है कि मतलब जो हमने देखा तो वसुधा को तो एक इनर फीलिंग थी कि हो सकता है वो मजबूर हो इसलिए वो बार बार फोन देखती हो, लेकिन बाद हमें बाद में पता चलता है कि केसर जो भी कर रही थी वो अपनी बेटी के लिए कर रही थी, और वो तब पता चलता है जब केसर छोड़ के चली जाती है हमारा फैक्ट्री, और उसके बाद उससे उस यूनियन वाले कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं कि केसर ने फाइल की है आपके अगेंस्ट कंप्लेन कि आप उनके साथ वायलेंस कर रही हैं एंड ऑल, तो हमें ऐसा फील होता है कि नहीं वो केसर नहीं कर सकती क्योंकि वो तो अच्छी थी, लेडी थी और बहुत अच्छे से रहती थी, मे बी कोई बात तो है। तो वसुधा जब उनसे जाके बात करती है तो ये पता चलता है कि वो सच में मजबूर है अपनी बेटी को लेके, और ऐसा ऐसा उनके जीवन में चल रहा है, तो फाइनली ये पता चलता है। तो मतलब ऑब्वियसली सब बहुत रिग्रेट करते हैं कि हमने केसर को क्यों डांटा, क्यों उसे निकाल दिया।
1: तो यूं तो दामाद जी की खातिरदारी खूब शान से होती है, लेकिन आज इनका स्वागत लठ मार कर कर रही है वो भी दादी जी। खैर दादी जी तो खुशियां मना रही हैं कि केसर अपनी बेटी के साथ वापस लौट आई है वसुधा संग उसके काम में हाथ बटाने के लिए। इतना ही नहीं दादी तो केसर से भी गुजारिश करती है कि वो भी इस खुशी में जम कर नाचे क्योंकि उसकी बेटी वापस घर आई है।
2: अरे नाच केसर, नाच कर के है।
1: भाई मानना पड़ेगा वसुधा की टीम अब अच्छे से तैयार हो गई है वसुधा का साथ देने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वसुधा और उसकी दादी हर मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ ही होंगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: चकदात्री और शिवाय की ये कहानी भी लेकर आती है हमारे लिए एंटरटेनमेंट। एक्चुअली ये कहानी भी बिल्कुल एक पार्टी की तरह है जो हमारा मूड सेट कर देती है, जो हमें रिफ्रेश कर देती है। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको जगदात्री के पास और देखते हैं ऐसा क्या नया हो रहा है इनकी कहानी में। आज कहानी का लेखक फिर से लेकर आया है इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड। लेट्स चेक इट आउट।

0: इस पे साइन करता हूँ।
1: कहानी पति पत्नी के टूटते रिश्ते की,
2: वो पेपर।
0: हाँ, 6 महीने तुम्हारे पास इस पेशेंट को खत्म करने के, उसके बाद ये शादी भी खत्म और हमेशा के लिए ये रिश्ता भी।

जी टीवी के सीरियल जगधात्री में आज जगधात्री और शिवाय के मिलन की बेला आ गई है। पर शादी तो जगधात्री ने किसी भी शर्त पे की हो, लेकिन आज जगधात्री ने तय किया है कि वो शिवाय से अपना हाल दिल बयां करेगी, बताएगी कि वो उसे कितना प्यार करती है। तभी तो देखिए कैसे सुहागरात की सेज पर वो घूंघट ओढ़े बैठी हुई है और कर रही है शिवाय का इंतजार। ऐसे में शिवाय भी आता है। जगधात्री से बेहद प्यार करता है और जगधात्री को यूं इंतजार करता देख शिवाय के दिल में प्यार उमड़ता है। वो जगधात्री के करीब भी आता है, उसका घूंघट भी उठाता है और जगधात्री वो शर्माती है, हिचकिचाती है, क्योंकि उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही है।

0: मोहब्बत जो है वो दो तरफा होती है. अगर सामने वाला आपसे प्यार करता है, आपको अपना हम सफ़र देखना चाहता है, ज़िंदगी भर का साथ निभाना चाहता है, तो वो इंसान डिज़र्व करता है कि उसे मोहब्बत दी जाए, उसे मोहब्बत मिले. आप दोनों प्यार के उस बंधन में बंध गए हैं. शादी एक ऐसा रिश्ता है जो आपको सिर्फ इस जन्म नहीं बल्कि अगले 7 जन्मों के लिए निभाना है, जो शिवाय और जगधात्री के बीच में बात हो चुकी है कई बार. फ़िलहाल कई बार मैंने कोशिश की, कई बार उनको अपने दिल के जज्बात उनके साथ शेयर किए और जानना चाहा कि क्या थोड़ा सा प्यार आपके दिल में है मेरे लिए, क्या थोड़ी सी मोहब्बत है. और हर बार उन्होंने मना कर दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या प्यार मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरी मजबूरी है, मेरी आई के कातिल को मुझे ढूंढना है जो इस परिवार में है. और हर बार उन्होंने एक एक्सक्यूज़ दिया है. लेकिन कहीं ना कहीं आप थक जाते हो ना असल ज़िंदगी में, कि भाई अगर आप किसी को बहुत शिद्दत से चाहते हो और आप उससे शादी करना चाहते हो और वो इंसान बोल दे, क्योंकि आखिरी मोमेंट तक मैंने वेट किया था कि शायद अब ये बोल देगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब शायद बोल देगी कि हम एक साथ होके इस मिशन को देखते हैं और प्यार के साथ हम आगे बढ़ाते हैं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.
1: भाई जगधात्री ने जैसे तैसे अपने दिल की धड़कनों को संभाला और कोशिश की करीब आते शिवाय को अपने दिल का हाल बयां करने की. लेकिन तभी शिवाय ने जगधात्री के सामने 6 महीने की मोहलत रख दी, क्योंकि शिवाय को पता है कि जगधात्री ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को बेगुनाह साबित करने के लिए की है. ऐसे में शिवाय ने जगधात्री को 6 महीने की मोहलत दी और जगधात्री उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. उसे लगा जोरदार झटका.
0: मिसकम्युनिकेशन नहीं है, क्लैरिटी है. बहुत बड़ा सीन गया है भाई, एक पूरा एपिसोड है जहाँ पे मैंने बोला है उनसे कि एक बार मेरा दिल रखने के लिए बस आई लव यू बोल दो कि शिवाय मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बोल दो एक बार, प्लीज़ बोल दो. बोला नहीं. ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखो कि
2: आज से हमारी जिंदगी में.
1: अब जगधात्री को लगा था कि आज ही के दिन उनके दिल मिल जाएंगे, लेकिन आज तो शिवाय और जगधात्री दोनों का ही हाथ छूट रहा है, साथ छूट रहा है. इतना ही नहीं, शिवाय ने तो जगधात्री के सामने डिवोर्स के पेपर्स भी रख दिए.
2: तुमसे कुछ कहना है,
3: पर कुछ भी कहने से पहले इस पे साइन.
1: अब देखना होगा क्या जगधात्री इन 6 महीनों में न सिर्फ असली गुनहगार का पता लगाएगी बल्कि शिवाय से अपने दिल का हाल भी बयां करेगी.
3: 6 महीने तुम्हारे पास इस पेशेंट को खत्म करने के, उसके बाद.
1: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
2: जगधात्री.
4: तो क्या कह रही है मन्नत की ये कहानी? क्या फिर से आया है मन्नत की कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट? क्या मन्नत और विक्रांत के बीच हो जाएगा सब कुछ ठीक? क्या यहाँ पर ये जो फिलहाल हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है ये थम जाएगा? वेल, थम भी जाएगा तो फिर भी बस एक दिन की खुशी होगी, फिर से आ जाएगा कहानी में कोई ना कोई नया मोड़, क्योंकि ऐसा ही होता रहता है मन्नत की कहानी में लगातार. लेकिन तभी तो ये हमें एंटरटेन करती है. लेकर चलते हैं आपको इनके पास.
1: मान्यता की खुशियों को लगी विक्रांत की यादों की नजर.
5: स्मृति बुढ़वानी चाकिन बीते, स्मृति वो जिधर नाना किन्हें किच्छा,

0: अमानत और अभिमन्यु को देख चिढ़ गई मान्यता।
1: तो समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना दूर हटो मेरे फियांसे से।
0: कलर्स के सीरियल मन्नत में शुरू हो गई है मान्यता और अभिमन्यु की शादी की तैयारियां और आज हो रही है शादी की रिहर्सल। असल में शादी में कैसे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के करीब आएंगे उसी की रिहर्सल चल रही है और गोल्डी ने उस रिहर्सल की शुरुआत की जिसके चलते मान्यता और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन ये करीबियां विक्रांत की यादों की सबब भी बन रही है।
2: क्या बात है पाजी, आपका भी पाजी के ऐसे चक्कर काटने शुरू कर दो। वाह वाह क्या बात है, और उसके बाद ऐसे जोर से बातें करते हैं।

0: हाँ, तो मेरी शादी का फंक्शन चल रहा है, इसलिए हम एक कपल डांस कोरियोग्राफ कर रहे हैं, तो वहाँ पे मन्नत आ जाती है और अभिमन्यु मन्नत साथ में गिर जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ डांस स्टेप में अभिमन्यु को धक्का देती हूँ और वो जाके मन्नत के ऊपर गिर जाते हैं।
1: अब कारनामा मान्यता का और गुस्सा भी मान्यता का, क्योंकि वो अपने अभिमन्यु को किसी और के साथ देख जो नहीं सकती, और ऐसे में मन्नत और विक्रांत को करीब देख वो चिढ़ जाती है और दोनों को अलग करने की कोशिश करती है, पर मंगलसूत्र ने उनका रिश्ता जोड़ा हुआ है।
2: कटी।

0: मेरे अभी के ऊपर गिरने की क्या जरूरत है? समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना दूर हटो मेरे फियांसे से।
1: परेशान से जाओ, उसकी गलती थोड़ी है, मेरा पैर फिसल गया था। और वो भी क्यों फिसला? क्योंकि तूने मुझे धक्का दिया था। अगर तूने मुझे धक्का नहीं दिया होता तो मेरा पैर फिसलता नहीं, बेचारी को बचाने की जरूरत थी। शांत
0: अभी तो तुम कुछ मत बोल, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम डूब रहे
1: हो गया, हो गया,
0: कोई बात नहीं, निकल जाए, कुछ नहीं सुनना मुझे, दूर हटो।
1: नहीं, वो क्या किया तुझे? ये कोई मामूली धागा नहीं है, ये इसका मंगलसूत्र है, इसके प्यार की निशानी है।
2: हाँ, मान्यता को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने पहले भी देखा था कि इनका कुछ है कनेक्शन। जब हॉस्पिटल में नहीं, जब हम अमृतसर में गए थे तो वहाँ पे भी इनका कुछ कनेक्शन था, तो मान्यता ने देखा, उसको जेलेसी हुई। और यहाँ पे भी जब वो देखती है अभिमन्यु को मन्नत के साथ उसके ऊपर गिरते हुए, तो उसे अच्छा नहीं लगता और उसे वो उसको हटाने की कोशिश करती है।
3: भाई, अभिमन्यु ने मान्यता को रोका तो रोका, मन्नत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मान्यता को सुनाने में, क्योंकि ये मंगलसूत्र का धागा ही है जो अभी उसको विक्रांत के साथ जोड़े हुए है। बात और ना बढ़े ऐसे में सम्राज्ञी मान्यता को लेकर वहाँ से चली जाती है समझाने बुझाने के लिए। और यहाँ पर मन्नत सम्राज्ञी का इंतजार कर रही है। इसी बीच अभिमन्यु आकर मन्नत को पानी भी देता है और मान्यता की तरफ से माफी भी मांगता है। और तभी वहाँ पर पहुँच जाती है मान्यता भी। बस फिर क्या, मान्यता भी मन्नत के सामने कोई कसर नहीं छोड़ रही ये दिखाने में कि अभिमन्यु सिर्फ और सिर्फ उसका है। तभी तो देखिए कैसे वो मन्नत के सामने अभिमन्यु का हाथ छोड़ नहीं रही। वो तो अभिमन्यु को कॉल आ जाता है जिसके चलते अभिमन्यु को वहाँ से जाना पड़ता है। वैसे बता दें कि मन्नत मान्यता और अभिमन्यु की शादी की प्लानर है। इतना ही नहीं, अब तो सम्राज्ञी भी ये जानना चाहती है कि आखिर मन्नत ने अभिमन्यु से ऐसा क्या कहा कि अभिमन्यु की तबीयत बिगड़ी। लेकिन मन्नत ने इसका सारा टीकरा मान्यता के ऊपर फोड़ दिया, वो भी बड़े प्यार से।
0: आज तक अभिमन्यु के साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं ना। अभिमन्यु बहुत ही मस्त इंसान है, किसी बात की टेंशन नहीं लेता है। और आज इतनी छोटी सी बात लेकर इतनी टेंशन ले ली उसने। बस
4: मुझे मान्यता जी की वजह से टेंशन लेना चाहिए। शादी में वो चाहते हैं कि मान्यता जी को जो कुछ भी चाहिए सब कुछ होना चाहिए। इतना कम समय रह गया शादी के लिए। नहीं नजदीकी शादी के कैसे पॉसिबल है? वही चीज मैंने उन्हें बोली तो स्ट्रेस पर आ गए, अपसेट हो गए कि मान्यता जी अपसेट हो जाएंगी, है ना? ये बात है तुमसे मेरे अभी की खुशी।
3: खैर, मान्यता को तो मन्नत पर डाउट हो गया है, लेकिन सम्राज्ञी वो इस बात से अनजान है कि मन्नत का विक्रांत कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु ही है। वहीं दूसरी ओर विक्रांत के पापा रोने की तबीयत बिगड़ गई है जिसके चलते धैर्य उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के लिए लाया है। ऐसे में डॉक्टर ने धैर्य को बताया कि उन्हें माइनर अटैक आया है। ये सुनकर धैर्य परेशान है क्योंकि उसका प्लान अब तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर वो बाहर निकलता है कि तभी उसकी नजर पड़ जाती है कुमार पर। और ऐसे में उसे डाउट हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। देखना होगा क्या धैर्य को पता चल पाएगा कि मन्नत अब भी अभिमन्यु का सच जानने की कोशिश में लगी है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
0: ऐसा क्या बोलूं, क्या करूं जिससे आपको यकीन हो जाए कि आप मेरे पति, मैं आपकी पत्नी मिसेस मन्नत विक्रांत सलूजा, और ये लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं। आपको अंधेरे में रखा हुआ है इन्होंने। कुछ याद करने की कोशिश कीजिए विक्रांत, प्लीज।
5: मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी।
6: पूरे हफ्ते काम करने के बाद एक सैटरडे वाली पार्टी तो होती है बहुत ही रॉकिंग, लेकिन अगर ना मिले आपको रिजर्वेशन आपके फेवरेट क्लब में तो डेफिनेटली हो जाएगा ना शॉकिंग। कुछ ऐसी ही रॉकिंग, कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारे पास ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
3: टीवी जगत से एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है। सीरियल सैराब में ईशान के किरदार में नजर आ रही रोहित चंदेल को मुंबई पुलिस ने एक 16 साल की नाबालिग लड़की का पीछा करने, छेड़छाड़ करने और मारपीट करने के आरोप में पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी शुक्रवार की शाम में हुई है। प्राथमिक सबूतों के आधार पर रोहित चंदेल को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, लेकिन जब तक इस मामले की तह तक नहीं पहुंचा जाएगा तब तक रोहित को पुलिस कस्टडी में रहना होगा। यानी सीरियल सैराब जो कि अब टीआरपी में धीरे धीरे उठ रहा था, उसकी शूटिंग पर ब्रेक लग जाएगा क्योंकि मुख्य किरदार रोहित चंदेल निभाते हैं। ऐसे में देखना होगा क्या स्टार प्लस की टीम कोई एक्शन लेगी, क्या ईशान का किरदार बदल जाएगा और क्या नए ईशान के आने पर सीरियल जिसने रफ्तार पकड़ ली थी उसकी रफ्तार यूं ही बरकरार रहेगी या फिर ब्रेक लगेगा।

सास बहु और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। भाई सभी दर्शक रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म रामायण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब सामने आ गई है ये गुड न्यूज कि 24 जुलाई को फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज होगा। बिग बॉस में नजर आ चुकी पलक पुरसवानी ने अपने बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना के साथ शादी कर ली है, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है। और वैसे इनकी ये शादी बेहद ही खास है, क्योंकि इन्होंने ये शादी कहीं और नहीं बल्कि ईशा योग सेंटर के पास की है, जहां पर पीछे महादेव का आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है।

0: पर मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो ले ली, पर इतना सब कुछ कैसे होगा?
1: तुम्हारे अलावा ये कोई और नहीं कर सकता।
2: स्टारप्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा अपनी उड़ान भरने वाली है, लेकिन संजय उस पर ब्रेक लगाने की तैयारी में जुटे हैं। देख लीजिए प्रोमो।
3: कर लो कोशिश, मैं भी देखता हूँ कि मुझसे ये फॉर्म कैसे छीन लिया।

0: खबरें आ रही हैं कि सोनी सब के सीरियल हुई गुम यादें में छवि पांडे जल्द ही एंट्री करने वाली हैं। वैसे बता दें कि इस सीरियल में डॉक्टर वाणी का किरदार निभाने वाली सृष्टि सिंह ने अलविदा कह दिया है। ऐसे में छवि पांडे सृष्टि सिंह का किरदार यानी कि डॉक्टर वाणी बनकर आएंगी। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में जल्द ही होने वाली है न्यू एंट्री, और वो न्यू एंट्री होगी सीनियर एक्ट्रेस कविता वैद की, जो कहानी में लेकर आएंगी ट्विस्ट। ऐसी खबरें आ रही हैं।
1: गलती हमारी नहीं थी, ऑर्डर्स ऊपर से आए थे, ईंट का जवाब पत्थर से, पर सामने वाला सीधा पत्थर ही उठा ले तो जवाब क्या।
0: अजय देवगन की आने वाली फिल्म चौहान का टीजर फिर से रिलीज हुआ है। असल में इससे पहले जब टीजर रिलीज हुआ था तो उसमें जिशान आयुब का वॉइस ओवर था, जिसको दर्शकों ने बहुत ही क्रिटिसाइज किया था, और इसी के चलते अजय देवगन ने अपनी फिल्म चौहान का टीजर फिर से रिलीज किया है नए वॉइस ओवर के साथ।
2: जुम्मे की इस तारीख में वादा करो क्या आपसे हर जुम्मे और

0: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में राही का किरदार निभाने वाली अद्रिजा ने अपना बर्थडे अपनी टीम के साथ मनाया है और खिंचवाई है ढेर सारी फोटोज। देख लीजिए उनके ये खुशियों के पल जो उनके सीरियल अनुपमा की टीम के साथ है।
1: एक समंदर है जो काबू में है, एक खतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता।
0: एकता कपूर ने एक वीडियो शेयर किया है जहां पर उनका आशिकाना मिजाज नजर आ रहा है। बता दें कि जिस शायरी पे वो वीडियो बना रही हैं, वो शायरी किसी और ने नहीं बल्कि गौरव खन्ना ने बोली है।
1: एक उम्र बितानी है उसके बारे में और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता।
2: कोई तो आया
3: हो जा दिया तुमने
4: क्या करे।
5: Hi, I'm Rao, 204.
6: I'm Rio. Bye.
5: Bye. Rio, coming to play carom with us?
0: अजीब दास्तां है। जी टीवी पर हो गया है आगाज सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा पा का। देख लीजिए प्रोमो, यानी जल्द ही सारेगामा पा की ऑडिशंस होंगे।
7: जहाँ की सुर एक अनजान शहर को अपना बना दे, वहाँ की आवाजों को अब पूरा देश सुनेगा।
0: जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ की आने वाली फिल्म सफेद सागर का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। देख लीजिए इस फिल्म का ये पोस्टर।

करिश्मा तन्ना ने अपने वर्कआउट का वीडियो शेयर किया है, जहां पर वो बेबी बम फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं और साथ ही कर रही हैं डांस धमाल भी।

आकांक्षा रंजन की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इनकी हल्दी सेरेमनी में पहुंचे हैं बॉलीवुड के कई सारे सितारे। आलिया भट्ट जो देसी अंदाज में तो हैं, लेकिन इन्होंने मॉडर्न टच दिया है। इसी के साथ जानवी कपूर पीले रंग के अटायर में पहुंची हैं। सोनाक्षी सिन्हा भी अपनी माँ के साथ पहुंची हैं हल्दी सेरेमनी अटेंड करने के लिए। साथ ही नजर आए हैं शत्रुघ्न सिन्हा। श्रेया चौधरी, अर्जुन कपूर, डेविड धवन, और भी कई सितारे पहुंचे हैं आकांक्षा की हल्दी सेरेमनी में। वेब सीरीज रक्तांचल का सीजन 3 जल्द ही आने वाला है। ऐसे में रक्तांचल में नजर आने वाले सभी कलाकार जुट गए हैं अपनी सीरीज को प्रमोट करने के लिए। जरा देखिए कैसे निकेतन धीर, क्रांति प्रकाश झा, करण पटेल, माही गिल, विक्रम कोचर और राजेश कुमार पहुंचे हैं एक साथ और कर रहे हैं मुलाकात और साथ ही कर रहे हैं प्रमोट अपनी वेब सीरीज को। बीती रात छाया मुमाया ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है और उनके बर्थडे पर पहुंची हैं नीलम कोठारी, रमेश सिप्पी अपनी बीवी के साथ, रोहित रॉय अपनी बीवी के साथ पहुंचे हैं। साथ ही पहुंचे हैं यश बिरला भी। इनके अलावा कई और सितारे पहुंचे हैं छाया मुमाया को उनके जन्मदिन की देने ढेर सारी बधाइयां।

0: 17 जुलाई को रिलीज होने वाली है हॉलीवुड फिल्म द ओडिसी, जिसका इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं। ऐसे में फैंस के लिए इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां पर खुद क्रिस्टोफर नोलन, मैट डोमेन, टॉम हॉलैंड और एमा थॉमस पहुंचे हैं अपने फैंस से रूबरू करने के लिए। बीती रात फिल्म मैक्स मिन एंड म्यूजाकी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। ऐसे में वहां पर नासिर, नफीजा अली, मंदिरा बेदी, सिद्धार्थ मेनन, विधात्री और भी कई सारे सितारे पहुंचे हैं।
1: तो कैसा रहा एंटरटेनमेंट से भरपूर हमारा ये एपिसोड? हमने आपको घर बैठे बैठे करवा दिया ना एंटरटेनमेंट की दुनिया का सफर। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर वो खबर जो लेकर आएगी आपकी जिंदगी में ढेर सारा मनोरंजन। टिल देन एंजॉय योर वीकेंड, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
3: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
9: भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्र गिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। राम भक्तों के लिए आई गुड न्यूज, 30 जुलाई तक श्रीराम मंदिर परिसर में सभी निर्माण कार्य हो जाएंगे पूरे। राम कथा संग्रहालय की 20 गैलरी की स्टोरी लाइन भी तैयार। न्यूजीलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, भारतीय संस्कृति की दिखी झलक, पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय, इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज का पांचवा और आखिरी मैच आज साउथहैम्प्टन।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्रगिरी नौसेना में हुआ शामिल, विशाखापट्टनम में हुई कमिशनिंग सेरेमनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में INS महेंद्रगिरी को नौसेना में किया गया शामिल, रक्षा मंत्री ने नेवी को दी बधाई, कहा यह देश की सुरक्षा में मील का पत्थर। भारत के प्रोजेक्ट 17A की नीलगिरी कैटेगरी का छठा स्टील्थ फ्रिगेट है INS महेंद्रगिरी, 75% स्वदेशी उपकरणों से है लैस। एंटी सबमरीन सिस्टम और एडवांस मिसाइल से लैस जंगी जहाज है INS महेंद्रगिरी, भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया है डिजाइन, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया निर्माण। INS महेंद्रगिरी में है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, हाई स्पीड वाले जहाज को रडार पर ट्रैक कर पाना होगा मुश्किल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, INS महेंद्रगिरी पर लगाई जा सकती है ब्रह्मो सुपरसोनिक मिसाइल्स। जमीन से लेकर आसमान और हवा में मार करने वाले मिसाइल से लैस है ये फ्रिगेट, आधुनिक रडार और सेंसर सूट्स भी मौजूद। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया जहाज का नाम, शक्ति मजबूती और अटल संकल्प का है प्रतीक। नौसेना को इस साल मिला छठा युद्धपोत INS महेंद्रगिरी, 40 और जंगी जहाजों के निर्माण का चल रहा है काम। अगले 2 महीने में नेवी को मिल सकते हैं 4 और जंगी जहाज, जनवरी 2025 से अब तक मिल चुके हैं 18 युद्धपोत। बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, आस्था और विश्वास के साथ बना हुआ है चारधाम यात्रा का उत्साह। चमोली में यात्रा मार्ग सुचारू होने से श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी, नहीं हो रही है कोई परेशानी। बारिश के कारण बद्रीनाथ के पास बढ़ रहा है अलकनंदा नदी का जलस्तर, पूरे उफान पर बह रही है नदी। अब तक लगभग 15 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं बद्रीनाथ धाम में दर्शन, रोजाना 9 से 10 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं धाम। रुद्रप्रयाग सहित केदारनाथ धाम में कई दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश, तीर्थ यात्रा भी है जारी। रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, 30 जुलाई तक श्री राम मंदिर परिसर में सभी निर्माण कार्य हो जाएंगे पूरे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बयान, मंदिर के निर्माण कार्य की कर ली गई है समीक्षा, अब सिर्फ 2 कार्य पूरे किए जाने हैं बाकी। मंदिर परिसर में स्मारक के रूप में संरक्षित पुराने राम मंदिर में 24 घंटे चलने वाली ज्वाला की व्यवस्था होनी बाकी, बचे हुए निर्माण कार्य पूरे। श्रीराम मंदिर परिसर में दूसरे स्मारक का काम जुलाई के अंत तक हो जाएगा पूरा, 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का काम। मंदिर परिसर के बाहर ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य नवम्बर से दिसंबर तक हो सकता है पूरा। राम कथा संग्रहालय की 20 गैलरी की स्टोरी लाइन भी तैयार, अब आगे के काम पर होगा निर्णय। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा से पहले भव्य तैयारियां, विशाल रंगोली बनाने में जुटे हैं कलाकार। रथ यात्रा से पहले विशेष वस्त्र तैयार करने में जुटे हैं दर्जी और कारीगर, 17 कारीगर कर रहे हैं निर्माण। रथ को सजाने के लिए 1250 मीटर कपड़े का किया गया इस्तेमाल, जगन्नाथ जी और बलदेव जी के रथों के लिए 425 मीटर और सुभद्रा जी के लिए 400 मीटर कपड़े का होता है उपयोग। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, इस बार 16 जुलाई को निकलेंगे रथ। पुरी में 5 किलोमीटर का दायरा नो फ्लाइंग जोन किया गया घोषित, 16 जुलाई से 27 जुलाई तक बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। करीब 40,000 लोगों से हुए रूबरू। भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ पीएम का हुआ जोरदार स्वागत। न्यूजीलैंड के मिनी इंडिया में बोले पीएम मोदी, 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं, दौरा संपन्न करके आज ही लौट रहे हैं स्वदेश। ऑकलैंड में पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ जुड़ाव का किया जिक्र, कहा 25 से 30 वर्ष पहले न्यूजीलैंड के एक साथी ने भेंट किया था मफलर, मैंने आज भी इसे उसी तरह संभाल कर रखा है। संबोधन से पहले अपने नाम और नंबर 100 वाली जर्सी के साथ देखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। भारतीय समुदाय के लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। न्यूजीलैंड के पीएम ने भी जन समुदाय को किया संबोधित, कहा पीएम मोदी हमारे लिए प्रेरणा, पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ। ऑकलैंड में गाला लंच में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, न्यूजीलैंड के पीएम ने किया भव्य आयोजन। ऑकलैंड में गाला लंच के दौरान शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारतीय और न्यूजीलैंड के कलाकार हुए शामिल। न्यूजीलैंड में अपने संबोधन में बोले पीएम मोदी, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज, हम फिनटेक में लीडर। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ समझौतों का किया स्वागत, कहा हिंद प्रशांत में समुद्री सहयोग के लिए फ्रेमवर्क पर बनी सहमति। ऑकलैंड के वियाडक्ट बिजनेस सेंटर में कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, बिजनेस लीडर्स को संबोधित किया। न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी की वहां के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक, अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए अहम समझौते, मुक्त व्यापार समझौता हुआ फाइनल। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत, गवर्नमेंट हाउस में लोक कलाकारों ने दी प्रस्तुति। पारंपरिक माओरी तरीके से किया गया पीएम मोदी का स्वागत, न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और परंपराओं की दिखी इसमें झलक। न्यूजीलैंड के गवर्नमेंटल हाउस में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, गर्मजोशी के साथ किया गया स्वागत। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने ऑकलैंड में खेल प्रदर्शनी का किया दौरा, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों और हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के साथ भी की बातचीत। न्यूजीलैंड पहुंचने पर ऑकलैंड में कम्युनिटी वेलकम के दौरान देखने को मिली भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक, कलाकारों ने पेश किए कई भव्य कार्यक्रम। न्यूजीलैंड में भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उमड़ा जनसैलाब, हाथों में तिरंगा लिए नजर आए लोग, पीएम ने भी हाथ मिलाकर अभिवादन किया स्वीकार। भारत के तिरंगे के रंगों में रंगा नजर आया ऑकलैंड का मशहूर स्काई टावर, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के सम्मान में हुई जगमग रोशनी। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा, दोनों देशों के बीच व्यापार निवेश और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने की पहल। दो दिन जोरदार बारिश के बाद दिल्ली और आसपास मौसम हुआ साफ, 15 जुलाई तक मॉनसून की रफ्तार रह सकती है धीमी। दिल्ली में मौसम बना हुआ है सुहाना, अधिकतम तापमान 33 डिग्री के करीब किया गया दर्ज, 37 डिग्री तक जा सकता है पारा। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक के लिए जारी किया येलो अलर्ट। गुजरात में आज मौसम साफ रहने के आसार, लेकिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में 12 एनडीआरएफ और 26 एसडीआरएफ की टीमों को किया गया है तैनात।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
10: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
11: ऑल स्पोर्ट्स ऑल द टाइम राइट हियर ऑन ट्यून इन। Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
12: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
11: Big 12 Radio.
13: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
11: and
13: down.
11: Talk sports.
14: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
11: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
2: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में
गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न

0: प्रकबसम, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: बच्चे के जन्म का समय कितना महत्वपूर्ण होता है?

0: शत्रु उसके जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है। बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्रगिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। राम भक्तों के लिए आई गुड न्यूज, 30 जुलाई तक श्री राम मंदिर परिसर में सभी निर्माण कार्य हो जाएंगे पूरे। रामकथा संग्रहालय की 20 गैलरी की स्टोरी लाइन भी तैयार। न्यूजीलैंड दौरे पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत, भारतीय संस्कृति की दिखी झलक, पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय, इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम, शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उसे पूरी इमारत को खरीदा।

0: नमस्कार, प्रार्थना स्वीकार के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो भक्त पूरी आस्था के साथ हनुमान जी का सुमिरन करता है, उसके जीवन के सारे संकटों का निवारण करते हैं बजरंग बली। आज हम आपको बताएंगे महाबलशाली पवन पुत्र हनुमान के कुछ चमत्कारी नामों के बारे में। उनके ऐसे दिव्य 12 नामों की महिमा बताएंगे, जिनके जाप से आपके दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं बजरंग बली के चमत्कारी नामों की महिमा।
1: कलयुग में हनुमान जी की उपासना सबसे उत्तम फल प्रदान करने वाली है। भगवान श्री राम के कार्य सिद्ध करने वाले हनुमान जी साक्षात रुद्रावतार और संकट मोचन है। केसरी नंदन हनुमान जी अतुलित बल के प्रतीक हैं। उनका बल दूसरे कार्यों को सिद्ध करने और दुखों को दूर करने में खर्च होता है। सच्चे मन से महाबली पवन पुत्र की आराधना की जाए तो वो अपने भक्त का हर मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। हनुमान जी को चाहे किसी भी नाम से पुकारो, वो भक्त को संकट में देखकर दौड़ चले आते हैं। आज हम आपको बजरंग बली के ऐसे 12 दिव्य नाम बताने वाले हैं, जिनके जाप से आपकी सभी परेशानियों का अंत हो सकता है। श्री हनुमान के 12 नाम हैं कल्याणकारी, प्रभु हनुमान के नाम से मिटेगी विपदा सारी, अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता, यानी हनुमान जी को प्रसन्न कर आप धन संपत्ति विद्या सेहत वैभव संतान सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। प्रभु हनुमान एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनके शीघ्र कृपा पाने के लिए उनके विधिवत पूजा उपासना तो फलदायी है ही, लेकिन हनुमान जी के 12 नामों के जाप से हर विपदा टाली जा सकती है।
2: जैसा कि स्पष्ट है नाम से, जैसे हनुमान। एक बार की कथा आती है कि हनुमान जी जब सूर्य को निगल लिए तो चारों ओर अंधकार हो गया। तब इंद्र क्रोधित होकर उनके हनु मने होता है ठुड्डी पर वार करते हैं, जिससे हनुमान जी का नाम जो मारुति रहता है वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। तब उनके पिता जो वायु पवन देव रहते हैं, वो पूरे संसार से वायु को सोख लेते हैं, जिससे कि संसार में त्राहिमाम मच जाता है। तब सभी देवी देवता लोग मिलकर वायु से प्रार्थना करते हैं कि हे वायु देवता, आप अपने जो वायु है उसको रोके न और संसार के सृष्टि को चलने दे। तब हनुमान जी के जीवन के लिए पवन देवता आग्रह करते हैं कि मेरे हनुमान जो पुत्र हैं इनको जीवित किया जाए। तब ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से फिर पुनः मारुति नंदन हनुमान जी को जीवन मिलता है, और इसी से चूंकि हनु के चोट लगा रहता है, इसी से उनका नाम हनुमान पड़ा।
1: हनुमान अंजनी सुत वायु पुत्र, महाबली रामेष्ट फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष अमित विक्रम उदधि क्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता, दश ग्रीव दर्पदा, अजर अमर है हनुमान। अपने भक्तों पर कृपा करते हैं हनुमान। वो संकट मोचन है, वो महावीर है। महाबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपकी वो सभी परेशानियां पल भर में छुमंतर हो जाएंगी, जिनसे आप कई वर्षों से जूझ रहे थे।
2: जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है और वह मूर्छित हो जाते हैं, तो हनुमान जी ही जो रहते हैं वो जाकर संजीवनी को लाते हैं और भगवान के आग्रह से लक्ष्मण के प्राण की रक्षा करते हैं, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण प्राणदाता है। दूसरा नाम है सीता शोक विनाशन। जिस प्रकार से जब सीता जी शोक कुल रहती है वाटिका में, अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी जाते हैं और उनके शोक का निवारण करते हैं, इसलिए उनका एक नाम सीता शोक विनाशक है। और वायुपुत्र नाम है। और भगवान के हनुमान के ये 12 नाम समय समय पर लेने पर हमारे हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है।
1: प्रभु हनुमान के इन 12 नामों का प्रयोग कैसे करें और इससे हनुमान जी किस तरह के कष्ट हरते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। आप हिस्सा बने रहिए।
0: कहते हैं बहुत दयालु है वायु पुत्र हनुमान का हृदय। अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हनुमान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। बजरंग बली जिस तरह से श्री राम का नाम जप कर परम तेजस्वी और शक्तिशाली बने, उसी तरह भक्त हनुमान जी के नाम जप कर दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कैसे करना है आपको हनुमान जी के 12 नामों का जाप, जानिए।

0: हनुमान जी की आराधना करने से हर पाप और हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। जिस घर में हनुमान जी की कृपा बरसती है वहाँ कोई भी दुख कलेश और रोग दोष नहीं आता है। हनुमान जी को चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। वे सभी कलाओं में सिद्धहस्त और माहिर हैं। प्रभु हनुमान के भक्त उन्हें अलग अलग नामों से याद करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना है। प्रातःकाल, रात में सोने के पहले, नए कार्य के आरंभ के पहले, ये यात्रा की शुरुआत के पहले हनुमान जी के 12 नामों का प्रयोग करें। पीले कागज पर लाल रंग से हनुमान जी के 12 नाम लिखें। इन नामों को घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान पर लगा सकते हैं। भोजपत्र पर अष्टगंध से लिखकर इसे लॉकेट की तरह गले में धारण कर सकते हैं। इन नामों का प्रयोग करने से व्यक्ति की 10 दिशाओं से रक्षा होती है। प्रातः काल ये नाम लेने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। दोपहर को ये नाम लेने से धनवान होता है। रात को ये नाम लेने से विरोधी परास्त होते हैं, शत्रु शांत होते हैं। हनुमान जी के 12 नाम मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। इन 12 नामों का रोज प्रातः 9 बार जाप करना चाहिए।
1: लक्ष्मण प्राणदाता जो नाम है, अगर हमारे प्राणों को किसी शत्रु से भय है तो इस नाम का जप करने से हमारे प्राण की रक्षा होगी और शत्रु का विनाश होगा। रामेष्ट, अगर हमें किसी ब्रह्म की पूजा करनी है तो रामेष्ट नाम का जप करना चाहिए, जिससे हमें इष्ट की प्राप्ति होगी। अंजनी सुत, अगर हमें अच्छा संतान चाहिए, जिस प्रकार से हनुमान जी अपनी माता के लिए हर काम करते थे, तो ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए हम लोग अंजनी सुत नाम का जप करें। पवन पुत्र का आते हैं कि बहुत वेग से हनुमान जी चलते रहे, तो अगर हमारे मन में गतिशीलता चाहिए तो हमें पवन पुत्र का नाम का जप करना चाहिए। हनुमान शब्द शक्ति से आशय होता है, अगर हमें बलवान बनना है तो हमको हनुमान नाम का जप करना चाहिए। इसी प्रकार से अनेक नाम है और सबके अलग अलग फल बताए गए।
0: माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही सबसे प्रभावशाली देवता हैं। और उनका नाम सुमरने से ही आपके सारे काम बन जाएंगे। आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं तो आपको नियमित रूप से श्री हनुमान के 12 नामों को जपना तो चाहिए ही। तो आइए आपको प्रभु हनुमान के 12 नामों का एक खास प्रयोग बताते हैं। हनुमान जी के 12 नामों को एक पीले कागज पर लिखें। इस कागज को घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। हनुमान जी के 12 नामों का जाप करने से यात्रा सफल होगी। 12 नामों को भोजपत्र पर अष्टगंध से लिखें। इसे चांदी या तांबे के लॉकेट में पहने। इससे भय से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही धारण करने वाले इंसान के आत्मबल में भी वृद्धि होती है।
1: हनुमान जी का एक तस्वीर रखकर उनका 16-50 या 55 पूजन करके धूप दीप नैवेद्य और हनुमान जी को लड्डू मोदक बहुत प्रिय है और उसमें तुलसी दल का भोग लगा करके हनुमान जी का पूजन करने के बाद और ओम प्रार्थना करें। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातावजम वानरयुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्धे। इस नाम का प्रार्थना करके फिर भगवान के नामों का हमें उच्चारण करके तुलसी दल या किसी भी चीज का अर्चन करना चाहिए, जिससे हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
0: श्री हनुमान जी की महिमा का गुणगान जितना ही किया जाए वो कम है, लेकिन एक नाम है जिससे हनुमान जी की विशेष कृपा आपको शीघ्र ही मिल सकती है। वो नाम है श्री राम। श्री राम का नाम लेने से आपके सारे काम बन जाएंगे। आपको राम की कृपा तो मिलेगी ही, हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। आपके पग पग को सुगम और सरल बनाएंगे। इसलिए हनुमान जी के नामों का ध्यान कीजिए। प्रभु हनुमान आपका हमेशा कल्याण करेंगे।
2: कहते हैं जहां श्री राम है वहां हनुमान है। देश भर में बजरंग बली के कई मंदिर बने हुए हैं, जहां मंगलवार और शनिवार के दिन महावीर के दर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं पवन पुत्र के दिव्य स्वरूप के साथ।

0: उस दरबार में भगवान के साथ साथ भक्त के नाम के भी लगते हैं जयकारे। उस दरबार में विराजते हैं बजरंग बली हनुमान। मान्यता है कि उस दरबार में हनुमान साक्षात विराजमान है। भक्त हनुमत शक्ति के एहसास को महसूस करते हैं, इसीलिए साल के हर दिन इस दरबार में भक्तों का रेला लगा ही रहता है। कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई भी संकट नहीं है जो बजरंग बली के काटे न कटे, इसीलिए इस दरबार में आशीष पाने वाले हर श्रद्धालु का जीवन निष्कंटक हो जाता है। पवन पुत्र का ये दरबार उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थापित है, जिसे यहाँ आने वाले श्रद्धालु हनुमान धारा नाम से जानते हैं। इस दरबार में भगवान हनुमान सिंदूरी वेश में भक्तों का कल्याण करते हैं। अपनी गदा से भक्तों के संकटों को भूल धूसरित कर देते हैं। तभी इस दरबार के महंत यहां आए हर भगत को हनुमान जी की धातु की गदा से आशीर्वाद देते हैं। हनुमान धारा के इस तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। इसके दर्शन से हर एक व्यक्ति का तनाव खत्म हो जाता है और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप देखेंगे कि पहले पहुंच विहीन हुआ करता था, परंतु अब सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि रोपवे के माध्यम से व्यक्ति आ भी जाता है और दर्शन भी कर लेता है।
0: इस तीर्थ में वो जलधारा भी दिखती है और दर्शन भगवान हनुमान भी देते हैं, जिसकी कथा राम से जुड़ी है, रामायण से जुड़ी है। ये पवित्र और शीतल जलधारा बजरंग बली के पूछ को स्पर्श करती है, स्नान कराती है और सीधे नीचे कुंड में चली जाती है। पौराणिक कथा कहती है कि रावण ने रामदूत हनुमान को दंड देने के लिए उनकी पूंछ को आग लगवाई थी, लेकिन हनुमान जी ने रावण के अहंकार का विनाश करने के लिए जब सोने की लंका का दाह किया, तब उनकी पूंछ में काफी जलन हो रही थी। 14 साल का वनवास काटकर भगवान अयोध्या के राजा बने और उसके बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी लीला समाप्त कर बैकुंठ को जाने को हुए, तो हनुमान ने उनसे प्रार्थना की और कहा कि लंका का दहन करने के बाद उनके शरीर और उनकी पूंछ में अग्नि की जलन असहनीय कष्टकारी होती जा रही है। तब श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान से कहा कि चिंता मत करो और अपने अजेय बाण के प्रहार से विंध्य पर्वत के शिखर पर एक पवित्र शीतल जलधारा निकाल दी, जो हनुमान जी की पूंछ पर लगातार गिरती रही और पूंछ के दर्द को कम करती रही। तभी से इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसीलिए भक्त इसे हनुमान धारा कहते हैं। 100 मीटर ऊंची पहाड़ी पर विराजमान भगवान हनुमान यहाँ पंचमुखी स्वरूप में विराजमान हैं। सिंदूर और तेल में रचे बसे हनुमान जी के दर्शनों से पहले नीचे बने कुंड में भक्त हाथ पैर मुंह धोना कभी नहीं भूलते। हनुमान धारा तीर्थ का प्राकृतिक वातावरण इतना मनोरम है कि यहाँ बार बार आने को मन आह्लादित रहता है। ये धारा रामघाट से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। इस जलधारा का पानी शीतल और स्वच्छ है। साल के 365 दिन ये जल बहता ही रहता है। यहाँ जल कहाँ से आता है ये किसी को पता नहीं। रुद्रावतार भगवान हनुमान को बल बुद्धि के साथ साथ विद्या का देवता भी माना गया है। इस दरबार में आने पर हर श्रद्धालु को भगवान हनुमान आरोग्यता के साथ साथ देते हैं कल्याण का वरदान।
2: तो चलिए प्रार्थनाओं स्वीकार के आज के संक में फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। इजाजत दीजिए।

0: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा, हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक। ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
2: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
1: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
3: Because people who all watch games, they hear the voice.
1: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: पहाड़ों में मानसून की एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है, बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल का पहरा है तो केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रही है। हालांकि इन सबके बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है, भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद में थोड़ी कमी आई हो लेकिन धामों में रौनक बरकरार है। इस बीच मौसम की चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है।
11: भोलेनाथ और बद्री विशाल के दर्शन की चाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की ऊंचाइयों तक खींच लाती है और इस खूबसूरत वादी का कोना कोना जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से गूंज उठता है। चारधाम में आस्था के इस राह में वो दौर भी आता है जब ना चाहते हुए भी श्रद्धालुओं को अपने कदम रोकने पड़ते हैं। भगवान के दर्शन का इंतजार लंबा हो जाता है। इस बार की चारधाम यात्रा में भी वो पड़ाव करीब आ चुका है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मौसम की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि चारधाम में अभी भी रौनक है। भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद थोड़ी कम हो गई है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहाँ पहाड़ों पर बादलों का डेरा है और अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक मॉनसून ने पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब या फिर फूलों की घाटी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह बरकरार है।
12: 3,000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, उत्साह बना हुआ है। बारिश हो या फिर बर्फबारी भी यहाँ पे देखने को मिली थी। ठंड यहाँ पे देखने को मिलती है, अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हेमकुंड साहिब में देखने को मिलती है। ऐसे में हेमकुंड साहिब इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा, तो वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर ही जब फूलों की घाटी पर्यटक पहुँच रहे हैं, वो पर्यटक हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं, तो हेमकुंड का जो तीर्थयात्री है वो फूलों की घाटी भी जा रहा है। ऐसे में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में इस समय जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है।
11: श्रद्धालुओं के लिए भले ही चुनौतियों पर आस्था भारी हो, लेकिन तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए हर संभव इंतजाम में जुटा प्रशासन अलर्ट मोड में है। बारिश के दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और मौसम सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बस राहत ये है कि दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है, लगातार मौसम और नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं। स्थिति सामान्य होने की वजह से फिलहाल केदारधाम की यात्रा भी जारी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
13: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
14: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
15: I have no idea how this election is going to play out,
14: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
9: अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: बच्चे के जन्म का समय कितना महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का जन्म नक्षत्र उसके जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्रगिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। राम भक्तों के लिए आई गुड न्यूज, 30 जुलाई तक श्रीराम मंदिर परिसर में सभी निर्माण कार्य हो जाएंगे पूरे। राम कथा संग्रहालय की 20 गैलरी की स्टोरी लाइन भी तैयार। न्यूजीलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, भारतीय संस्कृति की दिखी झलक, पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय, इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम, शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत उस पूरी इमारत को खरीदा।

फिल्मों में रिश्ते और जज्बातों को खास अंदाज में पेश करने वाले निर्देशक इम्तियाज अली ने गुड न्यूज टुडे से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के कई दिलचस्प पहलू साझा किए, साथ ही अपनी चर्चित फिल्म मैं वापस आऊंगा से जुड़े कुछ अनसुने किस्से भी सुनाए। देखिए इम्तियाज अली के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत।

0: Dar și Coca Emotions.
1: पंजाब दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया।
2: लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में। वो बता भी रहे हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही।
0: फिल्में अगर आपको रुला दे,
3: ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ चिता में जाएगी।
0: फिल्म अगर आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो भाई फिल्म मेकर को मिलती है सबसे बड़ी खुशी। और ऐसी खुशी मिल रही है राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर इम्तियाज अली को, जो अपनी फिल्म मैं वापस आऊंगा का लाइव रिएक्शन लेने पहुंचे थिएटर्स में। यूं तो ये फिल्म जून के महीने में रिलीज हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इस फिल्म ने लोगों के बीच में जगह बना ली है। आज सास बहू और बेटियां निकला है इम्तियाज अली के साथ उनकी फिल्म का लाइव रिएक्शन ले ले। थिएटर्स में जाकर इम्तियाज के साथ हम फिल्म देखेंगे। दर्शकों से करेंगे बातचीत, जानेंगे उनका फीडबैक। फिर चाहे युवा हो, फिर चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, मैं वापस आऊंगा ने सबके मन में इमोशंस जगा दिए हैं।
4: We want more films like this and thank you.
5: आप देखते रहो, मैं बनाते रहो।
6: Can I request you to make a sequel to this that shows that a love like that can happen even today?
5: Thank you. I'll see what I can do.
0: फिल्म आधारित है भारत के 1957 के पार्टीशन की, और आज के जमाने में वो लोग जिन्होंने उस बंटवारे के दर्द को झेला था, ये फिल्म उसको बयां करती है। तो दर्शक कितने इम्प्रेस हुए फिल्म से, ये जानने के लिए इम्तियाज ने इन सभी से लिया रिएक्शन। किसी को गले लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की बातें सुनी।
7: मतलब आपने जिस तरह से दो सोल्स का जो कनेक्शन दिखाया, दोनों अलग है फिर भी दोनों मिल रहे हैं, एंड देन मैं वापस आऊंगा एंड वी फील लाइक हाँ हम जा रहे हैं अपने लव के पास। इट्स लवली।
8: आई फेल सो मच थ्रू दिस मूवी। आई हैव बीन क्राइंग फॉर लाइक 10 मिनट्स लेट एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वर ट्राइंग टू डिपिक्ट इन दिस मूवी एंड थैंक यू फॉर द एंड क्रेडिट्स। दैट वाज वेरी नाइस।
9: थैंक यू। स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द वर्ड।
0: इम्तियाज के साथ खाएंगे हम पॉपकॉर्न और समोसा, जानेंगे उनके जमशेदपुर के दिनों में जहां वो पले बढ़े, जानेंगे कि उनकी कौन सी फिल्म दर्शकों को छूती है। फिर चाहे वो जब वी मेट हो, हाईवे हो, तमाशा हो, रॉकस्टार हो, या फिर हो अमर सिंह चमकीला। मैं वापस आऊंगा में शर्वरी वाघ वेदांग राणा की जोड़ी है, साथ में है नसरुद्दीन शाह और दलजीत दोसांझ जैसे कलाकार। फिल्म बेहद इमोशनल है और फिल्म देखने के बाद दर्शकों का एक बेहद इमोशनल रिएक्शन इम्तियाज को मिला। तो सीधा चलते हैं मुंबई की बारिश के बीच थिएटर्स में, जहां इम्तियाज अली आज हमारे संग करेंगे ये खास थिएटर वाला डे आउट।
10: आज हम निकले खास डे आउट पर और मेरे साथ हैं ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने मिलेनियल से लेकर जेंजी को रोमांस करना सिखाया। मेरे साथ मिस्टर इम्तियाज अली। और इम्तियाज जी, जैसे मैंने कहा कि आपने मिलेनियल्स से लेकर जेंजी तक लोगों को रोमांस करना सिखाया, मुझे याद है कि 2007 में आई सॉ सोचा ना था एंड दैट वाज अ वेरी कमिंग ऑफ एज फिल्म एंड नाउ इन 2005 फिल्म को बहुत वर्ड ऑफ माउथ मिला था एंड आई थिंक 2026 में अब मैं वापस आऊंगा रिलीज हुई है। आई थिंक वही हो रहा है बिकॉज कई फिल्में स्लोली स्लोली स्लोली दिलों तक पहुंचती हैं एंड आई थिंक ये फिल्म धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है।
5: इस फिल्म का पहला गाना भी धीरे धीरे ही है।
10: बट वॉट काइंड ऑफ रिएक्शन आर यू गेटिंग पोस्ट, बिकॉज उस वक्त तो मिलते, लेकिन अब भी जो स्लोली स्लोली वर्ड ऑफ माउथ जो कहते हैं ना कि मुझे आपकी पहली फिल्म में ऐसा ही हुआ था, तो आई थिंक आई एम गेटिंग दिस डेजा वू एंड इवन तमाशा ऑल्सो पीपल से वो इतिहास में लिखी जाएगी।
5: जी, मगर इस बार क्या हुआ है ना जो अलग है कि मैं वापस आऊंगा में वो इतिहास तभी लिखा जा रहा है जब अभी भी फिल्म थिएटर में है।
10: ये भी बड़ी बात है।
5: ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है ना कि मतलब जो बिजनेस है फिल्म मेकिंग का और जो रिकवरी का पैटर्न है वो बेस्ड है सिनेमा परफॉर्मेंस पे, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस पे ना। तो जब सिनेमा थिएटर में फिल्म चलती है और लोग उसको पसंद कर लेते हैं, इन दिस केस तो रिट्रीव ही कर लिया उन लोगों ने, तब इट्स गुड फॉर बिजनेस लाइक दिस फिल्म हैज बीन फॉर अस। That is different from other films, and I would actually, मतलब ये जो लोग हैं ना जिन्होंने आपने देखा होगा कि almost बीड़ा सा उठा लिया था कि अगर ये फिल्म ठीक हुई इम्तियाज की तो फिर हम जो है ना we'll make sure that जनता आएगी, हम ही पुश करके भेज देंगे and we will make sure that ये पिक्चर थिएटर में रहते हुए ही लोगों तक पहुंच जाए।
10: सोशल मीडिया का एक बड़ा हाथ है,
5: सोशल मीडिया का भी हाथ है सर, मगर सोशल मीडिया के बियॉन्ड जैसे मैं थिएटर में जाके देख रहा हूँ ना, एक बड़ी ऑडियंस वो भी है जो सोशल मीडिया में मेरे से तो इंटरेक्ट नहीं करती है, वो फिल्म की जनता है जो सोशल मीडिया में नहीं है। कहने का मतलब ये भी है कि जितने लोग सोशल मीडिया में होते हैं वो लोग फिल्में नहीं देखते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जनरल जो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना कि एक बंदे ने देखी कहीं पर किसी जगह, उसने चार लोगों को कहा, दो गए, उन दोनों ने फिर आठ लोगों को कहा, उनमें से छह गए, इस तरह से फिल्म पड़ी।
10: तो हम बात करते रहेंगे इम्तियाज सर के साथ, क्योंकि हम थिएटर्स के अलग अलग रिएक्शन ले रहे हैं। अब फिल्म चल रही है, अभी ऑडियंस निकलेगी, विल गिव यू लाइव व्हाट पीपल से टू द डायरेक्टर व्हेन डायरेक्टर गोज डायरेक्टली टू द पीपल, स्टे ट्यून्ड।
0: वैसे फिल्म वापस आऊंगा को रिलीज के कई दिनों बाद वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी मिली, और इसमें बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है। कई लोग ट्रोल करता है, कोई प्यार देता है, लेकिन दर्शक इस पे रिएक्शंस दे रहे हैं। ऐसे ही ढेर सारे दर्शक हमें मिले जो इम्तियाज अली के सिनेमा के फैन हैं, और उन्होंने ही मैं वापस आऊंगा को रिलीज के एक महीने बाद भी थिएटर्स में एक्टिव रखा है।
10: सर एक आपके देखिए आपकी फिल्म का ही आई सी रॉकस्टार क्यों अच्छी लगती है, वो फिल्म आपको मतलब इट्स वन ऑफ द सर की बेस्ट क्रिएशन।
11: मैं भी 21 साल का हूँ, जब आपकी मूवी रिलीज हुई थी तो मुझे सबकी तरह समझ में नहीं आई थी जब मैंने वो मूवी,
5: आप बहुत छोटे होंगे ना,
11: क्योंकि मैंने सुना है कि लाइफ के अलग अलग एज पे मूवी सेम मूवी अगर आप देखेंगे तो आपके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। तो मैंने फिर आपकी वो मूवी देखी, फिर मैंने तमाशा भी देखी, तो मैंने वो फिल्म देख के सीखा कि मैं कैसे अपने डैड को अपनी मम्मी को बता सकता हूँ कि मैं कैसे ये करना चाहता हूँ। तो सर आपकी सारी मूवीज हमेशा रिलेटेबल रहती है। मैं वापस आऊंगा अभी, मैं जब लास्ट में जब नसीर सर उनको मिलते हैं वीडियो कॉल पे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आपका मैजिक हमेशा मतलब बहुत मजा आता है सर आपकी फिल्म देखने में। चमकीला भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी सर, थैंक यू सो मच, आप इतनी अच्छी मूवीज बनाते हैं, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
10: तो मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स आर लाइक सोशल वर्कर्स, जो काम हमारे भाषण नहीं कर पाते हैं वो फिल्में कर देती हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफाउंड इज द मीडियम, लाइक उन्होंने इतनी बातें बोली, वो ऐसे बोलेंगे शायद कोई नहीं समझेगा।
5: एब्सोल्युटली मतलब मुझे लगता है ना देयर इज अ ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, मैं कुछ भी नहीं हूं बट मेरा जो ये मीडियम है ये बहुत बड़ा है, सिनेमा इज वेरी वेरी बिग, एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल, इट कैन इन्फ्लुएंस यू टू बी अ मोर एथिकल पर्सन, यू नो हर तरह से बहुत बहुत पावरफुल और एक्सप्लोसिव मीडियम है ये, जिस तरह से बातें घर कर जाती है ना, मैंने खुद भी मुझे लगता है कि फिल्मों से बहुत कुछ अपनी जिंदगी में शामिल किया है, मतलब जितना मैंने मॉरल साइंस बुक से नहीं दे लिया उतना तो सिनेमा से लिया हो। सो आई नो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक दैट अपनी तरफ से कोई गलत चीज ना चली जाए मेरे किसी भी फिल्म में, दिस वन हैज टू कीप इन माइंड।
10: आपकी फिल्म में युवाओं को बहुत कनेक्ट करती है, बहुत कम ऐसी फिल्म होती है मतलब बनती तो है लेकिन युवाओं को जो इंस्पायर करती है, एक होती है युवाओं को जैसे बॉबी आई, लव स्टोरी आई, सैयारा आई, हर सदी में आती है, लेकिन कुछ फिल्में होती है जो युवाओं को इंस्पायर करती है
5: जी।
10: तो आपको जब आप युवा थे आपको किस तरह की फिल्में इंस्पायर करती,
5: क्या होता है ना कि आदमी की उम्र कोई भी हो जाए उसके अंदर का जो एक सेल्फ एज होता है ना वो अलग होता है, that keeps coming out in my films. When I was younger, I used to like all kinds of films. मतलब मेरा तो बहुत ही रेंज था, मतलब मुझे शोले मेरी फेवरेट फिल्म है, मगर साथ में जुनून भी मेरी फेवरेट फिल्म है, जो श्याम बेनेगल वाली, शशि कपूर वाली, सो हर तरह की फिल्में मुझे पसंद हुआ करती थी, बट जो स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले वाली फिल्म है ना, जहाँ ध्यान हटता नहीं है, जब आप डूब जाते हैं और आप मतलब अपने वातावरण से ट्रांसपोर्ट आउट हो जाते हैं, वो फिल्में मुझे बहुत पसंद।

0: इम्तियाज अली पहुंचे मुंबई के थिएटर में जहां फिल्म खत्म हुई और हमें बहुत सारे चेहरे इमोशनल मिले। ऐसे में इम्तियाज अली को देखकर सब बहुत एक्साइटेड थे। किसी ने आंसुओं के साथ, किसी ने अपनी बातों के साथ, किसी ने गले लगकर फिल्म के रिएक्शन को बयां किया।
1: This girl is actually crying and
2: It was too good. I have seen all your films. But I have no words to be honest. Emotions, love story, everything was so good. And starting mein was like nahi rona hai, like everyone was crying, but my emotions control nahi kar paya apna. It was too good. So thank you so much. Like we want more films like this. And yeah, thank you.
3: Aap dekhte raho, main banata rahunga.
2: I actually fought with my love, my husband, because he didn't want to see this movie. I said, "Kuch bhi ho jaye, main ja rahi hu." So I brought my mother-in-law with me.
3: Best.
2: And she saying partition, jhagda jhagri hoga.
1: Can we get her?
2: Yes, ma'am. There's partition hai, jhagda. I said, "Mummy, kuch jhagda wala movie nahi hai. It's a love story. Please come with me. Your son doesn't want to come." She's also come here and she's enjoyed the movie so much.
3: Achhi lagi aapko main.
2: She's still trembling. She saw that love.
3: अच्छी लगी ना?
2: थैंक यू।
4: दादी नानी लोग ये सब सुनाते थे कि ऐसे पार्टीशन हुआ, हम लोग भागे थे, तो वो सब रियल में देखे थे, बहुत अच्छी। इट्स ब्यूटीफुल।
3: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
2: सो ट्रूथफुल।
3: You should also do work like that. I'm sure that you are also like that in your work.
2: I am, sir, yes. And that's why I felt like someone so legendary is speaking for the truth. There's hope, man, in this world. What are we?
3: This is
2: what we live for.
3: Yeah, this is what we
2: work for, man.
3: Yeah, we work.
1: तो इस वक्त हमें थिएटर के अंदर और लाइव ऑडियंस के रिएक्शंस मिल रहे हैं, और सबसे मेरे को जो दिल को छुआ, कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, सवाल थे, तो इम्तियाज दिस इज द ये आपने कमाया है अपनी फिल्मों से, सो व्हाट इमोशंस यू गेट व्हेन यू मीट पीपल, हैव सो मेनी क्वेश्चंस, दे एनालाइजिंग अ फिल्म, आई मीन इट्स लाइक यू नो एंड सो मच लव।
0: दर्शकों की बात करें तो सबका रिएक्शन बहुत मिक्स था। आइए जानते हैं कि इम्तियाज अली और दर्शकों के बीच में क्या क्या बातें हुई। इम्तियाज अली की फिल्में युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन फिल्म मैं वापस आऊंगा देखने के लिए युवाओं के साथ यहाँ पर सीनियर सिटीजन भी हैं, और एक मिला जुला ऑडियंस देखने को मिला। वैसे यहाँ पर सब लोग सेल्फी खिंचा रहे थे, भाई वो जमाना गया जब लोग फिल्म के अभिनेता अभिनेताओं के साथ फोटोज खिंचाते थे। आजकल लोग डायरेक्टर को भी उतना ही प्यार देते हैं जितना पर्दे पर दिखने वाले कलाकारों को। इसके बाद मौका था पॉपकॉर्न और समोसे का, और इसी के साथ इम्तियाज अली ने अपनी जमशेदपुर की यादें ताजा करी, यानी वो शहर जहां उन्होंने सबसे पहले फिल्में देखना शुरू किया था।
1: पिक्चर का मजा आता है पॉपकॉर्न के साथ, और इम्तियाज अली सर के साथ मैं पॉपकॉर्न एंड समोसे, सर बात कर रहे थे समोसे की
3: जी,
1: तो जमशेदपुर का समोसा और बॉम्बे के समोसे में क्या फर्क है?
3: सर जमशेदपुर का समोसा बहुत अच्छा होता है, जो बॉम्बे के समोसे से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो चीजें मेमोरी में होती है ना, वो चीजें ज्यादा अच्छी होती है जो प्रेजेंट है उससे। मगर समोसा इज वेरी एसोसिएटेड, इट्स एन इमोशन। पॉपकॉर्न भी, मगर ये जो पॉपकॉर्न है ना, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा मॉडर्न है। मैं क्योंकि थोड़ा पुराने जमाने वाला आदमी हूँ ना, तो जो पॉपकॉर्न हुआ करता था, जो पेपर के पैकेट में आता था, इसमें बहुत ही अजीब तरह का मक्खन होता था, नमक बहुत ज्यादा होती थी, वही याद आता है आजकल।
0: दिल्ली के हिंदी कॉलेज से इम्तियाज अली ने अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मुंबई में उन्होंने सीरियल भी बनाए, ओटीटी शोज भी बनाए और फिल्मों से नाम कमाया। लेकिन आज सास बहू बेटे आपको ट्रिविया दे रहा है कि इम्तियाज अली ने एक फिल्म में भी अभिनय किया था, तो आज हम जानते हैं कि कौन सी वो फिल्म थी जिसमें इम्तियाज अली ने काम किया था, और क्या एक्टर बनना उनका भी ख्वाब है।
1: सबसे जब मिलते हैं सबकी पर्सनालिटी से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन थोड़ा इन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है। सो आई रिमेम्बर ब्लैक फ्राइडे आपका छोटा सा रोल, एंड आल्सो अभी आपने फिल्म में खुद को ही आपने अभी रिप्ले किया था। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल कम टू यू टू बिकम एन एक्टर, सो व्हाट डू यू थिंक एक्टिंग एंड यू नेवर आई मीन फुल फ्लेज्ड एक्टिंग के बारे में?
3: I'm not interested in acting at all. I always wanted to direct. Theater में मैंने act किया है, और ये जो दोस्त दोस्तों की फिल्म में उसने बहुत बोला, मैंने कर दिया उस तरह का था, मतलब
0: इम्तियाज अली को पूरे 26 साल हो चुके हैं फिल्म में बनाते हुए। फिल्म सोचाना के साथ उन्होंने करियर शुरू किया था। जब वी मेट से प्रसिद्धि पाई, उसके बाद रॉकस्टार, लव आजकल, हाईवे जैसी फिल्मों पे उन्होंने नाम कमाया। और अब मैं वापस आऊंगा के साथ उन्होंने अपना 25 साल का सफर पूरा किया, लेकिन आज भी लोग उनकी पुरानी फिल्मों के लिए याद रखते हैं।
1: इमोशन जो है हर इंसान को, हमें इंसान को इंसान बनाता है।
3: मैं आपसे ये बोल रहा था, आपका सवाल का जवाब, सवाल का जवाब ये है सर कि क्या हो रहा है ना कि जब मैं थिएटर में जा रहा हूँ, लोगों को रिएक्ट करते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये इनकी जिंदगी की सच्चाई है। यानी कि एक आदमी जो इमोशन में रिएक्ट कर रहा है ना, वो अपने ही किसी गम या अपनी किसी खुशी से रिएक्ट कर रहा है, वो इमोशन उसका जिंदगी का ट्रूथ है। यहाँ पे हम लोग हैं, हम चाहते हैं हमारी पिक्चर चले एंड ऐसे वैसे, वो तो हो गई, बट दैट इज अ वेरी बिग रियलिटी एंड आई वैल्यू इट। मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, मतलब आई फील दैट आई मस्ट रिस्पेक्ट टू व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू, ऐसा होता है मेरे साथ।
1: लोग जनरली आपको कौन सी फिल्मों के लिए याद करते हैं? ऑफ कोर्स जब वी मेट इज लाइक अ नेशनल, आपकी सबसे बड़ी हिट थी, बट दे टॉक अबाउट तमाशा, दे टॉक अबाउट रॉकस्टार। यस,
3: रॉकस्टार, हाईवे, तमाशा, मगर इट डिपेंड्स ऑन सेंटर, यू नो। जैसे कि अब अगर मान लीजिए कि मैं झांसी में चला जाऊँ, वहाँ ज़्यादा हो सकता है, मगर यूथ जो है ना वो रॉकस्टार की बात ज़्यादा करता है। बट जो और मतलब बहुत सारे लोग जब भी मैं की बहुत बात करते हैं, तमाशा की बहुत सारे यूथ जो है वो बात करते हैं, अक्सर लोग हाईवे की बात करते हैं, बहुत एक पर्सनल तरीके से उनका उनसे कनेक्शन है, अलग अलग फिल्मों की बात करते हैं।
0: वह दर्शकों की भारी भीड़ थिएटर्स में अभी भी इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा देख रही है, तो उम्मीद है कि वर्ड ऑफ माउथ के साथ ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फिल्म को रिलीज हुए अभी 4 हफ्ते हो चुके हैं और धीरे धीरे फिल्म अभी भी थिएटर्स में लोगों का दिल जीत रही है। आज सास बहू और बेटिया के साथ इस थिएटर वाले डे आउट में हमने इम्तियाज अली से यही जाना कि फिल्म बनती है सिर्फ और सिर्फ दिल से।
1: और कुछ बोलना चाहेंगे अभी आज हम सब दर्शकों के साथ? नहीं, आई फील दैट समोसा है, व्हाट यू हैव टू टेल,
3: वेलकम टू द सिनेमास, व्हाट यू गेट इन द सिनेमा यू कांट गेट एनीवेयर एल्स।
1: थैंक यू सो मच इम्तियाज सर, आज हमने लाइव महसूस किया कि सिनेमा के बाद फिल्म बन तो जाती है लेकिन उसके बाद क्या होता है, और अगर एक फिल्मकार खुद आके अपने प्रोडक्ट को सैंपल करे, आई थिंक इट्स वेरी इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल द बेस्ट। एंड आप इसी तरह उम्मीद लोगों के जहन में जलाते रहिए, जो जो एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि आप एक तरह की सोशल वर्क कर रहे हैं फिल्मों के थ्रू, सो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट टू कम सून। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर, मैं वापस आऊंगा।
3: थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।
0: मुंबई सामित्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
1: उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: भारत में डायबिटीज के इलाज में एक बड़ी क्रांति हुई है। डेनमार्क की दिग्गज दवा कंपनी ने देश में दुनिया का पहला हफ्ते में सिर्फ एक बार लगने वाला बेसल इंसुलिन एविक्ली लॉन्च किया है। इस नई दवा से मरीजों को साल भर में 365 की जगह सिर्फ 52 इंजेक्शन लगवाने होंगे, जिसके इलाज जो है वो बेहद आसान हो जाएगा। ऐसे समय में जब भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, इस लॉन्च को इलाज के क्षेत्र में एक अहम कदम माना जा रहा है।

0: होती है। बहुत बार ये देखा गया है कि वो लोग जो है इंसुलिन का टीका नहीं लगाते हैं, क्योंकि बार बार टीका लगाना हर रोज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का काम है। तो ये इंसुलिन का जो टीका है सप्ताह में सिर्फ एक बार लगाना है, यानी 365 दिन की जगह आपको सिर्फ 52 वीक्स, दैट मीन्स 52 टाइम्स, 52 बार ये टीका लगाना है। ये बहुत कम जो है पेन ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन रिड्यूस कर देता है।
1: कंपनी का दावा है कि भारत में कई मरीज रोज इंजेक्शन लगाने के डर की वजह से इंसुलिन शुरू करने में 7 से 9 साल तक की देरी कर देते हैं, लेकिन ये वीकली इंसुलिन इस डर को कम करने और इलाज को आसान बनाने में मदद करेगी। ये दवा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के वयस्क मरीजों के लिए लॉन्च की गई है। भारत में अवीकली का 700 यूनिट का पैक 2611 रुपए में मिलेगा, यानी प्रति यूनिट कीमत करीब 3.73 रुपए होगी, जो कंपनी के मुताबिक मौजूदा डेली बेसल इंसुलिन की तुलना में 30 से 40% तक सस्ती है। अगर किसी मरीज को रोज 10 यूनिट इंसुलिन की जरूरत है तो उसे सप्ताह में 70 यूनिट अवीकली लेनी होगी, जिसकी लागत करीब 261 रुपए प्रति सप्ताह होगी।
0: ग्लोबल प्रोडक्ट को इंडिया की प्राइस पर लेकर आ रहे हैं, विच इज फार मोर चीपर इकोनॉमिकल, जो कि आज के मॉडर्न इंसुलिन है। 3.73 रुपीस, यानी 3.73 रुपया पर यूनिट ये इसकी कॉस्ट रहेगी, 2611 रुपए एक पेन का, जिसमें 700 यूनिट होंगे। तो ये बहुत ही उम्दा दवाई है और सस्ती दवाई है, बट डॉक्टर इज द राइट पर्सन टू प्रिस्क्राइब, और डॉक्टर व्हेन दे वांट टू इनिशिएट, दैट इज वेयर यू शुड यूज देयर एडवाइस।
1: ये इंसुलिन मरीज को फ्लेक्स टच पेन के जरिए दी जाएगी। क्लिनिकल ट्रायल में इसने रोजाना लगने वाले इंसुलिन के बराबर या उससे बेहतर ब्लड शुगर कंट्रोल करके दिखाया है। कंपनी का कहना है कि अवीकली को इसी साल शुरुआत में अमेरिका से मंजूरी मिल चुकी है और इसे यूरोपीय संघ और तमाम दूसरे देशों में भी हरी झंडी मिल चुकी है। भारत 7वां देश है जहां इस दवा को लॉन्च किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
5: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
4: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
6: You're listening to MSNBC.
4: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें।

0: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्रगिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। राम भक्तों के लिए आई गुड न्यूज, 30 जुलाई तक श्री राम मंदिर परिसर में सभी निर्माण कार्य हो जाएंगे पूरे। राम कथा संग्रहालय की 20 गैलरी की स्टोरी लाइन भी तैयार। न्यूजीलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, भारतीय संस्कृति की दिखी झलक, पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय, इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम, शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्रगिरी नौसेना में हुआ शामिल, विशाखापट्टनम में हुई कमिशनिंग सेरेमनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में INS महेंद्रगिरी को नौसेना में किया गया शामिल, रक्षा मंत्री ने नेवी को दी बधाई, कहा ये देश की सुरक्षा में मील का पत्थर। भारत के प्रोजेक्ट 17A की नीलगिरी कैटेगरी का छठा स्टील फ्रिगेट है INS महेंद्रगिरी, 75% स्वदेशी उपकरणों से है लैस। एंटी सबमरीन सिस्टम और एडवांस मिसाइल से लैस जंगी जहाज है INS महेंद्रगिरी, भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया डिजाइन, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया निर्माण। INS महेंद्रगिरी में है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, हाई स्पीड वाले जहाज को रडार पर ट्रैक पर आना होगा मुश्किल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, INS महेंद्रगिरी पर लगाई जा सकती है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स। जमीन से जमीन और जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल से लैस है ये फ्रिगेट, आधुनिक रडार और सेंसर सूट्स भी मौजूद। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया जहाज का नाम, शक्ति मजबूती और अटल संकल्प का है प्रतीक। नौसेना को इस साल मिला छठा युद्धपोत INS महेंद्रगिरी, 40 और जंगी जहाजों के निर्माण का चल रहा है काम। अगले 2 महीने में नेवी को मिल सकते हैं 4 और जंगी जहाज, जनवरी 2025 से अब तक मिल चुके हैं 18 युद्धपोत। बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, आस्था और विश्वास के साथ बना हुआ है चारधाम यात्रा का उत्साह। चमोली में यात्रा मार्ग सुचारू होने से श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी, नहीं हो रही है कोई परेशानी। बारिश के कारण बद्रीनाथ के पास बढ़ रहा अलकनंदा नदी का जलस्तर, पूरे उफान पर बह रही है नदी। अब तक लगभग 15 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं बद्रीनाथ धाम में दर्शन। रोजाना 9 से 10,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं धाम। रुद्रप्रयाग सहित केदारधाम में कई दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश, तीर्थ यात्रा भी है जारी। रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, 30 जुलाई तक श्रीराम मंदिर परिसर में सभी निर्माण कार्य हो जाएंगे पूरे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बयान, मंदिर के निर्माण कार्य की ली गई समीक्षा, अब सिर्फ 2 कार्य पूरे किए जाने बाकी। मंदिर परिसर में स्मारक के रूप में संरक्षित पुराने राम मंदिर में 24 घंटे जलने वाली ज्वाला की व्यवस्था होनी बाकी, बचे हुए निर्माण कार्य पूरे। श्री मंदिर परिसर में दूसरे स्मारक का काम जुलाई के अंत तक हो जाएगा पूरा, 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का काम। मंदिर परिसर के बाहर ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य नवंबर से दिसंबर तक हो सकता है पूरा। रामकथा संग्रहालय की 20 गैलरी की स्टोरी लाइन भी तैयार, अब आगे के काम पर होगा निर्णय। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा से पहले भव्य तैयारियां, विशाल रंगोली बनाने में जुटे हैं कलाकार। रथ यात्रा से पहले विशेष वस्त्र तैयार करने में जुटे दर्जी और कारीगर, 17 कारीगर कर रहे हैं निर्माण। रथ को सजाने के लिए 1250 मीटर कपड़े का इस्तेमाल, जगन्नाथ जी और बलदेव जी के रथों के लिए 425 मीटर और सुभद्रा जी के लिए 400 मीटर कपड़े का होता है उपयोग। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, इस बार 16 जुलाई को निकलेंगे रथ। पुरी में 5 किलोमीटर का दायरा नो फ्लाइंग जोन घोषित, 16 जुलाई से 27 जुलाई तक बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, करीब 40,000 लोगों से हुए रूबरू, भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ पीएम का हुआ स्वागत। न्यूजीलैंड के मिनी इंडिया में बोले प्रधानमंत्री मोदी, 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं, दौरा संपन्न करके आज ही लौट रहे हैं स्वदेश। ऑकलैंड में पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ जुड़ाव का किया जिक्र, कहा 25 से 30 वर्ष पहले न्यूजीलैंड के एक साथी ने भेंट किया था मफलर, मैंने आज भी इसे उसी तरह संभाल कर रखा है। संबोधन से पहले अपने नाम और नंबर 100 वाली जर्सी के साथ दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, भारतीय समुदाय के लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। न्यूजीलैंड के पीएम ने भी जनसमुदाय को किया संबोधित, कहा पीएम मोदी हमारे लिए प्रेरणा, पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। ऑकलैंड में गाला लंच में शामिल हुए पीएम मोदी, न्यूजीलैंड के पीएम ने किया भव्य आयोजन। ऑकलैंड में गाला लंच के दौरान शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारतीय और न्यूजीलैंड के कलाकार हुए शामिल। न्यूजीलैंड में अपने संबोधन में बोले पीएम, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज, हम फिनटेक में लीडर। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ समझौतों का किया स्वागत, कहा हिंद प्रशांत में समुद्री सहयोग के लिए फ्रेमवर्क पर बनी सहमति। ऑकलैंड के वियाडक बिजनेस सेंटर में कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, बिजनेस लीडर्स को संबोधित भी किया। न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी की वहां के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक, अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए अहम समझौते, मुक्त व्यापार समझौता हुआ फाइनल। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत, गवर्नमेंटल हाउस में लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। पारंपरिक माओरी तरीके से किया गया पीएम मोदी का स्वागत, न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और परंपराओं की दिखी झलक।

0: स्वागत।
1: न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट हाउस में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, गर्मजोशी के साथ किया गया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने ऑकलैंड में खेल प्रदर्शनी का किया दौरा, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों और हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के साथ भी की बातचीत। न्यूजीलैंड पहुंचने पर ऑकलैंड में कम्युनिटी वेलकम के दौरान देखने को मिली भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक, कलाकारों ने पेश किए कई भव्य कार्यक्रम। न्यूजीलैंड में भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उमड़ा जन सैलाब, हाथों में तिरंगा लिए नजर आए लोग, पीएम ने भी हाथ मिलाकर अभिवादन किया स्वीकार। भारत के तिरंगे के रंगों में रंगा नजर आया ऑकलैंड का मशहूर स्काई टावर, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के सम्मान में हुई जगमग रोशनी। वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा, दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने की पहल। दो दिन जोरदार बारिश के बाद दिल्ली और आसपास मौसम हुआ साफ, 15 जुलाई तक मॉनसून की रफ्तार रह सकती है धीमी। दिल्ली में मौसम बना हुआ है सुहाना, अधिकतम तापमान 33 डिग्री के करीब किया गया दर्ज, 37 डिग्री तक जा सकता है पारा। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक के लिए जारी किया येलो अलर्ट। गुजरात में आज मौसम साफ रहने के आसार, लेकिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में 12 एनडीआरएफ और 26 एसडीआरएफ की टीमों को किया गया है तैनात। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन, तड़के भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार ने की बाबा महाकाल की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली के लिए की प्रार्थना।

0: पुरी में जगत ज्योति सोलर प्रोजेक्ट का शुभारंभ, लोगों को होगा इससे फायदा। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन का आयोजन, सुनी लोगों की समस्याएं। जम्मू कश्मीर में रामबन के चंदरकोट में सीआरपीएफ ने लगाया 61 फीट का हाई मास्ट राष्ट्रीय ध्वज, चेनाब नदी के किनारे लहराया तिरंगा। दिल्ली में अब ई रिक्शा की जगह ले सकती है 7-सीटर इलेक्ट्रिक वैन, 3 गलियों में चलने वाले की चलाने की तैयारी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी मजबूत। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय। अधिकतम कीमत से ज्यादा रेट पर नहीं बेची जा सकेंगी दवाएं, डायबिटीज, आईबीपी, दिल की बीमारी, इन्फेक्शन, आंखों की बीमारी, सांस की तकलीफ और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाएं शामिल। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में शुरू हुई ब्रेकी थेरेपी, सर्वाइकल कैंसर के मरीजों को मिलेगी इससे बड़ी राहत। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में ब्रेकी थेरेपी के जरिए फ्री में होगा इलाज, प्राइवेट अस्पतालों में लगते हैं लाखों रुपए। गुजरात के कच्छ में जंप स्टार्ट प्रोजेक्ट से पैदा हुआ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड कछूजा, नलिया में चल रहा है पक्षी के संरक्षण का कार्यक्रम। कच्छ के नलिया में आकार ले रहा है गुजरात का पहला सॉफ्ट रिलीज सेंटर, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड रिवाइवल प्रोग्राम को इससे मिलेगी नई उड़ान। पिंजौर में 33वें मैंगो मेले का आयोजन, 200 से अधिक आम की किस्में की गई है प्रदर्शित। शिमला के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में वंदे मातरम यात्रा का आयोजन, वंदे मातरम के 150 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर लगाई गई प्रदर्शनी। गोथिया कप 2026 के लिए स्वीडन भेजे गए स्पेशल ओलंपिक्स भारत की ओर से खिलाड़ी, स्वीडन के गोथिनबर्ग में 12 से 18 जुलाई के बीच होगा आयोजन। मोनाको में एनर्जी बोर्ड चैलेंज के 13वें संस्करण में भारत की शक्ति टीम ले रही है हिस्सा, एंड्योरेंस रेस में शामिल हुई टीम। मोनाको के याश क्लब डी मोनाको में एंड्योरेंस रेस का आयोजन, 3.5 घंटे चलेगी रेस। एनर्जी बोर्ड चैलेंज में भारतीय टीम ने किया शानदार प्रदर्शन, पिछली बार की तुलना में कड़ा है मुकाबला। एनर्जी बोर्ड चैलेंज में प्रिंस एल्बर्ट 2 अवार्ड के लिए चुनी गई भारतीय टीम, पहली बार इस अवार्ड के लिए टीम हुई क्वालिफाई, इस बार जीते 2 अवार्ड। एनर्जी बोर्ड चैलेंज में भारतीय टीम ने पेश किया बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, हरित तकनीक को बढ़ावा देने की पहल। भारत इंग्लैंड के बीच साउथहैम्पटन में आज होगा सीरीज का 5वां और आखिरी T20 मैच, शाम 7 बजे खेला जाएगा मुकाबला। इंग्लैंड सीरीज में 3-0 से आगे, आज साख बचाने मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। विंबलडन के फाइनल में पहुंचे जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव, सेमीफाइनल में ब्रिटेन के फेरी को हराया। अलेक्जेंडर पहली बार खेलेंगे विंबलडन फाइनल मुकाबला, 30 साल बाद विंबलडन फाइनल में जर्मन खिलाड़ी ने बनाई जगह। रविवार को होगा विंबलडन फाइनल मुकाबला, जेनिक सिना और जोकोविच के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेंगे अलेक्जेंडर। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा स्पेन, दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराया। रोमांचक मुकाबले में स्पेन के लिए फाइबियन रुइज और मिकेन मोरेनी ने गोल किए, बेल्जियम की ओर से चार्ल्स डी कैटलारे ने एकमात्र गोल दागा। वर्ल्ड कप के अंतिम 4 में पहुंची स्पेन की टीम, सेमीफाइनल में फ्रांस से होगा मुकाबला। इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी है स्पेन की टीम, अब तक 6 मुकाबलों में 5 में जीते 1 ड्रॉ रहा। स्पेन की टीम के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज, लगातार 36वां मैच बिना हार के पूरा कर अर्जेंटीना की बराबरी की। लंदन में फैंस के सर पर चढ़ा अमेरिकी सिंगर पिटबुल का सिग्नेचर लुक, बनाया अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। भीषण गर्मी के बावजूद सड़कों और पार्क में दूर दूर तक बाल कैप में नजर आए लोग, बच्चे और महिलाओं ने भी पहनी बाल कैप। स्टार सिंगर पिटबुल के लुक को कॉपी करते हुए दिखाई दिए फैंस। दुनिया भर में बढ़ रहा है पिटबुल के लुक का क्रेज। लंदन के बीएसटी हाइड पार्क में पिटबुल के समर कॉन्सर्ट में बना रिकॉर्ड। हजारों फैंस ने बाल कैप पहनकर सबसे बड़े आयोजन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पिटबुल ने भी बाल कैप पहनकर बढ़ाया फैंस का जोश। अपने हिट गानों पर दी परफॉर्मेंस। तिब्बत में ऐतिहासिक पोटाला पैलेस के सालाना रंग रोगन का काम हुआ शुरू। 300 साल से चली आ रही परंपरा, दूध शहद और केसर मिले पेंट से की जाती है पेंटिंग। चीन के चोंगकिंग में गर्मी से बचाव के लिए सड़कों पर लगाए गए विशाल पंखे। चीन में जुलाई के महीने में तेज गर्मी है जारी, सड़कों से गुजरने वाले के लिए सुविधाओं के लिए खास इंतजाम। चीन ने स्पेस टेक्नोलॉजी में हासिल की शानदार कामयाबी। चीन ने दुनिया में पहली बार लॉन्ग मार्च 10A रॉकेट के पहले स्टेज को समुद्र में नेट से किया रिकवर। एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने जारी किया अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द साइकिल ऑफ लव का ट्रेलर। दिल्ली के कलाकार पीके महानंदिया पर आधारित है डॉक्यूमेंट्री की कहानी। सच्चे प्यार की तलाश में भारत के स्वीडन तक 6000 मील की यात्रा पर साइकिल से निकले थे महानंदिया। वेब सीरीज रक्तांचल 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। क्रांति प्रकाश झा और निकितन धीर अपनी पहली वाली भूमिकाओं में ही आएंगे नजर। 16 जुलाई को अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में स्ट्रीम होगी वेब सीरीज रक्तांचल 3। शादी के बंधन में बंधी टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम एक्ट्रेस पलक पुरस्वानी बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना संग लिए साथ फेरे। एक्टर शाहरुख खान ने दिल्ली में खरीदा आशियाना। पॉश इलाके पंशील पार्क में उस पूरी बिल्डिंग के बने मालिक जहां शादी के बाद की थी अपनी जिंदगी की शुरुआत। शाहरुख और गौरी खान के लिए खास है ये घर। इमारत के बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पर पहले से था मालिकाना हक। हाल में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट देखने पहुंची प्रियंका चोपड़ा। महिला सिंगल्स के लिए सेमीफाइनल्स मैच के दौरान फ्रंट रो में बैठी नजर आई। कोको गॉफ और कैटरीना मुशावो के बीच मुकाबले के दौरान प्रियंका ने स्टेडियम से ही अपने पति निक जोनस को किया वीडियो कॉल। दूसरी बार मां बनेंगे दीपिका पादुकोण, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। फैंस के बीच खुशी की लहर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: Hop on board and settle in for an easy-going cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
3: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक। ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र। समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: पहाड़ों में मॉनसून की एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल का पहरा है तो केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रही है। हालांकि इन सबके बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद में थोड़ी कमी आई हो लेकिन धामों में रौनक बरकरार है। इस बीच मौसम की चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है।
4: भोलेनाथ और बद्री विशाल के दर्शन की चाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की ऊंचाइयों तक खींच लाती है और इस खूबसूरत वादी का कोना कोना जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से गूंज उठता है। चारधाम में आस्था के राह में वो दौर भी आता है जब ना चाहते हुए भी श्रद्धालुओं को अपने कदम रोकने पड़ते हैं। भगवान के दर्शन का इंतजार लंबा हो जाता है। इस बार की चारधाम यात्रा में भी वो पड़ाव करीब आ चुका है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मौसम की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि चारधाम में अभी भी रौनक है। भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद थोड़ी कम हो गई है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पहाड़ों पर बादलों का डेरा है और अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक मॉनसून ने पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब या फिर फूलों की घाटी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह बरकरार है।
5: 3,000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, उत्साह बना हुआ है। बारिश हो या फिर बर्फबारी भी यहाँ पे देखने को मिली थी, ठंड यहाँ पे देखने को मिलती है, अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हेमकुंड साहिब में देखने को मिलती है। ऐसे में हेमकुंड साहिब इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा, तो वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर ही जब फूलों की घाटी पर्यटक पहुँच रहे हैं, वो पर्यटक हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं, तो हेमकुंड का जो तीर्थ यात्री है वो फूलों की घाटी भी जा रहा है। ऐसे में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में इस समय जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है।
4: श्रद्धालुओं के लिए भले ही चुनौतियों पर आस्था भारी हो, लेकिन तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए हर संभव इंतजाम में जुटा प्रशासन अलर्ट मोड में है। बारिश के दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और मौसम सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बस राहत ये है कि दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है, लगातार मौसम और नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं। स्थिति सामान्य होने की वजह से फिलहाल केदारधाम की यात्रा भी जारी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
7: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
8: परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की, रात 9 बजे।

0: बच्चे के जन्म का समय कितना महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का जन्म नक्षत्र उसके जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
4: भारतीय सेना खरीदेगी 450 काल गुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार, अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर। भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्रगिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। राम भक्तों के लिए आई गुड न्यूज, 30 जुलाई तक श्री राम मंदिर परिसर में सभी निर्माण कार्य हो जाएंगे पूरे, राम कथा संग्रहालय की 20 गैलरी की स्टोरी लाइन भी तैयार। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय, इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम, शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत उस पूरी इमारत को खरीदा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की।

0: समंदर का समीकरण जिसने भी साधा, वो लहरों पर नया इतिहास लिखता चला गया। इन्हीं लहरों पर राज करने की मंशा लिए चीन लगातार विस्तारवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी के एक इलाके पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है और अब उसकी निगाहें हिंद महासागर पर हैं। भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। भारत चीन के पड़ोसियों को न सिर्फ ताकतवर हथियार दे रहा है, बल्कि भारत अब एक ऐसी स्ट्रेटजी पर भी काम कर रहा है जो आने वाले समय में चीन के गले की फांस बन सकता है। भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को बड़ा विस्तार दिया है। दोनों देशों ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद की डील की है। साथ ही साथ अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ समझौता न केवल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नतीजा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश है, बल्कि इसके साथ ही साथ साउथ चाइना सी में और हिंद महासागर में भारत को सामरिक तरीके से बढ़त भी दिलाता है। फिलीपींस वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप समूह है जिसके पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग है। मलक्का, सुंडा, लोम्बोक और मकासर जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रमकता और 9-line के दावों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से इंडोनेशिया को मजबूत समुद्री प्रतिरोध मिलेगा।
1: देखा जाए तो चीन लगातार नटूना समुद्र के ऊपर भी अपना दावा पेश करता रहा है, जिसको कि इंडोनेशिया अपनी EEZ का हिस्सा मानता है। चीन की आए दिन मछली पकड़ने वाली नौकाएं, उनकी नेवी के शिप्स वहां पे आते रहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेता है तो उनको एंटी शिप के तौर पे बड़ी ज़बरदस्त सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि कोस्टल बैटरी, कोस्टल मिसाइल सिस्टम के तौर पे काम करेगा। 290 से 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सी स्कीमिंग लास्ट मिनट में मैनूवर करके एक्यूरेट होने की वजह से ये शिप्स के ऊपर बहुत ही घातक साबित होगा।
0: सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंडोनेशिया ने अपनी सेना के लिए चुना है। ये तो चीन के लिए चिंता की बात हो गई। साथ ही इंडोनेशिया ने समंदर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए भारत के साथ एक और अहम समझौता किया है, जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। हिंद महासागर में भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए इस सैन्य समझौते के तहत न सिर्फ भारत की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि ये साथ ही साथ चिंता बढ़ाने वाला विषय है चीन के लिए। और इसी के साथ साथ भारत ने एक और अहम डील की है, जिसमें भारत और इंडोनेशिया दोनों संभाग पोर्ट पर एक संयुक्त परियोजना पर काम भी करेंगे। यहाँ ये बता देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संभाग पोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान निकोबार के दक्षिण में पड़ता है। यानी अगर हम दूरी की बात की जाए तो करीब करीब 100 मील की दूरी है। यानी इस डील के साथ साथ भारत कहीं ना कहीं चीन के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है। ग्रेट निकोबार और संबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के दो छोर हैं। इन्हें मलक्का स्ट्रेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। संबांग पोर्ट भारत की ग्रेट निकोबार ट्रांस शिपमेंट पोर्ट से केवल 100 मील यानी कि करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के लिए इंडोनेशिया का संबांग पोर्ट रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बहुत अहम है। इससे न सिर्फ भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री व्यापार बढ़ेगा, बल्कि दोनों देश रणनीतिक रूप से अहम एक बड़े समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट पर अपना प्रभुत्व कायम कर पाएंगे। संबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर स्थित है। और मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का संकरा समुद्री मार्ग है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। संबाग पोर्ट से भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री पहुंच और मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये गहरे पानी की बंदरगाह है जहां पनडुब्बियों समेत हर तरह के नौसैनिक जहाज आ सकते हैं।
1: देखिए, जहां हम ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलप हो रहा है वहां से सबांग पोर्ट तकरीबन 160 किलोमीटर है, जहां से मलक्का स्ट्रेट निकलता है। चीन का ज़्यादातर तेल और उनका व्यापार यहीं से होता है, तो अगर दोनों तरफ उधर भारत ने उनको ब्रह्मोस बेचा हुआ है, बेच रहे हैं जो पहुंच रहा है, और साथ साथ में यहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाती है, तो इसको हम पूरी तरह से जरूरत पड़ने पर करेंगे नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर चौक किया जा सकता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दूसरी बात, सबांग पोर्ट में भारत के शिप्स को मदद मिल जाएगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी, वहाँ पर रिफ्यूलिंग हो जाएगा, वहाँ से आगे फिर रीच उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए बेनिफिशियल है।
0: चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला ये संकरा समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। चीन के आयातित तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया और अफ्रीका से इसी रास्ते होकर चीन पहुंचता है। इसके साथ ही चीन के निर्यात आधारित व्यापार का भी बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है। चीन अपना करीब 80% कच्चा तेल और ऊर्जा आयात स्ट्रेट ऑफ मलक्का रूट से करता है। चीन के कुल वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 60% से 2/3 हिस्सा इसी जल मार्ग से आता जाता है। यानी जिस मलक्का स्ट्रेट को चीन के व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर अब भारत की नजर रहेगी।
1: मलक्का स्ट्रेट को चीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि चीन का ज़्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तेल उनका ज़्यादातर इंपोर्ट होता है। उनका 25-40% व्यापार मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है, साथ साथ में तेल जो है वो 60-80% तेल जो पश्चिमी एशिया से आता है वो मलक्का स्ट्रेट से निकलता है। यदि मलक्का स्ट्रेट चौक हो जाता है तो चीन के पास ऑप्शन है, आर्कटिक साइड से है या फिर दूसरे स्टेट हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं। एक बात और है कि यहाँ पर यदि हम इसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि एक तरफ निकोबार, दूसरी तरफ सबांग आइलैंड इंडोनेशिया का, तो ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट हो जाता है। यही कारण है कि चीन इसके लिए काफ़ी वल्नरेबल रहता है और वो अल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश कर रहा है।
0: हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक आने जाने वाले समुद्री मार्ग चीन के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दे सकती है।
2: साल 2003 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने मलक्का को लेकर एक आशंका जाहिर की थी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मलक्का डिलेमा। दरअसल उस दौरान उन्हें इस बात की आशंका थी कि अगर कहीं तनाव होता है या फिर अगर दुश्मन के साथ, चीनी दुश्मन के साथ भी तनाव होता है, तो अमेरिका या फिर उसके सहयोगी मिलकर मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, वहां से रास्ता रोक सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
0: मलक्का स्ट्रेट कहाँ है और इसकी अहमियत कितनी है, ये समझने की जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला रास्ता है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाला बड़ा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 25-40% हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 80,000 से 1,20,000 कार्गो यहाँ से गुजरते हैं। रोजाना औसतन 200 से 300 मालवाहक जहाज इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो हर साल लगभग $3.5 trillion का सामान स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते से गुजरता है।
1: देखा जाए तो मलक्का स्ट्रेट एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसको अगर ब्लॉक हो जाता है तो चीन के व्यापारिक क्षमता पर बहुत फर्क पड़ेगा। आज उनका जो व्यापार है यूरोप के साथ है, मध्य पूर्व के देशों के साथ है, और यदि ये ब्लॉक होता है तो उनकी तेल सप्लाई व्यापार जो 25-40% व्यापार यहाँ से निकलता है, उनका जो मध्य पूर्व से तेल आता है उनका 60-80% तेल यहाँ से आता है। तो चीन के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी ज़्यादातर इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन है। अगर ये हट जाता है तो यूरोप के साथ और मध्य पूर्व के देशों के साथ जो एक्सपोर्ट रुकता है तो उनकी इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा।
0: मलक्का स्ट्रेट पर भारत का सीधा भौगोलिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति और सैन्य ताकत इसे इस मार्ग पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। भारत संवेदनशील समुद्री रास्ते के मुहाने पर पहरेदार की तरह बैठा है, जिससे वो चीन की दुखती रग को कंट्रोल कर सकता है।
2: दरअसल भारत को प्राकृतिक रूप से तोहफे में अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिले हैं, जिसका दायरा 700 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसका एक छोर सीधा मलक्का स्ट्रेट पर जाकर खुलता है। और यही एक बड़ी वजह है कि भारत यहां पर ग्रेट निकोबार को विकसित कर रहा है, ताकि खास तौर पर मलक्का स्ट्रेट में अपनी रणनीतिक बढ़त को मजबूत बना सके। और यह चीन के लिए बहुत बड़ी टेंशन होगी।
0: ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण द्वीप पर विकसित किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के चार प्रमुख हिस्से हैं, जिनमें पहला इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ICTP है। इसमें गैलाथिया की खाड़ी में एक विशाल गहरे पानी का बंदरगाह बनाया जा रहा है। दूसरा हिस्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका तीसरा हिस्सा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसमें करीब 149 वर्ग किलोमीटर एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। चौथा हिस्सा वाटर प्लांट होगा, जो शहर और बंदरगाह की जरूरतों के लिए ऊर्जा सप्लाई करेगा।
1: जब इंडोनेशिया के संबंध की बात होती है तो ग्रेट निकोबार एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, और ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए भारत की सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, जहां पे 81,000 करोड़ लगाकर तकरीबन 30 साल के समय का सीमा निर्धारित करते हुए वहां पर एयरपोर्ट, टाउनशिप, सामरिक पोर्ट और एक पावर प्लांट, हर तरह से एक कंपोजिट डेवलपमेंट करने का विचार है, जो कि सुरक्षा और व्यापार दोनों तरह से काफ़ी बेहतर रहेगा। एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाएगा वहाँ पर, और साथ साथ में सुरक्षा के निगाह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के पूरी तरह से डोमिनेट करेगा। और जिसको हम कहते हैं कि अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, हमारा द्वीप ही जब एक एयरपोर्ट हब बन जाएगा, एयरफोर्स होगी, नेवी की बेस हो जाएगी, तो काफी आगे तक हमारी रीच बढ़ जाएगी।
0: ग्रेट निकोबार का दक्षिणी सिरा सिंगापुर, पोर्ट किंग और कोलंबो के काफी पास में है। इन द्वीपों के पास जो समुद्री रास्ते हैं, उसका करीब 60% चीन अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में इन रास्तों पर नियंत्रण स्ट्रेटेजिक ट्रम्प कार्ड है, जो चीन को बेहद नागवार गुजरता है। अब भारत ने जब से ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, चीन की टेंशन यकीनन बढ़ गई है।
3: ये जगह जब डेवलप हो जाएगी, ये जो हमारे जो पोर्ट डेवलप होगा, यहाँ से जो हमारी मैरीटाइम पार एंड रीच जो होगी वो बढ़ेगी, हमारी रीच फ्रॉम डोमिनेंस एंड मैरीटाइम एंड द एयर फ्रंट बहुत बढ़ेगी। ये 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से, सिर्फ 150 किलोमीटर। तो हमारी एंड आप समझ रहे हैं इस मलक्का स्ट्रेट से कितना सी रूट जाता है, नियरली 30%। चाइना की 75% नियरली एनर्जी रूट यहाँ से है। तो इस पे हमारी एबिलिटी टू डोमिनेट, एबिलिटी टू सिक्योर दिस ट्रेड रूट बहुत जरूरी है। एंड हॉर्मुज के बाद तो ये बात आज की तारीख में सबको समझना चाहिए।
0: भारत ने अपने पश्चिमी और पूर्वी तट पर समंदर के पास पनडुब्बियों का जाल बिछा रखा है, जिससे भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन अपनी हद पार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसमें हर तरह की पनडुब्बियां शामिल हैं। भारत ने हाल ही में 2 पनडुब्बी अड्डे बनाए हैं, पहला है कारवार और दूसरा है INS वर्षा। ये बेस भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक बेहद मजबूत हिस्सा है, जो देश को किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में सुनिश्चित सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करता है।
2: हिंदुस्तान की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो तीन तरफ से समुद्री सीमाओं से सटा हुआ है, जिसमें 7,516 किलोमीटर का लगभग ये पूरा एरिया पड़ता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं और कई राज्य भी आते हैं। और इसीलिए भारत के लिए बहुत अहम हो जाता है कि भारत अपनी समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा करे और इसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस करे।
0: भारतीय नौसेना लक्षद्वीप में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिनिकॉय द्वीप पर एक हाईटेक नौसैनिक अड्डा तैयार कर रही है। इसे आईएनएस जटायु का नाम दिया गया है। समंदर के बीच में ये बेस जितना खूबसूरत है स्ट्रेटेजिक तौर पर उतना ही खास है। इस अड्डे से नौसेना टुकड़ी की मूवमेंट तो बढ़ेगी ही, साथ ही जटायु नेवल बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इस बेस पर फाइटर जेट्स और भारी विमानों की आवाजाही अब आसान होगी।
1: देखा जाए तो आईएनएस जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में एक नेवी का अग्रिम बेस है, जिसका फायदा यह है कि ये जब अग्रिम बेस बना होता है द्वीप के ऊपर, तो भारत की एक आइलैंड पॉलिसी है जहां पर आइलैंड्स के ऊपर नेवी के बेस बनाकर पूरे इलाके को डोमिनेट करना, उनको नज़र में रखना। क्योंकि जैसे हम चीन की आए दिन खबरें आती रहती हैं कि वो आज वहाँ शिप भेज रहे हैं, वहाँ श्रीलंका के पास भेजा, मालदीव के पास भेजा, भारत के नेवी की मूवमेंट पर निगाह रखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से फिर हम भी निगाह रख सकते हैं उनकी हरकतों पर। दूसरी बात, हमारा एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं। तीसरी बात, समुद्री डकैती यानी कि सी पायरेसी जो है उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर काम करेंगे।
0: के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारतीय नौसेना की मौजूदगी रही है, लेकिन आईएनएस जटायु को द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा पूर्ण अड्डा माना जाएगा। इससे पहले साल 2012 में करबती में आईएनएस द्वीप रक्षक को पहले नौसेना अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो स्वेज कैनाल और फारस की खाड़ी से जाने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए एक अहम रूट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, जो सुंदर लोम्बोक स्ट्रेट की ओर जाने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों चैनलों में मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद खास हैं। मिनिकॉय में नौसेना बेस इन दोनों चैनलों पर नजर रखने में मदद करेगा। मिनिकॉय में तैयार नेवल बेस आईएनएस जटायु के नाम को भी काफी सोच समझ कर रखा गया है। जिस तरह रामायण में जटायु ने सबसे अहम कदम उठाते हुए सीता जी के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी, अपने जीवन को खतरे में डालकर खुद से पहले सेवा का उदाहरण दिया था, उसी तर्ज पर अब देश की हिफाजत होगी।
2: आईएनएस जटायु की पोजीशनिंग दरअसल मालदीव के बेहद करीब है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर और यहीं से न सिर्फ चीनी युद्धपोत बल्कि पनडुब्बियों पर भी नजर रखी जाती है और उनकी निगरानी की जा सकती है, और अगर कहीं तनाव की स्थिति पैदा होती है तो यहाँ से चीन को टारगेट पर भी लिया जाता है। दरअसल ये पोजीशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से चीन ने मालदीव को अपनी कठपुतली बनाया है, तो उस हिसाब से इस पूरे भूमध्य सागर में भारत के लिए खतरा बहुत अहम हो जाता है।
0: चीन और मालदीव की जुगलबंदी कैसे खतरा बन सकती है और कैसे भारत ने इसकी काट निकाली है, ये बताने से पहले हम आपको मालदीव की भौगोलिक स्थिति बताते हैं कि आखिर मालदीव है कहाँ और चीन मालदीव से क्यों नजदीकी बढ़ा रहा है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता। आईएनएस जटायू नौ सैनिक बेस से मालदीव की दूरी महज 524 किलोमीटर है, यानी यहां से चीन और मालदीव पर आसानी से नजर रखी जाएगी। मालदीव को अगर कुछ चीजें खास बनाती हैं तो वो है हिंद महासागर में बसा होना। दरअसल हिंद महासागर से होकर तमाम चीजें ले जाई जा सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है तेल और गैस। ज्यादातर तेल गैस हिंद महासागर से जुड़े तीन अहम पॉइंट से ले जाया जाता है। इनमें से एक जगह है फारस की खाड़ी में मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल जहाजों के जरिए एक से दूसरी जगह पहुंचता है उसका 40% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। दूसरा पॉइंट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमालियन पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बीच मौजूद है। हिंद महासागर में तीसरा मुख्य बिंदु है मलक्का स्ट्रेट। दुनिया के समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से ही गुजरता है। अगर कोई भी देश या फिर देशों का गठबंधन हिंद महासागर में समुद्री व्यापार के तीन प्रमुख रास्तों पर अपना दबदबा बना ले तो वो दूसरों को तकलीफ दे सकता है। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप भी शिपिंग लेन के बगल में हैं, जहां से चीन, जापान और भारत को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अब मालदीव की अहमियत को चीन अच्छी तरह से समझता है और वो अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए मालदीव को साधने में जुटा है।
1: चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम कर रहा है, जहां पर वो भारत को चादरों से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो, या बांग्लादेश में चितगांग पोस्ट हो, और अब वो मालदीव में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उनकी नेवी लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है, हिंद महासागर में घूमते रहते हैं और भारत के शिपिंग पर, भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, भारत की रक्षा की तैयारियों पर पूरी तरह से नजर रखते हैं।
2: रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
6: La Que Buena.
5: ESPN Radio.
7: We know LeBron has to be the best player on the planet.
5: The Daily.
8: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
5: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।

0: गुलाम भी बनते जा रहे हैं, लेकिन ये भारत की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों में चीन ने अपनी समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा किया है, इसको अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया है, और ये भारत के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपनी नौसैनिक ताकतों को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत ने अपनी नौसेना के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लेकर युद्धपोतों तक को इसमें शामिल किया है, और साथ ही साथ हमारे तटरक्षक बलों को भी अत्याधुनिक साजो सामान से पूरी तरह से लैस किया गया है, ताकि समुद्री सीमा में भी चीन का मुकाबला किया जा सके।
1: लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है और इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर का है। यह अरब सागर में करीब 30,000 वर्ग मील तक फैला हुआ है। अरब सागर की सीमा यमन, ओमान, पाकिस्तान, ईरान, भारत और मालदीव को छूती है। ये एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जो कई अहम शिपिंग लेन और बंदरगाहों को जोड़ता है, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये बहुत अहम रास्ता बन जाता है। अरब सागर में जहाजों की किसी भी गतिविधि पर नजर रखने के लिए लक्षद्वीप समूह का इस्तेमाल ही किया जाता है। समंदर में भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन का आकार बहुत विशाल है और इसमें लक्षद्वीप भी शामिल है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी भी देश के समुद्री तट से 200 समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर की दूरी तक होता है। लक्षद्वीप की वजह से भारत को समंदर के बड़े इलाके पर अधिकार मिल गया है, जिससे दूर दूर तक गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकती है। लक्षद्वीप के पर्वतीय द्वीप पर भारतीय नौसैनिक अड्डा है, और इसके साथ ही भारत के पास अब INS जटायु के तौर पर लक्षद्वीप पर एक और मजबूत नेवल बेस भी तैयार हो चुका है, जिससे चीन का मुकाबला करने के लिए बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।
2: लक्षद्वीप भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तकरीबन 400 किलोमीटर पश्चिम में है और 36 आइलैंड है। 4,200 स्क्वायर किलोमीटर का इसका लगून का एरिया बनता है, और जब हम 200 मील के नॉटिकल मील का जब हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जोड़ते हैं तो 4,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारत को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मिलता है, जिसमें भारत के फिशिंग राइट्स रहेंगे, जिसमें हमारे शिपिंग राइट्स रहेंगे, जहां पर हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, ऑयल निकाल सकते हैं। यानी कि भारत के लिए लक्षद्वीप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा है।
1: भारत की तटीय सीमा 9 राज्यों के साथ साथ संघ शासित प्रदेशों दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैली हुई है। इसमें केरल राज्य भारत की सामरिक सुरक्षा का एक बड़ा केंद्र है।
0: कोची केरल का अहम बंदरगाह है, और ये सीधे सीधे लक्षद्वीप के साथ भी सटा हुआ है। हिंद महासागर और अरब सागर में स्थित ये इलाका बहुत अहम और इम्पोर्टेंट हो जाता है। दरअसल आज की तारीख में ही नहीं, अगर हम प्राचीन काल से देखें तो ये कहीं ना कहीं तमाम जहाजों की आवाजाही का एक मेन पोर्ट रहा है।
1: केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मौजूद है, जहां सैटेलाइट प्रक्षेपण यान और उससे जुड़ी प्रौद्योगिकियों की डिजाइनिंग और उनका विकास किया जाता है। इसीलिए इन केंद्रों की सुरक्षा के लिए लक्षद्वीप समूह पर भारत की सामरिक क्षमता का मजबूत होना बेहद जरूरी है।
0: लक्षद्वीप समूह की भौगोलिक स्थितियां दरअसल भारत के लिए चिंता पैदा करती हैं। लक्षद्वीप मालदीव से बेहद करीब है, करीब करीब अंदाजा लगाया जाए तो 100 मील की दूरी पर है, और मालदीव जिस तरीके से हाल फिलहाल में चीन के इशारों पर चल रहा है, ऐसे में भारत को लक्षद्वीप और खासतौर पर इसके आसपास के इलाकों में अपनी ताकत को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि जरूरत पड़ने पर चीन और मालदीव दोनों को जवाब दिया जा सके।
1: चीन के प्रभाव में तो मालदीव है ही, वहाँ चरमपंथी गतिविधियां भी बढ़ी हैं। हाल के वर्षों में सऊदी अरब और पाकिस्तान से मिलने वाली सहायता के साथ साथ मजहबी कट्टरपंथ का निर्यात भी इन देशों से हो रहा है। दक्षिण एशियाई देशों से ISI में जिहादी भर्तियों का सबसे बड़ा आंकड़ा भी मालदीव से ही रहा है। मालदीव के सैकड़ों द्वीप निर्जन हैं और वहां चरमपंथी ताकतों के मजबूत होने

0: का खतरा बना रहता है, जिसका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने का अंदेशा है।
1: ये देखा जाए तो बहुत अफसोस की बात है कि आज मालदीव में चरमपंथियों ने कब्जा कर लिया है, और जिसका कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, और वहां के लोकल लोगों को भी ये समझना चाहिए, जो आवाम को वहां की आम जनता को समझना चाहिए कि उनके लिए कितना बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। वो ये नहीं समझ रहे कि आज किस प्रकार से जो उनके लीडर हैं, चरमपंथी लीडर हैं, वो चाइना की गोद में जा बैठे हैं और चाइना वहां पर उधार देकर उनकी इकॉनमी को पूरी तरह से कब्जा कर रहा है, जिसकी लोग डिप्लोमेसी पूरी दुनिया जानती है, और जो वहां पर एक आतंकवादी संगठन बढ़ रहे हैं, चरमपंथी आ रहे हैं, जिससे देखा जाए तो भारत की सुरक्षा के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। भारत को इसके लिए बहुत सचेत रहना पड़ेगा।
0: लक्षद्वीप को हाईटेक बना करके मालदीव, मॉरिशस, सिशेल्स, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है। चीन भारत से लगभग 300 किलोमीटर दूर श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह शहर का निर्माण कर रहा है। इसी तरह ये मालदीव के कई द्वीपों को कंट्रोल कर सकता है और वहाँ एक हवाई अड्डा बना रहा है। हम्बनटोटा से चेन्नई, कोची और विशाखापट्टनम बंदरगाहों का फासला करीब 900 से 1500 किलोमीटर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भी करीब 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन ने हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर वॉरशिप, बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर्स, सर्वे एंड रिसर्च वेसल्स को हिंद महासागर में भेजा है। पिछले 5 साल का अगर डेटा देखें, 2019 में चीन के 29 जहाज हिंद महासागर में घूमते पाए गए। साल 2020 में आंकड़ा बढ़कर 39 हुआ। अगले ही साल यानी 2021 में 45 चीनी जहाजों ने हिंद महासागर में डेरा डाला, और फिर साल 2022 में 43 जहाज फिर से इंडियन नेवी की जासूसी के लिए हिंद महासागर में चक्कर काटते नजर आए। 15 सितंबर 2023 तक हिंद महासागर क्षेत्र में 28 चीनी जहाजों का दौरा हो चुका है। रक्षा जानकारों का मानना है कि चीन हिंद महासागर में भारतीय नेवी की जासूसी करता है। चीनी शिप में दूर से छिपकर बातों को सुनने वाले उपकरण लगे हैं, और इनकी मदद से जहाज में सैकड़ों किलोमीटर दूर से हो रही बातचीत को भी सुना जा सकता है।
1: देखा जाए तो खबर आती रहती है कि चाइना के जहाज बार बार इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में घूमते रहते हैं। कभी श्रीलंका के पास जाते, कभी मालदीव की तरफ जाते। जब हमारा मिसाइल प्रशिक्षण होता है तब वो वहां पर डिप्लॉय हो जाते हैं, निगाह रखते हैं, या हमारी नेवी की मूवमेंट्स पर निगाह रखते हैं। एक तरह से चाइना की विस्तारवादी नीति का हिस्सा है। वो लगातार अपनी इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत किस प्रकार से अपना सुरक्षा तंत्र बढ़ा रहा है इसके ऊपर भी वो नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं।
0: कोची से 650 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक के कारवार में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। कारवार नौसेना बेस पर प्रोजेक्ट सी बर्ड देश की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य युद्धपोतों के बेड़े का समर्थन और रखरखाव प्रदान करना है। पड़ोसी देशों के ज्यादातर लड़ाकू विमानों की पहुंच से बाहर है, और फारस की खाड़ी और पूर्वी एशिया के बीच दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों के बहुत करीब स्थित है। INS कदम्बा भारतीय नौसेना का एक कंबाइंड रणनीतिक नौसेना अड्डा है, जो भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक में कारवार के पास बेनगा खाड़ी में स्थित है। ये मौजूदा समय में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक अड्डा है। हिंद महासागर में ही बसा है अंडमान निकोबार, और ये मलक्का स्ट्रेट के उत्तरी हिस्से में है, या कहें कि ठीक उत्तर में अंडमान निकोबार ही आता है। दरअसल ये ऐसा इलाका है जो समुद्री जहाजों की आवाजाही के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इलाका काफी संकरा भी है। चीन की टेंशन यहीं से शुरू होती है। इलाका संकरा होने की वजह से अगर भारत यहां पर बढ़त बना लेता है तो कभी भी चीन और भारत के बीच अगर टेंशन होती है तो यहां से जहाजों की आवाजाही पर भी नियंत्रण किया जा सकता है।
2: अंडमान निकोबार कमान भारत में एकमात्र ट्राइड सर्विस थिएटर कमान है, जो देश की सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं के साथ देश के थिएटर कमान के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। यहीं से मलक्का स्ट्रेट पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड दरअसल एक ऐसी प्रणाली है जो कि जल, थल और नभ तीनों सेनाओं में समन्वय बढ़ाती है। तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से एक साथ रण क्षेत्र में उतर सकती हैं। जरूरत पड़ने पर भी कोई किसी के साथ संपर्क में न भी रहे, तब भी एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और इसका मकसद भी सीधे तौर पर यही है।
0: एकीकृत थिएटर कमान बनाने के पीछे सोच ये है कि तीनों सेनाओं की क्षमताओं को अगर एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो युद्ध की स्थिति में उनका प्रदर्शन कई गुना ज्यादा बेहतर हो सकता है। फिलहाल भारत में 3 से 4 थिएटर कमान बनाने पर विचार किया जा रहा है और हर कमान का नेतृत्व एक 3 सितारा अधिकारी को सौंपने की बात हो रही है। आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल, वायुसेना में एयर मार्शल और नौसेना में वाइस एडमिरल 3 सितारा अधिकारी होते हैं। इस योजना के तहत हर थिएटर कमान के पास तीनों बलों के संसाधन होंगे और इन्हें इस्तेमाल करने का अधिकार थिएटर के कमांडर के पास होगा।
2: अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक भारत अपनी सैनिक ताकत में और ज्यादा इजाफा कर रहा, अपनी नौसेना को अत्याधुनिक बना रहा है। इतना ही नहीं, मॉरिशस के अगलेगा द्वीप को भी भारत विकसित कर रहा है। दरअसल लक्षद्वीप से लेकर अगलेगा द्वीप तक भारत एक संपर्क बिंदु बनाना चाहता है जिससे इस पूरे क्षेत्र में सामरिक तौर पर भारत को बढ़त हासिल हो सके।
0: चीन खुद को नई महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। इस तनातनी के चलते हिंद महासागर में चीन अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। चीन ने 2017 में जिबूती में एक नौसैनिक अड्डा बनाया था। जिबूती में अमेरिका, फ्रांस और जापान सहित 8 देशों के नौसैनिक अड्डे हैं। चीन अपनी सामरिक रणनीति के तहत म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव समेत हिंद महासागर से जुड़े देशों में सक्रियता बढ़ा रहा है। चीन ने तंजानिया के बागामोयो में एक कमर्शियल पोर्ट तैयार करने की योजना बनाई है। शक जताया जा रहा है कि वो वहां नौसैनिक अड्डा बना सकता है। साथ ही चीन ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसकी बदौलत वो भारत की घेराबंदी कर सके और इसके लिए चीन पड़ोसी देशों को साध रहा है। उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर अपने इशारे पर नचाने को मजबूर करता है। चीन भारत के खिलाफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तैयार कर रहा है। अब ये क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये भी समझा देते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल चीन के ऐसे नेवल बेस की चेन है जिससे वो भारत को घेरने की कोशिश में जुटा है। साजिश की इस माला की शुरुआत जिबूती से होती है जहां चीन ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाया। इस माला का दूसरा मोती है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जहां चीनी फौज तैनात है। वहीं श्रीलंका के हम्बनडोटा पोर्ट को चीन ने 99 साल की लीज पर लिया है। बांग्लादेश के चटगांव में भी चीन ने अपना बंदरगाह विकसित कर लिया है। वहीं म्यांमार के ख्वाकफू बंदरगाह में भी चीन की मौजूदगी खतरे का सायरन है। बंगाल की खाड़ी में मौजूद इस बंदरगाह का इस्तेमाल चीन अपने कमर्शियल समुद्री सुविधा के लिए करता है। रक्षा जानकारों का मानना है कि भविष्य में चीन इसका इस्तेमाल सैन्य अड्डे के तौर पर कर सकता है।
3: चीन एक विस्तारवादी देश है, हमेशा से इसकी ये चाहत रहती है कि अपने बॉर्डर्स इंक्रीज करे, दूसरों की सीमाओं में जाए और अपनी सीमाओं में उनको मिलाए। चाइना का इंडियन ओशन में लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है और वो भारत को नॉर्दर्न बॉर्डर से तो हम सब जानते हैं और डोकलम के बारे में हमने सुना है और हमने जो लद्दाख में देखा वो सब हम जानते हैं। चाइना का वॉर भी हमने देखा है, पर इंडियन ओशन की तरफ से ये जो नया प्रहार है, जो हमें घेरने की कोशिश है, चाहे वो बांग्लादेश में चिटगांव हो या फिर हम्बनडोटा हो श्रीलंका में या फिर ये जो ग्वादर पोर्ट हो कराची के पास, इन सबों को मिला के वो चाहता है कि अपनी नौसेना की शक्ति बढ़ाएं पोर्ट्स एंड हार्बर्स में अपनी, या जिबूती में उसका जो देखते हैं नेवल बेस जो बन रहा है अफ्रीकन कोस्ट में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो यहाँ से वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है इंडोनेशिया को, भारत को प्रभाव में लाना चाहता है और इन देशों के साथ जुड़कर एक स्ट्रिंग जो उन्होंने बनाया है जिसको वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स कर रहे हैं। साथ साथ वो जो मैरिटाइम सिल्क रूट है उसको भी वो इनर्जाइज करके चाहता है कि वो इन जगहों को जोड़ें और यहां से अपनी शक्ति को बढ़ाएं, एक्सटेंड करें अपनी नौसेना की प्रभाव को।
0: चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति के जवाब में भारत अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति पर काम कर रहा है जिसमें एक्स ईस्ट पॉलिसी के तहत सैन्य और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
2: साथ ही बंदरगाहों के निर्माण से लेकर सैन्य और नौसेना संबंध को बढ़ावा भी देना है। भारत की इसी बहुआयामी रणनीति का उद्देश्य चीन को जवाबी तौर पर घेरने का है। नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी के तहत भारत लगातार अपनी समुद्री बंदरगाहों को विकसित कर रहा है और इसी के साथ साथ निगरानी प्रणाली को भी इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में अगर कहीं भी चीनी पनडुब्बियों या जहाजों की मूवमेंट होती है तो उसे तुरंत ट्रैक किया जा सके। भारत एशिया के कई देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है, साथ ही चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक बेस का विस्तार भी किया जा रहा है। चांगी नेवल बेस सिंगापुर, इंडोनेशिया का संबांग पोर्ट, सुशेल्स का अजम्पशन आइलैंड, ओमान का दुकम बंदरगाह, ईरान का चाबहार पोर्ट बेहद अहम है। साल 2018 में भारत ने सिंगापुर के साथ एक द्विपक्षीय समझौता किया था, जिसके बाद चांगी नेवल बेस का भारतीय नौसेना के इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया। यहाँ भारतीय नौसेना के लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ रिफ्यूलिंग के लिए चांगी बेस का इस्तेमाल कर सकता है। साल 2018 में ही भारत को दुकम बंदरगाह के इस्तेमाल की परमिशन मिली। यहाँ भारत को नेवल एक्सेस है। ग्वादर और जिबूती के बीच मौजूद होने की वजह से इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। सुशेल के अजम्पशन आइलैंड पर भारतीय नौसेना का एक्सेस मौजूद है। इंडोनेशिया का संबांग पोर्ट के जरिए मलक्का स्ट्रेट पर भारत की मौजूदगी बढ़ जाती है। वहीं वियतनाम, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ अपना नेवल कॉरपोरेशन भी भारत ने बढ़ाया है।
3: नेकलेस ऑफ डायमंड एक स्ट्रेटजी है जो भारत को चाइना के इंडियन ओशन के प्रेजेंस के विरुद्ध अपनी एक नीति देता है, और ये नीति एक तरह से भारत का दूसरे विश्व के साथ एक कोलैटरल कोलैबोरेशन, चाहे वो इंडियन ओशन में हो या चाइना के चारों तरफ से, साउथ से इंडिया है ही और एक तरफ से फिर ईरान में चावार पोर्ट का निर्माण या हमारे ओमान पोर्ट में, दोकम में पोर्ट में हमारा जो सामंजस्य बना है, 2015, 16, 17, 18 में ये सारे डेवलपमेंट हुए। प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में के साथ ये सब देशों का दौरा हुआ और फिर पहली बार भारत का प्रधानमंत्री मंगोलिया गया, तो नॉर्थ में भी चाइना को घेरा गया और फिर जापान के बेस में या सवांग में, इंडोनेशिया के बेस देखें या हम वियतनाम की बात करें, इन सब जगहों पे हमने अपना नेवल बेस और एयर कॉरिडोर भी स्थापित किया है ताकि हम एक जो नेकलेस ऑफ डायमंड की पॉलिसी की तरह चाइना को इनसर्किल कर सकें और मिलजुल कर एक सहयोग के साथ चाइना को साउथ चाइना सी में या दूसरे जगहों पे हम काउंटर कर सके, ताकि उसकी जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी है उसका अच्छी तरह से काउंटर मेजर हो सके और चाइना को एक अच्छा करारा जवाब जरूरत पड़ने पर मिलते रहे।
2: भारतीय नौसेना देश की सुरक्षा में हर वक्त चौकस रहती है। इंडियन नेवी ने वक्त के साथ अपनी क्षमताओं को काफी विकसित किया है। बदलती तकनीक के साथ तालमेल बिठाया है, सेना को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। भारत न केवल युद्धपोतों के माध्यम से बल्कि समुद्री टोही विमानों के जरिए भी हिंद महासागर में अपनी निगरानी करने के लिए अच्छी स्थिति में है। यही वजह है कि हमारी भारतीय नौसेना से मुकाबला करने की हिमाकत कोई नहीं करता।
4: रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत सिंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
7: Tune In is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
8: I have no idea how this election is going to play out.
7: Or want to catch up on your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: बच्चे के जन्म का समय कितना महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का जन्म नक्षत्र उसके जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: और अब बात पुष्पा टू की, जिसका सुपर हिट डांस नंबर जिसने पूरे देश में धूम मचा दी थी और अल्लू अर्जुन श्रीलीला की इस जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था, वो एक बार फिर से बड़े पर्दे पर साथ नजर आ सकती है। इंडस्ट्री में चर्चा है कि श्रीलीला जल्द ही अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड साइंस फिक्शन फिल्म राका का हिस्सा बन सकती है।

0: साउथ सिनेमा के सबसे चर्चित ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक अल्लू अर्जुन और श्रीलीला एक बार फिर सुर्खियों में है। पुष्पा 2 में अपनी धमाकेदार केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब खबरें हैं कि दोनों जल्द ही एक और बड़े प्रोजेक्ट में साथ दिखाई दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन की अपकमिंग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म राका में श्रीलीला की एंट्री हो सकती है। हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिल्म से जुड़े सूत्रों का दावा है कि कुछ दिन पहले श्रीलीला राका के सेट पर मौजूद थी, जहां अल्लू अर्जुन लगातार 2 दिनों तक शूटिंग कर रहे थे। फिलहाल किसी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। और अगर ये खबर सच साबित होती है तो पुष्पा 2 की आग अब राका में भी देखने को मिलेगी। अगर ये खबर सच साबित होती है तो पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन और श्रीलीला दूसरी बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। पुष्पा 2 द रूल के उनके सुपरहिट डांस नंबर ने दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी और फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बनकर उभरा था। वही राका पहले से ही देश की सबसे चर्चित पैन इंडिया फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म का निर्देशन अटली कर रहे हैं और ये पहली बार है जब अल्लू अर्जुन और अटली किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। खास बात ये भी है कि इस फिल्म के जरिए अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी भी पहली बार बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। फिल्म को लेकर मेकर्स ने फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना, मृणाल ठाकुर और जानवी कपूर के बीच मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की चर्चा है। इतना ही नहीं, पहले आई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि सुपरस्टार शाहरुख खान भी राका में नजर आ सकते हैं। हालांकि उनका किरदार क्या होगा इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल तो फैंस की निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी है कि क्या राका में अल्लू अर्जुन और श्रीलीला की जोड़ी सचमुच एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। रिपोर्ट, कुन्नी स्टूडियो।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
1: लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: बच्चे के जन्म का समय कितना महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का जन्म नक्षत्र उसके जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
3: Keep it on smooth jazz.
4: This is Roots Reggae
5: exclusively on TuneIn.
6: This is classic hip hop
7: exclusively on TuneIn.
1: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music and news you love anytime you want.
8: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
8: भारतीय सेना खरीदेगी 450 काल गुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार। अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर। भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्रगिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। राम भक्तों के लिए आई गुड न्यूज, 30 जुलाई तक श्री राम मंदिर परिसर में सभी निर्माण कार्य हो जाएंगे पूरे। राम कथा संग्रहालय की 20 गैलरी की स्टोरी लाइन भी तैयार। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय। इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं।
4: बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने नई दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम। शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर।
7: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के आखिरी 13 मिनट में निश्चित रूप से हारी हुई बाजी जीतकर दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि युगांधर के शब्दकोश से असंभव शब्द के लिए कोई स्थान ही नहीं है।

0: तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना की ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हां, एक ऐसा खिलाड़ी मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 7 जुलाई को कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना मिस्र के खिलाफ करीब करीब मैच हार चुकी थी, लेकिन मैच के आखिरी 13 मिनट में मेसी ने मैदान पर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और वो तूफान मचाया कि मिस्र के खिलाड़ी जीती हुई बाजी गंवाने का तमाशा असहाय रूप से देखते रह गए।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जेय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगों युगों में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में बीते 7 जुलाई को लियोनेल मेसी ने एक बार फिर पूरी हनक के साथ ये साबित कर दिया कि 39 की उम्र में भी विरोधियों की जीत के जबड़े से विजय छीन लेने का जज्बा उनके अंदर बरकरार है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में 16 बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगा दी। इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूटकर बिखरने लगा। इंजरी टाइम से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन 92वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। नामुमकिन दिख रही जीत को मुमकिन कर मेसी ने पहली प्रतिक्रिया में इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा खुद की बजाय अपने साथी के सिर बांधने की दरियादिली दिखाई। मेसी ने कहा कि 0-2 से पिछड़ने के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। नॉकआउट में इतनी बड़ी वापसी कतई आसान नहीं थी। रोमेरो के गोल से हमारे अंदर बराबरी कर लेने का आत्मविश्वास जगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने एक्स्ट्रा टाइम से पहले ही मैच जीत लिया। अटलांटा के ऐतिहासिक मैच की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने के बाद इतनी सहज और सरल प्रतिक्रिया मेसी जैसा महानतम खिलाड़ी ही दे सकता है। इस प्रतिक्रिया में मेसी ने ना तो 79वें मिनट में दिए अपने शानदार क्रॉस का और ना ही 83वें मिनट में किए अपने गोल का ही जिक्र किया। हालांकि दिग्गज सॉकर प्लेयर ये मान रहे हैं कि मेसी ने एक जादूगर की तरह आखिरी क्षणों में मैच का पासा पलट दिया। इस मैच को सांसें थाम कर देखने वाले फ्रांस के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर थियरी हेनरी ने मेसी की तारीफ करते हुए कहा कि वो मानव से ऊपर के दर्जे वाले लिविंग विंग हैं। फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते हुए थियरी हेनरी ने कहा कि इसने शुरू में हमें बताया कि वो एक इंसान है। वो इंसान है इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ पेनल्टी किक को मिस कर दिया, 8 में से 4 को, लेकिन इसी मैच में हमें दोबारा याद दिलाया कि वो इंसान नहीं है। थियरी हेनरी जैसा महान स्ट्राइकर मेसी को अगर महामानव मान रहा है तो जाहिर है इस खिलाड़ी में कुछ तो ऐसा है जो फुटबॉल के दूसरे खिलाड़ियों में नहीं है। मेसी की उम्र 39 साल है, लेकिन इस उम्र में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल दागकर वो गोल्डन बॉल की रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए, जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया, लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानव नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया, लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे, लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल ये है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
0: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो मानो वो भगवान बन गए, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारे की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन नावाकिफ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तान आपके दिल को छू लेगी।
1: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे, जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थी। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी। यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था, इलाज था लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं। पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे, वैसी किसी और बच्चे को ना झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस, लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
0: तो बंदे में दम में आज आपने लियोनेल मेसी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: बच्चे के जन्म का समय कितना महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का जन्म नक्षत्र उसके जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे।

0: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
2: है। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: भारतीय सेना खरीदेगी 450 काल गुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार। अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर।

0: भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्रगिरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय। इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कल चलाई जा रही है 8 स्पेशल ट्रेन। अलग अलग स्टेशन का टाइम टेबल भी किया जारी। इंदौर में 22वें पुण्योदय प्रकल्प का शुभारंभ। मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को बांटी जाएंगी 3,00,000 कॉपियां। 11 अगस्त तक पूरे एक महीने चलेगा अभियान। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम। शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
0: न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। करीब 40,000 लोगों से हुए रूबरू। भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ पीएम का हुआ स्वागत। न्यूजीलैंड के मिनी इंडिया में बोले प्रधानमंत्री मोदी, 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। दौरा संपन्न करके आज ही लौट रहे हैं स्वदेश। संबोधन से पहले अपने नाम और नंबर 100 वाली जर्सी के साथ दिखे प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। भारतीय समुदाय के लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने ऑकलैंड में खेल प्रदर्शनी का किया दौरा। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों और हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के साथ भी की बातचीत। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने की पहल। ऑकलैंड में गाला लंच में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। न्यूजीलैंड के पीएम ने किया भव्य आयोजन। ऑकलैंड में गाला लंच के दौरान शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम। भारतीय और न्यूजीलैंड के कलाकार हुए शामिल। न्यूजीलैंड में अपने संबोधन में बोले पीएम, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज, हम फिनटेक में लीडर। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ समझौतों का किया स्वागत। कहा हिंद प्रशांत में समुद्री सहयोग के लिए फ्रेमवर्क पर बनी सहमति। ऑकलैंड के वायाडक्ट बिजनेस सेंटर में कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। बिजनेस लीडर्स को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक। अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए अहम समझौते। मुक्त व्यापार समझौता हुआ फाइनल।

0: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत, गवर्नमेंट हाउस में लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। पारंपरिक माओरी तरीके से किया गया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और परंपराओं की दिखी झलक।
1: स्वागत,
0: न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, गर्मजोशी के साथ किया गया वेलकम। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्रगिरी नौसेना में हुआ शामिल, विशाखापट्टनम में हुई कमिशनिंग सेरेमनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में INS महेंद्रगिरी को नौसेना में किया गया शामिल, रक्षा मंत्री ने नेवी को दी बधाई, कहा यह देश की सुरक्षा में मील का पत्थर। भारत के प्रोजेक्ट 17A की नीलगिरी कैटेगरी का छठा स्टील्थ फ्रिगेट है INS महेंद्रगिरी, 75% स्वदेशी उपकरणों से है लैस। एंटी सबमरीन सिस्टम और एडवांस मिसाइल से लैस जंगी जहाज है INS महेंद्रगिरी, भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया इसे डिजाइन, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया निर्माण। INS महेंद्रगिरी में है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, हाई स्पीड वाले जहाज को रडार पर ट्रैक पर पाना होगा मुश्किल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, INS महेंद्रगिरी पर लगाई जा सकती है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स। जमीन से जमीन और जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल से लैस है ये फ्रिगेट, आधुनिक रडार और सेंसर सूट्स भी है मौजूद। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया जहाज का नाम, शक्ति मजबूती और अटल संकल्प का प्रतीक। नौसेना को इस साल मिला छठा युद्धपोत INS महेंद्रगिरी, 40 और जंगी जहाजों के निर्माण का चल रहा है काम। अगले 2 महीने में नेवी को मिल सकते हैं 4 और जंगी जहाज, जनवरी 2025 से अब तक मिल चुके हैं 18 युद्धपोत। मोराको में एनर्जी बोट चैलेंज के 13वें संस्करण में भारत की शक्ति टीम ले रही है हिस्सा, एंड्योरेंस रेस में शामिल हुई टीम। मोनाको के याच क्लब डी मोनाको में एंड्योरेंस रेस का आयोजन, 3.5 घंटे चलती है रेस। एनर्जी बोर्ड चैलेंज में भारतीय टीम ने किया शानदार प्रदर्शन, पिछली बार की तुलना में कड़ा है मुकाबला। एनर्जी बोर्ड चैलेंज में प्रिंस एल्बर्ट 2 अवार्ड के लिए चुनी गई भारतीय टीम, पहली बार इस अवार्ड के लिए टीम हुई क्वालिफाई, इस बार जीते 2 अवार्ड। एनर्जी बोर्ड चैलेंज में भारतीय टीम ने पेश किया बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, हरित तकनीक को बढ़ावा देने की पहल। रक्षा क्षेत्र के मोर्चे से देश के लिए आई शानदार खबर, भारतीय सेना खरीदेगी 450 काल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर। मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बनेंगे मॉडर्न लॉन्चर, मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर है काल गुस्ताफ MK4। पुराने लॉन्चर की जगह लेगा नया मल्टी रोल MK4 सिस्टम, झज्जर प्लांट में होगा काल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर का निर्माण। इस हल्के और हाईटेक हथियार को कहीं भी लाना ले जाना होगा आसान, सैनिकों की ताकत होगी इससे दोगुनी। डिजिटल फायर कंट्रोल से लैस है ये लॉन्चर, जो पहली गोलों में ही करेगा सटीक वार, और गोली से करेगा इसका वार, 84 मिलीमीटर पुराने गोला बारूद से भी लैस होगा काल गुस्ताफ। पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज, समस्तीपुर रेल मंडल के अलग अलग स्टेशन से चलेगी 8 परीक्षा स्पेशल ट्रेन। एयर इंडिया ने किया ऐलान, कल से जोधपुर एयरपोर्ट से चलने वाली उसकी सभी उड़ानें एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग से होंगी संचालित। यात्रियों को ज्यादा आराम और बेहतर ऑपरेशनल क्षमता देता है 23,000 वर्ग मीटर से ज्यादा में फैला नया टर्मिनल, प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जुलाई को किया था टर्मिनल भवन का उद्घाटन। आज कुशीनगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, 525 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर में रामबन के चंद्रकोट में सीआरपीएफ ने लगाया 61 फीट का हाई मास्ट, राष्ट्रीय ध्वज चेनाब नदी के किनारे लहराया तिरंगा। दिल्ली में अब ई रिक्शा की जगह ले सकती है 7-सीटर इलेक्ट्रिक वैन, तंग गलियों में चलाने की तैयारी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी मजबूत। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय। तय अधिकतम कीमत से ज्यादा रेट पर नहीं बेची जा सकेंगी दवाएं, डायबिटीज, हाई बीपी, दिल की बीमारी, इन्फेक्शन, आंखों की बीमारी, सांस की तकलीफ और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाएं शामिल। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में शुरू हुई ब्रेकिथेरेपी, सर्वाइकल कैंसर के मरीजों को मिलेगी इससे बड़ी राहत। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में ब्रेकिथेरेपी के जरिए फ्री में होगा इलाज, प्राइवेट अस्पतालों में लगते हैं लाखों रुपए। गुजरात के कच्छ में जम्प स्टार प्रोजेक्ट से पैदा हुआ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का चूजा, नलिया में चल रही है पक्षी के संरक्षण के कार्यक्रम। कच्छ के नलिया में आकार ले रहा है गुजरात का पहला सॉफ्ट रिलीज सेंटर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिवाइवल प्रोग्राम को इससे मिलेगी नई उड़ान। पिंजौर में 33वें मैंगो मेले का आयोजन, 200 से अधिक आम की किस्में की गई हैं प्रदर्शित। शिमला के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में वंदे मातरम यात्रा का आयोजन, वंदे मातरम के 150 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर लगाई गई प्रदर्शनी। गोथिया कप 2026 के लिए स्वीडन भेजे गए स्पेशल ओलंपिक्स भारत की ओर से खिलाड़ी, स्वीडन के गोथिनबर्ग में 12 से 18 जुलाई के बीच होगा आयोजन। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा से पहले भव्य तैयारियां, विशाल रंगोली बनाने में जुटे कलाकार। रथ यात्रा से पहले विशेष वस्त्र तैयार करने में जुटे दर्जी और कारीगर, 17 कारीगर कर रहे हैं निर्माण। रथ को सजाने के लिए 1250 मीटर कपड़े का किया गया इस्तेमाल, जगन्नाथ जी और बलदेव जी के रथों के लिए 425 मीटर और सुभद्रा जी के लिए 400 मीटर कपड़े का होता है उपयोग। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, इस बार 16 जुलाई को निकलेंगे रथ। पुरी में 5 किलोमीटर का दायरा नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया, 16 जुलाई से 27 जुलाई तक बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, 30 जुलाई तक श्रीराम मंदिर परिसर में सभी निर्माण कार्य हो जाएंगे पूरे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बयान, मंदिर के निर्माण कार्य की कर ली गई है समीक्षा, अब सिर्फ 2 कार्य पूरे किए जाने बाकी। मंदिर परिसर में स्मारक के रूप में संरक्षित पुराने राम मंदिर में 24 घंटे जलने वाली ज्वाला की व्यवस्था होनी बाकी, बचे हुए निर्माण कार्य पूरे। श्रीराम मंदिर परिसर में दूसरे स्मारक का काम जुलाई के अंत तक हो जाएगा पूरा, 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का काम। मंदिर परिसर के बाहर ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य नवंबर से दिसंबर तक हो सकता है पूरा, रामकथा संग्रहालय की 20 गैलरी की स्टोरी लाइन भी तैयार, अब आगे के काम पर होगा निर्णय। बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, आस्था और विश्वास के साथ बना हुआ है चारधाम यात्रा का उत्साह। चमोली में यात्रा मार्ग सुचारू होने से श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी, नहीं हो रही है कोई परेशानी। बारिश के कारण बद्रीनाथ के पास बढ़ रहा है अलकनंदा नदी का जलस्तर, पूरे उफान पर बह रही है नदी। अब तक लगभग 15 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं बद्रीनाथ धाम में दर्शन, रोजाना 9 से 10 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं धाम। रुद्रप्रयाग सहित केदारनाथ धाम में कई दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश, तीर्थ यात्रा भी है जारी। 2 दिन जोरदार बारिश के बाद दिल्ली और आसपास मौसम हुआ साफ, 15 जुलाई तक मानसून की रफ्तार रह सकती है धीमी। दिल्ली में मौसम बना हुआ है सुहाना। अधिकतम तापमान 33 डिग्री के करीब किया गया दर्ज, 37 डिग्री तक जा सकता है पारा। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक के लिए जारी किया है येलो अलर्ट। गुजरात में आज मौसम साफ रहने के आसार, लेकिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में 12 एनडीआरएफ और 26 एसडीआरएफ की टीमों को किया गया है तैनात। एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने जारी किया अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द साइकिल ऑफ लव का ट्रेलर, फिल्म की कार्यकारी निर्माता है प्रियंका। दिल्ली के कलाकार पीके महानंदिया पर आधारित डॉक्यूमेंट्री की कहानी, सच्चे प्यार की तलाश में भारत से स्वीडन तक 6000 मील की यात्रा पर साइकिल से निकले थे महानंदिया। वेब सीरीज रक्तांचल 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है, क्रांति प्रकाश झा और निकितन धीर अपनी पहली बारी भूमिकाओं में ही आएंगे नजर। सोलह जुलाई को अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में स्ट्रीम होगी वेब सीरीज रक्तांचल 3। करण पटेल, माही गिल, राजेश कुमार और विक्रम कोचर भी अहम भूमिकाओं में। शादी के बंधन में बंधी टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम एक्ट्रेस पलक, बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना संग लिए साथ फेरे। एक्टर शाहरुख खान ने दिल्ली में खरीदा आशियाना पॉश इलाके पंशील पार्क में, उस पूरी बिल्डिंग के बने मालिक जहां शादी के बाद की थी अपनी जिंदगी की शुरुआत। शाहरुख और गौरी खान के लिए खास है ये घर, इमारत के बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पर पहले से था मालिकाना हक, अब दूसरे और तीसरे फ्लोर के भी बने मालिक। हाल में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट देखने पहुंची प्रियंका चोपड़ा, महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल्स मैच के दौरान फ्रंट रो में बैठी आई नजर। कोको गॉफ और कैरोलिना के बीच मुकाबले के दौरान प्रियंका ने स्टेडियम से ही अपने पति निक जोनस को किया वीडियो कॉल, उन्हें करा विंबलडन का लाइव टूर। दूसरी बार मां बनेंगे दीपिका पादुकोण, सोशल मीडिया पर दी जानकारी, फैंस के बीच खुशी की लहर। भारत इंग्लैंड के बीच साउथहैम्पटन में आज होगा सीरीज का पांचवा और आखिरी टी20 मैच, शाम 7 बजे खेला जाएगा मुकाबला। विंबलडन फाइनल में सिन्हा की दमदार एंट्री, नंबर 1 यानिक सिन्हा ने नोवाक जोकोविच को सीधे सेंटों में हराकर लगातार दूसरी बार बनाई जगह। विंबलडन को आज मिलेगी नई महिला चैंपियन, कैरोलिना मुशोवा और लिंडा नोस्कोवा के बीच होगा खिताबी मुकाबला। महाराष्ट्र के 31 साल के हाई जंपर सर्वेश कुशारे ने डायमंड लीग में रचा इतिहास, मोनाको मीट में तीसरा स्थान हासिल किया। अनिमेश कुजूर बने विदेश में सबसे तेज 100 मीटर दौड़ने वाले भारतीय, जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंज में 10.14 सेकंड में पूरी की 100 मीटर दौड़। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंचा स्पेन, दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराया। रोमांचक मुकाबले में स्पेन के लिए फाबियन रुइज और मिखेल मेरिनो ने गोल किए, बेल्जियम की ओर से चार्ल्स डी कैटलारे ने एकमात्र गोल दागा। वर्ल्ड कप के अंतिम चार में पहुंची स्पेन की टीम, सेमीफाइनल्स में फ्रांस से होगा मुकाबला। इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी है स्पेन की टीम, अब तक 6 मुकाबलों में 5 में जीते 1 ड्रॉ रहा। स्पेन की टीम के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज, लगातार 36वां मैच बिना हार के पूरा कर अर्जेंटीना की बराबरी की। लंदन में फैंस के सर चढ़ा अमेरिकी सिंगर पिटबुल का सिग्नेचर लुक, बनाया अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। भीषण गर्मी के बावजूद सड़कों और पार्क में दूर दूर तक बाल कैप में नजर आए लोग, बच्चों और महिलाओं ने भी पहनी बाल कैप। स्टार सिंगर पिटबुल के लुक को कॉपी करते हुए दिखे फैंस, दुनिया भर में बढ़ रहा है पिटबुल के लुक का क्रेज। लंदन के बीएसटी हाइड पार्क में पिटबुल के समर कॉन्सर्ट में बना रिकॉर्ड, हजारों फैंस ने बाल कैप पहनकर सबसे बड़े आयोजन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पिटबुल ने भी बाल कैप पहनकर बढ़ा फैंस का जोश, अपने हिट गानों पर दी परफॉर्मेंस। तिब्बत में ऐतिहासिक पोचाला पैलेस के सालाना रंग रोगन का काम शुरू, 300 साल से चली आ रही परंपरा, दूध शहद और केसर मिले पेंट से की जाती है पेंटिंग। चीन के चोंकिंग में गर्मी से बचाव के लिए सड़कों पर लगाए गए विशाल पंखे, राहगीरों को मिल रही है इससे राहत। चीन में जुलाई के महीने में तेज गर्मी जारी, सड़कों से गुजरने वालों की सुविधा के लिए किया गया खास इंतजाम। चीन ने स्पेस टेक्नोलॉजी में हासिल की शानदार कामयाबी, पहली बार लॉन्ग मार्च 10B रीयूजेबल रिकवरी रॉकेट किया लॉन्च। चीन ने दुनिया में पहली बार लॉन्ग मार्च 10A रॉकेट के पहले स्टेज को समुद्र में नेट से किया रिकवर, चांद पर मानव मिशन की राह होगी आसान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know, and new favorites waiting to be discovered. Just search music, or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें
7: गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: और अब बात पुष्पा 2 की, जिसका सुपर हिट डांस नंबर जिसने पूरे देश में धूम मचा दी थी और अल्लू अर्जुन श्रीलीला की इस जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था, वो एक बार फिर से बड़े पर्दे पर साथ नजर आ सकती है। इंडस्ट्री में चर्चा है कि श्रीलीला जल्द ही अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड साइंस फिक्शन फिल्म राका का हिस्सा बन सकती है।

0: साउथ सिनेमा की सबसे चर्चित ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक अल्लू अर्जुन और श्रीलीला एक बार फिर सुर्खियों में है। पुष्पा 2 में अपनी धमाकेदार केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब खबरें हैं कि दोनों जल्द ही एक और बड़े प्रोजेक्ट में साथ दिखाई दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन की अपकमिंग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म राका में श्रीलीला की एंट्री हो सकती है। हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिल्म से जुड़े सूत्रों का दावा है कि कुछ दिन पहले श्रीलीला राका के सेट पर मौजूद थी, जहां अल्लू अर्जुन लगातार 2 दिनों तक शूटिंग कर रहे थे। फिलहाल किसी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ जरूर चल रहा है, और अगर ये खबर सच साबित होती है तो पुष्पा 2 की आग अब राका में भी देखने को मिलेगी। अगर ये खबर सच साबित होती है तो पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन और श्रीलीला दूसरी बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। पुष्पा 2 द रूल के उनके सुपरहिट डांस नंबर ने दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी और फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बनकर उभरा था। वही राका पहले से ही देश की सबसे चर्चित पैन इंडिया फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म का निर्देशन अटली कर रहे हैं और ये पहली बार है जब अल्लू अर्जुन और अटली किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। खास बात ये भी है कि इस फिल्म के जरिए अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी भी पहली बार बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। फिल्म को लेकर मेकर्स ने फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना, मृणाल ठाकुर और जानवी कपूर के बीच मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की चर्चा है। इतना ही नहीं, पहले आई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि सुपरस्टार शाहरुख खान भी राका में नजर आ सकते हैं। हालांकि उनका किरदार क्या होगा इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल तो फैंस की निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी है कि क्या राका में अल्लू अर्जुन और श्रीलीला की जोड़ी सचमुच एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: बच्चे के जन्म का समय कितना महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का जन्म नक्षत्र उसके जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
5: आज का आईना होगी, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
6: भारतीय सेना खरीदेगी 450 काल गुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार, अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर। भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्रगिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय, इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान, अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कल चलाई जा रही है 8 स्पेशल ट्रेन, अलग अलग स्टेशन का टाइम टेबल भी किया जारी। इंदौर में 22वें पुण्योदय प्रकल्प का शुभारंभ, मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को बांटी जाएंगी 3,00,000 कॉपियां, 11 अगस्त तक पूरे एक महीने चलेगा अभियान। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम, शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे
6: शपथ आज इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधवा। और शादी और करियर सभी की जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक अहम फैसला भी होता है, लेकिन इन्हीं दोनों के बीच एक लकीर खींचनी जरूरी होती है। इसी पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक अहम बयान दिया है, आखिर 7 फेरों पर क्या दी है उन्होंने बड़ी सीख। शादी से पहले आप निर्भरता क्यों जरूरी है, जीवन साथी पर संयम संस्कार संकल्प का मंत्र कैसे करेगा काम, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाजशास्त्री, साइकोलॉजिस्ट और समाजसेवी मौजूद रहेंगे। तो युवाओं को शादी और करियर पर अहम सीख दी गई है, इसको लेकर यूपी की राज्यपाल का एक बयान चर्चा में है। दरअसल आनंदीबेन पटेल ने लड़कियों को खास तौर पर एक अहम सीख एक अहम सलाह दी है। उन्होंने साफ किया है कि वो लव मैरिज की विरोधी नहीं है, पर आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। दरअसल लखनऊ में आयोजित एक दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने यह बयान दिया है। APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में यह समारोह हुआ था, इसमें राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को उपाधि पुरस्कार बांटे। साथ ही दीक्षांत समारोह में माँ बेटी सम्मेलन भी आयोजित किया गया था और इसी दौरान राज्यपाल ने पहले पढ़ाई करियर पर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी को पसंद किया है तो आत्मनिर्भर न होने तक शादी न करें। सम्मेलन में छात्राओं के स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चलाया गया। उनका तर्क है कि समाज में कई महिलाएं सबके खासतौर पर युवाओं के लिए एक मिसाल बनी है। उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम उन्होंने लिया, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स भी एक मिसाल है। यानी कि महिलाओं के स्वाभिमान की पहली सीढ़ी होती है आत्मनिर्भरता। और इसी तरह राज्यपाल ने
9: महिलाओं को समाज में बराबरी के हक वाली अहम सीख दी है ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये किसी पर डिपेंड ना हो, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ कर सके। तो आइए आपको कुछ और महिलाओं के उदाहरण भी बता देते हैं जिन्होंने मिसाल कायम की है समाज में। इसमें टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा शामिल है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की पूर्व डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ हैं, साथ ही निशानेबाज मनु भाकर भी सुर्खियों में हैं। और इनके अलावा वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी का नाम भी आता है। साथ ही साथ वायुसेना की पहली महिला राफेल फाइटर पायलट ने भी मिसाल कायम की है और वो युवाओं को सीख दे रही हैं कि पढ़ाई लिखाई और अलग राह अपनाकर ऐसे कामयाबी छुई जा सकती है। लेकिन आनंदीबेन पटेल ने क्या सीख दी है महिलाओं को, वो सुनवाते हैं आपको।
11: आपका प्रेम उनके साथ है, उनका भी प्रेम आपके साथ है, तो जब तक पगभर न हो, आत्मनिर्भर न हो, तब तक नो मैरिज, ये आपकी संकल्प होनी चाहिए मित्रों। मैं लव मैरिज का विरोध नहीं करती हूँ मित्रों, लेकिन जो दशा हो रही है महिलाओं की, बेटियों की, क्या प्राप्त हुआ।
9: तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ, फिर उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मीनल पाठक, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही साथ परवेश मलिक हैं, फाउंडर हैं मिशन जागृति के। आप दोनों का स्वागत है। चलिए परेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आनंदीबेन पटेल की सलाह को आप किस तरीके से देखते हैं?
12: नमस्कार पहले तो, और गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को सभी को नमस्कार। और मैं हमेशा कहता हूं कि गुड न्यूज टुडे हमेशा अच्छी खबरों को साथ लेकर आता है, तो उस मुद्दे पर आज मैं माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मुद्दे पर सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बात तो लव मैरिज का उन्होंने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, और जो आज के दौर में जो जरूरत है किसी भी लड़के लड़की को विवाह के बाद में मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से और अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर होना बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोनों जब विवाह के बंधन में बनते हैं तो वो सिर्फ दोनों का ही नहीं होता, वो एक पूरा दो परिवारों का भी होता है और उनका आगे भविष्य भी होता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है कि आजकल हम देखते हैं कि दिल्ली NCR में तो चलो ठीक है चल जाएगा, लेकिन गांव देहात के इलाकों में आज भी महिलाओं के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अत्याचार होता रहता है, हम देखते रहते हैं मीडिया के माध्यम से। लेकिन जब लड़कियां आत्मनिर्भर होंगी और आत्मनिर्भर होने के बाद वो एक विवाह के बंधन में बंधती हैं तो मुझे लगता है कि उनका जीवन अधिक सुगमता से और अच्छे तरीके से चल सकता है।
9: आपने यहाँ पर एक लाइन बोली जिसका जिक्र किया कि चले दिल्ली NCR तो नहीं, यानी कि आप कहना ये चाह रहे कि मेट्रो सिटीज में तो नहीं, लेकिन हम जब गांव देहात में इस तरह की बात करते हैं, आनंदीबेन पटेल की जो सीख है वो एक तरीके से देश की महिलाओं के लिए, हर महिला के लिए है कि आप पहले आत्मनिर्भर हो और फिर उसके बाद आप शादी का रास्ता चुने। लेकिन सर सवाल यहां पर यही है, मीनल के पास चले उससे पहले एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर लूं, सवाल यहां पर यही है कि हमारा समाज उस तरह की लिबर्टी देता है क्या? चलिए मेट्रो सिटीज में कह सकते हैं आजकल पेरेंट्स या फिर आजकल कपल्स भी बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है, इंडिपेंडेंट है, वो भी चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या आज भी गांव देहात दूर दराज के इलाकों में हर तबके के लोगों में क्या वाकई ऐसा होता है, इतनी लिबर्टी मिल पा रही है महिलाओं को?
12: नहीं, एज ए NGO और एज ए सोशल एक्टिविस्ट के माध्यम से मैं, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि आज भी जो दूर दराज के इलाके हैं, जो दूर दराज के जो राज्य हैं, उनमें आज भी महिलाओं की वो सिचुएशन नहीं है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिनकी वजह से वो आत्मनिर्भर बन सके। वो चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो जो पुरानी रूढ़िवादी बेड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहता हूं कि पहले की तुलना में और आज की तुलना में अंतर बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी भी हम देखते हैं तो गांव देहात से, दूर दराज से बहुत सारी लड़कियां अपने बलबूते पर, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हैं और वो बेड़ियों को तोड़ रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं।
9: देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक सबसे बड़ी मिसाल है इसकी, किस जगह से, कहां से उन्होंने शुरुआत की। लेकिन एक चीज तो है कि संघर्ष आज भी महिलाओं को करना पड़ रहा है। चलिए इसी को लेकर चर्चा आपसे मैं आगे करूंगी। सीमा समृद्धि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से, वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप चर्चा सुन रही हो, इस चर्चा में शामिल हो, पहले तो सवाल यही कि
6: गवर्नर आनंदीबेन पटेल की जो सलाह है उसको लेकर आपकी राय क्या है, और क्या प्रैक्टिकली, क्योंकि सवाल मेरा ये था, क्या आज भी दे, हम शहरों की मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, यहाँ पर महिलाओं को फुल इंडिपेंडेंस है, उनके पास, उनको तमाम कानून का पता है, कायदे कानून सब कुछ पता है, अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश भी करेगा तो उनको पता है कि कौन सा रास्ता लेकर जाना है और किस तरीके से वो अपने आत्मनिर्भर बन सकती हैं, लेकिन क्या ये चीज हम दूर दराज के इलाके, गाँव देहात, हर तबके के लोगों में क्या वाकई इतनी सोच में बदलाव आया है या नहीं, दोनों सवालों का जवाब सीमा जी।
13: देखिए नवजोत जी, यहाँ पर सिर्फ बात मेट्रो सिटी या फिर गांव की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है देश की 50% आबादी की, उनके हक अधिकार के, उनके अपने खुद के निर्णय, उनकी स्वतंत्रता, इन सारी चीजों की बात हो रही है। अब हमारा देश दो तीन धड़ों में बटा हुआ है, अगर हम कस्बा की बात करें, हम मेट्रो सिटीज की बात करें और हम गांव की बात करें, अगर इन सारी चीजों में हम फीमेल राइट को ही अलग अलग तरीके से डिफाइन करने लगेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो माननीय राज्यपाल आनंदी भाई बहन पटेल जी का जो सजेशन है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, कि वो जो बेटियां अगर अपने लाइफ की निर्णय ले रही हैं और जब उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा तो फिर ऐसे में वो कहाँ जाएंगी और क्या करेंगी। और ये आज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, मैं देख रही हूँ कि जो बेटियां अपने जीवन के निर्णय खुद ले रही हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, उसके बाद अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, तो उनको समाज एज ए विमेन, एज ए इंडिपेंडेंट फीमेल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उनको एक फाइनेंशियली, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो हमने उनको सीमित कर दिया कि पैसे से तो सब कुछ नहीं हो जाता है, अगर सपोर्ट है, लेकिन सामाजिक उनकी स्वीकारता अभी भी नहीं है, ये सच है। एक बेटा बेटी दोनों अगर रिलेशनशिप में आते हैं और उनकी मैरिज नहीं हुई है, अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उस बेटी पर डालने की बजाय, उसका करेक्टर एसेसिनेशन करने की जगह हम उसके पार्टनर को इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहे और हम उस बेटी का चरित्र का हनन करने लगते हैं और उनको हम बहुत सारे सजेशन देते हैं। नो डाउट उनके, उनकी फ्रीडम के लिए, उनके राइट के लिए, उनको अपनी लाइफ से एक सिक्योर करने के लिए हमें सजेशन दें, लेकिन सोसाइटी का जो पार्ट उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो उन लोगों के अंदर, उन पुरुषों के अंदर भी, और इवन की पुरुष क्या महिला, उनके अंदर एक्सेप्टेंस वो डेवलप होनी चाहिए, तो फिर शायद मुझे लगता है कि कोई भी बेटी अगर इस तरीके से परेशान होगी तो कई केसेस में तो देखा कि सुसाइड कर लेती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अभी रिसेंटली, शायद 2 महीने पहले की बात है, कि एक बच्ची, उसका रेप हुआ था, उसके बाद वो बेटी 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी, 6 या 7 मंथ की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये उसको राइट दिया कि उसकी इंडिविजुअल, उसका ये फंडामेंटल राइट है कि वो उस अनवांटेड चाइल्ड को जी रख सकती है या नहीं। तो एक तरफ हमारे सर्वोच्च न्यायालय की इंटरप्रिटेशन है जो कि एक पॉजिटिव प्रोग्रेस
6: नहीं, कानून तो देखिए इस मामले में, अब जब आपने शुरुआत ही अपने जवाब की थी कि 50% आबादी की बात है, देखिए कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन वही बात है, आपने जवाब उसका भी रखा है कि समाज कितना उस चीज को एक्सेप्ट करता है। आनंदीबेन पटेल की राय बहुत सही है, एकदम सही, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि पहले आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ और उसके बाद फिर आप अपने फैमिली की प्लानिंग करो। डॉक्टर निशा, मेरे ख्याल से आजकल जब आप काउंसलिंग करती होंगी, ऐसा कहा जाता है, और इनफैक्ट आजकल इस बात की शुरुआत हो भी गई है कि जब भी एक लड़का और लड़की शादी के बंधन में बंधने जा रहा है, उससे पहले एटलीस्ट वो एक काउंसलिंग सेशन इस तरह का ले ले। बहुत जगह इस तरह की चीजें मैंडेटरी भी हैं और आजकल परिवार भी इस बात को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि हम एक बार काउंसलर के पास जाएं। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि कानून ने तो हक दिया है, लेकिन क्या हमारा समाज उतना हक देता है?
14: देखिए, आई वुड से दैट अगर जो हस्बैंड वाइफ या प्री पैरेंटल काउंसलिंग के लिए अगर कपल जाते हैं तो ये बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और मुझे जो उनके बयान से लगता है, देखिए अगर आत्मनिर्भरता की हम जब बात करते हैं तो वो सिर्फ एक फाइनेंशियल लेवल पर नहीं होती, वो एक थॉट लेवल पर भी होती है, आपके इमोशनल लेवल पर भी है। आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी के बहुत फैसले आप अपनी मर्जी से करते हैं या अपने परिवार वालों की मर्जी से करते हैं, और क्या आप उन फैसलों को लेने में सक्षम है के नहीं है, वो भी एक बहुत जरूरी बात है। अगर आप उन फैसलों को, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से या कमाना भी जरूरी नहीं है, आप उसको कैसे संभालते हैं, कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज की डेट में भी बहुत सारी वुमेन अगर डिपेंडेंट नहीं है, हम आत्मनिर्भरता सिखाते हैं इवन बियॉन्ड जेंडर, आई थिंक सो वो होनी जरूरी है। कई बार क्या होता है, मेन भी और बॉयज भी जब उनकी शादियां होती हैं, वो अपने पेरेंट्स के बिजनेस को ज्वाइन किया होता है किसी ने, तो कई बार वो सेटल्ड नहीं होते। एक अच्छी फैमिली से होते हैं तो लड़के की भी नई नई जॉब लगी है, तो शायद वो भी जॉब में सेटलमेंट या परमानेंसी नहीं है और उसको भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कई बार उसको लेकर प्रॉब्लम्स आती हैं। पर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में, क्योंकि जब शादी होती है तो दो लोगों के में बीच में, अगर परिवार हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है कि जब भी शादियां होती है तो परिवार दो परिवारों में होती है ऐसा माना जाता है, तो कई बार फैमिली इंटरफेरेंस भी आती है। और कहाँ फैमिली को इंटरफेरेंस करनी चाहिए, कहाँ नहीं, कहाँ पर बाउंड्रीज होनी चाहिए, कहाँ नहीं, और ये सिर्फ बाउंड्रीज पेरेंट्स को लेकर नहीं है, इवन आप अपने काम पर कितना टाइम दे रहे हैं, आप अपने मोबाइल पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ओवरऑल हर रिलेशनशिप में आप अपने एक्सेस के साथ कितना संबंध रख रहे हैं, आपके एक्सेस आपकी प्रेजेंट लाइफ का हिस्सा है नहीं है। क्योंकि आज की डेट में हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो ऐसे में लोगों से मिलना जुलना भी रहता है, आप सोशलाइज कर रहे हैं, आप कितना फ्रीक्वेंट करना चाहते हैं, तो जो प्री मैरिटल काउंसलिंग है उसमें आत्मनिर्भरता की बात आती है, तो ये सारे मुद्दे उसमें कवर होते हैं। तो हम सिर्फ आत्मनिर्भरता में फाइनेंशियल चीजों की बात नहीं कर सकते। अगर छोटी उम्र में शादी होती 21-22 साल की, तो क्या आगे पार्टनर पढ़ना चाहता है नहीं पढ़ना चाहता, अभी बच्चे करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये सारे मुद्दे उस पर्टिकुलर एक टॉपिक के अंदर आते हैं और इस शब्द के अंदर आते हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है।
15: ठीक है, मीन अलब आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। देखिए, जो सीख दी है आनंदीबेन पटेल ने, वो बराबरी की सीख दी है, कानून समाज हर जगह, इनफैक्ट हमारा धर्म भी बराबरी की सीख ही देता है, लेकिन सवाल वहां पर यही आता है कि क्या समाज उसको एक्सेप्ट करता कि नहीं। हम सभी लोग यहां मौजूद है, प्रैक्टिकली हम सब आए दिन इस तरह की चीजें देखते ही रहते हैं। कितना जरूरी है एक महिला के लिए इंडिपेंडेंट होना, और उसके पेरेंट्स को इस बात का रियलाइजेशन होना कि जब तक बेटी इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती हम इसकी शादी आगे नहीं करेंगे, या फिर जब तक हमें वैसा कपल, वैसा लड़का नहीं मिल जाता जो कि हमारी बेटी को उस तरीके से रिस्पेक्ट करे, जैसा भी निशा जी कह रही थी कि शादी के बाद भी पढ़ाई कंटिन्यू की जा सकती है, तब तक वो आगे रिलेशनशिप में नहीं जाएगी।
16: मुझे ऐसा लगता है नवजोत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एंड इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देन इट लीव्स यू अ बिग वे टू टेक योर ओन डिसीजंस। ये सिर्फ शादी के पहले की बात नहीं है, मतलब शादी आप कितना 20-25-30 साल में कर लेते हैं, यू हैव स्टिल 70 इयर्स ऑफ योर लाइफ लेटर ऑन आफ्टर इवन मैरिज। ये आपको किस तरह से अपनी लाइफ को आगे व्यतीत करना है, ये उसकी बात है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ मैरिज थिंग, एंड आई बिलीव द वे शी वॉन्ट्स टू से इज कि आपका इंडिपेंडेंट होना, आपका आत्मनिर्भर होना आपकी पूरी आने वाली जिंदगी की फाउंडेशन है। तो सिर्फ प्यार के चक्कर में पड़ जाना, जल्दी से एक बच्चा कर लेना, और इन सब चक्करों के कारण आप अपने आगे आने वाली पूरी लाइफ को इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज इवन इफ यू गेट मैरिड एंड इवन इफ दिस सो कॉल्ड सोसाइटी एक्सेप्ट्स यू, देन व्हाट? देन अगेन यू आर एट द मर्सी ऑफ योर फैमिली एंड योर हस्बैंड। आप एक एक रुपए के लिए अगर अपने पति के, अपनी फैमिली के लिए मोहताज है, तो वो किस तरह का जीवन है? वो तो कोई एक्सेप्टेड लाइफ है ही नहीं। दिस इज व्हाट शी वांट्स टू से कि चाहे प्यार है प्यार नहीं है, शादी करना चाह रहे हैं, गलत रिश्तों में पड़ रहे हैं, सबसे पहले अपने आप आत्मनिर्भर होइए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए। आपका मानसिकता बदल जाती है जब आपके हाथ में आपके पैसा आता है, यू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड द रिस्पेक्ट विच पीपल हैव फॉर यू व्हेन यू आर अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली इज वेरी डिफरेंट। जितना भी हो सके, चाहे मैं ये कहना चाहूं कि आई लव माई मदर एज अ होम मेकर एंड आई लव द वे शी हैज ब्रॉट अप द होल फैमिली, और उन्होंने पूरी जिंदगी फैमिली के लिए कितना कुछ किया, लेकिन समवेयर इनसाइड माई हार्ट आई नो कि आई रियली वॉन्टेड टू सी माई मदर स्टेपिंग आउट ऑफ दैट होम, डूइंग समथिंग फॉर हरसेल्फ, और अपने आप को एक प्रायोरिटी देकर अपने लिए भी वो कुछ करती। आज वो 78-79 की है, बहुत सुंदर दिखती है, उनकी बहुत अच्छी लाइफ रही, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लिए वो वाले मोमेंट्स जो वो खुद जी सकती थी, खुद उनको एक अपने ऊपर एक एक आपको अपने ऊपर भी तो एक रिस्पेक्ट आती है, अपने ऊपर भी तो एक फील आती है ना कि वाओ मैंने ये किया, उनको भी वो फील आनी चाहिए. दिस इज फॉर एवरी वुमेन एंड दिस इज फॉर एवरी मैन इन इटसेल्फ. लाइक इट्स समथिंग व्हिच इज पास्ड ऑन फॉर द होल जनरेशन, फॉर द एंटायर यूथ. क्योंकि आजकल हमारा यूथ सोशल मीडिया को देखकर, टीवी को देखकर, बहुत सारे यू नो वी कैन सी लॉट ऑफ सीरीज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, और वहां पर वी हैव सीन की टीनेजर्स, और बहुत जल्दी ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं जो एज अ इंडियन कल्चर आफ्टर 20s 25 होती है.
15: ठीक है.
16: सो यू नो इट्स जस्ट अ सोसाइटी थिंग विच शी इज ट्राइंग टू ब्रिंग अराउंड दैट प्लीज आप अपने आप अपना करियर पहले डिसाइड कर लीजिए, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद ये सब चीजें तो लाइफ का पार्ट एंड पार्ट यू नो है, ये तो चलता ही रहेगा. इसके कारण जो लाइफ का मेन स्टे है उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि फिर बाद में ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा. बाद में पढ़ के करियर.
15: हाँ बिल्कुल. परेश जी आपके पास आना चाहूंगी. बराबरी वाली बात तो हो रही है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल. उन्होंने कहा कि युवा खुद अपनी उड़ान तय करें. एक तरफ हम कहते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लेकिन ऐसे बहुत से कपल्स भी होते हैं, दोनों में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है. हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ घर संभाल रहे, और आजकल तो होम मेकर उसको कहा जाने लगा है. यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं. आजकल एटलीस्ट लोग इस बात को रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि अगर महिला घर पे भी है तो वो बच्चों की देख रेख कर रही है, उनकी देखभाल कर रही है, एक भविष्य बना रही है, देश के ही एक भविष्य को उज्ज्वल बना रही है. ये कंपैटिबिलिटी कितनी जरूरी होती है? आप एक एनजीओ चलाते हैं, कमियां कहां पर आप देखते हैं? क्योंकि जब ये बात कही जाती है कि बच्चे खुद, युवा खुद तय करें उनकी उड़ान क्या होनी चाहिए.
12: मैम बिल्कुल बात सही है और दोनों का ही जिम्मेदारी होती है, पर मैं यहाँ एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बाकी जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, सीमा जी, मीनल, डॉक्टर निशा भी उसको समझें और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें कि जब कोई भी लड़का लड़की आत्मनिर्भर बनते हैं, मैंने पहले कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि आज के समाज में आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में उनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही होती है. पहले वो 25 तक हो जाती थी, लेकिन अभी हम देखते हैं कि लगभग कम से कम 30-35 साल तक शादियां हो रही हैं. फिर जब 30-35 साल में जब शादी होती है, एक दो साल और उनको लग जाते हैं, 40 साल के आसपास कभी बच्चा होता है, फिर जब वो रिटायर हो रहे होते हैं 60-65 साल, तो ऐसे हमने बहुत सारे केस देखे हैं कि उनके ऊपर इतना मानसिक दबाव हो जाता है अपने बच्चों के प्रति कि वो तो एक तरफ तो वो रिटायर हो रहे हैं, दूसरा भी बच्चा सेटल नहीं हुआ. तो मुझे इसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करें कि आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में कहीं वो एक एज, क्योंकि हर एक चीज की, हर एक फंक्शन की, हर एक किसी भी काम की एक एज होती है, तो इसके बारे में भी जरूर से जरूर विचार करना चाहिए कि आत्मनिर्भरता के चक्कर में
15: एक
12: हम
15: वैलिड पॉइंट है. बिल्कुल बिल्कुल. मैं इस सीमा जी इसी पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी. ये भी बहुत वैलिड पॉइंट है, कोई इसमें भी कोई दो राय नहीं है. अब उस चक्कर में हो ये रहा है कि कई जेंजीज हम देखते हैं, निशा जी अगर आपको याद हो कितनी बार हम लोग इसको लेकर चर्चा करते हैं कि जेंजी शादी ही नहीं करना चाहते हैं. ये भी एक एक, एक अलग ही ट्रेंड चल पड़ा है. सीमा जी इस पर पहले अपनी बात रखिएगा.
13: देखिए नवजोत जी, हमारा जो देश है वो एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है. हम पूरी तरीके, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशंस है, हमारा जो यहाँ का कल्चर है भारत को, हम लोग एक फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. और ये भी सच है कि इस इंस्टीट्यूशन ने ऐसा नहीं है कि लोगों को कमजोर किया है, लोगों को स्ट्रोंग ही किया है और स्ट्रेंथ ही दी है. लेकिन इशू सबसे बड़ा ये है कि वो स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर जेंडर को ज्यादा मिली, हमेशा वो मेल को मिली, फीमेल को उतनी नहीं मिली. और इसीलिए हम देखेंगे कि एक लड़की जब शादी के बाद पूरी तरीके से दूसरे घर में शिफ्ट हो रही है तो उससे उसका करियर भी छिन जा रहा है, उससे उसकी पढ़ाई, उसके इंडिपेंडेंसी, उसकी फ्रीडम, बहुत सारी चीजों से उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. अब ये कहा जा रहा है कि जैसे कि अभी सर का कहना है कि एज बढ़ती जा रही है, ये सच है कि एक फीमेल की भी एज बढ़ती जा रही है और मेल की भी बढ़ती जा रही है. लेकिन वही हमारे समाज के पैरामीटर भी दो तरीके के हैं. लड़की की एज अभी भी जैसी वो 18 के क्रॉस हुई, जैसे वो 21 एज हुई, उसके बाद तुरंत फैमिली प्रेशर में आना शुरू हो जाती है. वो अलग बात है कि जो लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं वो कहती हैं बहुत सारी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है कि हम अपने निर्णय खुद लेंगे और हमारी मर्जी होगी तब हम शादी करेंगे. ऐसी मुझे लगता है फैमिली में मुश्किल से 1% है. और इसका अगर हम अभी रिसेंट एग्जाम्पल देखें तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात कर रहे हैं. मैं इस चीज पर नहीं जाना चाह रही कि जो महाराष्ट्र की घटना हुई है, शिया जिसने अपने जो प्यून से थे उसका मर्डर कर दिया उसने धक्का दे करके, उस लड़की की एज 20 ईयर है. और उसका उसके ब्रदर का स्टेटमेंट है कि हमारे पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे थे कि तुम शादी करो और इसी फैमिली में करो. तो क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाने से हम अपनी फीमेल को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं?
15: बिल्कुल.
13: क्या हम अपने बच्चों को उनकी चॉइस की हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या हमने अभी भी एज ए सोसाइटी जो हमारी फैमिली है उस फैमिली में हमारे बड़े बुजुर्ग के डिसीजन, कास्ट का अलग एंगल, तमाम तरीके के एंगल्स हैं. मैंने देखे एक हमारे जानने वाले एक दूर के रिलेटिव हैं, उन्होंने अपनी शादी ही नहीं की, वो अभी 50 इयर्स के. उनका ये कहना है कि हम जिनको पसंद करते थे उनके परिवार ने उनको उनको जान से मारने की धमकी दी और पिस्टल भी रख दी अपनी बेटी के सीने पे कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर इस लड़के से शादी की. अब सोचिए कि हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी, हमने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बनाया है और इसमें भी डाइवर्सिटी में हम अपने ऑर्थोडॉक्स विचारों को भी जस्टिफाई कर रहे हैं.
15: बिल्कुल.
13: हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारा तो कल्चर परिवार का ऐसा है, हमारे खानदान का, हमारे एरिया का, हमारी कास्ट का. तो ये जो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी जो कमियां हैं उन पर सभी को डिस्कशन करना बहुत जरूरी है. सही एज में शादियां भी होंगी, परिवार जैसे इंस्टीट्यूशन भी नहीं टूटेंगे और बच्चे भी इंडिपेंडेंट होंगे.
15: मैंने सीमा जी शुरुआत ही इसी बात से इसीलिए की थी.
13: एग्जैक्टली.
15: कि कानून बराबरी का हक देता है लेकिन समाज एक्सेप्ट करता है. आपने बहुत अच्छी यहाँ पर बात पेरेंट्स की ही कर दी है.
13: नवजोत जी, आप देखिए जो भी क्रिकेटर है हमारे, हम क्या करते हैं, क्रिकेट तो मैदान में जाकर के देख रहे हैं. आप जो भी लोग अपने टॉप पर गए हैं जिनकी फैमिली लाइफ भी अच्छी है, पार्टनर के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है और उनके बच्चे भी, और वो देश को कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, आप उनकी लाइफ से प्रेरणा क्यों नहीं ले रहे हैं? उनके पेरेंट्स ने भी तो सपोर्ट किया. बिना परिवार के सपोर्ट के मुझे लगता है बहुत मुश्किल है कि कोई अपने लाइफ में टॉप पर जाए. बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी हम बहुत लोगों की एग्जांपल्स ले सकते हैं. हम प्रेमचंद की बात करते हैं, 1836 में उन्होंने एक विडो से शादी की थी जब मेरी इंडिया में, भारत में जो विधवा विवाह अलाउ नहीं था. तो हम जिन लोगों को पढ़ रहे, जो हमारे प्रेरणा होते हैं, हम उनकी पर्सनल लाइफ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं और हम जाकर के सिर्फ उनको ऐसे देखना चाहते हैं कि वो तो क्रिकेटर है, ये तो फिल्म मेकर है, इसने ये किया, कोई राइटर है.
15: उनकी पर्सनल लाइफ से भी बिल्कुल इंस्पिरेशन ली जा सकती है. सीमा जी लौटते एक बार निशा जी को इंक्लूड कर लेती हूँ. मैंने निशा जी इसीलिए इस बात से शुरुआत की थी, उन्होंने वही समाज फैमिली ही हमेशा आड़े आती है. बेटी इंडिपेंडेंट हो गई लेकिन शादी कहां करेगी ये डिसाइड हम करेंगे. यही बात आनंदीबेन पटेल कह रही हैं कि युवाओं को अपनी उड़ान डिसाइड करने दीजिए.
14: देखिए क्या होता है, पेरेंट्स को लगता है कि हम बच्चों का बेस्ट चाहते हैं और बेस्ट समझते हैं तो इसलिए वो बच्चों को गाइड करते हैं. अब यहाँ पर अगेन वीसीआ के केस की बात हो रही है कि अगर हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप के टाइम बच्चे को ये बोलने का हक दे कि अगर आप किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं या कोई चीज नहीं करना चाहते हैं तो आपको किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. और लाइफ में पेरेंट्स कई बार ना नहीं सुनना चाहते या उन्हें लगता है कि अगर हम पेरेंट्स से ना सुनेंगे या पेरेंट्स बोल देते हैं कि हम प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, आपको प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं देंगे या तुम मायके नहीं आ सकती हो, वाइस वर्सा. इवन लड़का भी अगर ऐसा कोई फैसला लेता है तो पेरेंट्स कई बार कह देते हैं कि तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं होगा या तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यही रूल है इस घर का और सदियों से यही होता आया है. तो वो इसे जब हम फैमिलीज में बोलते हैं, साइकोलॉजी में एक शब्द का प्रयोग करते हैं इनमेंचमेंट, बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं, बच्चे वही फैसले लेते हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं, जैसा पेरेंट्स को लगता है. इवन लड़कियां भी ये बोलती हैं कि मैं अफेयर तो कर सकती हूं पर शादी मैं सिर्फ अपने घर वालों की मर्जी से करूंगी. और ऐसे शब्द लड़कों की तरफ से भी आते हैं कि भाई शादी तो मैं उसी से करूंगा जिसे मेरे घर वाले पसंद करेंगे, पर मैं अपनी पर मैं डेट किसी के साथ भी कर सकता हूँ. तो कहीं ना कहीं बहुत बचपन से ही ये डाल दिया जाता है मनो मन में कि शादी आपकी परिवार के लोग या माता पिता तय करेंगे. अब जब आप इंडिपेंडेंस की बात आती है तो वो अगेन हमारे ऑटोनॉमी के जो राइट है वो हमारे अगेन बचपन में ही शुरू हो जाते हैं, जिसमें कहते हैं 3 से 5 साल की उम्र में ऑटोनॉमी और गिल्ट की फीलिंग वो इस पर्टिकुलर एज में शुरू हो जाती है. उस एज में ही ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने फैसले खुद कर सकते हो या नहीं कर सकते, आप इनिशिएशन लेते हो किसी काम को करने का नहीं लेते हो, और उसमें आपकी फैमिली आपके इनिशिएशन लेने पर, काम करने पर आपको गिल्टी फील तो नहीं कराती है कि आपका फैसला गलत है या आपने अपनी मर्जी से कोई सेंटेंस ले लिया. बहुत बार ऐसा होता है कि अगर माँ बाप ने शादी कर दी, अरेंज मैरिज कर दी, तो लड़के या लड़की को दूसरी जगह शादी करानी, तो सारी जिंदगी वो पेरेंट्स

0: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena, ESPN Radio.
1: How they looked after game one.
2: I mean, they were frustrated.
0: The Daily.
3: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: शादी की शपथ, इसी को लेकर चर्चा आज हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं को ये कहा है कि पहले आप आत्मनिर्भर हों और उसके बाद ही अपनी फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, और इसी को लेकर चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं, क्योंकि इसके इस सीख के तमाम ऐसे पहलू जिनको लेकर चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक बार मीनल आपके पास आते हुए, जब आत्मनिर्भरता की बात आती है वो बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है आप के लिए, लेकिन सवाल यहाँ पर परवेश जी का भी सही है कि उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि युवाओं की उम्र बढ़ जाती है, इस पर आपकी राय क्या है?
1: मुझे ऐसा लगता है हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी भी कम नहीं है दैट वी हैव टू रियली बी वरिड कि हमारे देश में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बहुत अच्छे से पैदा हो रहे हैं। बट ये भी बात समझने वाली है कि अभी ना, पहले कैसे था, पहले जब शादी हो जाती थी बहुत छोटी एज में हो जाती थी तो लेडीज को लेडी की तरह समझा ही नहीं जाता था, उसको एक इंसान की तरह, एक ह्यूमन वैल्यू की तरह नहीं माना जाता था, उसको ऐसे जैसे गाय भैंस होती है उसको शादी करके ले आए, अब घर में बांध दिया एक खूंटे से, अब वो वही रहेगी और सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन टाइप है, उस टाइप से चल रहा था। अब वहां से देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन टुडेज टाइम, हर लड़की को उनके पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़े लिखे, इंडिपेंडेंट हो जाए, बिकॉज पेरेंट्स ऑल्सो समवेयर फील कि हमारा भी एक बहुत बड़ा एक रोल रहेगा अपनी लड़की की आगे आने वाली जिंदगी को एक हैप्पी जिंदगी बनाने के लिए। सो पेरेंट्स आर ऑल्सो नाउ वेरी इन दैट सेंस वॉन्ट कि उनके भी लड़की का एक करियर हो, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वो डॉक्टर हो, वो सब वो जैसे अपने बेटे के लिए सोचते हैं वो अपनी बेटी के लिए भी सोचते हैं, और इस तरह से वो अपना बेटी का करियर भी चाहते हैं और उसके बाद ही सोचते हैं कि अब उसकी शादी हो, जब वो इंडिपेंडेंटली एक ऑफिस ऑफिस ज्वाइन कर ले और अपनी उसकी इनकम हो जाए। वो आप देखिए सोशल लेवल पे बहुत अच्छा एक डिसीजन है, बट जो यहाँ पर सर ने बोला बिल्कुल सही बोला, बिकॉज मेरे साथ ऑलमोस्ट लाइक 10-15 ईयर्स बैक जितने भी कॉर्पोरेट बैंकिंग स्पीयर में लड़कियां थी, आई मूव्ड आउट ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग व्हेन आई वाज एवीपी एंड आई गॉट मैरिड देन, बट बहुत सारी जो कॉर्पोरेट बैंकिंग में मेरे साथ की गर्ल्स थी दे स्टिल नॉट मैरिड, दे आर अराउंड माई एज मिड 40s, बट वो जोनल हेड्स हैं, वो बैंक्स के जोनल हेड्स हैं, वो बैंक्स को हेड कर रही हैं, तो एज अ करियर वो बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी हैं, बिकॉज समवेयर उनको जो एक फैमिली लाइफ के लिए लड़की को स्टेपिंग बैक करनी पड़ती है बेबीज होने के बाद, जिस टाइप का उनका टाइम निकल जाता है वो उनकी लाइफ में नहीं आया।
0: मैं इस पर आने ही वाली थी ये सवाल, लेकिन फटाफट से मैं परवेश जी आपके पास आऊंगी, जल्दी से एक बार सीमा जी इस पर आपकी राय। देखिए ये हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में ऐसा हो रहा है, जब एक महिला आत्मनिर्भर हो जाती है तो आजकल देखा जा रहा है वो सिंगल रहना चाहेगी, सिंगलहुड को लेकर भी हमने बहुत सारे शो

0: के, स्पेशली अगर महिलाओं की बात करें, आज की जो जेन जी है, अगर वो इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उनको लगता है कि हम किसी और के लिए ना करके हम क्यों ना अपने पेरेंट्स के लिए ही करें सब।
1: देखिए, फीमेल जो इंडिपेंडेंट है वो क्यों नहीं अब शादी करना चाहती है, क्योंकि उनके लिए अब शादी के मायने बदल चुके और समाज उन पे वही कस्टम्स, वही सारी चीजें जो रूढ़वादी सोच है उसको इम्पोज करके रखना चाहता है, चाहे वो कितनी भी पढ़ गई हो, कितना भी वो इंडिपेंडेंट हो। अगर एक फीमेल जो खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लेकिन उसको घर में जाकर के जो उसके इन-लॉज हैं, उनके हस्बैंड, उनके रिलेटिव्स, सभी लोगों के उसी तरीके से आज भी उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि वो उसके लिए खाना बनाएगी या उसको बाउंड करेंगे वो लोग उसकी फ्रीडम को, तो ये बहुत ही मुश्किल है। मीनन जी का बिल्कुल कहना है कि जो आज फीमेल बैंकिंग सेक्टर में है, उनकी जो फ्रेंड है, अगर वो जोनल लेवल पे पहुंची है तो वो इसलिए पहुंच पाई है वहां पर क्योंकि उन्होंने फैमिली नहीं बनाई, उन्होंने शादी नहीं की। अदरवाइज फैमिली के सपोर्ट के बिना बहुत मुश्किल है। और लेकिन आज भी फीमेल जो है, आज भी फैमिली अपनी बहू को, अपने बेटे की पार्टनर को सपोर्ट नहीं करना चाहते, वो अपनी बेटी को तो करना चाहते हैं और बेटी को भी एक लिमिट तक करना चाहते हैं कि जब तक उसकी शादी नहीं कर दी तो बेटियां तो अल्टीमेटली इन सारी चीजें में सफर लड़कियां ही कर रही हैं। तो फिर वो डिसीजन ले रही है कि जब हमारे लिए समाज का स्ट्रक्चर हमारे फेवर वाला मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमें अपनी चीजों को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो हम फिर क्यों वो स्टेप।
0: एक बार जल्दी से निशा जी, इस पर आपकी राय।
2: मैम, मेरा ऐसा मानना है, अगेन, इंडिपेंडेंस का मतलब या आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, और मुझे लगता है ये हिंदुस्तान की औरतों को समझने की जरूरत है।
0: नहीं, सवाल मेरा ये था कि जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, नहीं, सवाल ये था, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, लेकिन ऐसा एक ट्रेंड चल पड़ा है जब एक महिला आत्मनिर्भर हो जाती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, उसे लगता है कि अब शादी की कोई जरूरत नहीं है, जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया, यानी कि मेरे अपने पेरेंट्स में, क्यों ना उन्हीं के लिए सब कुछ करूं।
2: नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, कंपेनियनशिप की जरूरत हर इंसान को होती है, और अगर कोई अपने पेरेंट्स के लिए भी कर रहा है या करना चाहता है, और अगर उसको एक राइट पार्टनर मिले, जिस तरह एक लड़का अपनी शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता है और उनके लिए करना चाहता है, और अगर आप एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करते हैं तो ये बहुत, और जो इंडिपेंडेंट है वो अपने पेरेंट्स को अगर फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर यहां मुझे लग रहा है कि अगर कोई इंडिपेंडेंस या नहीं करना चाहता शादी, वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता है, हमारे यहां अगर आप रॉन्ग रिलेशनशिप में आ जाए तो अगर आपने शादी कर ली तो डिवोर्स से निकलने का तरीका आसान नहीं है। साथ में उन्हें एक ऐसा लगता है एक वक्त के बाद कि मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, मुझे एक पार्टनरशिप चाहिए, मुझे एक बच्चे को अपने साथ नहीं रखना, आई नीड अ मैन हु कैन इंडिपेंडेंटली टेक डिसीजंस एंड लेट मी अलाउ टू टेक डिसीजंस एंड हेल्प मी वेयर आई एम। मैं कई जगहों पर मैं वीक हो सकती हूँ, जहां वो मुझे सहारा दे, जहां वो वीक हो मैं उसे सहारा दूं, मुझे एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर एक पका हुआ घड़ा है उसे बदलने मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है कई बार। और आप एक 23-40 साल के इंसान की आदतों को बदलने की बात करते हैं, जैसा कि सर ने बोला कि इसके साथ साथ वो अपनी इंडिपेंडेंस के साथ साथ आपकी बॉडी के चेंजेस आते हैं, डेफिनेटली एक पार्टनर की जरूरत हर इंसान को होती है। ऐसा हो तो फिर अफेयर्स ना हो, लिव इन रिलेशनशिप्स ना हो, लोग रिलेशनशिप में जाए ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपने अपने लाइफ में बहुत सारे धोखे खा लिए होते हैं, आपको पता है, कई बार आपको लगता है कि भाई जब जरूरत पड़ती है शायद कोई साथ नहीं देता है, और मुझे बहुत सारी जरूरतों में खुद को ही साथ लेना पड़ता है, तो ऐसे में या मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम है। पार्टनर की जरूरत सबको होती है, पर कहीं ना कहीं आपके पास ट्रॉमाज, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, वो चीजें भी मेन रोल प्ले करती हैं। और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आने के बाद आप ये सोचते हो कि मुझे पार्टनर भी शायद उसी स्टेटा का मिल जाए, अगर कम स्टेटा का मिलता है तो वो मेरी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पूरी कर सकता है, क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स, कुक से लेकर ड्राइवर से लेकर हर चीज, आप पैसे खुद कमा रहे हो तो हम मूवी देखने जाना है, तो ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपकी सोच मिले, जिसके जो आपके स्ट्रगल को समझ पाए, जो समझ पाए कि आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उस मुकाम पर पहुंचना आसान नहीं था और वो रास्ता आसान नहीं था। तो औरतों की सोच ये नहीं है कि मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, वो उस हद तक आकर आती है क्योंकि उन्हें लगता है कि बंधन में ना बन जाए हमारी इंडिपेंडेंस। जैसे लड़कों को भी लगता है शादी के बाद इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है, उस तरह एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की को लगता है शादी के बाद मुझे बहुत सारी चीजों में एडजस्ट करना पड़ेगा।
0: ठीक है,
2: तो इस वजह से।
0: परवेश जी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि आत्मनिर्भरता की सीख जो दी गई है, हालांकि ये बहुत जरूरी है समाज में, हर बार जब हम लोग आपके साथ चर्चा करते हैं ये बात होती है, इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। और निशा जी ने सही कहा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ आपको अपने परिवार में भी इंडिपेंडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब आत्मनिर्भर होने के बाद क्या कुछ चेंजेस आएंगे अगर हम इस सीख को मानते हैं, और हर पेरेंट अगर इस बात को मानता है कि हाँ हमें अपनी बेटी के लिए इतनी लिबर्टी जरूर उनको देनी है।
3: मैं पहले तो डॉक्टर निशा जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं वो बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, उनसे बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। आत्मनिर्भर होने के बाद आज के दौर में मुझे लगता है कि लोगों को, हम हर चीज सिखाते हैं अपने बच्चों को, टीनेजर्स को, जेंजी को, लेकिन रिश्तों को कैसे संभालना है वो नहीं सिखा रहे। आज अगर मैं अपनी एक बेटी का पापा हूं तो मैं अपनी बेटी को कहता हूं तूने झुकना नहीं है कहीं पर भी। और जब एक एज बढ़ जाती है आत्मनिर्भरता के चक्कर में तो कोई भी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो एक पका हुआ घड़ा होता है वो कहीं भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो ही रिश्ते बच पाते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं। और इसलिए जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे ही कंपेनियन वो ढूंढते हैं, और सबको चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप के साथ ही वो रह के जीवन बिता सकें, ये बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आखिर में कहीं ना कहीं जब जरूरत पड़ती है तो उनको लगता है कि मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो मेरी भावनाओं को समझ सके, मेरी जीत को, मेरी हार को साझा कर सके, हर एक चीज को, तो उस वक्त वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसके चक्कर में जब वो जो पक्का घड़ा होता है बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए आज के दौर में जब नए नए रिश्ते होते हैं, नई नई शादियां होती हैं, आप अगर डाटा उठाएंगे तो आज के दौर में पिछले मुकाबले के दौर में आज ज्यादा तलाक हो रहे हैं, ज्यादा रिश्ते टूट रहे हैं, चाहे वो शादी से पहले टूटे या शादी के बाद में टूटे।
0: सीमा जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: हाँ बिल्कुल, मैं एक चीज कहना चाहूंगी,
0: आपका भी रिएक्शन लूंगी, एक सेकंड सीमा जी को रखने दीजिए अपनी बात।
1: नवजोत जी, हमने अपनी बेटियों को पढ़ना, आगे बढ़ना, इंडिपेंडेंट होना सब सिखा दिया है। अब ये प्रवेश सर जो है, मलिक सर या निशा मैम, हमारा ओवरऑल सभी का डिस्कशन में एक ही चीज है, फीमेल ओरिएंटेड ये डिस्कशन है, जिसमें क्या है कि लड़कियां शादी नहीं करना चाह रही है। इस ये क्वेश्चन मार्क यही है कि उनको सही पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लड़कों के अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आई है कि पढ़ी लिखी फीमेल जो वर्किंग है उसके साथ कैसे उसको टैकल करना है, उस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की डेट में फीमेल तो सदियों से निभाती आई है, वो पिटती रही है, वो मायके नहीं गई है, हमारे सिस्टम में वो पूरे घर में शिफ्ट हो गई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज्यादा है? वो मेल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन लॉज की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन चीजों को समझे। अगर वो समझ लेंगे तो ये फिर कौन लड़की नहीं ये चाहेगी कि मैं इंडिपेंडेंट भी हूं, मेरे इन लॉज भी काफी सपोर्टिव है, मेरा पार्टनर भी हमें सपोर्ट कर रहा है। मेल हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है, उसको बना बनाया सपोर्ट सिस्टम मिला है। फीमेल मांग रही है कि मुझे वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और फीमेल को तो अकेला छोड़ दिया है सोसाइटी ने। अगर वो इंडिपेंडेंट हुई तो उससे ये कहा गया तुम्हारे पैसे मेरे लिए मैटर नहीं करते, मेरे घर में तुम्हारे संस्कार मैटर करेंगे, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, तुम्हें बातों को मानना पड़ेगा। आप ये समझिए नवजोत जी, मैं जब कोर्ट में देखती हूँ एक लड़की जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर थी, उनके सामने कंडीशन रखी गई कि आप अपनी जॉब नहीं करेंगी और हमारा बेटा आईएएस अधिकारी है। जब वो शादी करके अपने घर जाती हैं, उसके करीब 6-7 साल बाद डिस्प्यूट होता है। लड़का कहता है मैं तुम्हें एक भी पैसा मेंटेनेंस नहीं दूंगा। अब आप सोचिए, अगर वो लड़की यही तो सोचेगी कि काश हमने उस समय पर अपनी जॉब नहीं छोड़ी होती तो आज इनके सामने मुझे
0: ऐसे ही केसेस को लेकर तो आनंदीबेन पटेल की ये सलाह है कि क्यों महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए। हालांकि देखिए सिक्के के दोनों पहलू हैं, किससे कहानियां दोनों जगह से आती है, कई जगह ऐसे भी हैं कि पुरुष भी परेशान होते हैं, दोनों चीजें बराबर चलती रहती है। हाँ, ये हो सकता है कि 60-40 वाला रेशो होता हो सीमा जी। हाँ मिनल,
4: तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि ये स्त्री को कच्चा और पक्का भड़ा बुलाना, यही सोच और यही मानसिकता तो बदलनी है। ये लड़की को कोई वो घड़ा बनाया जा रहा है।
3: हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति थोड़ा सा उम्र में बड़ा हो जाता है उसको बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता
0: है, क्योंकि उसकी नेचर वैसी बन जाती है।
3: जी
4: मैम, अब वो एक कच्चा और पक्का घड़ा नहीं रही।
1: इंडिपेंडेंट होने के लिए टाइम चाहिए उसको।
0: ठीक है निशा जी, ठीक है। मीनल, 10 सेकंड बचे, फटाफट से निशा जी।
2: मैम मेरा ऐसा मानना है, अगर आज की डेट में, क्योंकि मैं पैरेटल काउंसलिंग के केसेस करती हूँ, प्री मैरिटल काउंसलिंग के केसेस करती हूँ, तो अगर पुराने जमाने में औरत दबती थी तो कहीं ना कहीं वो आवाज भी नहीं उठाती थी. तो सबमिसिव होना कई बार आपकी चॉइस नहीं होती, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है. जब हम इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं तो वॉइसिंग आउट योर ओपिनियन. अगर आप मिस कैरेज करके हॉस्पिटल से आई हैं, आपका पति आपको खाना बनाने के लिए बोलता है, तो आप बोल सकती हैं कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तुम्हें मेरा ध्यान रखना है.
0: यानी कुल मिलाकर देखिए बात वही है निशा जी, वक्त अभी इतना ही है, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आनंदीबेन पटेल ने सलाह दी है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है. इससे पहले कि वो अपनी फैमिली प्लान करें, उससे पहले उनको आत्मनिर्भर होना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का हमारे साथ यहां जुड़ने के लिए. रुकेंगे ब्रेक के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
2: जब कोई खिलाड़ी खेल से बढ़कर एक प्रेरणा बन जाए तो उसे सम्मान देना जिम्मेदारी होता है, और ऐसा ही सम्मान दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। हजारों ड्रोन्स ने मिलकर रोनाल्डो की ऐसी शानदार तस्वीर बनाई कि पूरा नजारा यादगार बन गया। लगा मानो आसमान भी एक लेजेंड के नाम हो गया। सच भी तो है, एक खिलाड़ी जब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन जाए तब उसे ऐसे ही सम्मान मिलते हैं, और ये सम्मान उसकी विरासत को और खास बना देते हैं। सोशल मीडिया पर ड्रोन के बने रोनाल्डो की ये तस्वीरें खूब पसंद आ रही हैं। मोबाइल का चस्का कैसा होता है ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। आजकल हो भी ऐसा गया है कि काम चाहे कोई करो, मोबाइल देखने का काम हर काम के साथ जारी रहना चाहिए। अब इन महाशय को देखिए जरा, पानी से भरे खेत में काम करते हुए मोबाइल देखना नहीं छूटा। जुगाड़ लगा के मोबाइल को देखते हुए किसी को काम करते देखा है कभी? अब सोशल मीडिया पर लोग जनाब को कह रहे हैं, शाबाश बेटा, ऐसे ही लगे रहो। अब सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये लड़के जीतने के लिए मिलकर पूरा दम लगा रहे हैं और आखिरकार उनका टीम वर्क काम आता है और वो टास्क पूरा करके जीत कर ही दम लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस एक्ट को टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं और तस्वीरें देखकर खुश हो रहे हैं। इंडोनेशिया में आई तेज बाढ़ के दौरान यूं तो एक दूसरे की जान बचाने की और रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई, लेकिन एक ऐसी तस्वीर इन दिनों चर्चा में है जो संवेदनशीलता को प्रकृति के एक स्थायी भाव के रूप में सुनिश्चित करती है। यहां तेज बाढ़ में एक हाथी ने बाघ को सहारा दिया। बीच पानी में फंसे बाघ को हाथी ने सूंड की मदद से अपने ऊपर बैठाया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हाथी की संवेदना सबका मन मोह रही है, भावुक कर रही है और इंसान को भी सीख दे रही है कि प्रकृति का सबसे बड़ा पाठ, शक्ति का सर्वोच्च रूप किसी को हराना नहीं बल्कि किसी को बचाना है। अब तक का सबसे बड़ा मानव पिरामिड सोशल मीडिया पर जबरदस्त वाहवाही लूट रहा है। एक बेहद लंबा ऊंचा संकरे मानव जैसा पिरामिड जैसा आकार बनाया गया। तेज हवा में जब ये डगमगाने लगा तब भी किसी तरह ये स्थिर रहता है। एक शख्स भी इस पिरामिड से नीचे नहीं गिरता। एक बार को तो देखने वालों को लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा संतुलन बना लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग इस वीडियो को संतुलन, विश्वास और शानदार टीम वर्क बताकर तारीफ कर रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: गुड प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
9: भारतीय सेना खरीदेगी 450 काल गुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार, अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर। भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्रगिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय। इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कल चलाई जा रही है 8 स्पेशल ट्रेन। अलग अलग स्टेशन का टाइम टेबल भी किया जारी। इंदौर में 22वें पुण्योदय प्रकल्प का शुभारंभ। मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को बांटी जाएंगी 3,00,000 कॉपियां। 11 अगस्त तक पूरे एक महीने चलेगा अभियान। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम। शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर।
9: मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात उड़ीसा के पुरी के विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की, जिसकी तैयारी अपने अंतिम और भव्य चरण पर है। पुरी में इस वक्त भक्ति के रंग जो है वो चारों तरफ बिखरे हुए हैं। पूरा माहौल भक्ति के रंग से सराबोर है। कारीगरों के हाथ दिन रात भगवान के रथों और उनके परिधानों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, तो वहीं सुरक्षा एजेंसीज भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं।

0: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम और भव्य चरण में है। पूरा पुरी धाम इस समय भक्ति के रंग में सराबोर है। जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजती पुरी की ये धरती, जहां आस्था का ऐसा समंदर उमड़ता है जिसे देखने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हर साल अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और इसी भव्य यात्रा की गवाह बनती है पुरी की रथ यात्रा। इस महायात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सड़कों को दुरुस्त करने से लेकर भगवान के रथ को सजाने का काम जारी है। साथ ही भगवान के लिए भी विशेष वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। 17 हुनरमंद कारीगर दिन रात एक एक कर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के इन दिव्य परिधानों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
1: रथ के ऊपर जो पाराभड़ी होता है उसके ऊपर से जो पोटोल बनता है, पोटोल का वो झालर होता है, वो झालर में पोटोल के बीच में किंभिरिया लगता है। ये टोटली जो काम जो बनता है, ये हम जैसे चाहते हैं जो जगन्नाथ जी का रथ जितना सुंदर हो, उसके लिए जो भी जो सामान होता है, जैसे लेस होता है, जो हमारा फूल होता है।
0: महाप्रभु के विशाल रथों को सजाने में भी भव्यता की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। इन दिव्य रथों को सजाने के लिए इस बार कुल 1250 मीटर विशेष कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें से भगवान जगन्नाथ और भैया बलदेव के रथों के लिए 425-425 मीटर, जबकि देवी सुभद्रा के रथ के लिए 400 मीटर कपड़ा उपयोग में लाया जा रहा है।
1: जो कपड़े का काम होता है, ये सब जैसे जगन्नाथ जी का खाली दर्जी का सेवक होता है वो बात नहीं है, जो भोई सेवक होते हैं, रूपकार सेवक होते हैं, चित्रकार सेवक होते हैं, बहुत सारे सेवक होते हैं, सबको मिला के जगन्नाथ जी का काम होता है। एक कोई एक काम भी नहीं बना सकते, वो स्वयं जगन्नाथ खुद ही मैंने उनका काम वो खुद ही करते हैं।
0: लाखों करोड़ों भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी बेहद कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुरी में सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि 5 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है।
2: पुलिस अरेंजमेंट हैज बीन डन, इलैबोरेट पुलिस अरेंजमेंट हैज बीन डन फॉर द अपकमिंग रथ यात्रा 2026 एंड मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैज बीन ऑल्सो अरेंज्ड। देयर आर मोर देन 220 प्लाटून ऑफ फोर्सेस हैज बीन डिप्लॉयड along with 19 IPS officers who has been heading the eight different verticals of crowd management, traffic management, inside temple arrangement, outside temple arrangement, control room, rooftop arrangement and other coastal security and railway arrangement. The main purpose and objective of the arrangement is safe, secured and hassle-free darshan of Mahaprabhu Sri Balabhadra, Mahaprabhu Sri Jagannath, देवी सुभद्रा एंड चक्रराज सुदर्शन देर पहंडी एंड द कार फेस्टिवल्स एंड होल रथ यात्रा द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू हैसल फ्री दर्शन फॉर द डिवोटीज।
0: सुरक्षा कारणों से 16 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक बिना अनुमति के किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। यानी आस्था के सबसे बड़े महोत्सव में सुरक्षा से लेकर भव्यता तक हर एक बारीक पहलू पर पैनी नजर रखी जा रही है। बस अब इंतजार है उस पल का जब महाप्रभु रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात अयोध्या के श्रीराम मंदिर की। 30 जुलाई तक श्रीराम मंदिर का काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी मंदिर पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगा। हालांकि 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का काम चलता रहेगा और राम कथा संग्रहालय का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, लेकिन ये दोनों काम श्रीराम मंदिर परिसर से बाहर चलते रहेंगे।
4: का बड़ा केंद्र अयोध्या का राम मंदिर 30 जुलाई को संपूर्णता पर पहुंच जाएगा, यानी श्री राम मंदिर के सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। निर्माण कार्य की समीक्षा की गई और अब सिर्फ दो काम पूरे किए जाने बाकी हैं। पहला, एक पुराने राम मंदिर में 24 घंटे जलने वाली ज्वाला की व्यवस्था बाकी है। जबकि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दूसरा स्मारक है जो 30 जुलाई तक पूरा हो जाएगा।
5: निर्माण कार्य में मुख्य रूप से दो कार्य अभी पूरे किए जाने हैं। एक जो कि पुराना मंदिर था जिसका स्मारक है, उसे हम लोग पूरा करेंगे। उसमें केवल जो ज्वाला 24 घंटे होनी चाहिए उसकी व्यवस्था बाकी है, बाकी सब निर्माण हो चुका है। आप दूसरा एक पूर्ण स्मारक है जो कि अब अपनी लगभग उसको आप यह मान करके चलें कि जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। वह मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य में अंतिम कार्य। इस प्रकार 20 जुलाई तक मंदिर का सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा।
4: इसके अलावा अयोध्या में दो काम चलते रहेंगे, पहला 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का कार्य और दूसरा मंदिर परिसर के बाहर ऑडिटोरियम का। इसके अलावा राम कथा संग्रहालय जिसमें 20 गैलरी हैं, इसकी स्टोरी लाइन बन गई है। अब उसका टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो किस प्रकार का होगा उस पर अंतिम रूप से निर्णय लेना बाकी है।
5: दो कार्य चलते रहेंगे, एक बाउंड्री वॉल है 4 किलोमीटर लंबी, वह कार्य चलेगा, और मंदिर परिसर के बाहर जो ऑडिटोरियम है उसका कार्य लगभग नवंबर दिसंबर तक होगा। इसके अतिरिक्त जो संग्रहालय है, राम कथा संग्रहालय, वह कार्य 20 गैलरी है, 20 गैलरी में सभी अपने अपने स्थिति स्क्रिप्ट वगैरह आप जानते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो उसकी जो स्टोरी लाइन है वो अब बन गई है और अब उसका टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो किस प्रकार का होगा उस पे अंतिम रूप से एक तरीके से निर्णय लिया जाएगा।
4: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उम्मीद है 30 सितंबर तक बाउंड्री वॉल का काम पूरा हो जाएगा, जबकि राम कथा संग्रहालय का सारा काम नवंबर दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला और संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात करते हैं कावड़ यात्रा की, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। 30 जुलाई से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है और इस पावन महीने में शिव भक्तों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बनने जा रही है बाबा भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार। कावड़ यात्रा और सावन मेले को लेकर धर्मनगरी में इस समय तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग, हर कोई शिव भक्तों के स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठा है। पुलिस हर स्तर पर तैयारी कर रही है, कावड़ियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है।
0: एक बार फिर फिजाओं में सिर्फ बम बम भोले की गूंज होगी। केसरिया रंग का समंदर होगा और महादेव के भक्तों की आस्था चरम पर होगी, क्योंकि 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इस पावन महीने के स्वागत के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो रही है। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की और मेले के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की गई। हरिद्वार में गंगा के तट पर पूजा अर्चना के साथ ही कावड़ यात्रा का शुभारंभ लगभग हो चुका है। लाखों करोड़ों शिव भक्तों और कावड़ियों की आमद को देखते हुए हरिद्वार में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के भव्य कावड़ मेले को सकुशल और सुगम बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और इस महामेले के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। मेले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस ने शिव भक्तों से एक खास अपील की है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कावड़ मेले के दौरान कोई भी कावड़िया अपने साथ त्रिशूल, लाठी डंडे या बेसबॉल बैट जैसी चीजें लेकर नहीं आएगा। इन सभी वस्तुओं पर मेले के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन नियमों का मकसद सिर्फ शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हरिद्वार में इस बार आस्था, सुरक्षा और भव्यता का ऐसा त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन महोत्सव में गंगा जल भरने आने वाले शिव भक्तों के स्वागत के लिए अब बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे।
3: सावन की शुरुआत में तो अभी समय है, लेकिन बाबा बद्री विशाल के धाम में इन दिनों मानसूनी बारिश मौसम को और भी सुहाना बना रही है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, लेकिन कहते हैं ना कि जब बुलावा बाबा का हो तो मौसम की बंदिशें बेअसर हो जाती हैं। खराब मौसम के बावजूद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं माणा गांव में भी रौनक बिखरी हुई है। पौराणिक स्वर्गारोहण मार्ग पर भी पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं।

0: चारों तरफ पहाड़ और काले घने बादल, रिमझिम बरसती बूंदे और फिजाओं में घुली ठंडक। बद्रीनाथ धाम का ये सुहाना और अलौकिक मौसम इन दिनों हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। मौसम भले ही सर्द है, लेकिन भक्तों के दिलों में आस्था की गर्मी साफ देखी जा सकती है। बद्रीनाथ में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस अनवरत बारिश की वजह से पतित पावनी अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है, लेकिन बाबा के दर्शन की चाह में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद कम नहीं हो रही। साफ है कि खराब मौसम पर भक्तों की अटूट आस्था भारी पड़ रही है।
1: बद्रीनाथ धाम में बीते तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है, वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहाँ पे नरसिंह शिला, बारह शिला है, वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है, पूरा पानी बढ़ता जा रहा है। पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है, जलस्तर है, वो बढ़ रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में अभी तक यात्रा मार्ग सुचारू होने से श्रद्धालु बहुत उत्साहित है, वे बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। हालांकि मानसून का असर यात्रा पे जरूर दिखाई दे रहा है, यात्रा में जो कमी है वो देखने को मिल रही है, लेकिन जो श्रद्धालु इस समय पहुंच रहे हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पे, सुगम दर्शन जो मंदिर समिति द्वारा और तमाम व्यवस्थाएं हैं, वो इस समय सबसे बेहतर व्यवस्थाएं इस समय हैं।
0: बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं और सैलानियों का कारवा सीधे रुक कर रहा है देश के पहले गाँव माना की तरफ, जो इस समय पूरी तरह बादलों की आगोश में लिपटा हुआ है। देश के कोने कोने से सैलानी जादुई और सुहाने मौसम का गवाह बनने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। धुंध की सफेद चादर के बीच ठंडी हवाएं सैलानियों का रोमांच दोगुना कर रही हैं। कोई इन वादियों को कैमरे में कैद कर रहा है, तो कोई इस हसीन मौसम को जी भर के महसूस कर रहा है।
2: बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया स्थान है। हिंदुस्तान विश्व फेल है इसके आगे। हम विश्व के बारे में कहते हैं कि स्विट्जरलैंड ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी मातृभूमि, हमारी जन्म स्थान जो है, हमारे हिंदुस्तान है, वो ही स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा अच्छा है।
3: मैं इस जगह को ज्यादातर वीडियोस में देखती थी और वीडियो से बहुत ज्यादा सुंदर ये अब मुझे लग रहा है, और मतलब मुझे अभी भी यही लग रहा है कि मैं यहाँ सपना ही देख रही हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत ब्यूटीफुल है।
0: माना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पौराणिक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इसी गांव से होकर गुजरता है वो ऐतिहासिक स्वर्गारोहण मार्ग, जिससे होकर पांडव सशरीर स्वर्ग की ओर गए थे। आज इस कोहरे और धुंध के बीच जब सैलानी इस प्राचीन मार्ग की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो उन्हें प्रकृति के साथ साथ इतिहास और अध्यात्म का एक अनोखा एहसास होता है।
4: बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है। जो हम रह रहे हैं पॉल्यूशन में, उससे बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है सांस आ रही है, सांस आ रही है।
5: यहाँ का वातावरण की आप पूछो तो धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग जाने की सीढ़ी आज हमने उस चीज को देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं उस चीज का, तो विश्वास कर इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है।
0: एक तरफ जहाँ बद्री विशाल के दर पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति की ये बेमिसाल खूबसूरती सैलानियों का दिल जीत रही है। मौसम भले ही इम्तिहान ले रहा हो, लेकिन देवभूमि का ये सफर यादगार बन रहा है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अपने इलाके को हरा भरा रखने की जिम्मेदारी हर किसी की होती है। हर कोई अपने आसपास पौधारोपण करे, दूसरों को भी इस काम के लिए प्रेरित करे, यही तो पर्यावरण को बचाने, हरियाली को बनाए रखने की सोच है। इसी उद्देश्य के साथ राजस्थान सरकार मॉनसून सीजन में राज्य के लोगों को हरियाली का तोहफा देते हुए हरियालो राजस्थान अभियान चला रही है। यहाँ सरकारी नर्सरीज में पौधे यानी सैंपलिंग की शुरुआती कीमत महज 5 से 6 रुपए है, जबकि ज्यादातर पौधों की कीमत 10 रुपए तक रखी गई है, यानी पौधों की प्रजाति के मुताबिक कीमतें तय की गई हैं। इन सरकारी नर्सरियों में करीब 50 से 60 प्रकार के पौधे उपलब्ध हैं, जिनमें नीम, गुलाब, मोगरा, चंपा, छायादार पेड़, सजावटी पौधे, फूलों की प्रजातियां और औषधीय पौधे भी शामिल हैं। लोग भी काफी संख्या में इन पौधों को खरीदने के लिए यहां आ रहे हैं। वहीं कई लोग ऑनलाइन माध्यम से भी पौधों की बुकिंग करा रहे हैं। जाहिर है सरकार की ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही है, बल्कि आम लोगों को भी प्राइवेट नर्सरी से बेहद कम कीमत पर क्वालिटी वाले पौधे उपलब्ध कराकर हरियालो राजस्थान कैंपेन को और मजबूत कर रही है।
7: यहाँ जयपुर की इस नर्सरी में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर इस मॉनसून में ग्रीनरी को और हरियाली को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ₹5 से ये जो सैपलिंग्स हैं ये मिलना शुरू हो चुके हैं। ₹5 से शुरू होते होते जो टाइप्स हैं प्लांट्स के उसके हिसाब से इनका जो कॉस्ट है वो ₹5, ₹6, ₹10 इस तरीके से बढ़ता चला जाता है, पर फिर भी इनका कॉस्ट उतना ही रहता है जो सभी की पॉकेट्स के लिए बहुत ज़्यादा सही हो, अफोर्डेबल हो, बजट में सभी के आए और ऐसे आए कि एक नहीं लोग यहाँ से एक साथ 20 से 30 सैपलिंग्स यहाँ से लेके जा रहे हैं।
8: यहाँ पौधों की प्रजाति है, मीठा नीम है, कड़वा नीम है, सेमल है, गुलथुरा है, अशोक है, और टिकोमा है, जंग जलेबी है, केशिया श्यामा है, और कचनार है, सहतूत है, फुलवारी में गुलाब है, स्नेक प्लांट है, भारत पीपल है, और भी और कई
7: मतलब नंबर्स में आप एक बार हमें अप्रोक्सीमेट बता दीजिए लगभग कितने टाइप के यहाँ पे पौधे होंगे।
8: यहाँ लगभग मतलब 50 से 60 वैरायटी पौधों की मिल जाती है।
9: इस टाइम क्या है कि मैं 2 PG चला रहा हूँ, गर्ल्स और बॉयज़ PG चला रहा हूँ मैं अभी, तो क्या एडमिशन वगैरह भी आ रहे हैं। थोड़ा मैंने ऑफिशियल पेड़ लिए हैं, फूल वगैरह के लिए हैं, जैसे लीली हो गई, रात रानी हो गई, तो ये क्या कि बढ़िया फ्लावर पीले सफ़ेद गुलाबी रंग बिरंगे होते हैं, तो ये थोड़े देखने में एट्रैक्टिव करते हैं, अच्छे लगते हैं।
8: गवर्नमेंट ने हरियाणा राजस्थान एक स्कीम चला रखी है कि मतलब कम से कम ₹5 कांटेदार, ₹6, ₹10 तक की दर है, इसलिए कि अधिक से अधिक पौधे लगाए और हमारा देश हरा भरा हो। ये मैम
7: तो एक दिन में लगभग कितने लोग आ जाते होंगे आपके पास
8: यहाँ पे? एक दिन में मैम मतलब 500 से 1000 के बीच में लोग आते हैं
10: जी। हर जो प्राइवेट नर्सरी है उनमें तो 150-150 रुपये से कम की नहीं होते, यहाँ पे तो ओनली 6 रुपीज़ और 10 रुपीज़ दे आर गिविंग, सो इट्स अ नाइस थिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट।
11: ऑनलाइन पौधा क्रय करने के लिए डिपार्टमेंट के द्वारा प्रत्येक नर्सरी में स्कैनर कोड लगाया हुआ है, बार कोड, उसमें जाकर पौधे सेलेक्ट नर्सरी करने के बाद में पौधे की प्रजाति के अकॉर्डिंग पौधे को सेलेक्ट करने के बाद में उसकी प्राइस को कार्ट में डालकर जितनी प्रजाति उसमें सेलेक्ट करते जाएंगे ऑटोमेटिकली उसमें क्वांटिटी और उसकी रेट मल्टीप्लाई होती जाएगी। उसके बाद में जो रसीद जो रिसीट बनती है वो जनरेट कंप्यूटराइज जनरेट हो जाती है।
7: तो अगर इतनी ज़्यादा बाइंग हो रही है तो हम ये मान सकते हैं कि बहुत ही जल्दी जयपुर जो है या फिर कह सकते हैं कि हरियाला राजस्थान स्कीम है तो राजस्थान जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से और भी ज़्यादा हरा भरा नज़र आने वाला है। हरियाली को प्रमोट किया जा रहा है और सस्ते दामों में ऑनलाइन और ऑफलाइन जो पौधे हैं वो दिए जा रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।
6: हिंद महासागर में भी भारत की समुद्री ताकत और बढ़ गई है। भारतीय नौसेना के बेड़े में INS महेंद्रगिरि शामिल हो गया है। स्वदेशी तकनीक से बना स्टेल्थ युद्धपोत INS महेंद्रगिरि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल, ये युद्धपोत आधुनिक तकनीक से लैस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पोत को नौसेना के हवाले किया और कहा कि इस पोत में ब्रह्मोस मिसाइल से लैस इसको किया जा सकता है।

0: प्रबल, सतर्क, अचूक, चट्टान जैसी दृढ़ता, रण शौर्य का प्रतीक, समंदर की लहरों पर राज करने वाला स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। INS महेंद्रगिरी के शामिल होने से समंदर में अब और मजबूत हो जाएगी भारतीय नौसेना। स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी जो न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम का प्रतीक है, बल्कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस समंदर में नौसेना का नया प्रहरी भी है।
1: तेज दृष्टि, अद्भुत धैर्य और सही समय पर निर्णायक प्रहार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। समुद्र में भी एक वारशिप से यही अपेक्षा होती है, वह हर समय अलर्ट रहे, दूर तक देख सके, हर परिस्थिति का सही आकलन करे और आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करने में भी वह सक्षम हो। यह क्रेस्ट अपने आप में INS महेंद्रगिरी की कैपेबिलिटी का प्रतीक है।
0: महेंद्रगिरी का डिजाइन भारतीय नौसेना के WDB यानी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। इसे आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि भारतीय नौसेना के इस शूरवीर को ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस किया जाएगा।
1: तो INS महेंद्रगिरी में हमारे ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल फिट हो सकती हैं, जो दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल्स में से एक है और इसमें मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं।
0: समंदर के इस नए प्रहरी का नाम पूर्वी घाट के प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है, जो शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक मानी जाती है। भारतीय नौसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी युद्धपोत को महेंद्रगिरी नाम दिया गया है। इसके खासियत की बात करें तो सतह से सतह और सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइलों से ये लैस है। इसके अलावा इसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आधुनिक सेंसर, एंटी सबमरीन वेपन्स और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और पनडुब्बियों से ये एक साथ मुकाबला कर सकता है। महेंद्रगिरी स्टिल्थ तकनीक से लैस फ्रिगेट है, जो दुश्मन के रडार को चुनौती देगा। समंदर में चुपचाप आगे बढ़ने और जरूरत पड़ने पर घातक प्रहार करने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि महेंद्रगिरी के निर्माण में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: INS महेंद्रगिरी लगभग 6,670 टन के डीप डिस्प्लेसमेंट वाला एक विशाल जहाज है, जो 28 नॉट्स तक की तेज गति से चल सकता है और यह मल्टी मिशन फ्रिगेट है, यानी यह एक ही समय में हवा में आने वाले खतरे, सतह पर मौजूद शत्रु और पानी के नीचे छिपे हुए सबमरीन्स तीनों के विरुद्ध यह इफेक्टिव साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक ब्लू वाटर शिप है, यानी यह केवल तट के पास ही नहीं बल्कि दूर और गहरे महासागरों में हफ्ते तक भारत की समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: महेंद्रगिरी भले ही एक वॉरशिप है, लेकिन इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान, समुद्री सुरक्षा गश्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिशनों में भी किया जा सकेगा। समंदर में फंसे लोगों की सहायता से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने तक ये कई अहम जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला-चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की

0: Take It Easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे कि अगर बच्चे का जन्म हो तो किन बातों का ध्यान रखने से उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 जुलाई 2026 दिन रविवार, तिथि है।

0: आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात के 10:29 तक नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 8:29 तक चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:06 तक राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे के जन्म से जुड़ी हुई सावधानियां कौन सी हैं और बच्चे के जन्म के समय की स्थिति क्या होती है, कौन सी बातें बच्चे के जन्म के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, बच्चे के जन्म के समय में किन बातों का ध्यान रखें। वैसे तो सामान्य स्थितियों में आप जन्म का समय निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि अगर सर्जरी से संतान होने वाली है तो लोग समय डिसाइड करते हैं। अगर अवसर मिले तो समय सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर समय का चुनाव करना चाहिए। किसी बच्चे का जन्म अगर मध्य दोपहर का है या मध्य रात्रि का है तो इसको सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि ये दोनों समय अभिजित मुहूर्त के समय होते हैं और अभिजित में जन्म लेने वाले बच्चे की कुंडली के दोष कम हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय जिन बच्चों का जन्म होता है वो बच्चे के लिए कदापि अच्छा नहीं होता। सूर्यास्त के समय अगर बच्चे का जन्म होगा तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे को जीवन भर उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, जीवन में उतार चढ़ाव की संभावना बन जाती है और ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार लगी रहती हैं। वैसे तो देखिए, मोटे तौर पे आप समय डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 4 के आसपास नवमांश बदल जाता है, तो आप बहुत ज्यादा समय डिसाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि नवमांश तो आपके कंट्रोल में है नहीं। आप 4 तक का एक्यूरेट टाइम तो ला ही नहीं सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप मोटा समय भी डिसाइड कर रहे हैं कि 1 का समय, 1.5 का समय, तो उसमें एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जन्म का समय सूर्यास्त के आसपास का डिसाइड मत करिएगा। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। एक तो हो गया बच्चे का जन्म समय, दूसरा होता है बच्चे का जन्म नक्षत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे का सारा जीवन इस जन्म नक्षत्र पर और इसके स्वामी पर आधारित होता है। क्या महत्व है इसका? देखिए, बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही बच्चे का जन्म नक्षत्र है। अगर बच्चे का जन्म किसी मूल नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल या रेवती, ये छह मूल नक्षत्र हैं, तो अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में है तो ये ध्यान रखिए कि शुरुआत में बच्चे के स्वास्थ्य में और उसकी मानसिक स्थिति में समस्या आ सकती है। तो अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो तुरंत मूल नक्षत्र की शांति जितना जल्दी हो करवा लेना चाहिए। और अगर मूल नक्षत्र का जन्म नहीं है तो आप ये देखिए कि वो नक्षत्र कौन सा है, उसका स्वामी कैसा है और उसकी स्थिति के आधार पर आपके बच्चे का जीवन आगे बढ़ेगा। सिंह राशि, काम की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, व्यर्थ की दौड़ भाग बनी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग आयु में अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है, उनकी कुंडली की दशाओं के अलावा। कोई भी बच्चा जन्म लेता है, मोटे तौर पर जन्म से लेके 12 साल तक उसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो कोई भी बच्चा जन्म लेता है, चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण है ये भी जानते हैं। देखिए, बच्चे के चंद्रमा से बचपन में उसके आयु और उसके स्वास्थ्य का निर्धारण होता है। अगर बच्चे का चंद्रमा खराब स्थान में है, 6, 8, 12 में है, चंद्रमा अस्त है या बुरी तरह पापक्रांत है, तो बच्चे को शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर चंद्रमा बाला रिष्ट योग बना रहा है, यानी बचपन में अरिष्ट की, अशुभता की संभावना बना रहा है, तो वो बच्चे की आयु के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में बच्चे की आयु रक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपाय करना चाहिए। देखिए, कोई भी बच्चा हो, जन्म से लेके पहले 4 साल वो अपनी माँ के भाग्य से चलता है, उसके बाद के 4 साल वो अपने पिता के भाग्य से चलता है, और 8 से लेके 12 साल तक वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार चलता है। तो 12 साल तक सामान्यतः कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि जन्म के समय जब पत्री बने तो उसमें चंद्रमा को जरूर देख लिया जाए, और चंद्रमा अगर नकारात्मक है या निगेटिव सिचुएशन में है तो माता पिता को उस चंद्रमा के लिए उपाय करना चाहिए, ताकि बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर उसका बुरा असर ना पड़े। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा, ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, चिंताएं थोड़ी कम होंगी, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, चोट चपेट से सावधान रहें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब एक बात जो और महत्वपूर्ण है कि बच्चे के जन्म लेने के साथ उसका नाम रखने की, नाम के लिए तमाम कोशिश, तमाम रिसर्च शुरू हो जाती है, और आजकल तो ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं जिनका अर्थ परमात्मा को भी शायद नहीं पता होगा। अंट शंट कोई भी नाम रख दिए जाते हैं, और इसलिए रख दिए जाते हैं कि लोग समझते हैं कि यूनिक है। अब यूनिक के चक्कर में कोई भी नाम रख लेंगे क्या? बच्चे के नाम के लिए क्या ध्यान रखना होगा? देखिए, बच्चे की राशि का जो अक्षर है, बच्चे का जो नक्षत्र है, उसके चार चरण हैं। जिस चरण में उसका जन्म हुआ होगा, उससे शुरू होने वाला अक्षर उसका नाम, उसकी राशि का नाम होगा। तो बच्चे की जो राशि के नाम का अक्षर है, उससे बच्चे का नाम मत रखिएगा। बच्चे की कुंडली में जो ग्रह मजबूत है, उससे संबंधित अक्षर से बच्चे का नाम रखना चाहिए, और ऐसा नाम मत रखिए जिसका कोई सर पैर ना हो। आजकल ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिसका मतलब डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। तो जिन नामों का कोई अर्थ ना हो, ऐसे नाम बिल्कुल मत रखिए। सरल नाम, साधारण नाम, अच्छे नाम आपको हिंदी संस्कृत शब्दकोश में मिल जाएंगे। लेकिन अब इसका मतलब नहीं कि कुछ भी नाम रख दिए, कहीं भी नाम रख दिए। नाम सोच समझ के रखिए, क्योंकि वो जीवन भर बच्चे के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। अगर देवी देवता के नाम पर बच्चे का नाम रखते हैं, तो नाम के उच्चारण में सावधानी रखिए। बच्चे का नाम राम है, उसको रामू या रामा मत करिए। बच्चे का नाम कृष्ण रखा है, तो किशनवा मत कर दीजिए। यानी अगर देवी देवता के नाम पे बच्चे का नाम है, तो नाम तरीके से, शांति से, स्पष्टता से बोलिए। ऊट पटांग नाम उसको मत बनाइए। अगर कोई विवाह संबंधी मुकदमा आपका चल रहा है, सेपरेशन का, मेंटेनेंस का, ऐसा कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाइएगा। अगर आप ऐसा करके प्रार्थना करेंगे, तो उचित तरीके से आपका मुकदमा हल हो जाएगा। आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको बार बार मित्रों से धोखा मिल रहा हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू करिए। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और हर मंगलवार को गुड़ का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए या गाय को खिलाइए, तो बेहतर होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
2: जब कोई खिलाड़ी खेल से बढ़कर एक प्रेरणा बन जाए तो उसे सम्मान देना जिम्मेदारी होता है, और ऐसा ही सम्मान दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। हजारों ड्रोन्स ने मिलकर रोनाल्डो की ऐसी शानदार तस्वीर बनाई कि पूरा नजारा यादगार बन गया। लगा मानो आसमान भी एक लेजेंड के नाम हो गया। सच भी तो है, एक खिलाड़ी जब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन जाए तब उसे ऐसे ही सम्मान मिलते हैं, और ये सम्मान उसकी विरासत को और खास बना देते हैं। सोशल मीडिया पर ड्रोन के बने रोनाल्डो की ये तस्वीरें खूब पसंद आ रही हैं। मोबाइल का चस्का कैसा होता है ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। आजकल हो भी ऐसा गया है कि काम चाहे कोई करो, मोबाइल देखने का काम हर काम के साथ जारी रहना चाहिए। अब इन महाशय को देखिए जरा, पानी से भरे खेत में काम करते हुए मोबाइल देखना नहीं छूटा। जुगाड़ लगा के मोबाइल को देखते हुए किसी को काम करते देखा है कभी? अब सोशल मीडिया पर लोग जनाब को कह रहे हैं, शाबाश बेटा, ऐसे ही लगे रहो। अब सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये लड़के जीतने के लिए मिलकर पूरा दम लगा रहे हैं और आखिरकार उनका टीम वर्क काम आता है और वो टास्क पूरा करके जीत कर ही दम लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस एक्ट को टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं और तस्वीरें देखकर खुश हो रहे हैं। इंडोनेशिया में आई तेज बाढ़ के दौरान यूं तो एक दूसरे की जान बचाने की और रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई, लेकिन एक ऐसी तस्वीर इन दिनों चर्चा में है जो संवेदनशीलता को प्रकृति के एक स्थायी भाव के रूप में सुनिश्चित करती है। यहां तेज बाढ़ में एक हाथी ने बाघ को सहारा दिया। बीच पानी में फंसे बाघ को हाथी ने सूंड की मदद से अपने ऊपर बैठाया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हाथी की संवेदना सबका मन मोह रही है, भावुक कर रही है और इंसान को भी सीख दे रही है कि प्रकृति का सबसे बड़ा पाठ, शक्ति का सर्वोच्च रूप किसी को हराना नहीं बल्कि किसी को बचाना है। अब तक का सबसे बड़ा मानव पिरामिड सोशल मीडिया पर जबरदस्त वाहवाही लूट रहा है। एक बेहद लंबा ऊंचा संकरे मानव जैसा पिरामिड जैसा आकार बनाया गया। तेज हवा में जब ये डगमगाने लगा तब भी किसी तरह ये स्थिर रहता है। एक शख्स भी इस पिरामिड से नीचे नहीं गिरता। एक बार को तो देखने वालों को लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा संतुलन बना लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग इस वीडियो को संतुलन, विश्वास और शानदार टीम वर्क बताकर तारीफ कर रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession।
1: भारतीय सेना खरीदेगी 450 कालगुसाफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार, अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर। भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्रगिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय। इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कल चलाई जा रही है 8 स्पेशल ट्रेन। अलग अलग स्टेशन का टाइम टेबल भी किया जारी। इंदौर में 22वें पुण्योदय प्रकल्प का शुभारंभ। मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को बांटी जाएंगी 3,00,000 कॉपियां। 11 अगस्त तक पूरे एक महीने चलेगा अभियान। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम। शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।

0: समंदर का समीकरण जिसने भी साधा, वो लहरों पर नया इतिहास लिखता चला गया। इन्हीं लहरों पर राज करने की मंशा लिए चीन लगातार विस्तारवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी के एक इलाके पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है और अब उसकी निगाहें हिंद महासागर पर हैं। भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। भारत चीन के पड़ोसियों को न सिर्फ ताकतवर हथियार दे रहा है, बल्कि भारत अब एक ऐसी स्ट्रेटजी पर भी काम कर रहा है जो आने वाले समय में चीन के गले की फांस बन सकता है। भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को बड़ा विस्तार दिया है। दोनों देशों ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद की डील की है। साथ ही साथ अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ समझौता न केवल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नतीजा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश है, बल्कि इसके साथ ही साथ साउथ चाइना सी में और हिंद महासागर में भारत को सामरिक तरीके से बढ़त भी दिलाता है। फिलीपींस वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप समूह है जिसके पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग है। मलक्का, सुंडा, लोमबोक और मकासर जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता और 9-line के दावों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से इंडोनेशिया को मजबूत समुद्री प्रतिरोध मिलेगा।
1: देखा जाए तो चीन लगातार नटूना समुद्र के ऊपर भी अपना दावा पेश करता रहा है, जिसको कि इंडोनेशिया अपनी EEZ का हिस्सा मानता है। चीन की आए दिन मछली पकड़ने वाली नौकाएं, उनकी नेवी के शिप्स वहां पे आते रहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेता है तो उनको एंटी शिप के तौर पे बड़ी ज़बरदस्त सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि ये कोस्टल बैटरी, कोस्टल मिसाइल सिस्टम के तौर पे काम करेगा। 290 से 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सी स्कीमिंग लास्ट मिनट में मैनूवर करके एक्यूरेट होने की वजह से ये शिप्स के ऊपर बहुत ही घातक साबित होगा।
0: सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंडोनेशिया ने अपनी सेना के लिए चुना है। ये तो चीन के लिए चिंता की बात हो गई। साथ ही इंडोनेशिया ने समंदर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए भारत के साथ एक और अहम समझौता किया है, जिसने चीन की नींद उड़ा दी है।
2: हिंद महासागर में भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए इस सैन्य समझौते के तहत न सिर्फ भारत की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि ये साथ ही साथ चिंता बढ़ाने वाला विषय है चीन के लिए। और इसी के साथ साथ भारत ने एक और अहम डील की है, जिसमें भारत और इंडोनेशिया दोनों संभाग पोर्ट पर एक संयुक्त परियोजना पर काम भी करेंगे। यहाँ ये बता देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संभाग पोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान निकोबार के दक्षिण में पड़ता है। यानी अगर हम दूरी की बात की जाए तो करीब करीब 100 मील की दूरी है। यानी इस डील के साथ साथ भारत कहीं ना कहीं चीन के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है।
0: ग्रेट निकोबार और संबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के दो छोर हैं। इन्हें मलक्का स्ट्रेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। संभाग पोर्ट भारत की ग्रेट निकोबार ट्रांस शिपमेंट पोर्ट से केवल 100 मील यानी कि करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के लिए इंडोनेशिया का संभाग पोर्ट रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बहुत अहम है। इससे न सिर्फ भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री व्यापार बढ़ेगा, बल्कि दोनों देश रणनीतिक रूप से अहम एक बड़े समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट पर अपना प्रभुत्व कायम कर पाएंगे। संभाग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर स्थित है। और मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का संकरा समुद्री मार्ग है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। संभाग पोर्ट से भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री पहुंच और मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये गहरे पानी की बंदरगाह है जहां पनडुब्बियों समेत हर तरह के नौसैनिक जहाज आ सकते हैं।
1: देखिए, जहां ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलप हो रहा है वहां से सबांग पोर्ट तकरीबन 160 किलोमीटर है, जहां से मलक्का स्ट्रेट निकलता है। चीन का ज्यादातर तेल उनका व्यापार यहीं से होता है, तो अगर दोनों तरफ उधर भारत ने उनको ब्रह्मोस बेचा हुआ है, बेच रहे हैं जो पहुंच रहा है, और साथ साथ में यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाती है, तो इसको हम पूरी तरह से जरूरत पड़ने पर करेंगे नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्यों किया जा सकता है, जैसे कि आप हमने एग्जांपल देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दूसरी बात, सबांग पोर्ट में भारत के शिप्स को मदद मिल जाएगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी, वहाँ पर रिफ्यूलिंग हो जाएगा, वहाँ से आगे फिर रीच उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए बेनिफिशियल है।
0: चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला ये संकरा समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। चीन के आयातित तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया और अफ्रीका से इसी रास्ते होकर चीन पहुंचता है। इसके साथ ही चीन के निर्यात आधारित व्यापार का भी बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है। चीन अपना करीब 80% कच्चा तेल और ऊर्जा आयात स्ट्रेट ऑफ मलक्का रूट से करता है। चीन के कुल वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 60% से 2/3 हिस्सा इसी जल मार्ग से आता जाता है। यानी जिस मलक्का स्ट्रेट को चीन के व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है उस पर अब भारत की नजर रहेगी।
1: मलक्का स्ट्रेट को चीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है क्योंकि चीन का ज्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तेल उनका ज्यादातर इंपोर्ट होता है। उनका 25-40% व्यापार मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है, साथ साथ में तेल जो है वो 60-80% तेल जो पश्चिमी एशिया से आता है वो मलक्का स्ट्रेट से निकलता है। यदि मलक्का स्ट्रेट चौक हो जाता है तो चीन के पास ऑप्शन है, आर्कटिक साइड से है या फिर दूसरे स्टेट हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं। एक बात और है कि यहाँ पर यदि हम इसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि एक तरफ निकोबार, दूसरी तरफ सबांग आइलैंड इंडोनेशिया का, तो ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट हो जाता है। यही कारण है कि चीन इसके लिए काफी वल्नरेबल रहता है और वो अल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश कर रहा है।
0: हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक आने जाने वाले समुद्री मार्ग चीन के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दे सकती है।
2: साल 2003 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने मलक्का को लेकर एक आशंका जाहिर की थी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मलक्का डिलेमा। दरअसल उस दौरान उन्हें इस बात की आशंका थी कि अगर कहीं तनाव होता है या फिर अगर दुश्मन के साथ, चीनी दुश्मन के साथ भी तनाव होता है, तो अमेरिका या फिर उसके सहयोगी मिलकर मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, वहां से रास्ता रोक सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
0: मलक्का स्ट्रेट कहाँ है और इसकी अहमियत कितनी है, ये समझने की जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला रास्ता है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाला बड़ा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 25-40% हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 80,000 से 1,20,000 कार्गो यहाँ से गुजरते हैं। रोजाना औसतन 200-300 मालवाहक जहाज इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो हर साल लगभग $3.5 trillion का सामान स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते से गुजरता है।
1: देखा जाए तो मलक्का स्ट्रेट एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसको अगर ब्लॉक हो जाता है तो चीन के व्यापारिक क्षमता पर बहुत फर्क पड़ेगा। आज उनका जो व्यापार है यूरोप के साथ है, मध्य पूर्व के देशों के साथ है, और यदि ये ब्लॉक होता है तो उनकी तेल सप्लाई व्यापार जो 25 से 40% व्यापार यहाँ से निकलता है, उनका जो मध्य पूर्व से तेल आता है उनका 60 से 80% तेल यहाँ से आता है। तो चीन के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी ज़्यादातर इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन है। अगर ये हट जाता है तो यूरोप के साथ और मध्य पूर्व के देशों के साथ जो एक्सपोर्ट रुकता है तो उनकी इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा।
0: मलक्का स्ट्रेट पर भारत का सीधा भौगोलिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति और सैन्य ताकत इसे इस मार्ग पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। भारत संवेदनशील समुद्री रास्ते के मुहाने पर पहरेदार की तरह बैठा है, जिससे वो चीन की दुखती रग को कंट्रोल कर सकता है।
2: दरअसल भारत को प्राकृतिक रूप से तोहफे में अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिले हैं, जिसका दायरा 700 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसका एक छोर सीधा मलक्का स्ट्रेट पर जाकर खुलता है। और यही एक बड़ी वजह है कि भारत यहां पर ग्रेट निकोबार को विकसित कर रहा है, ताकि खास तौर पर मलक्का स्ट्रेट में अपनी रणनीतिक बढ़त को मजबूत बना सके, और यह चीन के लिए बहुत बड़ी टेंशन होगी।
0: ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण द्वीप पर विकसित किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख हिस्से हैं, जिनमें पहला इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ICTP है। इसमें गैलाथिया की खाड़ी में एक विशाल गहरे पानी का बंदरगाह बनाया जा रहा है। दूसरा हिस्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका तीसरा हिस्सा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसमें करीब 149 वर्ग किलोमीटर एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। चौथा हिस्सा वाटर प्लांट होगा, जो शहर और बंदरगाह की जरूरतों के लिए ऊर्जा सप्लाई करेगा।
1: जब इंडोनेशिया के संबंध की बात होती है तो ग्रेट निकोबार एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, और ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए भारत की सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, जहां पे 81,000 करोड़ लगाकर तकरीबन 30 साल के समय का सीमा निर्धारित करते हुए वहां पर एयरपोर्ट, टाउनशिप, सामरिक पोर्ट और एक पावर प्लांट, हर तरह से एक कंपोजिट डेवलपमेंट करने का विचार है, जो कि सुरक्षा और व्यापार दोनों तरह से काफ़ी बेहतर रहेगा। एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाएगा वहाँ पर, और साथ साथ में सुरक्षा के निगाह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के पूरी तरह से डोमिनेट करेगा, और जिसको हम कहते हैं कि अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं, हमारा द्वीप ही जब एक एयरपोर्ट हब बन जाएगा, एयरफोर्स होगी, नेवी की बेस हो जाएगी, तो काफी आगे तक हमारी रीच बढ़ जाएगी।
0: ग्रेट निकोबार का दक्षिणी सिरा सिंगापुर, पोर्ट किंग और कोलंबो के काफी पास में है। इन द्वीपों के पास जो समुद्री रास्ते हैं, उसका करीब 60% चीन अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में इन रास्तों पर नियंत्रण स्ट्रेटेजिक ट्रम्प कार्ड है, जो चीन को बेहद नागवार गुजरता है। अब भारत ने जब से ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, चीन की टेंशन यकीनन बढ़ गई है।
3: ये जगह जब डेवलप हो जाएगी, ये जो हमारे जो पोर्ट डेवलप होगा, यहाँ से जो हमारी मैरीटाइम पार एंड रीच जो होगी वो बढ़ेगी, हमारी रीच फ्रॉम डोमिनेंस इन मैरीटाइम एंड द एयर फ्रंट बहुत बढ़ेगी। ये 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से, सिर्फ 150 किलोमीटर। तो हमारी एंड आप समझ रहे हैं इस मलक्का स्ट्रेट से कितना सी रूट जाता है, नियरली 30%। चाइना की 75% नियरली एनर्जी ट्रेड, एनर्जी रूट यहां से है। तो इस पे हमारी एबिलिटी टू डोमिनेट, एबिलिटी टू सिक्योर दिस ट्रेड रूट बहुत जरूरी है, एंड होर्मुज के बाद तो ये बात आज की तारीख में सबको समझना चाहिए।
0: भारत ने अपने पश्चिमी और पूर्वी तट पर समंदर के पास पनडुब्बियों का जाल बिछा रखा है, जिससे भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन अपनी हद पार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसमें हर तरह की पनडुब्बियां शामिल हैं। भारत ने हाल ही में 2 पनडुब्बी अड्डे बनाए हैं, पहला है कारवार और दूसरा है INS वर्षा। ये बेस भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक बेहद मजबूत हिस्सा है, जो देश को किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में सुनिश्चित सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करता है।
2: हिंदुस्तान की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो तीन तरफ से समुद्री सीमाओं से सटा हुआ है, जिसमें 7,516 किलोमीटर का लगभग ये पूरा एरिया पड़ता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं और कई राज्य भी आते हैं। और इसीलिए भारत के लिए बहुत अहम हो जाता है कि भारत अपनी समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा करे और इसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस करे।
0: भारतीय नौसेना लक्षद्वीप में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिनिकॉय द्वीप पर एक हाईटेक नौसैनिक अड्डा तैयार कर रही है। इसे आईएनएस जटायु का नाम दिया गया है। समंदर के बीच में ये बेस जितना खूबसूरत है स्ट्रेटेजिक तौर पर उतना ही खास है। इस अड्डे से नौसेना टुकड़ी की मूवमेंट तो बढ़ेगी ही, साथ ही जटायु नेवल बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इस बेस पर फाइटर जेट्स और भारी विमानों की आवाजाही अब आसान होगी।
1: देखा जाए तो आईएनएस जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में एक नेवी का अग्रिम बेस है, जिसका फायदा यह है कि ये जब अग्रिम बेस बना होता है द्वीप के ऊपर, तो भारत की एक आइलैंड पॉलिसी है जहां पर आइलैंड्स के ऊपर नेवी के बेस बनाकर पूरे इलाके को डोमिनेट करना, उनको नज़र में रखना। क्योंकि जैसे हम चीन की आए दिन खबरें आती रहती कि वो आज वहाँ शिप भेज रहे हैं, वहाँ श्रीलंका के पास भेजा, मालदीव के पास भेजा, भारत के नेवी की मूवमेंट पर निगाह रखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से फिर हम भी निगाह रख सकते हैं उनकी हरकतों पर। दूसरी बात, हमारा एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं। तीसरी बात, समुद्री डकैती यानी कि सी पायरेसी जो है उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर काम करेंगे।
0: के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारतीय नौसेना की मौजूदगी रही है, लेकिन आईएनएस जटायु को द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा पूर्ण अड्डा माना जाएगा। इससे पहले साल 2012 में करवती में आईएनएस द्वीप रक्षक को पहले नौसेना अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो स्वेज कैनाल और फारस की खाड़ी से जाने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए एक अहम रूट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, जो सुंदर लोम्बोक स्ट्रेट की ओर जाने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों चैनलों में मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद खास है। मिनिकॉय में नौसेना बेस इन दोनों चैनलों पर नजर रखने में मदद करेगा। मिनिकॉय में तैयार नेवल बेस आईएनएस जटायु के नाम को भी काफी सोच समझकर रखा गया है। जिस तरह रामायण में जटायु ने सबसे अहम कदम उठाते हुए सीता जी के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी, अपने जीवन को खतरे में डालकर खुद से पहले सेवा का उदाहरण दिया था, उसी तर्ज पर अब देश की हिफाजत होगी।
2: आईएनएस जटायु की पोजीशनिंग दरअसल मालदीव के बेहद करीब है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर और यहीं से न सिर्फ चीनी युद्धपोत बल्कि पनडुब्बियों पर भी नजर रखी जाती है और उनकी निगरानी की जा सकती है, और अगर कहीं तनाव की स्थिति पैदा होती है तो यहाँ से चीन को टारगेट पर भी लिया जाता है। दरअसल ये पोजीशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से चीन ने मालदीव को अपनी कठपुतली बनाया है, तो उस हिसाब से इस पूरे भूमध्य सागर में भारत के लिए खतरा बहुत अहम हो जाता है।
0: चीन और मालदीव की जुगलबंदी कैसे खतरा बन सकती है और कैसे भारत ने इसकी काट निकाली है, ये बताने से पहले हम आपको मालदीव की भौगोलिक स्थिति बताते हैं कि आखिर मालदीव है कहाँ और चीन मालदीव से क्यों नजदीकी बढ़ा रहा है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता। आईएनएस जटायु नौ सैनिक बेस से मालदीव की दूरी महज 524 किलोमीटर है, यानी यहां से चीन और मालदीव पर आसानी से नजर रखी जाएगी। मालदीव को अगर कुछ चीजें खास बनाती हैं तो वो है हिंद महासागर में बसा होना। दरअसल हिंद महासागर से होकर तमाम चीजें ले जाई जा सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है तेल और गैस। ज्यादातर तेल गैस हिंद महासागर से जुड़े तीन अहम पॉइंट से ले जाया जाता है। इनमें से एक जगह है फारस की खाड़ी में मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल जहाजों के जरिए एक से दूसरी जगह पहुंचता है उसका 40% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। दूसरा पॉइंट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमालियन पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बीच मौजूद है। हिंद महासागर में तीसरा मुख्य बिंदु है मलक्का स्ट्रेट। दुनिया के समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से ही गुजरता है। अगर कोई भी देश या फिर देशों का गठबंधन हिंद महासागर में समुद्री व्यापार के तीन प्रमुख रास्तों पर अपना दबदबा बना ले तो वो दूसरों को तकलीफ दे सकता है। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप भी शिपिंग लेन के बगल में हैं, जहां से चीन, जापान और भारत को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अब मालदीव की अहमियत को चीन अच्छी तरह से समझता है और वो अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए मालदीव को साधने में जुटा है।
1: चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम कर रहा है, जहां पर वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो, या बांग्लादेश में चितगांग पोस्ट हो, और अब वो मालदीव में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उनकी नेवी लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है, हिंद महासागर में घूमते रहते हैं और भारत के शिपिंग पर, भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, भारत की रक्षा की तैयारियों पर पूरी तरह से नजर रखते हैं।
2: रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: बच्चे का जन्म का समय उसके भाग्य पर असर डाल देता है। बच्चे का जन्म नक्षत्र क्या उसकी सेहत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का नाम रखने में भी बहुत सावधानियों का पालन करना चाहिए? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: बीते कुछ सालों में चीन ने मालदीव को करोड़ों डॉलर का कर्ज दिया। इनमें से ज्यादातर कर्ज आर्थिक विकास और निर्माण क्षेत्र के लिए ही दिया गया है।
2: हिंद महासागर और अरब सागर से सटे तमाम ऐसे देश जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर चीन ने अपनी कई परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिस वजह से ये देश कहीं ना कहीं चीन के गुलाम भी बनते जा रहे हैं। लेकिन ये भारत की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों में चीन ने अपनी समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा किया है, इसको अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया है, और ये भारत के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपनी नौसैनिक ताकतों को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत ने अपनी नौसेना के लिए

0: पैसिफिक जोन किसी भी देश के समुद्री तट से 200 समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर की दूरी तक होता है। लक्षद्वीप की वजह से भारत को समंदर के बड़े इलाके पर अधिकार मिल गया है, जिससे दूर दूर तक गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकती है। लक्षद्वीप के कवरती द्वीप पर भारतीय नौसैनिक अड्डा है और इसके साथ ही भारत के पास अब INS जटायु के तौर पर लक्षद्वीप पर एक और मजबूत नेवल बेस भी तैयार हो चुका है, जिससे चीन का मुकाबला करने के लिए बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।
1: लक्षद्वीप भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तकरीबन 400 किलोमीटर पश्चिम में है और 36 आइलैंड है। 4200 स्क्वायर किलोमीटर का इसका लगून का एरिया बनता है और जब हम 200 मील की नॉटिकल मील का जब हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जोड़ते हैं तो 400,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारत को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मिलता है, जिसमें भारत के फिशिंग राइट्स रहेंगे, जिसमें हमारे शिपिंग राइट्स रहेंगे, जहां पर हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, ऑयल निकाल सकते हैं। यानी कि भारत के लिए लक्षद्वीप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा है।
0: भारत की तटीय सीमा 9 राज्यों के साथ साथ संघ शासित प्रदेशों दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैली हुई है। इसमें केरल राज्य भारत की सामरिक सुरक्षा का एक बड़ा केंद्र है। कोची केरल का अहम बंदरगाह है और ये सीधे सीधे लक्षद्वीप के साथ भी सटा हुआ है। हिंद महासागर और अरब सागर में स्थित ये इलाका बहुत अहम और इम्पोर्टेंट हो जाता है। दरअसल आज की तारीख में ही नहीं, अगर हम प्राचीन काल से देखें तो ये कहीं ना कहीं तमाम जहाजों की आवाजाही का एक मेन पोर्ट रहा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मौजूद है, जहां सैटेलाइट प्रक्षेपण यान और उससे जुड़ी प्रौद्योगिकियों की डिजाइनिंग और उनका विकास किया जाता है। इसीलिए इन केंद्रों की सुरक्षा के लिए लक्षद्वीप समूह पर भारत की सामरिक क्षमता का मजबूत होना बेहद जरूरी है। लक्षद्वीप समूह की भौगोलिक स्थितियां दरअसल भारत के लिए चिंता पैदा करती हैं। लक्षद्वीप मालदीव से बेहद करीब है, करीब करीब अंदाजा लगाया जाए तो 100 मील की दूरी पर है और मालदीव जिस तरीके से हाल फिलहाल में चीन के इशारों पर चल रहा है, ऐसे में भारत को लक्षद्वीप और खासतौर पर इसके आसपास के इलाकों में अपनी ताकत को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि जरूरत पड़ने पर चीन और मालदीव दोनों को जवाब दिया जा सके। चीन के प्रभाव में तो मालदीव है ही, वहाँ चरमपंथी गतिविधियां भी बढ़ी हैं। हाल के वर्षों में सऊदी अरब और पाकिस्तान से मिलने वाली सहायता के साथ साथ मजहबी कट्टरपंथ का निर्यात भी इन देशों से हो रहा है। दक्षिण एशियाई देशों से ISI में जिहादी भर्तियों का सबसे बड़ा आंकड़ा भी मालदीव से ही रहा है। मालदीव के सैकड़ों द्वीप निर्जन हैं और वहां चरमपंथी ताकतों के मजबूत होने का खतरा बना रहता है, जिसका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने का अंदेशा है।
1: ये देखा जाए तो बहुत अफसोस की बात है कि आज मालदीव में चरमपंथियों ने कब्जा कर लिया है और जिसका कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है और वहाँ के लोकल लोगों को भी ये समझना चाहिए, जो आवाम को वहाँ की आम जनता को समझना चाहिए कि उनके लिए कितना बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। वो ये नहीं समझ रहे कि आज किस प्रकार से जो उनके लीडर हैं, चरमपंथी लीडर हैं, वो चाइना की गोद में जा बैठे हैं और चाइना वहाँ पर उधार देकर उनकी इकॉनमी को पूरी तरह से कब्जा कर रहा है, जिसकी लोम डिप्लोमेसी पूरी दुनिया जानती है और जो वहाँ पर एक आतंकवादी संगठन बढ़ रहे हैं, चरमपंथी आ रहे हैं, जिससे देखा जाए तो भारत की सुरक्षा के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। भारत को इसके लिए बहुत सचेत रहना पड़ेगा।
0: लक्षद्वीप को हाईटेक बना करके मालदीव, मॉरिशस, सिशेल्स, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है। चीन भारत से लगभग 300 किलोमीटर दूर श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह शहर का निर्माण कर रहा है। इसी तरह ये मालदीव के कई द्वीपों को कंट्रोल कर सकता है और वहाँ एक हवाई अड्डा बना रहा है।
2: अमन डोटा से चेन्नई, कोची और विशाखापट्टनम बंदरगाहों का फासला करीब 900

0: से 1500 किलोमीटर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भी करीब 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन ने हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर वॉरशिप बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर्स सर्वे एंड रिसर्च वेसल्स को हिंद महासागर में भेजा है। पिछले 5 साल का अगर डेटा देखें, 2019 में चीन के 29 जहाज हिंद महासागर में घूमते पाए गए। साल 2020 में आंकड़ा बढ़कर 39 हुआ। अगले ही साल यानी 2021 में 45 चीनी जहाजों ने हिंद महासागर में डेरा डाला और फिर साल 2022 में 43 जहाज फिर से इंडियन नेवी की जासूसी के लिए हिंद महासागर में चक्कर काटते नजर आए। 15 सितंबर 2023 तक हिंद महासागर क्षेत्र में 28 चीनी जहाजों का दौरा हो चुका है। रक्षा जानकारों का मानना है कि चीन हिंद महासागर में भारतीय नेवी की जासूसी करता है। चीनी शिप में दूर से छिपकर बातों को सुनने वाले उपकरण लगे हैं और इनकी मदद से जहाज में सैकड़ों किलोमीटर दूर से हो रही बातचीत को भी सुना जा सकता है।
1: देखा जाए तो खबर आती रहती है कि चाइना के जहाज बार बार इंडियन ओशन में हिंद महासागर में घूमते रहते हैं। कभी श्रीलंका के पास जाते, कभी मालदीव की तरफ जाते। जब हमारा मिसाइल प्रशिक्षण होता है तब वो वहां पर डिप्लॉय हो जाते हैं, निगाह रखते हैं या हमारी नेवी की मूवमेंट्स पर निगाह रखते हैं। एक तरह से चाइना की विस्तारवादी नीति का हिस्सा है। वो लगातार अपनी इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत किस प्रकार से अपना सुरक्षा तंत्र बढ़ा रहा है इसके ऊपर भी वो नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं।
0: कोची से 650 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक के कारवार में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। कारवार नौसेना बेस पर प्रोजेक्ट सी बर्ड देश की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य युद्धपोतों के बेड़े का समर्थन और रखरखाव प्रदान करना है। पड़ोसी देशों के ज्यादातर लड़ाकू विमानों की पहुंच से बाहर है और फारस की खाड़ी और पूर्वी एशिया के बीच दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों के बहुत करीब स्थित है। INS कदम्बा भारतीय नौसेना का एक कंबाइंड रणनीतिक नौसेना अड्डा है जो भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक में कारवार के पास बेनगा खाड़ी में स्थित है। ये मौजूदा समय में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक अड्डा है। हिंद महासागर में ही बसा है अंडमान निकोबार और ये मलक्का स्ट्रेट के उत्तरी हिस्से में है, या कहें कि ठीक उत्तर में अंडमान निकोबार ही आता है। दरअसल ये ऐसा इलाका है जो समुद्री जहाजों की आवाजाही के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इलाका काफी संकरा भी है। चीन की टेंशन यहीं से शुरू होती है। इलाका संकरा होने की वजह से अगर भारत यहां पर बढ़त बना लेता है तो कभी भी चीन और भारत के बीच अगर टेंशन होती है तो यहां से जहाजों की आवाजाही पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। अंडमान निकोबार कमान भारत में एकमात्र ट्राइड सर्विस थिएटर कमान है जो देश की सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं के साथ देश के थिएटर कमान के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। यहीं से मलक्का स्ट्रेट पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमान दरअसल एक ऐसी प्रणाली है जो कि जल, थल और नभ तीनों सेनाओं में समन्वय बढ़ाती है। तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से एक साथ रण क्षेत्र में उतर सकती हैं। जरूरत पड़ने पर भी कोई किसी के साथ संपर्क में न भी रहे तब भी एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और इसका मकसद भी सीधे तौर पर यही है। एकीकृत थिएटर कमान बनाने के पीछे सोच ये है कि तीनों सेनाओं की क्षमताओं को अगर एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो युद्ध की स्थिति में उनका प्रदर्शन कई गुना ज्यादा बेहतर हो सकता है। फिलहाल भारत में 3 से 4 थिएटर कमान बनाने पर विचार किया जा रहा है और हर कमान का नेतृत्व एक 3 सितारा अधिकारी को सौंपने की बात हो रही है। आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल, वायुसेना में एयर मार्शल और नौसेना में वाइस एडमिरल 3 सितारा अधिकारी होते हैं। इस योजना के तहत हर थिएटर कमान के पास तीनों बलों के संसाधन होंगे और इन्हें इस्तेमाल करने का अधिकार थिएटर के कमांडर के पास होगा।
2: अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक भारत अपनी सैनिक ताकत में और ज्यादा इजाफा कर रहा है, अपनी नौसेना को अत्याधुनिक बना रहा है। इतना ही नहीं, मॉरिशस के अगलेगा द्वीप को भी भारत विकसित कर रहा है। दरअसल लक्षद्वीप से लेकर अगलेगा द्वीप तक भारत एक संपर्क बिंदु बनाना चाहता है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में सामरिक तौर पर भारत को बढ़त हासिल हो सके।
0: चीन खुद को नई महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। इस तनातनी के चलते हिंद महासागर में चीन अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। चीन ने 2017 में जिबूती में एक नौसैनिक अड्डा बनाया था। जिबूती में अमेरिका, फ्रांस और जापान सहित 8 देशों के नौसैनिक अड्डे हैं। चीन अपनी सामरिक रणनीति के तहत म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव समेत हिंद महासागर से जुड़े देशों में सक्रियता बढ़ा रहा है। चीन ने तंजानिया के बागामोयो में एक कमर्शियल पोर्ट तैयार करने की योजना बनाई है। शक जताया जा रहा है कि वो वहां नौसैनिक अड्डा बना सकता है। साथ ही चीन ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसकी बदौलत वो भारत की घेराबंदी कर सके, और इसके लिए चीन पड़ोसी देशों को साध रहा है। उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर अपने इशारे पर नचाने को मजबूर करता है। चीन भारत के खिलाफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तैयार कर रहा है। अब ये क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये भी समझा देते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल चीन के ऐसे नेवल बेस की चेन है जिससे वो भारत को घेरने की कोशिश में जुटा है। साजिश की इस माला की शुरुआत जिबूती से होती है, जहां चीन ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाया। इस माला का दूसरा मोती है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जहां चीनी फौज तैनात है। वहीं श्रीलंका के हम्बनडोटा पोर्ट को चीन ने 99 साल की लीज पर लिया है। बांग्लादेश के चटगांव में भी चीन ने अपना बंदरगाह विकसित कर लिया है। वहीं म्यांमार के ख्वाकफू बंदरगाह में भी चीन की मौजूदगी खतरे का सायरन है। बंगाल की खाड़ी में मौजूद इस बंदरगाह का इस्तेमाल चीन अपने कमर्शियल समुद्री सुविधा के लिए करता है। रक्षा जानकारों का मानना है कि भविष्य में चीन इसका इस्तेमाल सैन्य अड्डे के तौर पर कर सकता है।
3: चीन एक विस्तारवादी देश है, हमेशा से इसकी ये चाहत रहती है कि अपने बॉर्डर्स इंक्रीज करे, दूसरों की सीमाओं में जाए और अपनी सीमाओं में उनको मिलाए। चाइना का इंडियन ओशन में लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है और वो भारत को नॉर्दर्न बॉर्डर से तो हम सब जानते हैं और डोकलम के बारे में हमने सुना है और हमने जो लद्दाख में देखा वो सब हम जानते हैं। चाइना का वॉर भी हमने देखा है, पर इंडियन ओशन की तरफ से ये जो नया प्रहार है, जो हमें घेरने की कोशिश है, चाहे वो बांग्लादेश में चिटगांव हो या फिर हम्बनडोटा हो श्रीलंका में या फिर ये जो ग्वादर पोर्ट हो कराची के पास, इन सबों को मिला के वो चाहता है कि अपनी नौसेना की शक्ति बढ़ाएं पोर्ट्स एंड हार्बर्स में अपनी, या जिबूती में उसका जो देखते हैं नेवल बेस जो बन रहा है अफ्रीकन कोस्ट में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो यहाँ से वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है इंडोनेशिया को, भारत को प्रभाव में लाना चाहता है और इन देशों के साथ जुड़कर एक स्ट्रिंग जो उन्होंने बनाया है जिसको वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स कर रहे हैं, साथ साथ वो जो मैरिटाइम सिल्क रूट है उसको भी वो इनर्जाइज करके चाहता है कि वो इन जगहों को जोड़ें और यहां से अपनी शक्ति को बढ़ाएं, एक्सटेंड करें अपनी नौसेना की प्रभाव को।
0: चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति के जवाब में भारत अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें एक्स ईस्ट पॉलिसी के तहत सैन्य और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही बंदरगाहों के निर्माण से लेकर सैन्य और नौसेना संबंध को बढ़ावा भी देना है। भारत की इसी बहुआयामी रणनीति का उद्देश्य चीन को जवाबी तौर पर घेरने का है।
2: नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी के तहत भारत लगातार अपनी समुद्री बंदरगाहों को विकसित कर रहा है और इसी के साथ साथ निगरानी प्रणाली को भी इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में अगर कहीं भी चीनी पनडुब्बियों या जहाजों की मूवमेंट होती है तो उसे तुरंत ट्रैक किया जा सके।
0: भारत एशिया के कई देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। साथ ही चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक बेस का विस्तार भी किया जा रहा है। चांगी नेवल बेस सिंगापुर, इंडोनेशिया का संबांग पोर्ट, सुशेल्स का अजम्पशन आइलैंड, ओमान का दुकम बंदरगाह, ईरान का चाबहार पोर्ट बेहद अहम है। साल 2018 में भारत ने सिंगापुर के साथ एक द्विपक्षीय समझौता किया था, जिसके बाद चांगी नेवल बेस का भारतीय नौसेना के इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया। यहाँ भारतीय नौसेना के लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ रिफ्यूलिंग के लिए चांगी बेस का इस्तेमाल कर सकता है। साल 2018 में ही भारत को दुकम बंदरगाह के इस्तेमाल की परमिशन मिली। यहाँ भारत को नेवल एक्सेस है। ग्वादर और जिबूती के बीच मौजूद होने की वजह से इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। सुशेल के अजम्पशन आइलैंड पर भारतीय नौसेना का एक्सेस मौजूद है। इंडोनेशिया का संबांग पोर्ट के जरिए मलक्का स्ट्रेट पर भारत की मौजूदगी बढ़ जाती है। वहीं वियतनाम, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ अपना नेवल कॉरपोरेशन भी भारत ने बढ़ाया है।
3: नेकलेस ऑफ डायमंड एक स्ट्रेटजी है जो भारत को चाइना के इंडियन ओशन के प्रेजेंस के विरुद्ध अपनी एक नीति देता है, और ये नीति एक तरह से भारत का दूसरे विश्व के साथ एक कोलैटरल कोलैबोरेशन, चाहे वो इंडियन ओशन में हो या चाइना के चारों तरफ से, साउथ से इंडिया है ही और एक तरफ से फिर ईरान में चावार पोर्ट का निर्माण या हमारे ओमान पोर्ट में, दोकम में पोर्ट में हमारा जो सामंजस्य बना है, 2015, 16, 17, 18 में ये सारे डेवलपमेंट हुए। प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में के साथ ये सब देशों का दौरा हुआ और फिर पहली बार भारत का प्रधानमंत्री मंगोलिया गया, तो नॉर्थ में भी चाइना को घेरा गया और फिर जापान के बेस में या सवांग में, इंडोनेशिया के बेस देखें या हम वियतनाम की बात करें, इन सब जगहों पे हमने अपना नेवल बेस और एयर कॉरिडोर भी स्थापित किया है ताकि हम एक जो नेकलेस ऑफ डायमंड की पॉलिसी की तहत चाइना को इनसर्किल कर सकें और मिलजुल कर एक सहयोग के साथ चाइना को साउथ चाइना सी में या दूसरे जगहों पे हम काउंटर कर सके ताकि उसकी जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी है उसका अच्छी तरह से काउंटर मेजर हो सके और चाइना को एक अच्छा करारा जवाब जरूरत पड़ने पर मिलते रहे।
0: भारतीय नौसेना देश की सुरक्षा में हर वक्त चौकस रहती है। इंडियन नेवी ने वक्त के साथ अपनी क्षमताओं को काफी विकसित किया है। बदलती तकनीक के साथ तालमेल बिठाया है। सेना को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। भारत न केवल युद्धपोतों के माध्यम से बल्कि समुद्री टोही विमानों के जरिए भी हिंद महासागर में अपनी निगरानी करने के लिए अच्छी स्थिति में है। यही वजह है कि हमारी भारतीय नौसेना से मुकाबला करने की हिमाकत कोई नहीं करता।
2: रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत सिंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छा।
6: रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को फॉर्च्यून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान मिला है। मुंबई में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नीता अंबानी को इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया। सम्मान मिलने पर रिलायंस फाउंडेशन ने बयान जारी कर कहा कि ये सम्मान उनकी दूरदर्शी लीडरशिप, संस्था बनाने और सबके साथ मिलकर विकास करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और पक्के विश्वास का जश्न है। रिलायंस फाउंडेशन ने कहा कि नीता अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस फाउंडेशन ने पूरे भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाया है, जिनमें 2,09,00,000 बच्चे भी शामिल हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में उनकी बेटी ईशा अंबानी ने भी जगह बनाई है, जो 7वें नंबर पर रही।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: क्या बच्चे का जन्म का समय उसके भाग्य पर असर डाल देता है? बच्चे का जन्म नक्षत्र क्या उसकी सेहत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का नाम रखने में भी बहुत सावधानियों का पालन करना चाहिए? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
9: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
8: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
9: They score!
8: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
2: जब कोई खिलाड़ी खेल से बढ़कर एक प्रेरणा बन जाए तो उसे सम्मान देना जिम्मेदारी होता है, और ऐसा ही सम्मान दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। हजारों ड्रोन्स ने मिलकर रोनाल्डो की ऐसी शानदार तस्वीर बनाई कि पूरा नजारा यादगार बन गया। लगा मानो आसमान भी एक लेजेंड के नाम हो गया। सच भी तो है, एक खिलाड़ी जब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन जाए तब उसे ऐसे ही सम्मान मिलते हैं, और ये सम्मान उसकी विरासत को और खास बना देते हैं। सोशल मीडिया पर ड्रोन के बने रोनाल्डो की ये तस्वीरें खूब पसंद आ रही हैं। मोबाइल का चस्का कैसा होता है ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। आजकल हो भी ऐसा गया है कि काम चाहे कोई करो, मोबाइल देखने का काम हर काम के साथ जारी रहना चाहिए। अब इन महाशय को देखिए जरा, पानी से भरे खेत में काम करते हुए मोबाइल देखना नहीं छूटा। जुगाड़ लगा के मोबाइल को देखते हुए किसी को काम करते देखा है कभी? अब सोशल मीडिया पर लोग जनाब को कह रहे हैं, शाबाश बेटा, ऐसे ही लगे रहो। अब सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये लड़के जीतने के लिए मिलकर पूरा दम लगा रहे हैं और आखिरकार उनका टीम वर्क काम आता है और वो टास्क पूरा करके जीत कर ही दम लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस एक्ट को टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं और तस्वीरें देखकर खुश हो रहे हैं। इंडोनेशिया में आई तेज बाढ़ के दौरान यूं तो एक दूसरे की जान बचाने की और रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई, लेकिन एक ऐसी तस्वीर इन दिनों चर्चा में है जो संवेदनशीलता को प्रकृति के एक स्थायी भाव के रूप में सुनिश्चित करती है। यहां तेज बाढ़ में एक हाथी ने बाघ को सहारा दिया। बीच पानी में फंसे बाघ को हाथी ने सूंड की मदद से अपने ऊपर बैठाया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हाथी की संवेदना सबका मन मोह रही है, भावुक कर रही है और इंसान को भी सीख दे रही है कि प्रकृति का सबसे बड़ा पाठ, शक्ति का सर्वोच्च रूप किसी को हराना नहीं बल्कि किसी को बचाना है। अब तक का सबसे बड़ा मानव पिरामिड सोशल मीडिया पर जबरदस्त वाहवाही लूट रहा है। एक बेहद लंबा ऊंचा संकरे मानव जैसा पिरामिड जैसा आकार बनाया गया। तेज हवा में जब ये डगमगाने लगा तब भी किसी तरह ये स्थिर रहता है, एक शख्स भी इस पिरामिड से नीचे नहीं गिरता। एक बार को तो देखने वालों को लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा संतुलन बना लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग इस वीडियो को संतुलन, विश्वास और शानदार टीम वर्क बताकर तारीफ कर रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: भारतीय सेना खरीदेगी 450 काल गुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार। अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय। इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान, अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कल चलाई जा रही 8 स्पेशल ट्रेन, अलग अलग स्टेशन का टाइम टेबल भी किया जारी।

0: महीने चलेगा अभियान। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम। शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के आखिरी 13 मिनट में निश्चित रूप से हारी हुई बाजी जीतकर दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि युगांधर के शब्दकोश से असंभव शब्द के लिए कोई स्थान ही नहीं है।

0: तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना की ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हां, एक ऐसा खिलाड़ी मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 7 जुलाई को कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना मिस्र के खिलाफ करीब करीब मैच हार चुकी थी, लेकिन मैच के आखिरी 13 मिनट में मेसी ने मैदान पर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और वो तूफान मचाया कि मिस्र के खिलाड़ी जीती हुई बाजी गंवाने का तमाशा असहाय रूप से देखते रह गए।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगों युगों में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में बीते 7 जुलाई को लियोनेल मेसी ने एक बार फिर पूरी हनक के साथ ये साबित कर दिया कि 39 की उम्र में भी विरोधियों की जीत के जबड़े से विजय छीन लेने का जज्बा उनके अंदर बरकरार है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में शोला बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगा दी। इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूटकर बिखरने लगा। इंजरी टाइम से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन 92वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। नामुमकिन दिख रही जीत को मुमकिन कर मेसी ने पहली प्रतिक्रिया में इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा खुद की बजाय अपने साथी के सिर बांधने की दरियादिली दिखाई। मेसी ने कहा कि 0-2 से पिछड़ने के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। नॉकआउट में इतनी बड़ी वापसी कतई आसान नहीं थी। रोमेरो के गोल से हमारे अंदर बराबरी कर लेने का आत्मविश्वास जगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने एक्स्ट्रा टाइम से पहले ही मैच जीत लिया। अटलांटा के ऐतिहासिक मैच की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने के बाद इतनी सहज और सरल प्रतिक्रिया मेसी जैसा महानतम खिलाड़ी ही दे सकता है। इस प्रतिक्रिया में मेसी ने ना तो 79वें मिनट में दिए अपने शानदार क्रॉस का और ना ही 83वें मिनट में किए अपने गोल का ही जिक्र किया। हालांकि दिग्गज सॉकर प्लेयर ये मान रहे हैं कि मेसी ने एक जादूगर की तरह आखिरी क्षणों में मैच का पासा पलट दिया। इस मैच को सांसें थाम कर देखने वाले फ्रांस के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर थियरी हेनरी ने मेसी की तारीफ करते हुए कहा कि वो मानव से ऊपर के दर्जे वाले लिविंग विंग हैं। फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते हुए थियरी हेनरी ने कहा कि इसने शुरू में हमें बताया कि वो एक इंसान है। वो इंसान है इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ पेनल्टी किक को मिस कर दिया, 8 में से 4 को, लेकिन इसी मैच में हमें दोबारा याद दिलाया कि वो इंसान नहीं है। थियरी हेनरी जैसा महान स्ट्राइकर मेसी को अगर महामानव मान रहा है तो जाहिर है इस खिलाड़ी में कुछ तो ऐसा है जो फुटबॉल के दूसरे खिलाड़ियों में नहीं है। मेसी की उम्र 39 साल है, लेकिन इस उम्र में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल दागकर वो गोल्डन बॉल की रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए, जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया, लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानव नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया, लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे, लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल ये है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
0: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो मानो वो भगवान बन गए, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारे की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन नावाकिफ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तान आपके दिल को छू लेगी।
1: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे, जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थी। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी, यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था, इलाज था, लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं। पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे, वैसी किसी और बच्चे को ना झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस, लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
0: तो बंदे मेरे दम में आज आपने लियोनेल मेसी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
1: और अब खबरों में बात ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की, जिसकी तैयारी अपने अंतिम और भव्य चरण में है। पूरी धाम इस वक्त भक्ति के रंग में सराबोर है। कारीगरों के हाथ दिन रात भगवान के रथों और उनके परिधानों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, तो वही सुरक्षा एजेंसी भी पूरी तरह से मुस्तैद है।

0: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम और भव्य चरण में है। पूरा पुरी धाम इस समय भक्ति के रंग में सराबोर है। जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजती पुरी की ये धरती, जहां आस्था का ऐसा समंदर उमड़ता है जिसे देखने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हर साल अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और इसी भव्य यात्रा की गवाह बनती है पुरी की रथ यात्रा। इस महायात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सड़कों को दुरुस्त करने से लेकर भगवान के रथ को सजाने का काम जारी है। साथ ही भगवान के लिए भी विशेष वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। 17 हुनरमंद कारीगर दिन रात एक एक कर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के इन दिव्य परिधानों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
1: रथ के ऊपर जो पाराभड़ी होता है उसके ऊपर से जो पोटोल बनता है, पोटोल का वो झालर होता है, वो झालर में पोटोल के बीच में किंभिरिया लगता है। ये टोटली जो काम जो बनता है, ये हम जैसे चाहते हैं जो जगन्नाथ जी का रथ जितना सुंदर हो, उसके लिए जो भी जो सामान होता है, जैसे लेस होता है, जो हमारा फूल होता है।
0: महाप्रभु के विशाल रथों को सजाने में भी भव्यता की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। इन दिव्य रथों को सजाने के लिए इस बार कुल 1250 मीटर विशेष कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें से भगवान जगन्नाथ और भैया बलदेव के रथों के लिए 425-425 मीटर, जबकि देवी सुभद्रा के रथ के लिए 400 मीटर कपड़ा उपयोग में लाया जा रहा है।
1: जो कपड़े का काम होता है, ये सब जैसे जगन्नाथ जी का खाली दर्जी का सेवक होता है वो बात नहीं है, जो भोई सेवक होते हैं, रूपकार सेवक होते हैं, चित्रकार सेवक होते हैं, बहुत सारे सेवक होते हैं, सबको मिला के जगन्नाथ जी का काम होता है। एक कोई एक काम भी नहीं बना सकते, वो स्वयं जगन्नाथ खुद ही माने उनका काम वो खुद ही करते हैं।
0: लाखों करोड़ों भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी बेहद कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुरी में सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि 5 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है।
2: पुलिस अरेंजमेंट हैज बीन डन, इलैबोरेट पुलिस अरेंजमेंट हैज बीन डन फॉर द अपकमिंग रथ यात्रा 2026 एंड मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैज बीन ऑल्सो अरेंज्ड। देयर आर मोर देन 200 बेसिकली 220 प्लाटून ऑफ फोर्सेस हैज बीन डिप्लॉयड along with 19 IPS officers who has been heading the eight different verticals of crowd management, traffic management, inside temple arrangement, outside temple arrangement, control room, rooftop arrangement and other coastal security and railway arrangement. The main purpose and objective of the arrangement is safe, secured and hassle-free darshan of Mahaprabhu Sri Balabhadra, Mahaprabhu Sri Jagannath, देवी सुभद्रा एंड चक्रराज सुदर्शन देयर पहंडी एंड द कार फेस्टिवल्स एंड होल रथ यात्रा द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू हैसल फ्री दर्शन फॉर द डिवोटीज।
0: सुरक्षा कारणों से 16 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक बिना अनुमति के किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। यानी आस्था के सबसे बड़े महोत्सव में सुरक्षा से लेकर भव्यता तक हर एक बारीक पहलू पर पैनी नजर रखी जा रही है। बस अब इंतजार है उस पल का जब महाप्रभु रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात करते हैं कावड़ यात्रा की, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। 30 जुलाई से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है और इस पावन महीने में शिव भक्तों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बनने जा रही है बाबा भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार। कावड़ यात्रा और सावन मेले को लेकर धर्मनगरी में इस समय तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग, हर कोई शिव भक्तों के स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठा है। पुलिस हर स्तर पर तैयारी कर रही है। कावड़ियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है।
0: एक बार फिर फिजाओं में सिर्फ बम बम भोले की गूंज होगी। केसरिया रंग का समंदर होगा और महादेव के भक्तों की आस्था चरम पर होगी, क्योंकि 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इस पावन महीने के स्वागत के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो रही है। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की और मेले के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की गई। हरिद्वार में गंगा के तट पर पूजा अर्चना के साथ ही कांवड़ यात्रा का शुभारंभ लगभग हो चुका है। लाखों करोड़ों शिव भक्तों और कांवड़ियों की आमद को देखते हुए हरिद्वार में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के भव्य कांवड़ मेले को सकुशल और सुगम बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और इस महामेले के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। मेले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस ने शिव भक्तों से एक खास अपील की है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कांवड़ मेले के दौरान कोई भी कांवड़िया अपने साथ त्रिशूल, लाठी डंडे या बेसबॉल बैट जैसी चीजें लेकर नहीं आएगा। इन सभी वस्तुओं पर मेले के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन नियमों का मकसद सिर्फ शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हरिद्वार में इस बार आस्था, सुरक्षा और भव्यता का ऐसा त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। 30 जुलाई से शुरू हो रहे इस सावन महोत्सव में गंगा जल भरने आने वाले शिव भक्तों के स्वागत के लिए अब बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
5: है। बच्चे का जन्म का समय उसके भाग्य पर असर डाल देता है। बच्चे का जन्म नक्षत्र क्या उसकी सेहत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का नाम रखने में भी बहुत सावधानियों का पालन करना चाहिए? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: भारतीय सेना खरीदेगी 450 काल गुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर। जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार। अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय। इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कल चलाई जा रही 8 स्पेशल ट्रेन। अलग अलग स्टेशन का टाइम टेबल भी किया जारी।

0: प्रक्रिया जारी। इंदौर में 22वें पूर्णोदय प्रकल्प का शुभारंभ। मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को बांटी जाएंगी 3,00,000 कॉपियां। 11 अगस्त तक पूरे एक महीने चलेगा अभियान। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम। शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्रगिरी नौसेना में हुआ शामिल। विशाखापट्टनम में हुई कमिश्निंग सेरेमनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में INS महेंद्रगिरी को नौसेना में किया गया शामिल। रक्षा मंत्री ने नेवी को दी बधाई। भारत के प्रोजेक्ट 17A की नीलगिरी कैटेगरी का छठा स्टील फ्रिगेट है INS महेंद्रगिरी। 75% स्वदेशी उपकरणों से है लैस। एंटी सबमरीन सिस्टम और एडवांस मिसाइल से लैस जंगी जहाज है INS महेंद्रगिरी। भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया है डिजाइन। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया निर्माण। INS महेंद्रगिरी में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। INS महेंद्रगिरी पर लगाई जा सकती है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स। जमीन से जमीन और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है ये फ्रिगेट। आधुनिक रडार और सेंसर सूट्स भी है मौजूद। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया जहाज का नाम। शक्ति मजबूती और अटल संकल्प का है प्रतीक। नौसेना को इस साल मिला छठा युद्धपोत INS महेंद्रगिरी। 4,000 जंगी जहाजों के निर्माण का चल रहा है काम। अगले 2 महीने में नेवी को मिल सकते हैं 4 और जंगी जहाज। जनवरी 2025 से अब तक मिल चुके हैं 18 युद्धपोत। मोनाको में एनर्जी बोर्ड चैलेंज के 13वें संस्करण में भारत की सी शक्ति टीम ले रही है हिस्सा। एंड्यूरेंस रेस में शामिल हुई टीम। मोनाको के याच क्लब डी मोनाको में एंड्यूरेंस रेस का आयोजन। 3.5 घंटे चलती है रेस। एनर्जी बोर्ड चैलेंज में भारतीय टीम ने किया शानदार प्रदर्शन। पिछली बार की तुलना में कड़ा है मुकाबला। एनर्जी बोर्ड चैलेंज में प्रिंस एल्बर्ट 2 अवार्ड के लिए चुनी गई भारतीय टीम। पहली बार इस अवार्ड के लिए टीम हुई क्वालिफाई। एनर्जी बोर्ड चैलेंज में भारतीय टीम ने पेश किया बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। हरित तकनीक को बढ़ावा देने की पहल। रक्षा क्षेत्र के मोर्चे से देश के लिए शानदार खबर। भारतीय सेना खरीदेगी 450 काल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर। मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बनेंगे मॉडर्न लॉन्चर। मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर है काल गुस्ताफ MK4। पुराने लॉन्चर की जगह लेगा नया मल्टी रोल MK4 सिस्टम। झज्जर प्लांट में होगा काल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर का निर्माण। SLK और हाईटेक हथियार को कहीं भी लाना ले जाना आसान। सैनिकों की ताकत होगी दोगुनी। डिजिटल फायर कंट्रोल से लैस है ये लॉन्चर जो पहली गोली में ही करेगा सटीक वार। 84mm पुराने गोला बारूद से भी लैस होगा काल। न्यूजीलैंड दौरे के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी की 3 देशों की यात्रा। आज भारत लौटेंगे पीएम मोदी। न्यूजीलैंड दौरे पर पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। करीब 40,000 लोगों से हुए रूबरू। भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ पीएम का हुआ स्वागत। संबोधन से पहले अपने नाम और नंबर 100 वाली जर्सी के साथ देखे प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। भारतीय समुदाय के लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने ऑकलैंड में खेल प्रदर्शनी का किया दौरा। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों और हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के साथ भी की बातचीत। ऑकलैंड में गाला लंच में शामिल हुए पीएम मोदी। न्यूजीलैंड के पीएम ने किया भव्य आयोजन। नीता अंबानी बनी फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में किया गया सम्मानित। नीता अंबानी की दूरदर्शी लीडरशिप को देखते हुए मिला सम्मान। इस इवेंट में बिजनेस से लेकर फाइनेंस टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों की भारत की प्रमुख महिलाएं लीडर्स हुई शामिल। कोलकाता में चीनी ड्रैगन बोट फेस्टिवल 2026 का हुआ भव्य आयोजन। चीन के कोलकाता से कौंसल जनरल

0: वही हुई शामिल। 6 साल के अंतराल के बाद कोलकाता में आयोजित किया गया है यह कार्यक्रम। भारतीय और चीनी युवाओं को एक साथ ड्रैगन बोट रेस में इन्होंने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने दी झारखंड और छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सौगात, 9000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी। हैदराबाद दौरे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कोंडाकल में मेधा बोगा फैक्ट्री और मेधा सर्वो ड्राइवर्स लिमिटेड के नवनिर्माण संयंत्र का दौरा किया। वैष्णव ने स्वदेशी रेल निर्माण और मेक इन इंडिया पहल के तहत कर्मचारियों के कौशल विकास प्रयासों की समीक्षा की। जामनगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई गुजरात की मंत्री रिवावा जडेजा। पीएम मोदी के एक पेड़ माह के नाम अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए इंदौर में विशेष आयोजन, लोगों को पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए किया गया प्रेरित। इंदौर पेड़ लगाने के लिए अनोखी अपील के तहत लोगों को फ्री खिलाया गया पोहा, पिलाई गई चाय, लगी लगी लंबी कतारें। इंदौर में 22वें पुनोदय प्रकल्प का शुभारंभ। मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को फ्री बांटी जाएंगी 3 लाख कॉपियां। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। 11 अगस्त तक पूरे 1 महीने राज्यभर में चलेगा अभियान। गुवाहाटी दौरे पर सीएम बिस्वा असम राज्य चिड़ियाघर और बॉटनिकल गार्डन के आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट की समीक्षा की। चिड़ियाघर को विश्व स्तरीय वन्य जीव सुविधा में बदलना है प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य। इसमें आधुनिक पशु चिकित्सालय और दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी एवियरी बनाने की योजना शामिल। दौरे के दौरान सीएम ने लोगों से खिंचवाई सेल्फी, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अब गलत लेन में गाड़ी चलाने पर कटेगी जेब। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे अब लेन ड्राइविंग का होगा चालान। पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर लागू होगा लेन सिस्टम। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस ने उठाया कदम। कैमरों के जरिए किया जाएगा चालान। एक्सप्रेसवे पर बंद पड़े सभी कैमरे को भी बदलकर लगाए जा रहे हैं आधुनिक हाईटेक कैमरास। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय। अधिकतम कीमत से ज्यादा रेट पर नहीं बेची जा सकेंगी दवाएं। डायबिटीज, हाई बीपी, दिल की बीमारी, इन्फेक्शन, आंखों की बीमारी, सांस की तकलीफ और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाएं शामिल। पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज। समस्तीपुर रेल मंडल के अलग अलग स्टेशन से चलेगी 8 परीक्षा स्पेशल ट्रेन। एयर इंडिया ने किया ऐलान, कल से जोधपुर एयरपोर्ट से चलने वाली सभी उड़ानें एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग से होंगी संचालित। यात्रियों को ज्यादा आराम और बेहतर ऑपरेशनल क्षमता देता है 23,000 वर्ग मीटर से ज्यादा में फैला यह टर्मिनल। आज कुशीनगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, 525 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर में रामबन के चंद्रकोट में सीआरपीएफ ने लगाया 61 फीट का हाई मास्ट राष्ट्रीय ध्वज। चेनाब नदी के किनारे लहराया तिरंगा। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा से पहले भव्य तैयारियां, विशाल रंगोली बनाने में जुटे कलाकार। रथ यात्रा से पहले विशेष वस्त्र तैयार करने में जुटे दर्जी और कारीगर, 17 कारीगर कर रहे हैं निर्माण। रथ को सजाने के लिए 1250 मीटर कपड़े का इस्तेमाल, जगन्नाथ जी और बलदेव जी के रथों के लिए 425 मीटर, सुभद्रा जी के लिए 400 मीटर कपड़े का होता है उपयोग। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, इस बार 16 जुलाई को निकलेंगे रथ। पुरी में 5 किलोमीटर का दायरा नो फ्लाइंग जोन घोषित, 16 जुलाई से 27 जुलाई तक बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, 30 जुलाई तक श्रीराम मंदिर परिसर में सभी निर्माण कार्य हो जाएंगे पूरे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बयान, मंदिर के निर्माण कार्य की कर ली गई है समीक्षा, अब सिर्फ 2 कार्य पूरे किए जाने बाकी। मंदिर परिसर में स्मारक के रूप में संरक्षित पुराने राम मंदिर में 24 घंटे जलने वाली ज्वाला की व्यवस्था होनी है बाकी। श्रीराम मंदिर परिसर में 2 स्मारक का काम जुलाई के अंत तक हो जाएगा पूरा, 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का काम। मंदिर परिसर के बाहर ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य नवंबर से दिसंबर तक हो सकता है पूरा। रामकथा संग्रहालय की 20 गैलरी की स्टोरी लाइन भी तैयार। बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में उमड़ रहे श्रद्धालु आस और विश्वास के साथ बना हुआ है चारधाम यात्रा का उत्साह। चमोली में यात्रा मार्ग सुचारू होने से श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी, नहीं हो रही है कोई परेशानी। बारिश के कारण बद्रीनाथ के पास बढ़ रहा अलकनंदा नदी का जलस्तर, पूरे उफान पर बह रही है नदी। अब तक लगभग 15 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं बद्रीनाथ धाम में दर्शन, रोजाना 9 से 10 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं धाम। रुद्रप्रयाग सहित केदारनाथ में कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश, तीर्थयात्रा भी है जारी। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट, जबकि 8 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में बारिश, तापमान में गिरावट के साथ खुशगवार हुआ मौसम। बेगूसराय में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, घरों में घुसा पानी, सड़कों पर जलभराव में ट्रैफिक जाम। पटना में भी कुछ घंटों की बारिश से जगह जगह भरा पानी, लोगों को घुटनों तक भरे पानी को पार करने में मुश्किल। ओडिशा में भी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, भुवनेश्वर में भारी बारिश के बीच आंधी की चेतावनी। एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने जारी किया अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द साइकिल ऑफ लव का ट्रेलर, फिल्म की कार्यकारी निर्माता है प्रियंका। दिल्ली के कलाकार पीके महानंदिया पर आधारित है डॉक्यूमेंट्री की कहानी। सच्चे प्यार की तलाश में भारत से स्वीडन तक 6000 मील की यात्रा पर साइकिल से निकले थे महानंदिया। वेब सीरीज रक्तांचल 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। क्रांति प्रकाश झा और निकितन धीर अपनी पहली फिल्म की भूमिकाओं में आएंगे नजर। 16 जुलाई को अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में स्ट्रीम होगी वेब सीरीज रक्तांचल 3। करण पटेल, माही गिल, राजेश कुमार और विक्रम कौचर भी अहम भूमिकाओं में। शादी के बंधन में बंधी टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम एक्ट्रेस पलक, बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना संग लिए साथ फेरे। एक्टर शाहरुख खान ने दिल्ली में खरीदा आशियाना, पॉश इलाके पंशील पार्क में उस पूरी बिल्डिंग के बने मालिक जहां शादी के बाद की थी अपनी जिंदगी की शुरुआत। शाहरुख और गौरी के लिए खास है ये घर, इमारत के बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पर पहले से थे मालिकाना हक, अब दूसरे और तीसरे फ्लोर के भी बने मालिक। हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट देखने पहुंची प्रियंका चोपड़ा, महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल्स मैच के दौरान फ्रंट में बैठी आई नजर। खोखो गॉफ और कैरोलिना के बीच मुकाबले के दौरान प्रियंका ने स्टेडियम से ही अपने पति निक जोनस को किया वीडियो कॉल, उन्हें कराया विंबलडन का लाइव टूर। दूसरी बार मां बनेंगे दीपिका पादुकोण, सोशल मीडिया पर दी जानकारी, फैंस के बीच खुशी की लहर। विंबलडन फाइनल में सिनर की दमदार एंट्री, नंबर वन यानिक सिनर ने नोवाक को सीधे सेंटों में हराकर लगातार दूसरी बार बनाई जगह। रविवार को होगा विंबलडन फाइनल मुकाबला, यानिक सिनर से भिड़ेंगे अलेक्जेंडर ज्वेरेव। महाराष्ट्र के 31 साल के हाई जंपर सर्वेश कुशारे ने डायमंड लीग में रचा इतिहास, मोनाको मीच में तीसरा स्थान हासिल किया। डायमंड लीग में पोडियम पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर और ओवरऑल चौथे भारतीय एथलीट बने, इससे पहले नीरज चोपड़ा, विकास गौड़ा और मुरली श्रीशंकर के नाम ये उपलब्धि। अनिमेश कुजूर बने विदेश में सबसे तेज 100 मीटर दौड़ने वाले भारतीय, जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंज में 10.14 सेकंड में पूरी की 100 मीटर दौड़। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा स्पेन, दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराया। रोमांचक मुकाबले में स्पेन के लिए फाबियन रुइज और मिखेल मैरिनो ने गोल किए, बेल्जियम की ओर से चार्ल्स डी कैटेलारे ने एकमात्र गोल दागा। वर्ल्ड कप के अंतिम चार में पहुंची स्पेन की टीम, सेमीफाइनल्स में फ्रांस से होगा मुकाबला। इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी है स्पेन की टीम, अब तक 6 मुकाबलों में से 5 में जीते, एक ड्रॉ रहा। स्पेन की टीम के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज, लगातार 3600 मैच बिना हार के पूरा कर अर्जेंटीना की बराबरी की। लंदन में फैंस के सर पर चढ़ा अमेरिकी सिंगर पिटबुल का सिग्नेचर लुक, बनाया अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। भीषण गर्मी के बावजूद सड़कों और पार्क में दूर दूर तक बाल कैप में नजर आए लोग। बच्चों और महिलाओं ने भी पहनी बाल कैप। स्टार सिंगर पिटबुल के लुक को कॉपी करते हुए देखे फैंस। दुनिया भर में बढ़ रहा है पिटबुल के लुक का क्रेज। लंदन के बीएसटी हाइड पार्क में पिटबुल के समर कॉन्सर्ट में बना रिकॉर्ड। हजारों फैंस ने बाल कैप पहनकर सबसे बड़े आयोजन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पिटबुल ने भी बाल कैप पहनकर बढ़ाया फैंस का जोश। अपने हिट गानों के पर दी परफॉर्मेंस। तिब्बत में ऐतिहासिक पोटाला पैलेस के सालाना रंगरोगन का काम शुरू। 300 साल से चली आ रही है परंपरा। दूध शहद और केसर मिले पेंट से की जाती है पेंटिंग। चीन के चोंगकिंग में गर्मी से बचाव के लिए सड़कों पर लगाए गए विशाल पंखे। राहगीरों को मिल रही है सिराहत। चीन में जुलाई के महीने में तेज गर्मी है जारी। सड़कों से गुजरने वालों की सुविधा के लिए किया गया खास इंतजाम। चीन में स्पेस टेक्नोलॉजी में हासिल की शानदार कामयाबी। पहली बार लॉन्ग मार्च 10B रियूजेबल रिकवरी रॉकेट किया लॉन्च। चीन ने दुनिया में पहली बार लॉन्च लॉन्ग मार्च 10A रॉकेट के पहले स्टेज को समुद्र में नेट से किया रिकवर। चांद पर मानव मिशन की राह होगी और आसान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
3: Swing and a foul out of play off to the left.
2: Big 12 Radio.
4: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
2: Talk Sport.
5: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
2: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
1: खबरें तो आती हैं। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: सावन की शुरुआत में तो अभी समय है, लेकिन बाबा बद्री विशाल के धाम में इन दिनों मानसूनी बारिश मौसम को और भी सुहाना बना रही है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, लेकिन कहते हैं ना कि जब बुलावा बाबा का हो तो मौसम की बंदिशें बेअसर हो जाती हैं। खराब मौसम के बावजूद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं माणा गांव में भी रौनक बिखरी हुई है। पौराणिक स्वर्गारोहण मार्ग पर भी पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं।

0: चारों तरफ पहाड़ और काले घने बादल, रिमझिम बरसती बूंदे और फिजाओं में घुली ठंडक, बद्रीनाथ धाम का ये सुहाना और अलौकिक मौसम इन दिनों हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। मौसम भले ही सर्द है, लेकिन भक्तों के दिलों में आस्था की गर्मी साफ देखी जा सकती है। बद्रीनाथ में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस अनवरत बारिश की वजह से पतित पावनी अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है, लेकिन बाबा के दर्शन की चाह में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद कम नहीं हो रही। साफ है कि खराब मौसम पर भक्तों की अटूट आस्था भारी पड़ रही है।
1: बद्रीनाथ धाम में बीते तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है, वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहाँ पे नरसिंह शिला बारह शिला है, वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है, पूरा पानी बढ़ता जा रहा है। पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है, जलस्तर है, वो बढ़ रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में अभी तक यात्रा मार्ग सुचारू होने से श्रद्धालु बहुत उत्साहित है, वे बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। हालांकि मानसून का असर यात्रा पर जरूर दिखाई दे रहा है, यात्रा में जो कमी है वो देखने को मिल रही है, लेकिन जो श्रद्धालु इस समय पहुंच रहे हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पे, सुगम दर्शन जो मंदिर समिति द्वारा और तमाम व्यवस्थाएं हैं, वो इस समय सबसे बेहतर व्यवस्थाएं इस समय हैं।
0: बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं और सैलानियों का कारवा सीधे रुक कर रहा है देश के पहले गाँव माना की तरफ, जो इस समय पूरी तरह बादलों की आगोश में लिपटा हुआ है। देश के कोने कोने से सैलानी जादुई और सुहाने मौसम का गवाह बनने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। धुंध की सफेद चादर के बीच ठंडी हवाएं सैलानियों का रोमांच दोगुना कर रही हैं। कोई इन वादियों को कैमरे में कैद कर रहा है, तो कोई इस हसीन मौसम को जी भर के महसूस कर रहा है।
2: बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया स्थान है। हिंदुस्तान विश्व फेल है इसके आगे। हम विश्व के बारे में कहते हैं कि स्विट्जरलैंड ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी मातृभूमि, हमारी जन्म स्थान जो है, हमारे हिंदुस्तान है, वो ही स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा अच्छा है।
3: मैं इस जगह को ज्यादातर वीडियोस में देखती थी और वीडियो से बहुत ज्यादा सुंदर ये अब मुझे लग रहा है, और मतलब मुझे अभी भी यही लग रहा है कि मैं यहाँ सपना ही देख रही हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत ब्यूटीफुल है।
0: माना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पौराणिक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इसी गांव से होकर गुजरता है वो ऐतिहासिक स्वर्गारोहण मार्ग, जिससे होकर पांडव सशरीर स्वर्ग की ओर गए थे। आज इस कोहरे और धुंध के बीच जब सैलानी इस प्राचीन मार्ग की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो उन्हें प्रकृति के साथ साथ इतिहास और अध्यात्म का एक अनोखा एहसास होता है।
4: बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है। जो हम रह रहे हैं पॉल्यूशन में, उससे बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है सांस आ रही है, सांस आ रही है।
5: यहाँ का वातावरण की आप पूछो तो धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग जाने की सीढ़ी आज हमने उस चीज को देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं उस चीज का, तो विश्वास कर इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है।
0: एक तरफ जहाँ बद्री विशाल के दर पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति की ये बेमिसाल खूबसूरती सैलानियों का दिल जीत रही है। मौसम भले ही इम्तिहान ले रहा हो, लेकिन देवभूमि का ये सफर यादगार बन रहा है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: क्या बच्चे का जन्म का समय उसके भाग्य पर असर डाल देता है? बच्चे का जन्म नक्षत्र क्या उसकी सेहत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का नाम रखने में भी बहुत सावधानियों का पालन करना चाहिए? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture.
9: Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
10: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
13: भारतीय सेना खरीदेगी 450 काल गुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार। अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय। इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान, अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कल चलाई जा रही 8 स्पेशल ट्रेन, अलग अलग स्टेशन का टाइम टेबल भी किया जारी। इंदौर में 22वें पुण्यदय प्रकल्प का शुभारंभ। मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को बांटी जाएंगी 3,00,000 कॉपियां। 11 अगस्त तक पूरे एक महीने चलेगा अभियान। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम। शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आज शो में बात करेंगे बच्चे के जन्म होने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या बच्चे का नक्षत्र भी महत्वपूर्ण होता है, किस नक्षत्र में जन्मे हुए बच्चों के लिए रखनी होती है विशेष सावधानी, इसके बारे में भी जानेंगे। तो वहीं कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव से लेकर बच्चे के नाम रखते समय क्या करें विचार, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर कोई विवाह संबंधी मुकदमा आपका चल रहा है, सेपरेशन का, मेंटेनेंस का, ऐसा कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाइएगा। अगर आप ऐसा करके प्रार्थना करेंगे तो उचित तरीके से आपका मुकदमा हल हो जाएगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कि 12 जुलाई 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 12 जुलाई 2026 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:29 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 8:29 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:06 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि बच्चे के जन्म के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे के जन्म से जुड़ी हुई सावधानियां कौन सी हैं और बच्चे के जन्म के समय की स्थिति क्या होती है, कौन सी बातें बच्चे के जन्म के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, बच्चे के जन्म के समय में किन बातों का ध्यान रखें। वैसे तो सामान्य स्थितियों में आप जन्म का समय निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि अगर सर्जरी से संतान होने वाली है तो लोग समय डिसाइड करते हैं। अगर अवसर मिले तो समय सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर समय का चुनाव करना चाहिए। किसी बच्चे का जन्म अगर मध्य दोपहर का है या मध्य रात्रि का है तो इसको सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि ये दोनों समय अभिजित मुहूर्त के समय होते हैं और अभिजित में जन्म लेने वाले बच्चे की कुंडली के दोष कम हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय जिन बच्चों का जन्म होता है वो बच्चे के लिए कदापि अच्छा नहीं होता। सूर्यास्त के समय अगर बच्चे का जन्म होगा तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे को जीवन भर उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, जीवन में उतार चढ़ाव की संभावना बन जाती है और ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार लगी रहती हैं। वैसे तो देखिए मोटे तौर पे आप समय डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 4 मिनट के आसपास नवमांश बदल जाता है, तो आप बहुत ज्यादा समय डिसाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि नवमांश तो आपके कंट्रोल में है नहीं। आप 4 मिनट तक का एक्यूरेट टाइम तो ला ही नहीं सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप मोटा समय भी डिसाइड कर रहे हैं कि 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय, तो उसमें एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जन्म का समय सूर्यास्त के आसपास का डिसाइड मत करिएगा।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या बच्चे का जन्म नक्षत्र भी महत्वपूर्ण होता है और इसको कैसे समझा जा सकता है।
1: एक तो हो गया बच्चे का जन्म समय, दूसरा होता है बच्चे का जन्म नक्षत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे का सारा जीवन इस जन्म नक्षत्र पर और इसके स्वामी पर आधारित होता है। क्या महत्व है इसका? देखिए, बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही बच्चे का जन्म नक्षत्र है। अगर बच्चे का जन्म किसी मूल नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल या रेवती, ये 6 मूल नक्षत्र हैं, तो अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में है तो ये ध्यान रखिए कि शुरुआत में बच्चे के स्वास्थ्य में और उसकी मानसिक स्थिति में समस्या आ सकती है। तो अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो तुरंत मूल नक्षत्र की शांति जितना जल्दी हो करवा लेना चाहिए, और अगर मूल नक्षत्र का जन्म नहीं है तो आप ये देखिए कि वो नक्षत्र कौन सा है, उसका स्वामी कैसा है, और उसकी स्थिति के आधार पर आपके बच्चे का जीवन आगे बढ़ेगा।
0: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशि फल क्या है।
1: कर्क राशि, करियर में सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आपके सवाल का। सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं, पंडित जी आप आज का सबसे पहला सवाल किसका लेना चाहेंगे?
1: जी, आज का पहला प्रश्न कुमुद जी ने हमें लिखा है, और कुमुद जी देहरादून उत्तराखंड से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 नवंबर 1994। जन्म का समय दोपहर में 2:10। जन्म का स्थान है नैनीताल। कुमुद कह रही हैं कि मेरा विवाह अभी 2 साल पहले हुआ है, लेकिन मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तो क्या मेरी शादी चल सकेगी या सेपरेशन हो जाएगा? कुमुद, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। आपके वैवाहिक जीवन में इतनी दिक्कतें नहीं हैं, थोड़ा एडजस्ट करके अगर आप चलें तो मुझे लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन बचेगा भी और चलेगा भी। अक्टूबर 2026 तक थोड़ी शांति रखें, इसके बाद आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और अब वक्त हो चला है दूसरे सवाल का। पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका रहेगा?
1: जी, अगला प्रश्न नीलकंठ जी ने हमें लिखा है, और नीलकंठ जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटी की जन्म तारीख है 23 अक्टूबर 1990, रात में 8:15, जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी की नौकरी अच्छी है, करियर अच्छा है, और फिलहाल बेंगलोर में एक बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रही है, लेकिन तमाम प्रयास करने के बावजूद उसकी शादी नहीं हो पा रही है। तो मेरी बेटी का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? नीलकंठ जी, आपकी पुत्री के विवाह का योग चल रहा है और साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में इनका विवाह होने की संभावना बन रही है। आप ऐसा करिए, इनको एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल धारण करवाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि बच्चे का चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण होता है और इस पर कैसे विचार करना चाहिए।
1: देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग आयु में अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है, उनकी कुंडली की दशाओं के अलावा। कोई भी बच्चा जन्म लेता है, मोटे तौर पर जन्म से लेके 12 साल तक उसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो कोई भी बच्चा जन्म लेता है, चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण है ये भी जानते हैं। देखिए, बच्चे के चंद्रमा से बचपन में उसके आयु और उसके स्वास्थ्य का निर्धारण होता है। अगर बच्चे का चंद्रमा खराब स्थान में है, 6, 8, 12 में है, चंद्रमा अस्त है या बुरी तरह पापक्रांत है, तो बच्चे को शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर चंद्रमा बाला रिष्ट योग बना रहा है, यानी बचपन में अरिष्ट की, अशुभता की संभावना बना रहा है, तो वो बच्चे की आयु के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में बच्चे की आयु रक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपाय करना चाहिए। देखिए, कोई भी बच्चा हो, जन्म से लेके पहले 4 साल वो अपनी मां के भाग्य से चलता है, उसके बाद के 4 साल वो अपने पिता के भाग्य से चलता है, और 8 से लेके 12 साल तक वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार चलता है। तो 12 साल तक सामान्यतः कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि जन्म के समय जब पत्री बने तो उसमें चंद्रमा को जरूर देख लिया जाए, और चंद्रमा अगर नकारात्मक है या निगेटिव सिचुएशन में है तो माता पिता को उस चंद्रमा के लिए उपाय करना चाहिए, ताकि बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर उसका बुरा असर ना पड़े।
0: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: तुला राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, व्यर्थ की दौड़ भाग बनी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और अब जान लेते हैं कि बच्चे का नाम कितना महत्वपूर्ण होता है और इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: एक बात जो और महत्वपूर्ण है कि बच्चे के जन्म लेने के साथ उसका नाम रखने की, नाम के लिए तमाम कोशिश, तमाम रिसर्च शुरू हो जाती है, और आजकल तो ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं जिनका अर्थ परमात्मा को भी शायद नहीं पता होगा। अंट शंट कोई भी नाम रख दिए जाते हैं, और इसलिए रख दिए जाते हैं कि लोग समझते हैं कि यूनिक है। अब यूनिक के चक्कर में कोई भी नाम रख लेंगे क्या? बच्चे के नाम के लिए क्या ध्यान रखना होगा? देखिए, बच्चे की राशि का जो अक्षर है, बच्चे का जो नक्षत्र है, उसके चार चरण हैं। जिस चरण में उसका जन्म हुआ होगा उससे शुरू होने वाला अक्षर उसका नाम, उसकी राशि का नाम होगा। तो बच्चे की जो राशि के नाम का अक्षर है उससे बच्चे का नाम मत रखिएगा। बच्चे की कुंडली में जो ग्रह मजबूत है उससे संबंधित अक्षर से बच्चे का नाम रखना चाहिए, और ऐसा नाम मत रखिए जिसका कोई सर पैर ना हो। आजकल ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिसका मतलब डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। तो जिन नामों का कोई अर्थ ना हो ऐसे नाम बिल्कुल मत रखिए। सरल नाम, साधारण नाम, अच्छे नाम आपको हिंदी संस्कृत शब्दकोश में मिल जाएंगे। लेकिन अब इसका मतलब नहीं कि कुछ भी नाम रख दिए, कहीं भी नाम रख दिए। नाम सोच समझ के रखिए, क्योंकि वो जीवन भर बच्चे के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। अगर देवी देवता के नाम पर बच्चे का नाम रखते हैं तो नाम के उच्चारण में सावधानी रखिए। बच्चे का नाम राम है, उसको रामू या रामा मत करिए। बच्चे का नाम कृष्ण रखा है तो किशनवा मत कर दीजिए। यानी अगर देवी देवता के नाम पे बच्चे का नाम है तो नाम तरीके से, शांति से, स्पष्टता से बोलिए। ऊट पटांग नाम उसको मत बनाइए।
0: और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशि फल क्या है।
1: मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा, ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, चिंताएं थोड़ी कम होंगी, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, चोट चपेट से सावधान रहें। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में भी कोई दुविधा है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर हमें मेल करना होगा। पंडित जी, अब तीसरा सवाल आप किसका लेंगे?
1: जी, अगला प्रश्न अभिजीत जी ने हमें लिखा है और अभिजीत जी हमें मेल लिखते हैं पश्चिम बंगाल से। इनकी जन्म की तारीख है 18 फरवरी 1980, जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है नदिया, पश्चिम बंगाल। अभिजीत जी कह रहे हैं कि काफी समय से मैं प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाया हूं। तो मुझे प्रॉपर्टी का फायदा कब तक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अभिजीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप प्रॉपर्टी इसी साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में खरीद पाएंगे। बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदने की संभावना बन रही है। आपको सलाह ये है कि आप लोन बहुत ज्यादा मत लीजिएगा और अपनी सामर्थ्य से ऊपर जा करके पैसा मत लगाइए, सोच समझ करके ही प्रॉपर्टी खरीदिएगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आपका चौथा और अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी, आज का चौथा सवाल किसका रहेगा?
1: जी, आज का अंतिम प्रश्न सरला जी ने हमें लिखा है और सरला जी हमें जयपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 जुलाई 1973। जन्म का समय सुबह के 7 बजे। जन्म का स्थान है बांदीकुई, राजस्थान। ये कह रही हैं कि मेरा पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है, पति का बच्चों का कोई सपोर्ट नहीं है, हमेशा परिवार में तनाव बना रहता है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा पारिवारिक जीवन और मानसिक स्थिति बेहतर बनी रहे। सरला जी, आपकी कुंडली में जो राहु और चंद्र की स्थिति है वो ये कहती है कि तनाव हमेशा बना रहता है, बिना किसी वजह के छोटी छोटी बातों पर आप परेशान होती हैं और वो तनाव का एक बड़ा कारण बन जाता है। आप ऐसा करिए, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और अगर पाठ करना कठिन लगता है तो मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिएगा। दूसरे नंबर पर एक मोती, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और अब बात होगी उनकी जिनका जन्मदिन 12 जुलाई को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे। और अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।

0: आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर और धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, स्वास्थ्य मध्यम दिखाई दे रहा है, अविवाहितों का विवाह इस साल में हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर शिव जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो मूल नक्षत्र की शांति हो जाने तक क्या उसके पिता को उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए? देखिए, कुल मिलाकर 6 मूल नक्षत्र हैं, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। हर नक्षत्र के साथ ये बात लागू नहीं होती, ज्यादातर ये बात लागू होती है अश्विनी और अश्लेषा नक्षत्र के साथ।
1: और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं कि 12 जुलाई 2026 का शुभ पहर क्या रहने वाला है।
0: दिनांक 12 जुलाई 2026 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में चली आ रही बाधा दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 12 जुलाई रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब जानेंगे पंडित जी से आज की गुडलक राशि के बारे में।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है मकर। इस समय मकर वाले अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करें और विवाह होने के मामले में और करियर के मामले में इनको विशेष लाभ हो सकता है।
1: और चलिए अपने आखिरी पड़ाव में आगे बढ़ते हैं और पंडित जी जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको बार बार मित्रों से धोखा मिल रहा हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू करिए। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए या गाय को खिलाइए तो बेहतर होगा।
1: तो पंडित जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-Pop to start listening now.
1: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
3: और अब खबरों में बात ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की, जिसकी तैयारियां अपने अंतिम और भव्य चरण में है। पूरी धाम इस वक्त भक्ति के रंग में सराबोर है। कारीगरों के हाथ दिन रात भगवान के रथों और उनके परिधानों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, तो वहीं सुरक्षा एजेंसीज भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं।

0: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम और भव्य चरण में है। पूरा पुरी धाम इस समय भक्ति के रंग में सराबोर है। जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजती पुरी की ये धरती, जहां आस्था का ऐसा समंदर उमड़ता है जिसे देखने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हर साल अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और इसी भव्य यात्रा की गवाह बनती है पुरी की रथ यात्रा। इस महायात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सड़कों को दुरुस्त करने से लेकर भगवान के रथ को सजाने का काम जारी है, साथ ही भगवान के लिए भी विशेष वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। 17 हुनरमंद कारीगर दिन रात एक एक कर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के इन दिव्य परिधानों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
1: रथ के ऊपर जो पाराभड़ी होता है उसके ऊपर से जो पोटोल बनता है, पोटोल का उस झालर होता है, वो झालर में पोटोल के बीच में किंभिरिया लगता है। ये टोटली जो काम जो बनता है, ये हम जैसे चाहते हैं जो जगन्नाथ जी का रथ जितना सुंदर हो, उसके लिए जो भी जो सामान होता है, जैसे लेस होता है, जो हमारा फूल होता है।
0: महाप्रभु के विशाल रथों को सजाने में भी भव्यता की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। इन दिव्य रथों को सजाने के लिए इस बार कुल 1250 मीटर विशेष कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें से भगवान जगन्नाथ और भैया बलदेव के रथों के लिए 425-425 मीटर, जबकि देवी सुभद्रा के रथ के लिए 400 मीटर कपड़ा उपयोग में लाया जा रहा है।
1: जो कपड़े का काम होता है, ये सब जैसे जगन्नाथ जी का खाली दर्जी का सेवक होता है वो बात नहीं है, जो भोई सेवक होते हैं, रूपकार सेवक होते हैं, चित्रकार सेवक होते हैं, बहुत सारे सेवक होते हैं, सबको मिला के जगन्नाथ जी का काम होता है। एक कोई एक काम भी नहीं बना सकते, वो स्वयं जगन्नाथ खुद ही मैंने उनका काम वो खुद ही करते हैं।
0: लाखों करोड़ों भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी बेहद कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुरी में सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि 5 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है।
2: पुलिस अरेंजमेंट हैज बीन डन, इलैबोरेट पुलिस अरेंजमेंट हैज बीन डन फॉर द अपकमिंग रथ यात्रा 2026 एंड मल्टीलेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैज बीन आल्सो अरेंज्ड। देयर आर मोर देन 220 प्लाटून ऑफ फोर्सेस हैज बीन डिप्लॉयड अलोंग विद 19 आईपीएस ऑफिसर्स who has been heading the eight different verticals of crowd management, traffic management, inside temple arrangement, outside temple arrangement, control room, rooftop arrangement and other coastal security and railway arrangement. The main purpose and objective of the arrangement is safe, secured and hassle-free darshan of Mahaprabhu Sri Balabhadra, Mahaprabhu Sri Jagannath, Devi Subhadra and Chakraraj Sudarshan. Their pahandi and the car festivals and whole Ratha Yatra, the main objective is to hassle-free darshan for the devotees.
0: सुरक्षा कारणों से 16 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक बिना अनुमति के किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। यानी आस्था के सबसे बड़े महोत्सव में सुरक्षा से लेकर भव्यता तक हर एक बारीक पहलू पर पैनी नजर रखी जा रही है। बस अब इंतजार है उस पल का जब महाप्रभु रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात अयोध्या के श्रीराम मंदिर की। 30 जुलाई तक श्रीराम मंदिर का काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी मंदिर पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगा। हालांकि 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का काम चलता रहेगा और राम कथा संग्रहालय का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, लेकिन ये दोनों काम श्रीराम मंदिर परिसर से बाहर चलते रहेंगे।
4: का बड़ा केंद्र अयोध्या का राम मंदिर 30 जुलाई को संपूर्णता पर पहुंच जाएगा, यानी श्री राम मंदिर के सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। निर्माण कार्य की समीक्षा की गई और अब सिर्फ दो काम पूरे किए जाने बाकी हैं। पहला, एक पुराने राम मंदिर में 24 घंटे जलने वाली ज्वाला की व्यवस्था बाकी है। जबकि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दूसरा स्मारक है जो 30 जुलाई तक पूरा हो जाएगा।
5: निर्माण कार्य में मुख्य रूप से दो कार्य अभी पूरे किए जाने हैं। एक जो कि पुराना मंदिर था जिसका स्मारक है, उसे हम लोग पूरा करेंगे। उसमें केवल जो ज्वाला 24 घंटे होनी चाहिए उसकी व्यवस्था बाकी है, बाकी सब निर्माण हो चुका है। आप दूसरा एक पूर्ण स्मारक है जो कि अब अपनी लगभग उसको आप यह मान करके चलें कि जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। वह मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य में अंतिम कार्य है। इस प्रकार 20 जुलाई तक मंदिर का सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा।
4: इसके अलावा अयोध्या में दो काम चलते रहेंगे, पहला 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का कार्य और दूसरा मंदिर परिसर के बाहर ऑडिटोरियम का। इसके अलावा राम कथा संग्रहालय जिसमें 20 गैलरी हैं, इसकी स्टोरी लाइन बन गई है। अब उसका टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो किस प्रकार का होगा उस पर अंतिम रूप से निर्णय लेना बाकी है।
5: दो कार्य चलते रहेंगे, एक बाउंड्री वॉल है 4 किलोमीटर लंबी, वह कार्य चलेगा, और मंदिर परिसर के बाहर जो ऑडिटोरियम है उसका कार्य लगभग नवंबर दिसंबर तक होगा। इसके अतिरिक्त जो संग्रहालय है, राम कथा संग्रहालय, वह कार्य 20 गैलरी है, 20 गैलरी में सभी अपने अपने स्थिति स्क्रिप्ट वगैरह आप जानते हैं उसके क्या क्या स्टेप होते हैं, तो उसकी जो स्टोरी लाइन है वो अब बन गई है और अब उसका टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो किस प्रकार का होगा उस पर अंतिम रूप से एक तरीके से निर्णय दिया जाएगा।
4: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उम्मीद है 30 सितंबर तक बाउंड्री वॉल का काम पूरा हो जाएगा, जबकि राम कथा संग्रहालय का सारा काम नवंबर दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला और संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सावन की शुरुआत में तो अभी समय है, लेकिन बाबा बद्री विशाल के धाम में इन दिनों मानसूनी बारिश मौसम को और भी सुहाना बना रही है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, लेकिन कहते हैं ना कि जब बुलावा बाबा का हो तो मौसम की बंदिशें बेअसर हो जाती हैं। खराब मौसम के बावजूद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं माणा गांव में भी रौनक बिखरी हुई है। पौराणिक स्वर्गारोहण मार्ग पर भी पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं।

0: चारों तरफ पहाड़ और काले घने बादल, रिमझिम बरसती बूंदे और फिजाओं में घुली ठंडक। बद्रीनाथ धाम का ये सुहाना और अलौकिक मौसम इन दिनों हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। मौसम भले ही सर्द है, लेकिन भक्तों के दिलों में आस्था की गर्मी साफ देखी जा सकती है। बद्रीनाथ में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस अनवरत बारिश की वजह से पतित पावनी अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है, लेकिन बाबा के दर्शन की चाह में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद कम नहीं हो रही। साफ है कि खराब मौसम पर भक्तों की अटूट आस्था भारी पड़ रही है।
1: बद्रीनाथ धाम में बीते तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है, वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहाँ पे नरसिंह शिला बारह शिला है, वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है, पूरा पानी बढ़ता जा रहा है। पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है, जलस्तर है, वो बढ़ रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में अभी तक यात्रा मार्ग सुचारू होने से श्रद्धालु बहुत उत्साहित है, वे बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। हालांकि मानसून का असर यात्रा पे जरूर दिखाई दे रहा है, यात्रा में जो कमी है वो देखने को मिल रही है, लेकिन जो श्रद्धालु इस समय पहुंच रहे हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पे, सुगम दर्शन जो मंदिर समिति द्वारा और तमाम व्यवस्थाएं हैं, वो इस समय सबसे बेहतर व्यवस्थाएं इस समय हैं।
0: बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं और सैलानियों का कारवा सीधे रुक कर रहा है देश के पहले गाँव माना की तरफ, जो इस समय पूरी तरह बादलों की आगोश में लिपटा हुआ है। देश के कोने कोने से सैलानी जादुई और सुहाने मौसम का गवाह बनने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। धुंध की सफेद चादर के बीच ठंडी हवाएं सैलानियों का रोमांच दोगुना कर रही हैं। कोई इन वादियों को कैमरे में कैद कर रहा है, तो कोई इस हसीन मौसम को जी भर के महसूस कर रहा है।
2: बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया स्थान है। हिंदुस्तान विश्व फेल है इसके आगे। हम विश्व के बारे में कहते हैं कि स्विट्जरलैंड ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी मातृभूमि, हमारी जन्म स्थान जो है, हमारे हिंदुस्तान है, वो ही स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा अच्छा है।
3: मैं इस जगह को ज्यादातर वीडियोस में देखती थी और वीडियो से बहुत ज्यादा सुंदर ये अब मुझे लग रहा है, और मतलब मुझे अभी भी यही लग रहा है कि मैं यहाँ सपना ही देख रही हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत ब्यूटीफुल है।
0: माना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पौराणिक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इसी गांव से होकर गुजरता है वो ऐतिहासिक स्वर्गारोहण मार्ग, जिससे होकर पांडव सशरीर स्वर्ग की ओर गए थे। आज इस कोहरे और धुंध के बीच जब सैलानी इस प्राचीन मार्ग की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो उन्हें प्रकृति के साथ साथ इतिहास और अध्यात्म का एक अनोखा एहसास होता है।
4: बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है। जो हम रह रहे हैं पॉल्यूशन में, उससे बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है सांस आ रही है, सांस आ रही है।
5: यहाँ का वातावरण की आप पूछो तो धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग जाने की सीढ़ी आज हमने उस चीज को देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं उस चीज का, तो विश्वास कर इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है।
0: एक तरफ जहाँ बद्री विशाल के दर पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति की ये बेमिसाल खूबसूरती सैलानियों का दिल जीत रही है। मौसम भले ही इम्तिहान ले रहा हो, लेकिन देवभूमि का ये सफर यादगार बन रहा है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: हिंद महासागर में भी भारत की समुद्री ताकत और बढ़ गई है। भारतीय नौसेना के बेड़े में INS महेंद्रगिरी शामिल हो गया है। स्वदेशी तकनीक से बना स्टेल्थ युद्धपोत INS महेंद्रगिरी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल, ये युद्धपोत आधुनिक तकनीक से लैस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पोत को नौसेना के हवाले किया और कहा कि इस पोत में ब्रह्मोस मिसाइल से लैस इसको किया जा सकता है।

0: जन्म का समय उसके भाग्य पर असर डाल देता है। बच्चे का जन्म नक्षत्र क्या उसकी सेहत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का नाम रखने में भी बहुत सावधानियों का पालन करना चाहिए? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: भारतीय सेना खरीदेगी 450 कालगुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार, अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय, इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान, अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए आज चलाई जा रही है 8 स्पेशल ट्रेन, अलग अलग स्टेशन का टाइम टेबल भी किया जारी। इंदौर में 22वें पुनोदय प्रकल्प का शुभारंभ, मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को बांटी जाएंगी 3,00,000 कॉपियां, 11 अगस्त तक पूरे एक महीने चलेगा अभियान। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम, शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: समंदर का समीकरण जिसने भी साधा वो लहरों पर नया इतिहास लिखता चला गया। इन्हीं लहरों पर राज करने की मंशा लिए चीन लगातार विस्तारवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी के एक इलाके पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है और अब उसकी निगाहें हिंद महासागर पर हैं। भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। भारत चीन के पड़ोसियों को न सिर्फ ताकतवर हथियार दे रहा है बल्कि भारत अब एक ऐसी स्ट्रेटजी पर भी काम कर रहा है जो आने वाले समय में चीन के गले की फांस बन सकता है। भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को बड़ा विस्तार दिया है। दोनों देशों ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद की डील की है। साथ ही साथ अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ समझौता न केवल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नतीजा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश है, बल्कि इसके साथ ही साथ साउथ चाइना सी में और हिंद महासागर में भारत को सामरिक तरीके से बढ़त भी दिलाता है। फिलीपींस वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप समूह है जिसके पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग है। मलक्का, सुंडा, लोमबोक और मकासर जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रमकता और 9-line के दावों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से इंडोनेशिया को मजबूत समुद्री प्रतिरोध मिलेगा।
1: देखा जाए तो चीन लगातार नटूना समुद्र के ऊपर भी अपना दावा पेश करता रहा है, जिसको कि इंडोनेशिया अपनी EEZ का हिस्सा मानता है। चीन की आए दिन मछली पकड़ने वाली नौकाएं, उनकी नेवी के शिप्स वहां पे आते रहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेता है तो उनको एंटी शिप के तौर पे बड़ी ज़बरदस्त सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि कोस्टल बैटरी कोस्टल मिसाइल सिस्टम के तौर पे काम करेगा। 290 से 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सी स्किमिंग लास्ट मिनट में मैनूवर करके एक्यूरेट होने की वजह से ये शिप्स के ऊपर बहुत ही घातक साबित होगा।
0: सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंडोनेशिया ने अपनी सेना के लिए चुना है। ये तो चीन के लिए चिंता की बात हो गई। साथ ही इंडोनेशिया ने समंदर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए भारत के साथ एक और अहम समझौता किया है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। हिंद महासागर में भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए इस सैन्य समझौते के तहत न सिर्फ भारत की ताकत में इजाफा होगा बल्कि ये साथ ही साथ चिंता बढ़ाने वाला विषय है चीन के लिए। और इसी के साथ साथ भारत ने एक और अहम डील की है जिसमें भारत और इंडोनेशिया दोनों संभाग पोर्ट पर एक संयुक्त परियोजना पर काम भी करेंगे। यहाँ ये बता देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संभाग पोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान निकोबार के दक्षिण में पड़ता है। यानी अगर हम दूरी की बात की जाए तो करीब करीब 100 मील की दूरी है। यानी इस डील के साथ साथ भारत कहीं ना कहीं चीन के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है। ग्रेट निकोबार और संबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के दो छोर हैं। इन्हें मलक्का स्ट्रेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। संबांग पोर्ट भारत की ग्रेट निकोबार ट्रांस शिपमेंट पोर्ट से केवल 100 मील यानी कि करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के लिए इंडोनेशिया का संबांग पोर्ट रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बहुत अहम है। इससे न सिर्फ भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री व्यापार बढ़ेगा बल्कि दोनों देश रणनीतिक रूप से अहम एक बड़े समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट पर अपना प्रभुत्व कायम कर पाएंगे। संबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर स्थित है। और मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का संकरा समुद्री मार्ग है जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। संबाग पोर्ट से भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री पहुंच और मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये गहरे पानी की बंदरगाह है जहां पनडुब्बियों समेत हर तरह के नौसैनिक जहाज आ सकते हैं।
1: देखिए, जहां हम ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलप हो रहा है वहां से सबांग पोर्ट तकरीबन 160 किलोमीटर है, जहां से मलक्का स्ट्रेट निकलता है। चीन का ज़्यादातर तेल और उनका व्यापार यहीं से होता है। तो अगर दोनों तरफ, उधर भारत ने उनको ब्रह्मोस बेचा हुआ है, बेच रहे हैं जो पहुंच रहा है, और साथ साथ में यहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाती है, तो इसको हम पूरी तरह से जरूरत पड़ने पर करेंगे नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्यों किया जा सकता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दूसरी बात, सबांग पोर्ट में भारत के शिप्स को मदद मिल जाएगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी, वहाँ पर रिफ्यूलिंग हो जाएगा, वहाँ से आगे फिर रीच उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए बेनिफिशियल है।
0: चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला ये संकरा समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। चीन के आयातित तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया और अफ्रीका से इसी रास्ते होकर चीन पहुंचता है। इसके साथ ही चीन के निर्यात आधारित व्यापार का भी बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है। चीन अपना करीब 80% कच्चा तेल और ऊर्जा आयात स्ट्रेट ऑफ मलक्का रूट से करता है। चीन के कुल वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 60% से 2/3 हिस्सा इसी जल मार्ग से आता जाता है। यानी जिस मलक्का स्ट्रेट को चीन के व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर अब भारत की नजर रहेगी।
1: मलक्का स्ट्रेट को चीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि चीन का ज़्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तेल उनका ज़्यादातर इंपोर्ट होता है। उनका 25-40% व्यापार मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है, साथ साथ में तेल जो है वो 60-80% तेल जो पश्चिमी एशिया से आता है वो मलक्का स्ट्रेट से निकलता है। यदि मलक्का स्ट्रेट चौक हो जाता है तो चीन के पास ऑप्शन है, आर्कटिक साइड से है या फिर दूसरे स्टेट से, लेकिन वो काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं। एक बात और है कि यहाँ पर यदि हम इसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि एक तरफ निकोबार, दूसरी सबांग आइलैंड इंडोनेशिया का, तो ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट हो जाता है। यही कारण है कि चीन इसके लिए काफ़ी वल्नरेबल रहता है और वो अल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश कर रहा है।
0: हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक आने जाने वाले समुद्री मार्ग चीन के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दे सकती है।
2: साल 2003 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने मलक्का को लेकर एक आशंका जाहिर की थी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मलक्का डिलेमा। दरअसल उस दौरान उन्हें इस बात की आशंका थी कि अगर कहीं तनाव होता है या फिर अगर दुश्मन के साथ, चीनी दुश्मन के साथ भी तनाव होता है, तो अमेरिका या फिर उसके सहयोगी मिलकर मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, वहां से रास्ता रोक सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
0: मलक्का स्ट्रेट कहाँ है और इसकी अहमियत कितनी है, ये समझने की जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला रास्ता है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाला बड़ा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 25-40% हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 80,000 से 1,20,000 कार्गो यहाँ से गुजरते हैं। रोजाना औसतन 200 से 300 मालवाहक जहाज इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो हर साल लगभग $3.5 trillion का सामान स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते से गुजरता है।
1: देखा जाए तो मलक्का स्ट्रेट एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसको अगर ब्लॉक हो जाता है तो चीन के व्यापारिक क्षमता पर बहुत फर्क पड़ेगा। आज उनका जो व्यापार है यूरोप के साथ है, मध्य पूर्व के देशों के साथ है, और यदि ये ब्लॉक होता है तो उनकी तेल सप्लाई, व्यापार जो 25-40% व्यापार यहाँ से निकलता है, उनका जो मध्य पूर्व से तेल आता है उनका 60-80% तेल यहाँ से आता है। तो चीन के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी ज़्यादातर इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन है। अगर ये हट जाता है तो यूरोप के साथ और मध्य पूर्व के देशों के साथ जो एक्सपोर्ट रुकता है तो उनकी इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा।
0: मलक्का स्ट्रेट पर भारत का सीधा भौगोलिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति और सैन्य ताकत इसे इस मार्ग पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। भारत संवेदनशील समुद्री रास्ते के मुहाने पर पहरेदार की तरह बैठा है, जिससे वो चीन की दुखती रग को कंट्रोल कर सकता है।
2: दरअसल भारत को प्राकृतिक रूप से तोहफे में अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिले हैं, जिसका दायरा 700 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसका एक छोर सीधा मलक्का स्ट्रेट पर जाकर खुलता है। और यही एक बड़ी वजह है कि भारत यहां पर ग्रेट निकोबार को विकसित कर रहा है, ताकि खास तौर पर मलक्का स्ट्रेट में अपनी रणनीतिक बढ़त को मजबूत बना सके। और यह चीन के लिए बहुत बड़ी टेंशन होगी।
0: निकोबार प्रोजेक्ट एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण द्वीप पर विकसित किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के चार प्रमुख हिस्से हैं, जिनमें पहला इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ICTP है। इसमें गैलाथिया की खाड़ी में एक विशाल गहरे पानी का बंदरगाह बनाया जा रहा है। दूसरा हिस्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका तीसरा हिस्सा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसमें करीब 149 वर्ग किलोमीटर एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। चौथा हिस्सा वाटर प्लांट होगा, जो शहर और बंदरगाह की जरूरतों के लिए ऊर्जा सप्लाई करेगा।
1: जब इंडोनेशिया के संबंध की बात होती है तो ग्रेट निकोबार एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, और ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए भारत की सरकार काफी कोशिश कर रही है, जहाँ पे 81,000 करोड़ लगाकर तकरीबन 30 साल के समय का सीमा निर्धारित करते हुए वहाँ पर एयरपोर्ट, टाउनशिप, सामरिक पोर्ट और एक पावर प्लांट, हर तरह से एक कंपोजिट डेवलपमेंट करने का विचार है, जो कि सुरक्षा और व्यापार दोनों तरह से काफ़ी बेहतर रहेगा। एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाएगा वहाँ पर, और साथ साथ में सुरक्षा के निगाह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के पूरी तरह से डोमिनेट करेगा, और जिसको हम कहते हैं कि अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, हमारा वो द्वीप ही जब एक एयरपोर्ट हब बन जाएगा, एयरफोर्स होगी, नेवी की बेस हो जाएगी, तो काफ़ी आगे तक हमारी रीच बढ़ जाएगी।
0: ग्रेट निकोबार का दक्षिणी सिरा सिंगापुर, पोर्ट किंग और कोलंबो के काफी पास में है। इन द्वीपों के पास जो समुद्री रास्ते हैं, उसका करीब 60% चीन अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में इन रास्तों पर नियंत्रण स्ट्रेटेजिक ट्रम्प कार्ड है, जो चीन को बेहद नागवार गुजरता है। अब भारत ने जब से ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, चीन की टेंशन यकीनन बढ़ गई है।
3: ये जगह जब डेवलप हो जाएगी, ये जो हमारे जो पोर्ट डेवलप होगा, यहाँ से जो हमारी मैरीटाइम पार एंड रीच जो होगी वो बढ़ेगी, हमारी रीच फ्रॉम डोमिनेंस एंड मैरीटाइम एंड द एयर फ्रंट बहुत बढ़ेगी। ये 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से, सिर्फ 150 किलोमीटर। तो हमारी एंड आप समझ रहे इस मलक्का स्ट्रेट से कितना सी रूट जाता है, नियरली 30%। चाइना की 75% नियरली एनर्जी रूट यहाँ से है। तो इस पे हमारी एबिलिटी टू डोमिनेट, एबिलिटी टू सिक्योर दिस ट्रेड रूट बहुत जरूरी है, एंड होर्मुज़ के बाद तो ये बात आज की तारीख में सबको समझना चाहिए।
0: भारत ने अपने पश्चिमी और पूर्वी तट पर समंदर के पास पनडुब्बियों का जाल बिछा रखा है, जिससे भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन अपनी हद पार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसमें हर तरह की पनडुब्बियां शामिल है। भारत ने हाल ही में 2 पनडुब्बी अड्डे बनाए हैं, पहला है कारवार और दूसरा है INS वर्षा। ये बेस भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक बेहद मजबूत हिस्सा है, जो देश को किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में सुनिश्चित सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करता है।
2: हिंदुस्तान की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो तीन तरफ से समुद्री सीमाओं से सटा हुआ है, जिसमें 7,516 किलोमीटर का लगभग ये पूरा एरिया पड़ता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं और कई राज्य भी आते हैं। और इसीलिए भारत के लिए बहुत अहम हो जाता है कि भारत अपनी समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा करे और इसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस करे।
0: भारतीय नौसेना लक्षद्वीप में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिनिकॉय द्वीप पर एक हाईटेक नौसैनिक अड्डा तैयार कर रही है। इसे आईएनएस जटायु का नाम दिया गया है। समंदर के बीच में ये बेस जितना खूबसूरत है स्ट्रेटेजिक तौर पर उतना ही खास है। इस अड्डे से नौसेना टुकड़ी की मूवमेंट तो बढ़ेगी ही, साथ ही जटायु नेवल बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इस बेस पर फाइटर जेट्स और भारी विमानों की आवाजाही अब आसान होगी।
1: देखा जाए तो आईएनएस जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में एक नेवी का अग्रिम बेस है, जिसका फायदा यह है कि ये जब अग्रिम बेस बना होता है द्वीप के ऊपर, तो भारत की एक आइलैंड पॉलिसी है जहां पर आइलैंड्स के ऊपर नेवी के बेस बनाकर पूरे इलाके को डोमिनेट करना, उनको नज़र में रखना। क्योंकि जैसे हम चीन की आए दिन खबरें आती रहती कि वो आज वहाँ शिप भेज रहे हैं, वहाँ श्रीलंका के पास भेजा, मालदीव के पास भेजा, भारत के नेवी की मूवमेंट पर निगाह रखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से फिर हम भी निगाह रख सकते हैं उनकी हरकतों पर। दूसरी बात, हमारा एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं। तीसरी बात, समुद्री डकैती यानी कि सी पायरेसी जो है उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है, और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर काम करेंगे।
0: के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारतीय नौसेना की मौजूदगी रही है, लेकिन आईएनएस जटायु को द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा पूर्ण अड्डा माना जाएगा। इससे पहले साल 2012 में करबती में आईएनएस द्वीप रक्षक को पहले नौसेना अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो स्वेज कैनाल और फारस की खाड़ी से जाने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए एक अहम रूट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, जो सुंदर लोम्बोक स्ट्रेट की ओर जाने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों चैनलों में मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद खास है। अमेरिका में नौसेना बेस इन दोनों चैनलों पर नजर रखने में मदद करेगा। अमेरिका में तैयार नेवल बेस आईएनएस जटायु के नाम को भी काफी सोच समझ कर रखा गया है। जिस तरह रामायण में जटायु ने सबसे अहम कदम उठाते हुए सीता जी के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी, अपने जीवन को खतरे में डालकर खुद से पहले सेवा का उदाहरण दिया था, उसी तर्ज पर अब देश की हिफाजत होगी।
2: जटायु की पोजीशनिंग दरअसल मालदीव के बेहद करीब है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर और यहीं से न सिर्फ चीनी युद्धपोत बल्कि पनडुब्बियों पर भी नजर रखी जाती है और उनकी निगरानी की जा सकती है, और अगर कहीं तनाव की स्थिति पैदा होती है तो यहाँ से चीन को टारगेट पर भी लिया जाता है। दरअसल ये पोजिशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से चीन ने मालदीव को अपनी कठपुतली बनाया है, तो उस हिसाब से इस पूरे भूमध्य सागर में भारत के लिए खतरा बहुत अहम हो जाता है।
0: चीन और मालदीव की जुगलबंदी कैसे खतरा बन सकती है और कैसे भारत ने इसकी काट निकाली है, ये बताने से पहले हम आपको मालदीव की भौगोलिक स्थिति बताते हैं कि आखिर मालदीव है कहाँ और चीन मालदीव से क्यों नजदीकी बढ़ा रहा है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता। आईएनएस जटायु नौ सैनिक बेस से मालदीव की दूरी महज 524 किलोमीटर है, यानी यहां से चीन और मालदीव पर आसानी से नजर रखी जाएगी। मालदीव को अगर कुछ चीजें खास बनाती हैं तो वो है हिंद महासागर में बसा होना। दरअसल हिंद महासागर से होकर तमाम चीजें ले जाई जा सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है तेल और गैस। ज्यादातर तेल गैस हिंद महासागर से जुड़े तीन अहम पॉइंट से ले जाया जाता है। इनमें से एक जगह है फारस की खाड़ी में मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल जहाजों के जरिए एक से दूसरी जगह पहुंचता है उसका 40% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। दूसरा पॉइंट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमालियन पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बीच मौजूद है। हिंद महासागर में तीसरा मुख्य बिंदु है मलक्का स्ट्रेट। दुनिया के समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से ही गुजरता है। अगर कोई भी देश या फिर देशों का गठबंधन हिंद महासागर में समुद्री व्यापार के तीन प्रमुख रास्तों पर अपना दबदबा बना ले तो वो दूसरों को तकलीफ दे सकता है। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप भी शिपिंग लेन के बगल में हैं, जहां से चीन, जापान और भारत को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अब मालदीव की अहमियत को चीन अच्छी तरह से समझता है और वो अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए मालदीव को साधने में जुटा है।
1: चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम कर रहा है, जहां पर वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो, या बांग्लादेश में चितगोंग पोस्ट हो, और अब वो मालदीव में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उनकी नेवी लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है, हिंद महासागर में घूमते रहते हैं और भारत के शिपिंग पर, भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, भारत की रक्षा की तैयारियों पर पूरी तरह से नजर रखते हैं।
2: रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: और अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। 30 जुलाई से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है और इस पावन महीने में शिव भक्तों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बनने जा रही है बाबा भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार। कांवड़ यात्रा और सावन मेले को लेकर धर्मनगरी में इस समय तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग, हर कोई शिव भक्तों के स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठा है। पुलिस हर स्तर पर तैयारी कर रही है, कांवड़ियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है।
5: एक बार फिर फिजाओं में सिर्फ बम बम भोले की गूंज होगी। केसरिया रंग का समंदर होगा और महादेव के भक्तों की आस्था चरम पर होगी, क्योंकि 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इस पावन महीने के स्वागत के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो रही है। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की और मेले के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की गई। हरिद्वार में गंगा के तट पर पूजा अर्चना के साथ ही कांवड़ यात्रा का शुभारंभ लगभग हो चुका है। लाखों करोड़ों शिव भक्तों और कांवड़ियों की आमद को देखते हुए हरिद्वार में भव्य तैयारियां की जा रही है। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के भव्य कांवड़ मेले को सकुशल और सुगम बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और इस महामेले के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। मेले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस ने शिव भक्तों से एक खास अपील की है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कांवड़ मेले के दौरान कोई भी कांवड़िया अपने साथ त्रिशूल, लाठी डंडे या बेसबॉल बैट जैसी चीजें लेकर नहीं आएगा। इन सभी वस्तुओं पर मेले के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन नियमों का मकसद सिर्फ शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हरिद्वार में इस बार आस्था, सुरक्षा और भव्यता का ऐसा त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। 3 जुलाई से शुरू हो रहे सावन महोत्सव में गंगा जल भरने आने वाले शिव भक्तों के स्वागत के लिए अब बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
6: क्या बच्चे का जन्म का समय उसके भाग्य पर असर डाल देता है? बच्चे का जन्म नक्षत्र क्या उसकी सेहत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का नाम रखने में भी बहुत सावधानियों का पालन करना चाहिए? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads like this one and score more of the content you love. That's more curated news.
8: If one party is saying we will never raise taxes even on millionaires and billionaires,
7: more top sports.
9: And he's gonna go! There's the tying goal!
7: And everything in between.
9: This game is over!
7: Upgrade now for the premium listening experience.
2: रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: भारतीय सेना खरीदेगी 450 कालदोस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार। अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय। इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान, अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए आज चलाई जा रही हैं 8 स्पेशल ट्रेन। अलग अलग स्टेशन का टाइम टेबल भी किया जा रही है। इंदौर में 22वें पुनोदय प्रकल्प का शुभारंभ। मध्यप्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को बांटी जाएंगी 3,00,000 कॉपियां। 11 अगस्त तक पूरे 1 महीने चलेगा अभियान। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम। शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के आखिरी 13 मिनट में निश्चित रूप से हारी हुई बाजी जीतकर दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि युगांधर के शब्दकोश से असंभव शब्द के लिए कोई स्थान ही नहीं है।

0: तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना की ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हां, एक ऐसा खिलाड़ी मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 7 जुलाई को कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना मिस्र के खिलाफ करीब करीब मैच हार चुकी थी, लेकिन मैच के आखिरी 13 मिनट में मेसी ने मैदान पर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और वो तूफान मचाया कि मिस्र के खिलाड़ी जीती हुई बाजी गंवाने का तमाशा असहाय रूप से देखते रह गए।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगो युगो में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में बीते 7 जुलाई को लियोनेल मेसी ने एक बार फिर पूरे

मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स एंड पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में शोला बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगा दी। इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूटकर बिखरने लगा। इंजरी टाइम से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन 92वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। नामुमकिन दिख रही जीत को मुमकिन कर मेसी ने पहली प्रतिक्रिया में इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा खुद की बजाय अपने साथी के सिर बांधने की दरियादिली दिखाई। मेसी ने कहा कि 0-2 से पिछड़ने के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। नॉकआउट में इतनी बड़ी वापसी कतई आसान नहीं थी। रोमेरो के गोल से हमारे अंदर बराबरी कर लेने का आत्मविश्वास जगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने एक्स्ट्रा टाइम से पहले ही मैच जीत लिया। अटलांटा के ऐतिहासिक मैच की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने के बाद इतनी सहज और सरल प्रतिक्रिया मेसी जैसा महानतम खिलाड़ी ही दे सकता है। इस प्रतिक्रिया में मेसी ने ना तो 79वें मिनट में दिए अपने शानदार क्रॉस का और ना ही 83वें मिनट में किए अपने गोल का ही जिक्र किया। हालांकि दिग्गज सॉकर प्लेयर ये मान रहे हैं कि मेसी ने एक जादूगर की तरह आखिरी क्षणों में मैच का पासा पलट दिया। इस मैच को सांसें थाम कर देखने वाले फ्रांस के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर थियरी हेनरी ने मेसी की तारीफ करते हुए कहा कि वो मानव से ऊपर के दर्जे वाले लिविंग विंग हैं। फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते हुए थियरी हेनरी ने कहा कि इसने शुरू में हमें बताया कि वो एक इंसान है। वो इंसान है इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ पेनल्टी किक को मिस कर दिया, 8 में से 4 को, लेकिन इसी मैच में हमें दोबारा याद दिलाया कि वो इंसान नहीं है। थियरी हेनरी जैसा महान स्ट्राइकर मेसी को अगर महामानव मान रहा है, तो जाहिर है इस खिलाड़ी में कुछ तो ऐसा है जो फुटबॉल के दूसरे खिलाड़ियों में नहीं है। मेसी की उम्र 39 साल है, लेकिन इस उम्र में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल दागकर वो गोल्डन बॉल की रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए, जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया।
2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर

0: भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया, लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानो नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया, लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे, लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल यह है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
1: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो मानो वो भगवान बन गए, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारे की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन नावाकिफ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तान आपके दिल को छू लेगी।
0: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्ल रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे, जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थीं। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी। यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था, इलाज था लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया, जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं। पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया, बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे, जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे, वैसी किसी और बच्चे को न झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस, लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
1: तो बंदे में दम में आज आपने लियोनेल मेसी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
3: I have no idea how this election is going to play out,
2: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और अब बात अयोध्या के श्रीराम मंदिर की। 30 जुलाई तक श्रीराम मंदिर का काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी मंदिर पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगा। हालांकि 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का काम चलता रहेगा और राम कथा संग्रहालय का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, लेकिन ये दोनों काम श्रीराम मंदिर परिसर से बाहर चलते रहेंगे।

0: आस्था का बड़ा केंद्र अयोध्या का राम मंदिर 30 जुलाई को संपूर्णता पर पहुंच जाएगा, यानी श्री राम मंदिर के सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। निर्माण कार्य की समीक्षा की गई और अब सिर्फ दो काम पूरे किए जाने बाकी हैं। पहला, एक पुराने राम मंदिर में 24 घंटे जलने वाली ज्वाला की व्यवस्था बाकी है, जबकि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दूसरा स्मारक है, जो 30 जुलाई तक पूरा हो जाएगा।
1: निर्माण कार्य में मुख्य रूप से दो कार्य अभी पूरे किए जाने हैं। एक जो कि पुराना मंदिर था, जिसका स्मारक है, उसे हम लोग पूरा करेंगे। उसमें केवल जो ज्वाला 24 घंटे होनी चाहिए उसकी व्यवस्था बाकी है, बाकी सब निर्माण हो चुका है। आप दूसरा एक पूर्ण स्मारक है, जो कि अब अपनी लगभग उसको आप यह मान करके चलें कि जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। वह मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य में अंतिम कार्य है। इस प्रकार 20 जुलाई तक मंदिर का सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा।
0: इसके अलावा अयोध्या में दो काम चलते रहेंगे, पहला 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का कार्य और दूसरा मंदिर परिसर के बाहर ऑडिटोरियम का। इसके अलावा राम कथा संग्रहालय, जिसमें 20 गैलरी हैं, इसकी स्टोरी लाइन बन गई है। अब उसका टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो किस प्रकार का होगा, उस पर अंतिम रूप से निर्णय लेना बाकी है।
1: दो कार्य चलते रहेंगे, एक बाउंड्री वॉल है 4 किलोमीटर लंबी, वह कार्य चलेगा, और मंदिर परिसर के बाहर जो ऑडिटोरियम है उसका कार्य लगभग नवंबर दिसंबर तक होगा। इसके अतिरिक्त जो संग्रहालय है, राम कथा संग्रहालय, वह कार्य 20 गैलरी है, 20 गैलरी में सभी अपने अपने स्थिति स्क्रिप्ट वगैरह आप जानते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो उसकी जो स्टोरी लाइन है वो अब बन गई है और अब उसका टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो किस प्रकार का होगा उस पे अंतिम रूप से एक तरीके से निर्णय दिया जाएगा।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उम्मीद है 30 सितंबर तक बाउंड्री वॉल का काम पूरा हो जाएगा, जबकि राम कथा संग्रहालय का सारा काम नवंबर दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला और संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: क्या बच्चे का जन्म का समय उसके भाग्य पर असर डाल देता है? बच्चे का जन्म नक्षत्र क्या उसकी सेहत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का नाम रखने में भी बहुत सावधानियों का पालन करना चाहिए? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है।

0: बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
2: Good news today is really good. In this case, there is no more news. There is no more news. At least, people have to get the news.
3: भारतीय सेना खरीदेगी 450 कालगुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार, अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय, इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान, अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए आज चलाई जा रही हैं 8 स्पेशल ट्रेन, अलग अलग स्टेशन का टाइम टेबल भी किया जा रहा है। इंदौर में 22वें पुनोदय प्रकल्प का शुभारंभ, मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को बांटी जाएंगी 3,00,000 कॉपियां, 11 अगस्त तक पूरे एक महीने चलेगा अभियान। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम, शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

समंदर का समीकरण जिसने भी साधा वो लहरों पर नया इतिहास लिखता चला गया। इन्हीं लहरों पर राज करने की मंशा लिए चीन लगातार विस्तारवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी के एक इलाके पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है और अब उसकी निगाहें हिंद महासागर पर हैं। भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। भारत चीन के पड़ोसियों को न सिर्फ ताकतवर हथियार दे रहा है बल्कि भारत अब एक ऐसी स्ट्रेटजी पर भी काम कर रहा है जो आने वाले समय में चीन के गले की फांस बन सकता है। भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को बड़ा विस्तार दिया है। दोनों देशों ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद की डील की है। साथ ही साथ अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ समझौता न केवल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नतीजा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश है, बल्कि इसके साथ ही साथ साउथ चाइना सी में और हिंद महासागर में भारत को सामरिक तरीके से बढ़त भी दिलाता है। फिलीपींस वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप समूह है जिसके पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग है। मलक्का, सुंडा, लोम्बोक और मकासर जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता और 9-डैश लाइन के दावों के बीच

0: मिसाइल की तैनाती से इंडोनेशिया को मजबूत समुद्री प्रतिरोध मिलेगा।
1: देखा जाए तो चीन लगातार नटूना समुद्र के ऊपर भी अपना दावा पेश करता रहा है, जिसको कि इंडोनेशिया अपनी ईज़ेड का हिस्सा मानता है। चीन की आए दिन मछली पकड़ने वाली नौकाएं, उनकी नेवी के शिप्स वहां पे आते रहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेता है तो उनको एंटी शिप के तौर पे बड़ी ज़बरदस्त सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि ये कोस्टल बैटरी, कोस्टल मिसाइल सिस्टम के तौर पे काम करेगा। 290 से 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सी स्किमिंग लास्ट मिनट में मैनूवर करके एक्यूरेट होने की वजह से ये शिप्स के ऊपर बहुत ही घातक साबित होगा।
0: सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंडोनेशिया ने अपनी सेना के लिए चुना है। ये तो चीन के लिए चिंता की बात हो गई। साथ ही इंडोनेशिया ने समंदर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए भारत के साथ एक और अहम समझौता किया है, जिसने चीन की नींद उड़ा दी है।
2: हिंद महासागर में भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए इस सैन्य समझौते के तहत न सिर्फ भारत की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि ये साथ ही साथ चिंता बढ़ाने वाला विषय है चीन के लिए। और इसी के साथ साथ भारत ने एक और अहम डील की है, जिसमें भारत और इंडोनेशिया दोनों संभाग पोर्ट पर एक संयुक्त परियोजना पर काम भी करेंगे। यहाँ ये बता देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संभाग पोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान निकोबार के दक्षिण में पड़ता है। यानी अगर हम दूरी की बात की जाए तो करीब करीब 100 मील की दूरी है। यानी इस डील के साथ साथ भारत कहीं ना कहीं चीन के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है।
0: ग्रेट निकोबार और संबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के दो छोर हैं। इन्हें मलक्का स्ट्रेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। संभाग पोर्ट भारत की ग्रेट निकोबार ट्रांस शिपमेंट पोर्ट से केवल 100 मील यानी कि करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के लिए इंडोनेशिया का संभाग पोर्ट रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बहुत अहम है। इससे न सिर्फ भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री व्यापार बढ़ेगा, बल्कि दोनों देश रणनीतिक रूप से अहम एक बड़े समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट पर अपना प्रभुत्व कायम कर पाएंगे। संभाग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर स्थित है। और मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का संकरा समुद्री मार्ग है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। संभाग पोर्ट से भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री पहुँच और मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये गहरे पानी की बंदरगाह है, जहाँ पनडुब्बियों समेत हर तरह के नौसैनिक जहाज आ सकते हैं।
1: देखिए, जहां ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलप हो रहा है, वहां से संभाग पोर्ट तकरीबन 160 किलोमीटर है, जहां से मलक्का स्ट्रेट निकलता है। चीन का ज़्यादातर तेल और उनका व्यापार यहीं से होता है। तो अगर दोनों तरफ, उधर भारत ने उनको ब्रह्मोस बेचा हुआ है, बेच रहे हैं जो पहुंच रहा है, और साथ साथ में यहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाती है, तो इसको हम पूरी तरह से जरूरत पड़ने पर करेंगे नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर चौक किया जा सकता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दूसरी बात, संभाग पोर्ट में भारत के शिप्स को मदद मिल जाएगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी, वहाँ पर रिफ्यूलिंग हो जाएगा, वहाँ से आगे फिर रीच उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए बेनिफिशियल है।
0: चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला ये संकरा समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। चीन के आयातित तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया और अफ्रीका से इसी रास्ते होकर चीन पहुंचता है। इसके साथ ही चीन के निर्यात आधारित व्यापार का भी बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है। चीन अपना करीब 80% कच्चा तेल और ऊर्जा आयात स्ट्रेट ऑफ मलक्का रूट से करता है। चीन के कुल वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 60% से 2/3 हिस्सा इसी जल मार्ग से आता जाता है। यानी जिस मलक्का स्ट्रेट को चीन के व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर अब भारत की नजर रहेगी।
1: मलक्का स्ट्रेट को चीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि चीन का ज़्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तेल उनका ज़्यादातर इंपोर्ट होता है। उनका 25-40% व्यापार मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है, साथ साथ में तेल जो है वो 60-80% तेल जो पश्चिमी एशिया से आता है वो मलक्का स्ट्रेट से निकलता है। यदि मलक्का स्ट्रेट चौक हो जाता है तो चीन के पास ऑप्शन है, आर्कटिक साइड से है या फिर दूसरे स्टेट से, लेकिन वो काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं। एक बात और है कि यहाँ पर यदि हम इसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि एक तरफ निकोबार, दूसरी सबांग आइलैंड इंडोनेशिया का, तो ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट हो जाता है। यही कारण है कि चीन इसके लिए काफ़ी वल्नरेबल रहता है और वो अल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश कर रहा है।
0: हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक आने जाने वाले समुद्री मार्ग चीन के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दे सकती है।
2: साल 2003 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने मलक्का को लेकर एक आशंका जाहिर की थी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मलक्का डिलेमा। दरअसल उस दौरान उन्हें इस बात की आशंका थी कि अगर कहीं तनाव होता है या फिर अगर दुश्मन के साथ, चीनी दुश्मन के साथ भी तनाव होता है, तो अमेरिका या फिर उसके सहयोगी मिलकर मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, वहां से रास्ता रोक सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
0: मलक्का स्ट्रेट कहाँ है और इसकी अहमियत कितनी है, ये समझने की जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला रास्ता है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाला बड़ा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 25-40% हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 80,000 से 1,20,000 कार्गो यहाँ से गुजरते हैं। रोजाना औसतन 200 से 300 मालवाहक जहाज इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो हर साल लगभग $3.5 trillion का सामान स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते से गुजरता है।
1: देखा जाए तो मलक्का स्ट्रेट एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसको अगर ब्लॉक हो जाता है तो चीन के व्यापारिक क्षमता पर बहुत फर्क पड़ेगा। आज उनका जो व्यापार है यूरोप के साथ है, मध्य पूर्व के देशों के साथ है, और यदि ये ब्लॉक होता है तो उनकी तेल सप्लाई, व्यापार जो 25-40% व्यापार यहाँ से निकलता है, उनका जो मध्य पूर्व से तेल आता है उनका 60-80% तेल यहाँ से आता है, तो चीन के ऊपर असर पड़ेगा। उनकी ज़्यादातर इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन है, अगर ये हट जाता है तो यूरोप के साथ और मध्य पूर्व के देशों के साथ जो एक्सपोर्ट रुकता है तो उनकी इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा।
0: मलक्का स्ट्रेट पर भारत का सीधा भौगोलिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति और सैन्य ताकत इसे इस मार्ग पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। भारत संवेदनशील समुद्री रास्ते के मुहाने पर पहरेदार की तरह बैठा है, जिससे वो चीन की दुखती रग को कंट्रोल कर सकता है।
2: दरअसल भारत को प्राकृतिक रूप से तोहफे में अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिले हैं, जिसका दायरा 700 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसका एक छोर सीधा मलक्का स्ट्रेट पर जाकर खुलता है। और यही एक बड़ी वजह है कि भारत यहाँ पर ग्रेट निकोबार को विकसित कर रहा है, ताकि खास तौर पर मलक्का स्ट्रेट में अपनी रणनीतिक बढ़त को मजबूत बना सके, और यह चीन के लिए बहुत बड़ी टेंशन होगी।
0: ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण द्वीप पर विकसित किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख हिस्से हैं, जिनमें पहला इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ICTP है। इसमें गैलाथिया की खाड़ी में एक विशाल गहरे पानी का बंदरगाह बनाया जा रहा है। दूसरा हिस्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका तीसरा हिस्सा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसमें करीब 149 वर्ग किलोमीटर एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। चौथा हिस्सा वाटर प्लांट होगा, जो शहर और बंदरगाह की जरूरतों के लिए ऊर्जा सप्लाई करेगा।
1: जब इंडोनेशिया के संबंध की बात होती है तो ग्रेट निकोबार एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, और ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए भारत की सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, जहाँ पे 81,000 करोड़ लगाकर तकरीबन 30 साल के समय का सीमा निर्धारित करते हुए वहाँ पर एयरपोर्ट, टाउनशिप, सामरिक पोर्ट और एक पावर प्लांट, हर तरह से एक कंपोजिट डेवलपमेंट करने का विचार है, जो कि सुरक्षा और व्यापार दोनों तरह से काफ़ी बेहतर रहेगा। एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाएगा वहाँ पर, और साथ साथ में सुरक्षा के निगाह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के पूरी तरह से डोमिनेट करेगा, और जिसको हम कहते हैं कि अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, हमारा द्वीप ही जब एक एयरपोर्ट हब बन जाएगा, एयरफोर्स होगी, नेवी की बेस हो जाएगी, तो काफ़ी आगे तक हमारी रीच बढ़ जाएगी।
0: ग्रेट निकोबार का दक्षिणी सिरा सिंगापुर, पोर्ट किंग और कोलंबो के काफी पास में है। इन द्वीपों के पास जो समुद्री रास्ते हैं, उसका करीब 60% चीन अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में इन रास्तों पर नियंत्रण स्ट्रेटेजिक ट्रम्प कार्ड है, जो चीन को बेहद नागवार गुजरता है। अब भारत ने जब से ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, चीन की टेंशन यकीनन बढ़ गई है।
3: ये जगह जब डेवलप हो जाएगी, जो हमारे जो पोर्ट डेवलप होगा, यहाँ से जो हमारी मैरीटाइम पार एंड रीच जो होगी वो बढ़ेगी, हमारी रीच फ्रॉम डोमिनेंस इन मैरीटाइम एंड द एयर फ्रंट बहुत बढ़ेगी। ये 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से, सिर्फ 150 किलोमीटर। तो हमारी एंड आप समझ रहे हैं इस मलक्का स्ट्रेट से कितना सी रूट जाता है, नियरली 30%। चाइना की 75% नियरली एनर्जी ट्रेड, एनर्जी रूट यहाँ से है। तो इस पे हमारी एबिलिटी टू डोमिनेट, एबिलिटी टू सिक्योर दिस ट्रेड रूट बहुत जरूरी है, एंड होर्मुज के बाद तो ये बात आज की तारीख में सबको समझना चाहिए।
0: भारत ने अपने पश्चिमी और पूर्वी तट पर समंदर के पास पनडुब्बियों का जाल बिछा रखा है, जिससे भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन अपनी हद पार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसमें हर तरह की पनडुब्बियां शामिल हैं। भारत ने हाल ही में 2 पनडुब्बी अड्डे बनाए हैं, पहला है कारावार और दूसरा है INS वर्षा। ये बेस भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक बेहद मजबूत हिस्सा है, जो देश को किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में सुनिश्चित सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करता है।
2: हिंदुस्तान की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो 3 तरफ से समुद्री सीमाओं से सटा हुआ है, जिसमें 7,516 किलोमीटर का लगभग ये पूरा एरिया पड़ता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं और कई राज्य भी आते हैं, और इसीलिए भारत के लिए बहुत अहम हो जाता है कि भारत अपनी समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा करे और इसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस करे।
0: भारतीय नौसेना लक्षद्वीप में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिनिकॉय द्वीप पर एक हाईटेक नौसैनिक अड्डा तैयार कर रही है। इसे INS जटायु का नाम दिया गया है। समंदर के बीच में ये बेस जितना खूबसूरत है स्ट्रेटेजिक तौर पर, उतना ही खास है। इस अड्डे से नौसेना टुकड़ी की मूवमेंट तो बढ़ेगी ही, साथ ही जटायु नेवल बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इस बेस पर फाइटर जेट्स और भारी विमानों की आवाजाही अब आसान होगी।
1: देखा जाए तो INS जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में एक नेवी का अग्रिम बेस है, जिसका फायदा यह है कि ये जब अग्रिम बेस बना होता है द्वीप के ऊपर, तो भारत की एक आइलैंड पॉलिसी है, जहाँ पर आइलैंड्स के ऊपर नेवी के बेस बनाकर पूरे इलाके को डोमिनेट करना, उनको नज़र में रखना, क्योंकि जैसे हम चीन की आए दिन खबरें आती रहती कि वो आज वहाँ शिप भेज रहे हैं, वहाँ श्रीलंका के पास भेजा, मालदीव के पास भेजा, भारत के नेवी की मूवमेंट पर निगाह रखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से फिर हम भी निगाह रख सकते हैं उनकी हरकतों पर। दूसरी बात, हमारा एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं। तीसरी बात, समुद्री डकैती यानी कि सी पायरेसी जो है उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है, और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर काम करेंगे।
0: के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारतीय नौसेना की मौजूदगी रही है, लेकिन आईएनएस जटायु को द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा पूर्ण अड्डा माना जाएगा। इससे पहले साल 2012 में करबती में आईएनएस द्वीप रक्षक को पहले नौसेना अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो स्वेज कैनाल और फारस की खाड़ी से जाने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए एक अहम रूट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, जो सुंदा और लोम्बोक स्ट्रेट की ओर जाने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों चैनलों में मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद खास है। अमेरिका में नौसेना बेस इन दोनों चैनलों पर नजर रखने में मदद करेगा। मिनिकॉय में तैयार नेवल बेस आईएनएस जटायु के नाम को भी काफी सोच समझ कर रखा गया है। जिस तरह रामायण में जटायु ने सबसे अहम कदम उठाते हुए सीता जी के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी, अपने जीवन को खतरे में डालकर खुद से पहले सेवा का उदाहरण दिया था, उसी तर्ज पर अब देश की हिफाजत होगी।
2: जटायु की पोजीशनिंग दरअसल मालदीव के बेहद करीब है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर और यहीं से न सिर्फ चीनी युद्धपोत बल्कि पनडुब्बियों पर भी नजर रखी जाती है और उनकी निगरानी की जा सकती है, और अगर कहीं तनाव की स्थिति पैदा होती है तो यहाँ से चीन को टारगेट पर भी लिया जाता है। दरअसल ये पोजिशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से चीन ने मालदीव को अपनी कठपुतली बनाया है, तो उस हिसाब से इस पूरे भूमध्य सागर में भारत के लिए खतरा बहुत अहम हो जाता है।
0: चीन और मालदीव की जुगलबंदी कैसे खतरा बन सकती है और कैसे भारत ने इसकी काट निकाली है, ये बताने से पहले हम आपको मालदीव की भौगोलिक स्थिति बताते हैं कि आखिर मालदीव है कहाँ और चीन मालदीव से क्यों नजदीकी बढ़ा रहा है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता। आईएनएस जटायु नौ सैनिक बेस से मालदीव की दूरी महज 524 किलोमीटर है, यानी यहां से चीन और मालदीव पर आसानी से नजर रखी जाएगी। मालदीव को अगर कुछ चीजें खास बनाती हैं तो वो है हिंद महासागर में बसा होना। दरअसल हिंद महासागर से होकर तमाम चीजें ले जाई जा सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है तेल और गैस। ज्यादातर तेल गैस हिंद महासागर से जुड़े तीन अहम पॉइंट से ले जाया जाता है। इनमें से एक जगह है फारस की खाड़ी में मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल जहाजों के जरिए एक से दूसरी जगह पहुंचता है उसका 40% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। दूसरा पॉइंट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमालियन पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बीच मौजूद है। हिंद महासागर में तीसरा मुख्य बिंदु है मलक्का स्ट्रेट। दुनिया के समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से ही गुजरता है। अगर कोई भी देश या फिर देशों का गठबंधन हिंद महासागर में समुद्री व्यापार के तीन प्रमुख रास्तों पर अपना दबदबा बना ले तो वो दूसरों को तकलीफ दे सकता है। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप भी शिपिंग लेन के बगल में हैं, जहां से चीन, जापान और भारत को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अब मालदीव की अहमियत को चीन अच्छी तरह से समझता है और वो अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए मालदीव को साधने में जुटा है।
1: चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम कर रहा है, जहां पर वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो, या बांग्लादेश में चिटगांग पोस्ट हो, और अब वो मालदीव्स में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उनकी नेवी लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है, हिंद महासागर में घूमते रहते हैं, और भारत के शिपिंग पर, भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, भारत की रक्षा की तैयारियों पर पूरी तरह से नजर रखते हैं।
2: रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
6: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
5: Enjoy non-stop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
7: Williams keeps it. First down. Touchdown.
5: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
4: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला-चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: और अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। 30 जुलाई से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है और इस पावन महीने में शिव भक्तों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बनने जा रही है बाबा भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार। कांवड़ यात्रा और सावन मेले को लेकर धर्मनगरी में इस समय तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग, हर कोई शिव भक्तों के स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठा है। पुलिस हर स्तर पर तैयारी कर रही है, कांवड़ियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है।
8: एक बार फिर फिजाओं में सिर्फ बम बम भोले की गूंज होगी। केसरिया रंग का समंदर होगा और महादेव के भक्तों की आस्था चरम पर होगी, क्योंकि 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इस पावन महीने के स्वागत के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो रही है। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की और मेले के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की गई। हरिद्वार में गंगा के तट पर पूजा अर्चना के साथ ही कांवड़ यात्रा का शुभारंभ लगभग हो चुका है। लाखों करोड़ों शिव भक्तों और कांवड़ियों की आमद को देखते हुए हरिद्वार में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के भव्य कांवड़ मेले को सकुशल और सुगम बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और इस महामेले के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। मेले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस ने शिव भक्तों से एक खास अपील की है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कांवड़ मेले के दौरान कोई भी कांवड़िया अपने साथ त्रिशूल, लाठी डंडे या बेसबॉल बैट जैसी चीजें लेकर नहीं आएगा। इन सभी वस्तुओं पर मेले के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन नियमों का मकसद सिर्फ शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हरिद्वार में इस बार आस्था, सुरक्षा और भव्यता का ऐसा त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। 30 जुलाई से शुरू हो रहे इस सावन महोत्सव में गंगा जल भरने आने वाले शिव भक्तों के स्वागत के लिए अब बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: क्या बच्चे का जन्म का समय उसके भाग्य पर असर डाल देता है? बच्चे का जन्म नक्षत्र क्या उसकी सेहत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का नाम रखने में भी बहुत सावधानियों का पालन करना चाहिए? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: अच्छी खबर,
11: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: भारतीय सेना खरीदेगी 450 कार्गो स्टाफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर। जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार, अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय। इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान, अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए आज चलाई जा रही है 8 स्पेशल ट्रेन, अलग अलग स्टेशन का टाइम टेबल भी किया जा रहा है। इंदौर में 22वें पुनोदय प्रकल्प का शुभारंभ। मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को बांटी जाएंगी 3,00,000 कॉपियां। 11 अगस्त तक पूरे एक महीने चलेगा अभियान। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम। शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के आखिरी 13 मिनट में निश्चित रूप से हारी हुई बाजी जीतकर दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि युगांधर के शब्दकोश से असंभव शब्द के लिए कोई स्थान ही नहीं है।

0: तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना के ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हां, एक ऐसा खिलाड़ी मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 7 जुलाई को कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना मिस्र के खिलाफ करीब करीब मैच हार चुकी थी, लेकिन मैच के आखिरी 13 मिनट में मेसी ने मैदान पर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और वो तूफान मचाया कि मिस्र के खिलाड़ी जीती हुई बाजी गंवाने का तमाशा असहाय रूप से देखते रह गए।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगो युगों में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में बीते 7 जुलाई को लियोनेल मेसी ने एक बार फिर पूरी हनक के साथ ये साबित कर दिया कि 39 के उम्र में भी विरोधियों की जीत के जबड़े से विजय छीन लेने का जज्बा उनके अंदर बरकरार है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स

मुतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स एंड पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में शोला बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगा दी। इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूटकर बिखरने लगा। इंजरी टाइम से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन 92वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। नामुमकिन दिख रही जीत को मुमकिन कर मेसी ने पहली प्रतिक्रिया में इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा खुद की बजाय अपने साथी के सिर बांधने की दरियादिली दिखाई। मेसी ने कहा कि 0-2 से पिछड़ने के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। नॉकआउट में इतनी बड़ी वापसी कतई आसान नहीं थी। रोमेरो के गोल से हमारे अंदर बराबरी कर लेने का आत्मविश्वास जगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने एक्स्ट्रा टाइम से पहले ही मैच जीत लिया। अटलांटा के ऐतिहासिक मैच की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने के बाद इतनी सहज और सरल प्रतिक्रिया मेसी जैसा महानतम खिलाड़ी ही दे सकता है। इस प्रतिक्रिया में मेसी ने ना तो 79वें मिनट में दिए अपने शानदार क्रॉस का और ना ही 83वें मिनट में किए अपने गोल का ही जिक्र किया। हालांकि दिग्गज सॉकर प्लेयर ये मान रहे हैं कि मेसी ने एक जादूगर की तरह आखिरी क्षणों में मैच का पासा पलट दिया। इस मैच को सांसें थाम कर देखने वाले फ्रांस के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर थियरी हेनरी ने मेसी की तारीफ करते हुए कहा कि वो मानव से ऊपर के दर्जे वाले लिविंग विंग हैं। फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते हुए थियरी हेनरी ने कहा कि इसने शुरू में हमें बताया कि वो एक इंसान है। वो इंसान है इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ पेनल्टी किक को मिस कर दिया, 8 में से 4 को, लेकिन इसी मैच में हमें दोबारा याद दिलाया कि वो इंसान नहीं है। थियरी हेनरी जैसा महान स्ट्राइकर मेसी को अगर महामानव मान रहा है तो जाहिर है इस खिलाड़ी में कुछ तो ऐसा है जो फुटबॉल के दूसरे खिलाड़ियों में नहीं है। मेसी की उम्र 39 साल है, लेकिन इस उम्र में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल दागकर वो गोल्डन बॉल की रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए, जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया।

0: हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया। लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानव नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया, लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे, लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल यह है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
1: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो मानो वो भगवान बन गए, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारे की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन नावाकिफ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह हैं, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तान आपके दिल को छू लेगी।
0: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थीं। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी, यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था, इलाज था, लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं, पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्ल्स रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया, बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे, जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे, वैसी किसी और बच्चे को ना झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस, लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
1: तो बंदे में दम में आज आपने लियोनेल मेसी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और अब बात अयोध्या के श्रीराम मंदिर की। 30 जुलाई तक श्रीराम मंदिर का काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी मंदिर पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगा। हालांकि 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का काम चलता रहेगा और राम कथा संग्रहालय का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, लेकिन ये दोनों काम श्रीराम मंदिर परिसर से बाहर चलते रहेंगे।
4: का बड़ा केंद्र अयोध्या का राम मंदिर 30 जुलाई को संपूर्णता पर पहुंच जाएगा, यानी श्री राम मंदिर के सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। निर्माण कार्य की समीक्षा की गई और अब सिर्फ 2 काम पूरे किए जाने बाकी हैं। पहला, एक पुराने राम मंदिर में 24 घंटे जलने वाली ज्वाला की व्यवस्था बाकी है, जबकि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दूसरा स्मारक है, जो 30 जुलाई तक पूरा हो जाएगा।
5: निर्माण कार्य में मुख्य रूप से दो कार्य अभी पूरे किए जाने हैं। एक जो कि पुराना मंदिर था जिसका स्मारक है उसे हम लोग पूरा करेंगे, उसमें केवल जो ज्वाला 24 घंटे होनी चाहिए उसकी व्यवस्था बाकी है, बाकी सब निर्माण हो चुका है। आप दूसरा एक पुण्य स्मारक है जो कि अब अपनी लगभग उसको आप यह मान करके चलें कि जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा, वह मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य में अंतिम कार्य। इस प्रकार 20 जुलाई तक मंदिर का सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा।
4: इसके अलावा अयोध्या में दो काम चलते रहेंगे, पहला 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का कार्य और दूसरा मंदिर परिसर के बाहर ऑडिटोरियम का। इसके अलावा राम कथा संग्रहालय जिसमें 20 गैलरी हैं, इसकी स्टोरी लाइन बन गई है। अब उसका टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो किस प्रकार का होगा उस पर अंतिम रूप से निर्णय लेना बाकी है।
5: दो कार्य चलते रहेंगे, एक बाउंड्री वॉल है 4 किलोमीटर लंबी, वह कार्य चलेगा, और मंदिर परिसर के बाहर जो ऑडिटोरियम है उसका कार्य लगभग नवंबर दिसंबर तक होगा। इसके अतिरिक्त जो संग्रहालय है राम कथा संग्रहालय, वह कार्य 20 गैलरी है, 20 गैलरी में सभी अपने अपने स्थिति स्क्रिप्ट वगैरह आप जानते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो उसकी जो स्टोरी लाइन है वो अब बन गई है और अब उसका टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो किस प्रकार का होगा उस पर अंतिम रूप से एक तरीके से निर्णय दिया जाएगा।
4: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उम्मीद है 30 सितंबर तक बाउंड्री वॉल का काम पूरा हो जाएगा, जबकि राम कथा संग्रहालय का सारा काम नवंबर दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला और संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
7: बच्चे का जन्म का समय उसके भाग्य पर असर डाल देता है। बच्चे का जन्म नक्षत्र क्या उसकी सेहत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का नाम रखने में भी बहुत सावधानियों का पालन करना चाहिए? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। जुनून का सफर। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more?
9: You've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena, ESPN Radio.
10: How they looked after game one.
11: I mean, they were frustrated.
9: The Daily.
12: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
9: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
13: और आपको समझाएंगे देखिए मेरे
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए
14: भारतीय सेना खरीदेगी 450 कालगुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए आज चलाई जा रही है 8 स्पेशल ट्रेन अलग अलग स्टेशन का टाइम टेबल भी किया जा रहा है इंदौर में 22वें पुनोदय प्रकल्प का शुभारंभ मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को बांटी जाएंगी 3,00,000 कॉपियां 11 अगस्त तक पूरे एक महीने चलेगा अभियान बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत उस पूरी इमारत को खरीदा
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए

0: समंदर का समीकरण जिसने भी साधा, वो लहरों पर नया इतिहास लिखता चला गया। इन्हीं लहरों पर राज करने की मंशा लिए चीन लगातार विस्तारवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी के एक इलाके पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है और अब उसकी निगाहें हिंद महासागर पर हैं।
1: भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। भारत चीन के पड़ोसियों को न सिर्फ ताकतवर हथियार दे रहा है, बल्कि भारत अब एक ऐसी स्ट्रेटजी पर भी काम कर रहा है जो आने वाले समय में चीन के गले की फांस बन सकता है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को बड़ा विस्तार दिया है। दोनों देशों ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद की डील की है। साथ ही साथ अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है।
1: भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ समझौता न केवल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नतीजा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश है, बल्कि इसके साथ ही साथ साउथ चाइना सी में और हिंद महासागर में भारत को सामरिक तरीके से बढ़त भी दिलाता है।
0: फिलीपींस वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप समूह है जिसके पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग है। मलक्का, सुंडा, लोम्बोक और मकासर जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता और 9-line के दावों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से इंडोनेशिया को मजबूत समुद्री प्रतिरोध मिलेगा।
2: देखा जाए तो चीन लगातार नटूना समुद्र के ऊपर भी अपना दावा पेश करता रहा है, जिसको कि इंडोनेशिया अपनी EEZ का हिस्सा मानता है। चीन की आए दिन मछली पकड़ने वाली नौकाएं, उनकी नेवी के शिप्स वहां पे आते रहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेता है तो उनको एंटी शिप के तौर पे बड़ी ज़बरदस्त सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि ये कोस्टल बैटरी, कोस्टल मिसाइल सिस्टम के तौर पे काम करेगा। 290 से 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सी स्किमिंग लास्ट मिनट में मैनूवर करके एक्यूरेट होने की वजह से ये शिप्स के ऊपर बहुत ही घातक साबित होगा।
0: सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंडोनेशिया ने अपनी सेना के लिए चुना है। ये तो चीन के लिए चिंता की बात हो गई। साथ ही इंडोनेशिया ने समंदर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए भारत के साथ एक और अहम समझौता किया है, जिसने चीन की नींद उड़ा दी है।
1: हिंद महासागर में भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए इस सैन्य समझौते के तहत न सिर्फ भारत की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि ये साथ ही साथ चिंता बढ़ाने वाला विषय है चीन के लिए। और इसी के साथ साथ भारत ने एक और अहम डील की है, जिसमें भारत और इंडोनेशिया दोनों संभाग पोर्ट पर एक संयुक्त परियोजना पर काम भी करेंगे। यहाँ ये बता देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संभाग पोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान निकोबार के दक्षिण में पड़ता है। यानी अगर हम दूरी की बात की जाए तो करीब करीब 100 मील की दूरी है। यानी इस डील के साथ साथ भारत कहीं ना कहीं चीन के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है।
0: ग्रेट निकोबार और संबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के दो छोर हैं। इन्हें मलक्का स्ट्रेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। संभाग पोर्ट भारत की ग्रेट निकोबार ट्रांस शिपमेंट पोर्ट से केवल 100 मील यानी कि करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के लिए इंडोनेशिया का संभाग पोर्ट रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बहुत अहम है। इससे न सिर्फ भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री व्यापार बढ़ेगा, बल्कि दोनों देश रणनीतिक रूप से अहम एक बड़े समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट पर अपना प्रभुत्व कायम कर पाएंगे। संभाग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर स्थित है। और मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का संकरा समुद्री मार्ग है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। संभाग पोर्ट से भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री पहुंच और मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये गहरे पानी की बंदरगाह है जहां पनडुब्बियों समेत हर तरह के नौसैनिक जहाज आ सकते हैं।
2: देखिए, जहां ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलप हो रहा है वहां से सबांग पोर्ट तकरीबन 160 किलोमीटर है, जहां से मलक्का स्ट्रेट निकलता है। चीन का ज्यादातर तेल और उनका व्यापार यहीं से होता है। तो अगर दोनों तरफ, उधर भारत ने उनको ब्रह्मोस बेचा हुआ है, बेच रहे हैं जो पहुंच रहा है, और साथ साथ में यहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाती है, तो इसको हम पूरी तरह से जरूरत पड़ने पर करेंगे नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्यों किया जा सकता है, जैसे कि आप हमने एग्जांपल देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दूसरी बात, सबांग पोर्ट में भारत के शिप्स को मदद मिल जाएगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी, वहाँ पर रिफ्यूलिंग हो जाएगा, वहाँ से आगे फिर रीच उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए बेनिफिशियल है।
0: चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला ये संकरा समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। चीन के आयातित तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया और अफ्रीका से इसी रास्ते होकर चीन पहुंचता है। इसके साथ ही चीन के निर्यात आधारित व्यापार का भी बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है। चीन अपना करीब 80% कच्चा तेल और ऊर्जा आयात स्ट्रेट ऑफ मलक्का रूट से करता है। चीन के कुल वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 60% से 2/3 हिस्सा इसी जल मार्ग से आता जाता है। यानी जिस मलक्का स्ट्रेट को चीन के व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर अब भारत की नजर रहेगी।
2: मलक्का स्ट्रेट को चीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि चीन का ज़्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तेल उनका ज़्यादातर इंपोर्ट होता है। उनका 25-40% व्यापार मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है, साथ साथ में तेल जो है वो 60-80% तेल जो पश्चिमी एशिया से आता है वो मलक्का स्ट्रेट से निकलता है। यदि मलक्का स्ट्रेट चौक हो जाता है तो चीन के पास ऑप्शन है, आर्कटिक साइड से है या फिर दूसरे स्टेट हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं। एक बात और है कि यहाँ पर यदि हम इसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि एक तरफ निकोबार, दूसरी तरफ सबांग आइलैंड इंडोनेशिया का, तो ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट हो जाता है। यही कारण है कि चीन इसके लिए काफ़ी वल्नरेबल रहता है और वो अल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश कर रहा है।
0: हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक आने जाने वाले समुद्री मार्ग चीन के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दे सकती है।
1: साल 2003 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने मलक्का को लेकर एक आशंका जाहिर की थी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मलक्का डिलेमा। दरअसल उस दौरान उन्हें इस बात की आशंका थी कि अगर कहीं तनाव होता है या फिर अगर दुश्मन के साथ, चीनी दुश्मन के साथ भी तनाव होता है, तो अमेरिका या फिर उसके सहयोगी मिलकर मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, वहां से रास्ता रोक सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
0: मलक्का स्ट्रेट कहाँ है और इसकी अहमियत कितनी है, ये समझने की जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला रास्ता है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाला बड़ा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 25-40% हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 80,000 से 1,20,000 कार्गो यहां से गुजरते हैं। रोजाना औसतन 200 से 300 मालवाहक जहाज इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो हर साल लगभग $3.5 trillion का सामान स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते से गुजरता है।
2: देखा जाए तो मलक्का स्ट्रेट एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसको अगर ब्लॉक हो जाता है तो चीन के व्यापारिक क्षमता पर बहुत फर्क पड़ेगा। आज उनका जो व्यापार है यूरोप के साथ है, मध्य पूर्व के देशों के साथ है, और यदि ये ब्लॉक होता है तो उनकी तेल सप्लाई व्यापार जो 25 से 40% व्यापार यहाँ से निकलता है, उनका जो मध्य पूर्व से तेल आता है उनका 60 से 80% तेल यहाँ से आता है। तो चीन के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी ज़्यादातर इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन है। अगर ये हट जाता है तो यूरोप के साथ और मध्य पूर्व के देशों के साथ जो एक्सपोर्ट रुकता है तो उनकी इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा।
0: मलक्का स्ट्रेट पर भारत का सीधा भौगोलिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति और सैन्य ताकत इसे इस मार्ग पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। भारत संवेदनशील समुद्री रास्ते के मुहाने पर पहरेदार की तरह बैठा है, जिससे वो चीन की दुखती रग को कंट्रोल कर सकता है।
1: दरअसल भारत को प्राकृतिक रूप से तोहफे में अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिले हैं, जिसका दायरा 700 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसका एक छोर सीधा मलक्का स्ट्रेट पर जाकर खुलता है। और यही एक बड़ी वजह है कि भारत यहां पर ग्रेट निकोबार को विकसित कर रहा है, ताकि खास तौर पर मलक्का स्ट्रेट में अपनी रणनीतिक बढ़त को मजबूत बना सके, और यह चीन के लिए बहुत बड़ी टेंशन होगी।
0: ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण द्वीप पर विकसित किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख हिस्से हैं, जिनमें पहला इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ICTP है। इसमें गैलाथिया की खाड़ी में एक विशाल गहरे पानी का बंदरगाह बनाया जा रहा है। दूसरा हिस्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका तीसरा हिस्सा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसमें करीब 149 वर्ग किलोमीटर एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। चौथा हिस्सा वाटर प्लांट होगा, जो शहर और बंदरगाह की जरूरतों के लिए ऊर्जा सप्लाई करेगा।
2: जब इंडोनेशिया के संबंध की बात होती है तो ग्रेट निकोबार एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, और ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए भारत की सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, जहां पे 81,000 करोड़ लगाकर तकरीबन 30 साल के समय का सीमा निर्धारित करते हुए वहां पर एयरपोर्ट, टाउनशिप, सामरिक पोर्ट और एक पावर प्लांट, हर तरह से एक कंपोजिट डेवलपमेंट करने का विचार है, जो कि सुरक्षा और व्यापार दोनों तरह से काफ़ी बेहतर रहेगा। एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाएगा वहाँ पर, और साथ साथ में सुरक्षा के निगाह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के पूरी तरह से डोमिनेट करेगा, और जिसको हम कहते हैं कि अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं, हमारा वो द्वीप ही जब एक एयरपोर्ट हब बन जाएगा, एयरफोर्स होगी, नेवी की बेस हो जाएगी, तो काफी आगे तक हमारी रीच बढ़ जाएगी।
0: ग्रेट निकोबार का दक्षिणी सिरा सिंगापुर, पोर्ट किंग और कोलंबो के काफी पास में है। इन द्वीपों के पास जो समुद्री रास्ते हैं, उसका करीब 60% चीन अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में इन रास्तों पर नियंत्रण स्ट्रेटेजिक ट्रम्प कार्ड है, जो चीन को बेहद नागवार गुजरता है। अब भारत ने जब से ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, चीन की टेंशन यकीनन बढ़ गई है।
3: ये जगह जब डेवलप हो जाएगी, ये जो हमारे जो पोर्ट डेवलप होगा, यहाँ से जो हमारी मैरीटाइम पार एंड रीच जो होगी वो बढ़ेगी, हमारी रीच फ्रॉम डोमिनेंस एंड मैरीटाइम एंड द एयर फ्रंट बहुत बढ़ेगी। ये 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से, सिर्फ 150 किलोमीटर। तो हमारी एंड आप समझ रहे हैं इस मलक्का स्ट्रेट से कितना सी रूट जाता है, नियरली 30%। चाइना की 75% नियरली एनर्जी ट्रेड, एनर्जी रूट यहां से है। तो इस पे हमारी एबिलिटी टू डोमिनेट, एबिलिटी टू सिक्योर दिस ट्रेड रूट बहुत जरूरी है, एंड होर्मुज के बाद तो ये बात आज की तारीख में सबको समझना चाहिए।
0: भारत ने अपने पश्चिमी और पूर्वी तट पर समंदर के पास पनडुब्बियों का जाल बिछा रखा है, जिससे भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन अपनी हद पार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसमें हर तरह की पनडुब्बियां शामिल हैं। भारत ने हाल ही में 2 पनडुब्बी अड्डे बनाए हैं, पहला है कारवार और दूसरा है INS वर्षा। ये बेस भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक बेहद मजबूत हिस्सा है, जो देश को किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में सुनिश्चित सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करता है।
1: हिंदुस्तान की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो तीन तरफ से समुद्री सीमाओं से सटा हुआ है, जिसमें 7516 किलोमीटर का लगभग ये पूरा एरिया पड़ता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं और कई राज्य भी आते हैं। और इसीलिए भारत के लिए बहुत अहम हो जाता है कि भारत अपनी समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा करे और इसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस करे।
0: भारतीय नौसेना लक्षद्वीप में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिनिकॉय द्वीप पर एक हाईटेक नौसैनिक अड्डा तैयार कर रही है। इसे आईएनएस जटायु का नाम दिया गया है। समंदर के बीच में ये बेस जितना खूबसूरत है स्ट्रेटेजिक तौर पर उतना ही खास है। इस अड्डे से नौसेना टुकड़ी की मूवमेंट तो बढ़ेगी ही, साथ ही जटायु नेवल बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इस बेस पर फाइटर जेट्स और भारी विमानों की आवाजाही अब आसान होगी।
2: देखा जाए तो आईएनएस जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में एक नेवी का अग्रिम बेस है, जिसका फायदा यह है कि ये जब अग्रिम बेस बना होता है द्वीप के ऊपर, तो भारत की एक आइलैंड पॉलिसी है जहाँ पर आइलैंड्स के ऊपर नेवी के बेस बनाकर पूरे इलाके को डोमिनेट करना, उनको नज़र में रखना। क्योंकि जैसे हम चीन की आए दिन खबरें आती रहती कि वो आज वहाँ शिप भेज रहे हैं, वहाँ श्रीलंका के पास भेजा, मालदीव के पास भेजा, भारत के नेवी की मूवमेंट पर निगाह रखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से फिर हम भी निगाह रख सकते हैं उनकी हरकतों पर। दूसरी बात, हमारा एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं। तीसरी बात, समुद्री डकैती यानी कि सी पायरेसी जो है उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर काम करेंगे।
0: के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारतीय नौसेना की मौजूदगी रही है, लेकिन आईएनएस जटायु को द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा पूर्ण अड्डा माना जाएगा। इससे पहले साल 2012 में करवती में आईएनएस द्वीप रक्षक को पहले नौसेना अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो स्वेज कैनाल और फारस की खाड़ी से जाने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए एक अहम रूट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, जो सुंदर लोम्बोक स्ट्रेट की ओर जाने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों चैनलों में मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद खास है। मिनिकॉय में नौसेना बेस इन दोनों चैनलों पर नजर रखने में मदद करेगा। मिनिकॉय में तैयार नेवल बेस आईएनएस जटायु के नाम को भी काफी सोच समझकर रखा गया है। जिस तरह रामायण में जटायु ने सबसे अहम कदम उठाते हुए सीता जी के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी, अपने जीवन को खतरे में डालकर खुद से पहले सेवा का उदाहरण दिया था, उसी तर्ज पर अब देश की हिफाजत होगी।
1: आईएनएस जटायु की पोजीशनिंग दरअसल मालदीव के बेहद करीब है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर और यहीं से न सिर्फ चीनी युद्धपोत बल्कि पनडुब्बियों पर भी नजर रखी जाती है और उनकी निगरानी की जा सकती है, और अगर कहीं तनाव की स्थिति पैदा होती है तो यहाँ से चीन को टारगेट पर भी लिया जाता है। दरअसल ये पोजीशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से चीन ने मालदीव को अपनी कठपुतली बनाया है, तो उस हिसाब से इस पूरे भूमध्य सागर में भारत के लिए खतरा बहुत अहम हो जाता है।
0: चीन और मालदीव की जुगलबंदी कैसे खतरा बन सकती है और कैसे भारत ने इसकी काट निकाली है, ये बताने से पहले हम आपको मालदीव की भौगोलिक स्थिति बताते हैं कि आखिर मालदीव है कहाँ और चीन मालदीव से क्यों नजदीकी बढ़ा रहा है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता। आईएनएस जटायु नौ सैनिक बेस से मालदीव की दूरी महज 524 किलोमीटर है, यानी यहां से चीन और मालदीव पर आसानी से नजर रखी जाएगी। मालदीव को अगर कुछ चीजें खास बनाती हैं तो वो है हिंद महासागर में बसा होना। दरअसल हिंद महासागर से होकर तमाम चीजें ले जाई जा सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है तेल और गैस। ज्यादातर तेल गैस हिंद महासागर से जुड़े तीन अहम पॉइंट से ले जाया जाता है। इनमें से एक जगह है फारस की खाड़ी में मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल जहाजों के जरिए एक से दूसरी जगह पहुंचता है उसका 40% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। दूसरा पॉइंट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमालियन पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बीच मौजूद है। हिंद महासागर में तीसरा मुख्य बिंदु है मलक्का स्ट्रेट। दुनिया के समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से ही गुजरता है। अगर कोई भी देश या फिर देशों का गठबंधन हिंद महासागर में समुद्री व्यापार के तीन प्रमुख रास्तों पर अपना दबदबा बना ले तो वो दूसरों को तकलीफ दे सकता है। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप भी शिपिंग लेन के बगल में हैं, जहां से चीन, जापान और भारत को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अब मालदीव की अहमियत को चीन अच्छी तरह से समझता है और वो अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए मालदीव को साधने में जुटा है।
2: चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम कर रहा है, जहां पर वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो, या बांग्लादेश में चिटगांग पोस्ट हो, और अब वो मालदीव में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उनकी नेवी लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है, हिंद महासागर में घूमते रहते हैं और भारत के शिपिंग पर, भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, भारत की रक्षा की तैयारियों पर पूरी तरह से नजर रखते हैं।
1: रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
5: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
6: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
5: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
6: Score!
5: Search ESPN Radio or tear your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: और अब बात करते हैं कावड़ यात्रा की, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। 30 जुलाई से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है और इस पावन महीने में शिव भक्तों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बनने जा रही है बाबा भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार। कावड़ यात्रा और सावन मेले को लेकर धर्म नगरी में इस समय तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग, हर कोई शिव भक्तों के स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठा है। पुलिस हर स्तर पर तैयारी कर रही है, कावड़ियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है।
7: एक बार फिर फिजाओं में सिर्फ बम बम भोले की गूंज होगी। केसरिया रंग का समंदर होगा और महादेव के भक्तों की आस्था चरम पर होगी, क्योंकि 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इस पावन महीने के स्वागत के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो रही है। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की और मेले के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की गई। हरिद्वार में गंगा के तट पर पूजा अर्चना के साथ ही कावड़ यात्रा का शुभारंभ लगभग हो चुका है। लाखों करोड़ों शिव भक्तों और कावड़ियों की आमद को देखते हुए हरिद्वार में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के भव्य कावड़ मेले को सकुशल और सुगम बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और इस महामेले के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। मेले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस ने शिव भक्तों से एक खास अपील की है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कावड़ मेले के दौरान कोई भी कावड़िया अपने साथ त्रिशूल, लाठी डंडे या बेसबॉल बैट जैसी चीजें लेकर नहीं आएगा। इन सभी वस्तुओं पर मेले के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन नियमों का मकसद सिर्फ शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हरिद्वार में इस बार आस्था, सुरक्षा और भव्यता का ऐसा त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन महोत्सव में गंगा जल भरने आने वाले शिव भक्तों के स्वागत के लिए अब बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
4: इसके ऊपर
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: भारतीय सेना खरीदेगी 450 कालगुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर। जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार। अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय। इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए आज चलाई जा रही है 8 स्पेशल ट्रेन। अलग अलग स्टेशन का टाइम टेबल भी किया जारी। इंदौर में 22वें पुनोदय प्रकल्प का शुभारंभ। मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को बांटी जाएंगी 3,00,000 कॉपियां। 11 अगस्त तक पूरे एक महीने चलेगा अभियान। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम। शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के आखिरी 13 मिनट में निश्चित रूप से हारी हुई बाजी जीतकर दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि युगांधर के शब्दकोश से असंभव शब्द के लिए कोई स्थान ही नहीं है।

0: तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना की ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हां, एक ऐसा खिलाड़ी मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 7 जुलाई को कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना मिस्र के खिलाफ करीब करीब मैच हार चुकी थी, लेकिन मैच के आखिरी 13 मिनट में मेसी ने मैदान पर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और वो तूफान मचाया कि मिस्र के खिलाड़ी जीती हुई बाजी गंवाने का तमाशा असहाय रूप से देखते रह गए।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगों युगों में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में बीते 7 जुलाई को लियोनेल मेसी ने एक बार फिर पूरी हनक के साथ ये साबित कर दिया कि 39 के उम्र में भी विरोधियों की जीत के जबड़े से विजय छीन लेने का जज्बा उनके अंदर बरकरार है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स एंड पहले अर्जेंटीना के

इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूटकर बिखरने लगा। इंजरी टाइम से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन 92वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। नामुमकिन दिख रही जीत को मुमकिन कर मेसी ने पहली प्रतिक्रिया में इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा खुद की बजाय अपने साथी के सिर बांधने की दरियादिली दिखाई। मेसी ने कहा कि 0-2 से पिछड़ने के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। नॉकआउट में इतनी बड़ी वापसी कतई आसान नहीं थी। रोमेरो के गोल से हमारे अंदर बराबरी कर लेने का आत्मविश्वास जगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने एक्स्ट्रा टाइम से पहले ही मैच जीत लिया। अटलांटा के ऐतिहासिक मैच की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने के बाद इतनी सहज और सरल प्रतिक्रिया मेसी जैसा महानतम खिलाड़ी ही दे सकता है। इस प्रतिक्रिया में मेसी ने ना तो 79वें मिनट में दिए अपने शानदार क्रॉस का और ना ही 83वें मिनट में किए अपने गोल का ही जिक्र किया। हालांकि दिग्गज सॉकर प्लेयर ये मान रहे हैं कि मेसी ने एक जादूगर की तरह आखिरी क्षणों में मैच का पासा पलट दिया। इस मैच को सांसें थाम कर देखने वाले फ्रांस के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर थियरी हेनरी ने मेसी की तारीफ करते हुए कहा कि वो मानो से ऊपर के दर्जे वाले लिविंग बीइंग हैं। फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते हुए थियरी हेनरी ने कहा कि इसने शुरू में हमें बताया कि वो एक इंसान है। वो इंसान है इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ पेनल्टी किक को मिस कर दिया, 8 में से 4 को, लेकिन इसी मैच में हमें दोबारा याद दिलाया कि वो इंसान नहीं है। थियरी हेनरी जैसा महान स्ट्राइकर मेसी को अगर महामानव मान रहा है तो जाहिर है इस खिलाड़ी में कुछ तो ऐसा है जो फुटबॉल के दूसरे खिलाड़ियों में नहीं है। मेसी की उम्र 39 साल है, लेकिन इस उम्र में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल दागकर वो गोल्डन बॉल की रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए, जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया, लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानव नहीं मसीहा हैं।

0: साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया, लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे, लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल ये है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
1: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो मानो वो भगवान बन गए, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारे की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन नावाकिफ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तान आपके दिल को छू लेगी।
0: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्ल रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया यह कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे, जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थीं। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी। यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था, इलाज था, लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं, पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्ल्स रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया, बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया, और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे, जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे, वैसी किसी और बच्चे को न झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस, लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
1: तो बंदे में दम में आज आपने लियोनेल मेसी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और अब बात अयोध्या के श्रीराम मंदिर की। 30 जुलाई तक श्रीराम मंदिर का काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी मंदिर पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगा। हालांकि 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का काम चलता रहेगा और राम कथा संग्रहालय का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, लेकिन ये दोनों काम श्रीराम मंदिर परिसर से बाहर चलते रहेंगे।

0: आस्था का बड़ा केंद्र अयोध्या का राम मंदिर 30 जुलाई को संपूर्णता पर पहुंच जाएगा, यानी श्री राम मंदिर के सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। निर्माण कार्य की समीक्षा की गई और अब सिर्फ दो काम पूरे किए जाने बाकी हैं। पहला, एक पुराने राम मंदिर में 24 घंटे जलने वाली ज्वाला की व्यवस्था बाकी है, जबकि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दूसरा स्मारक है, जो 30 जुलाई तक पूरा हो जाएगा।
1: निर्माण कार्य में मुख्य रूप से दो कार्य अभी पूरे किए जाने हैं। एक जो कि पुराना मंदिर था, जिसका स्मारक है, उसे हम लोग पूरा करेंगे। उसमें केवल जो ज्वाला 24 घंटे होनी चाहिए उसकी व्यवस्था बाकी है, बाकी सब निर्माण हो चुका है। आप दूसरा एक पूर्ण स्मारक है, जो कि अब अपनी लगभग उसको आप यह मान करके चलें कि जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। वह मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य में अंतिम कार्य, इस प्रकार 20 जुलाई तक मंदिर का सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा।
0: इसके अलावा
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
3: है। Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
4: बच्चे का जन्म का समय उसके भाग्य पर असर डाल देता है। बच्चे का जन्म नक्षत्र क्या उसकी सेहत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का नाम रखने में भी बहुत सावधानियों का पालन करना चाहिए? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
7: भारतीय सेना खरीदेगी 450 कालगुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार, अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय, इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान, अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए आज चलाई जा रही है 8 स्पेशल ट्रेन, अलग अलग स्टेशन का टाइम टेबल भी किया जारी। इंदौर में 22वें पुनोदय प्रकल्प का शुभारंभ, मध्यप्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को बांटी जाएंगी 3,00,000 कॉपियां, 11 अगस्त तक पूरे एक महीने चलेगा अभियान। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम, शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: समंदर का समीकरण जिसने भी साधा, वो लहरों पर नया इतिहास लिखता चला गया। इन्हीं लहरों पर राज करने की मंशा लिए चीन लगातार विस्तारवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी के एक इलाके पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है और अब उसकी निगाहें हिंद महासागर पर हैं। भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। भारत चीन के पड़ोसियों को न सिर्फ ताकतवर हथियार दे रहा है, बल्कि भारत अब एक ऐसी स्ट्रेटजी पर भी काम कर रहा है जो आने वाले समय में चीन के गले की फांस बन सकता है। भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को बड़ा विस्तार दिया है। दोनों देशों ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद की डील की है। साथ ही साथ अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ समझौता न केवल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नतीजा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश है, बल्कि इसके साथ ही साथ साउथ चाइना सी में और हिंद महासागर में भारत को सामरिक तरीके से बढ़त भी दिलाता है। फिलीपींस वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप समूह है जिसके पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग है। मलक्का, सुंडा, लोम्बोक और मकासर जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रमकता और 9-line के दावों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से इंडोनेशिया को मजबूत समुद्री प्रतिरोध मिलेगा।
1: देखा जाए तो चीन लगातार नटूना समुद्र के ऊपर भी अपना दावा पेश करता रहा है, जिसको कि इंडोनेशिया अपनी EEZ का हिस्सा मानता है। चीन की आए दिन मछली पकड़ने वाली नौकाएं, उनकी नेवी के शिप्स वहां पे आते रहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेता है तो उनको एंटी शिप के तौर पे बड़ी ज़बरदस्त सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि कोस्टल बैटरी, कोस्टल मिसाइल सिस्टम के तौर पे काम करेगा। 290 से 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सी स्कीमिंग लास्ट मिनट में मैनूवर करके एक्यूरेट होने की वजह से ये शिप्स के ऊपर बहुत ही घातक साबित होगा।
0: सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंडोनेशिया ने अपनी सेना के लिए चुना है। ये तो चीन के लिए चिंता की बात हो गई। साथ ही इंडोनेशिया ने समंदर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए भारत के साथ एक और अहम समझौता किया है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है।
2: हिंद महासागर में भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए इस सैन्य समझौते के तहत न सिर्फ भारत की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि ये साथ ही साथ चिंता बढ़ाने वाला विषय है चीन के लिए। और इसी के साथ साथ भारत ने एक और अहम डील की है जिसमें भारत और इंडोनेशिया दोनों संभाग पोर्ट पर एक संयुक्त परियोजना पर काम भी करेंगे। यहाँ ये बता देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संभाग पोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान निकोबार के दक्षिण में पड़ता है। यानी अगर हम दूरी की बात की जाए तो करीब करीब 100 मील की दूरी है। यानी इस डील के साथ साथ भारत कहीं ना कहीं चीन के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है।
0: ग्रेट निकोबार और संबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के दो छोर हैं। इन्हें मलक्का स्ट्रेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। संबाग पोर्ट भारत की ग्रेट निकोबार ट्रांस शिपमेंट पोर्ट से केवल 100 मील यानी कि करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के लिए इंडोनेशिया का संबांग पोर्ट रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बहुत अहम है। इससे न सिर्फ भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री व्यापार बढ़ेगा, बल्कि दोनों देश रणनीतिक रूप से अहम एक बड़े समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट पर अपना प्रभुत्व कायम कर पाएंगे। संबाग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर स्थित है। और मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का संकरा समुद्री मार्ग है जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। संभाग पोर्ट से भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री पहुंच और मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये गहरे पानी की बंदरगाह है जहां पनडुब्बियों समेत हर तरह के नौसैनिक जहाज आ सकते हैं।
1: देखिए, जहां ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलप हो रहा है वहां से सबांग पोर्ट तकरीबन 160 किलोमीटर है, जहां से मलक्का स्ट्रेट निकलता है। चीन का ज़्यादातर तेल और उनका व्यापार यहीं से होता है। तो अगर दोनों तरफ, उधर भारत ने उनको ब्रह्मोस बेचा हुआ है, बेच रहे हैं जो पहुंच रहा है, और साथ साथ में यहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाती है, तो इसको हम पूरी तरह से जरूरत पड़ने पर करेंगे नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर चौक किया जा सकता है, जैसे कि आप हमने एग्जाम्पल देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दूसरी बात, सबांग पोर्ट में भारत के शिप्स को मदद मिल जाएगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी, वहाँ पर रिफ्यूलिंग हो जाएगा, वहाँ से आगे फिर रीच उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए बेनिफिशियल है।
0: चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला ये संकरा समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। चीन के आयातित तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया और अफ्रीका से इसी रास्ते होकर चीन पहुंचता है। इसके साथ ही चीन के निर्यात आधारित व्यापार का भी बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है। चीन अपना करीब 80% कच्चा तेल और ऊर्जा आयात स्ट्रेट ऑफ मलक्का रूट से करता है। चीन के कुल वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 60% से 2/3 हिस्सा इसी जल मार्ग से आता जाता है। यानी जिस मलक्का स्ट्रेट को चीन के व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर अब भारत की नजर रहेगी।
1: मलक्का स्ट्रेट को चीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि चीन का ज़्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तेल उनका ज़्यादातर इंपोर्ट होता है। उनका 25-40% व्यापार मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है, साथ साथ में तेल जो है वो 60-80% तेल जो पश्चिमी एशिया से आता है वो मलक्का स्ट्रेट से निकलता है। यदि मलक्का स्ट्रेट चौक हो जाता है तो चीन के पास ऑप्शन है, आर्कटिक साइड से है या फिर दूसरे स्टेट हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं। एक बात और है कि यहाँ पर यदि हम इसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि एक तरफ निकोबार, दूसरी तरफ सबांग आइलैंड इंडोनेशिया का, तो ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट हो जाता है। यही कारण है कि चीन इसके लिए काफ़ी वल्नरेबल रहता है और वो अल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश कर रहा है।
0: हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक आने जाने वाले समुद्री मार्ग चीन के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दे सकती है।
2: साल 2003 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने मलक्का को लेकर एक आशंका जाहिर की थी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मलक्का डिलेमा। दरअसल उस दौरान उन्हें इस बात की आशंका थी कि अगर कहीं तनाव होता है या फिर अगर दुश्मन के साथ, चीनी दुश्मन के साथ भी तनाव होता है, तो अमेरिका या फिर उसके सहयोगी मिलकर मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, वहां से रास्ता रोक सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
0: मलक्का स्ट्रेट कहाँ है और इसकी अहमियत कितनी है, ये समझने की जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला रास्ता है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाला बड़ा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 25-40% हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 80,000 से 1,20,000 कार्गो यहाँ से गुजरते हैं। रोजाना औसतन 200 से 300 मालवाहक जहाज इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो हर साल लगभग $3.5 trillion का सामान स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते से गुजरता है।
1: देखा जाए तो मलक्का स्ट्रेट एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसको अगर ब्लॉक हो जाता है तो चीन के व्यापारिक क्षमता पर बहुत फर्क पड़ेगा। आज उनका जो व्यापार है यूरोप के साथ है, मध्य पूर्व के देशों के साथ है, और यदि ये ब्लॉक होता है तो उनकी तेल सप्लाई व्यापार जो 25-40% व्यापार यहाँ से निकलता है, उनका जो मध्य पूर्व से तेल आता है उनका 60-80% तेल यहाँ से आता है। तो चीन के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी ज़्यादातर इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन है। अगर ये हट जाता है तो यूरोप के साथ और मध्य पूर्व के देशों के साथ जो एक्सपोर्ट रुकता है तो उनकी इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा।
0: मलक्का स्ट्रेट पर भारत का सीधा भौगोलिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति और सैन्य ताकत इसे इस मार्ग पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। भारत इस संवेदनशील समुद्री रास्ते के मुहाने पर पहरेदार की तरह बैठा है, जिससे वो चीन की दुखती रग को कंट्रोल कर सकता है।
2: दरअसल भारत को प्राकृतिक रूप से तोहफे में अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिले हैं, जिसका दायरा 700 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसका एक छोर सीधा मलक्का स्ट्रेट पर जाकर खुलता है। और यही एक बड़ी वजह है कि भारत यहां पर ग्रेट निकोबार को विकसित कर रहा है, ताकि खास तौर पर मलक्का स्ट्रेट में अपनी रणनीतिक बढ़त को मजबूत बना सके, और यह चीन के लिए बहुत बड़ी टेंशन होगी।
0: ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण द्वीप पर विकसित किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के चार प्रमुख हिस्से हैं, जिनमें पहला इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ICTP है। इसमें गैलाथिया की खाड़ी में एक विशाल गहरे पानी का बंदरगाह बनाया जा रहा है। दूसरा हिस्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका तीसरा हिस्सा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसमें करीब 149 वर्ग किलोमीटर एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। चौथा हिस्सा वाटर प्लांट होगा, जो शहर और बंदरगाह की जरूरतों के लिए ऊर्जा सप्लाई करेगा।
1: जब इंडोनेशिया के संबंध की बात होती है तो ग्रेट निकोबार एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, और ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए भारत की सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, जहां पे 81,000 करोड़ लगाकर तकरीबन 30 साल के समय का सीमा निर्धारित करते हुए वहां पर एयरपोर्ट, टाउनशिप, सामरिक पोर्ट और एक पावर प्लांट, हर तरह से एक कंपोजिट डेवलपमेंट करने का विचार है, जो कि सुरक्षा और व्यापार दोनों तरह से काफ़ी बेहतर रहेगा। एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाएगा वहाँ पर, और साथ साथ में सुरक्षा के निगाह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के पूरी तरह से डोमिनेट करेगा, और जिसको हम कहते हैं कि अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, हमारा वो द्वीप ही जब एक एयरपोर्ट हब बन जाएगा, एयरफोर्स होगी, नेवी की बेस हो जाएगी, तो काफी आगे तक हमारी रीच बढ़ जाएगी।
0: ग्रेट निकोबार का दक्षिणी सिरा सिंगापुर, पोर्ट किंग और कोलंबो के काफी पास में है। इन द्वीपों के पास जो समुद्री रास्ते हैं, उसका करीब 60% चीन अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में इन रास्तों पर नियंत्रण स्ट्रेटेजिक ट्रम्प कार्ड है, जो चीन को बेहद नागवार गुजरता है। अब भारत ने जब से ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, चीन की टेंशन यकीनन बढ़ गई है।
3: ये जगह जब डेवलप हो जाएगी, ये जो हमारे जो पोर्ट डेवलप होगा, यहाँ से जो हमारी मैरीटाइम पार एंड रीच जो होगी वो बढ़ेगी, हमारी रीच फ्रॉम डोमिनेंस एंड मैरीटाइम एंड द एयर फ्रंट बहुत बढ़ेगी। ये 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से, सिर्फ 150 किलोमीटर। तो हमारी एंड आप समझ रहे हैं इस मलक्का स्ट्रेट से कितना सी रूट जाता है, नियरली 30%। चाइना की 75% नियरली एनर्जी ट्रेड, एनर्जी रूट यहाँ से है। तो इस पे हमारी एबिलिटी टू डोमिनेट, एबिलिटी टू सिक्योर दिस ट्रेड रूट बहुत जरूरी है। एंड होर्मुज़ के बाद तो ये बात आज की तारीख में सबको समझना चाहिए।
0: भारत ने अपने पश्चिमी और पूर्वी तट पर समंदर के पास पनडुब्बियों का जाल बिछा रखा है, जिससे भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन अपनी हद पार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसमें हर तरह की पनडुब्बियां शामिल हैं। भारत ने हाल ही में 2 पनडुब्बी अड्डे बनाए हैं, पहला है कारवार और दूसरा है INS वर्षा। ये बेस भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक बेहद मजबूत हिस्सा है, जो देश को किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में सुनिश्चित सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करता है।
2: हिंदुस्तान की अगर अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो तीन तरफ से समुद्री सीमाओं से सटा हुआ है, जिसमें 7,516 किलोमीटर का लगभग ये पूरा एरिया पड़ता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं और कई राज्य भी आते हैं। और इसीलिए भारत के लिए बहुत अहम हो जाता है कि भारत अपनी समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा करे और इसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस करे।
0: भारतीय नौसेना लक्षद्वीप में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिनिकॉय द्वीप पर एक हाईटेक नौसैनिक अड्डा तैयार कर रही है। इसे आईएनएस जटायु का नाम दिया गया है। समंदर के बीच में ये बेस जितना खूबसूरत है स्ट्रेटेजिक तौर पर उतना ही खास है। इस अड्डे से नौसेना टुकड़ी की मूवमेंट तो बढ़ेगी ही, साथ ही जटायु नेवल बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इस बेस पर फाइटर जेट्स और भारी विमानों की आवाजाही अब आसान होगी।
1: देखा जाए तो आईएनएस जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में एक नेवी का अग्रिम बेस है, जिसका फायदा यह है कि ये जब अग्रिम बेस बना होता है द्वीप के ऊपर, तो भारत की एक आइलैंड पॉलिसी है जहां पर आइलैंड्स के ऊपर नेवी के बेस बनाकर पूरे इलाके को डोमिनेट करना, उनको नज़र में रखना। क्योंकि जैसे हम चीन की आए दिन खबरें आती रहती हैं कि वो आज वहाँ शिप भेज रहे हैं, वहाँ श्रीलंका के पास भेजा, मालदीव के पास भेजा, भारत के नेवी की मूवमेंट पर निगाह रखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से फिर हम भी निगाह रख सकते हैं उनकी हरकतों पर। दूसरी बात, हमारा एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं। तीसरी बात, समुद्री डकैती यानी कि सी पायरेसी जो है उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर काम करेंगे।
0: के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारतीय नौसेना की मौजूदगी रही है, लेकिन आईएनएस जटायु को द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा पूर्ण अड्डा माना जाएगा। इससे पहले साल 2012 में करबती में आईएनएस द्वीप रक्षक को पहले नौसेना अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो स्वेज कैनाल और फारस की खाड़ी से जाने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए एक अहम रूट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, जो सुंदर लोम्बोक स्ट्रेट की ओर जाने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों चैनलों में मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद खास है। मिनिकॉय में नौसेना बेस इन दोनों चैनलों पर नजर रखने में मदद करेगा। मिनिकॉय में तैयार नेवल बेस आईएनएस जटायु के नाम को भी काफी सोच समझ कर रखा गया है। जिस तरह रामायण में जटायु ने सबसे अहम कदम उठाते हुए सीता जी के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी, अपने जीवन को खतरे में डालकर खुद से पहले सेवा का उदाहरण दिया था, उसी तर्ज पर अब देश की हिफाजत होगी।
2: आईएनएस जटायु की पोजीशनिंग दरअसल मालदीव के बेहद करीब है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर और यहीं से न सिर्फ चीनी युद्धपोत बल्कि पनडुब्बियों पर भी नजर रखी जाती है और उनकी निगरानी की जा सकती है, और अगर कहीं तनाव की स्थिति पैदा होती है तो यहाँ से चीन को टारगेट पर भी लिया जाता है। दरअसल ये पोजिशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से चीन ने मालदीव को अपनी कठपुतली बनाया है, तो उस हिसाब से इस पूरे भूमध्य सागर में भारत के लिए खतरा बहुत अहम हो जाता है।
0: चीन और मालदीव की जुगलबंदी कैसे खतरा बन सकती है और कैसे भारत ने इसकी काट निकाली है, ये बताने से पहले हम आपको मालदीव की भौगोलिक स्थिति बताते हैं कि आखिर मालदीव है कहाँ और चीन मालदीव से क्यों नजदीकी बढ़ा रहा है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता। INS जटायु नौ सैनिक बेस से मालदीप की दूरी महज 524 किलोमीटर है, यानी यहां से चीन और मालदीप पर आसानी से नजर रखी जाएगी। मालदीप को अगर कुछ चीजें खास बनाती हैं तो वो है हिंद महासागर में बसा होना। दरअसल हिंद महासागर से होकर तमाम चीजें ले जाई जा सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है तेल और गैस। ज्यादातर तेल गैस हिंद महासागर से जुड़े तीन अहम पॉइंट से ले जाया जाता है। इनमें से एक जगह है फारस की खाड़ी में मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल जहाजों के जरिए एक से दूसरी जगह पहुंचता है उसका 40% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। दूसरा पॉइंट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमालियन पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बीच मौजूद है। हिंद महासागर में तीसरा मुख्य बिंदु है मलक्का स्ट्रेट। दुनिया के समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से ही गुजरता है। अगर कोई भी देश या फिर देशों का गठबंधन हिंद महासागर में समुद्री व्यापार के तीन प्रमुख रास्तों पर अपना दबदबा बना ले तो वो दूसरों को तकलीफ दे सकता है। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप भी शिपिंग लेन के बगल में हैं, जहां से चीन जापान और भारत को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अब मालदीव की अहमियत को चीन अच्छी तरह से समझता है और वो अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए मालदीव को साधने में जुटा है।
1: चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम कर रहा है, जहां पर वो भारत को चारों से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो, या बांग्लादेश में चिटगांग पोस्ट हो, और अब वो मालदीव में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उनकी नेवी लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है, हिंद महासागर में घूमते रहते हैं, और भारत के शिपिंग पर, भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, भारत की रक्षा की तैयारियों पर पूरी तरह से नजर रखते हैं।
2: रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर
5: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
6: Schwarber to right field, and it will leave.
5: From the first pitch of the season to the stretch run,
6: and that's the ball game.
5: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: और अब बात करते हैं कावड़ यात्रा की, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। 30 जुलाई से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है और इस पावन महीने में शिव भक्तों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बनने जा रही है बाबा भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार। कावड़ यात्रा और सावन मेले को लेकर धर्मनगरी में इस समय तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग, हर कोई शिव भक्तों के स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठा है। पुलिस हर स्तर पर तैयारी कर रही है, कावड़ियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है।
7: एक बार फिर फिजाओं में सिर्फ बम बम भोले की गूंज होगी। केसरिया रंग का समंदर होगा और महादेव के भक्तों की आस्था चरम पर होगी, क्योंकि 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इस पावन महीने के स्वागत के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो रही है। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की और मेले के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की गई। हरिद्वार में गंगा के तट पर पूजा अर्चना के साथ ही कावड़ यात्रा का शुभारंभ लगभग हो चुका है। लाखों करोड़ों शिव भक्तों और कावड़ियों की आमद को देखते हुए हरिद्वार में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 20 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के भव्य कावड़ मेले को सकुशल और सुगम बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और इस महामेले के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। मेले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस ने शिव भक्तों से एक खास अपील की है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कावड़ मेले के दौरान कोई भी कावड़िया अपने साथ त्रिशूल, लाठी डंडे या बेसबॉल बैट जैसी चीजें लेकर नहीं आएगा। इन सभी वस्तुओं पर मेले के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन नियमों का मकसद सिर्फ शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हरिद्वार में इस बार आस्था, सुरक्षा और भव्यता का ऐसा त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। 3 जुलाई से शुरू हो रहे सावन महोत्सव में गंगा जल भरने आने वाले शिव भक्तों के स्वागत के लिए अब बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: इस बच्चे का जन्म का समय उसके भाग्य पर असर डाल देता है। बच्चे का जन्म नक्षत्र क्या उसकी सेहत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का नाम रखने में भी बहुत सावधानियों का पालन करना चाहिए? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: Tunein's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
11: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: भारतीय सेना खरीदेगी 450 कालगुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर। जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार। अपडेट और न्यू वर्जन से मारक क्षमता होगी बेहतर। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की तय। इस लिस्ट में कई गंभीर बीमारियों की दवाएं। बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए आज चलाई जा रही है 8 स्पेशल ट्रेन। अलग अलग स्टेशन का टाइम टेबल भी किया जा रहा है। इंदौर में 22वें पुनोदय प्रकल्प का शुभारंभ। मध्यप्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को बांटी जाएंगी 3,00,000 कॉपियां। 11 अगस्त तक पूरे एक महीने चलेगा अभियान। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिल्ली में पुराने आशियाने को किया अपने नाम। शादी के बाद जिस घर से शुरू की थी नई जिंदगी की शुरुआत, उस पूरी इमारत को खरीदा।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के आखिरी 13 मिनट में निश्चित रूप से हारी हुई बाजी जीतकर दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि युगांधर के शब्दकोश से असंभव शब्द के लिए कोई स्थान ही नहीं है।

0: तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना के ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हां, एक ऐसा खिलाड़ी मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 7 जुलाई को कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना मिस्र के खिलाफ करीब करीब मैच हार चुकी थी, लेकिन मैच के आखिरी 13 मिनट में मेसी ने मैदान पर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और वो तूफान मचाया कि मिस्र के खिलाड़ी जीती हुई बाजी गंवाने का तमाशा असहाय रूप से देखते रह गए।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगो युगों में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में बीते 7 जुलाई को लियोनेल मेसी ने एक बार फिर पूरी हनक के साथ ये साबित कर दिया कि 39 के उम्र में भी विरोधियों की जीत के जबड़े से विजय छीन लेने का जज्बा उनके अंदर बरकरार है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स से आने पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में शोला बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगा दी। इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूटकर बिखरने लगा। इंजरी टाइम से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन 92 मिनट में एंजो फर्नांडीज ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। नामुमकिन दिख रही जीत को मुमकिन कर मेसी ने पहली प्रतिक्रिया में इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा खुद की बजाय अपने साथी के सिर बांधने की दरियादिली दिखाई। मेसी ने कहा कि 0-2 से पिछड़ने के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। नॉकआउट में इतनी बड़ी वापसी कतई आसान नहीं थी। रोमेरो के गोल से हमारे अंदर बराबरी कर लेने का आत्मविश्वास जगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने एक्स्ट्रा टाइम से पहले ही मैच जीत लिया। अटलांटा के ऐतिहासिक मैच की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने के बाद इतनी सहज और सरल प्रतिक्रिया मेसी जैसा महानतम खिलाड़ी ही दे सकता है। इस प्रतिक्रिया में मेसी ने ना तो 79वें मिनट में दिए अपने शानदार क्रॉस का और ना ही 83वें मिनट में किए अपने गोल का ही जिक्र किया। हालांकि दिग्गज सॉकर प्लेयर ये मान रहे हैं कि मेसी ने एक जादूगर की तरह आखिरी क्षणों में मैच का पासा पलट दिया। इस मैच को सांसें थाम कर देखने वाले फ्रांस के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर थियरी हेनरी ने मेसी की तारीफ करते हुए कहा कि वो मानव से ऊपर के दर्जे वाले लिविंग विंग हैं। फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते हुए थियरी हेनरी ने कहा कि

इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ पेनाल्टी किक को मिस कर दिया, 8 में से 4 को। लेकिन इसी मैच में हमें दोबारा याद दिलाया कि वो इंसान नहीं है। थियरी हेनरी जैसा महान स्ट्राइकर मेसी को अगर महामानव मान रहा है, तो जाहिर है इस खिलाड़ी में कुछ तो ऐसा है जो फुटबॉल के दूसरे खिलाड़ियों में नहीं है। मेसी की उम्र 39 साल है, लेकिन इस उम्र में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल दागकर वो गोल्डन बॉल की रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए, जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया, लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानव नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया, लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे, लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल यह है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल

0: जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब दो दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
1: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो मानो वो भगवान बन गए, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारे की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन नावाकिफ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तान आपके दिल को छू लेगी।
0: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे, जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थी। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी, यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था, इलाज था, लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया, जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं। पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्ल्स रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया, बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया, और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे, जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे, वैसी किसी और बच्चे को ना झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस, लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
1: तो बंदे में दम में आज आपने लियोनेल मेसी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
3: अयोध्या के श्रीराम मंदिर की 30 जुलाई तक श्रीराम मंदिर का काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी मंदिर पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगा। हालांकि 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का काम चलता रहेगा और राम कथा संग्रहालय का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, लेकिन ये दोनों काम श्रीराम मंदिर परिसर से बाहर चलते रहेंगे।

0: आस्था का बड़ा केंद्र अयोध्या का राम मंदिर 30 जुलाई को संपूर्णता पर पहुंच जाएगा, यानी श्री राम मंदिर के सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। निर्माण कार्य की समीक्षा की गई और अब सिर्फ दो काम पूरे किए जाने बाकी हैं। पहला, एक पुराने राम मंदिर में 24 घंटे जलने वाली ज्वाला की व्यवस्था बाकी है, जबकि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दूसरा स्मारक है, जो 30 जुलाई तक पूरा हो जाएगा।
1: निर्माण कार्य में मुख्य रूप से दो कार्य अभी पूरे किए जाने हैं। एक जो कि पुराना मंदिर था, जिसका स्मारक है, उसे हम लोग पूरा करेंगे। उसमें केवल जो ज्वाला 24 घंटे होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था बाकी है, बाकी सब निर्माण हो चुका है। आप दूसरा एक पूर्ण स्मारक है, जो कि अब अपनी लगभग उसको आप यह मान करके चलें कि जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। वह मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य में अंतिम कार्य है। इस प्रकार 20 जुलाई तक मंदिर का सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा।
0: इसके अलावा अयोध्या में दो काम चलते रहेंगे, पहला 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का कार्य और दूसरा मंदिर परिसर के बाहर ऑडिटोरियम का। इसके अलावा राम कथा संग्रहालय, जिसमें 20 गैलरी हैं, इसकी स्टोरी लाइन बन गई है। अब उसका टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो किस प्रकार का होगा, उस पर अंतिम रूप से निर्णय लेना बाकी है।
1: दो कार्य चलते रहेंगे, एक बाउंड्री वॉल है 4 किलोमीटर लंबी, वह कार्य चलेगा, और मंदिर परिसर के बाहर जो ऑडिटोरियम है उसका कार्य लगभग नवंबर दिसंबर तक होगा। इसके अतिरिक्त जो संग्रहालय है, राम कथा संग्रहालय, वह कार्य 20 गैलरी है, 20 गैलरी में सभी अपने अपने स्थिति स्क्रिप्ट वगैरह आप जानते हैं उसके क्या क्या स्टेप होते हैं, तो उसकी जो स्टोरी लाइन है वो अब बन गई है, और अब उसका टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो किस प्रकार का होगा, उस पे अंतिम रूप से एक तरीके से निर्णय दिया जाएगा।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उम्मीद है 30 सितंबर तक बाउंड्री वॉल का काम पूरा हो जाएगा, जबकि राम कथा संग्रहालय का सारा काम नवंबर दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला और संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime, and Third Eye Blind.

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: क्या बच्चे का जन्म का समय उसके भाग्य पर असर डाल देता है? बच्चे का जन्म नक्षत्र क्या उसकी सेहत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का नाम रखने में भी बहुत सावधानियों का पालन करना चाहिए? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके